0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے, روایت ہے بخاری کی.
1: اللہم صل و

0: FM 107. Time check.
1: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 6:01 आप
0: सुन रहे हैं

0: यह स्टेशन का यही कॉलिंग नंबर है, इसके जरिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आइए जी करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज और सुनते हैं असकार। इंशाल्लाह ताला वापस आने के बाद आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की कॉल्स, अपडेट्स और खूब सारी बातें हमारी मॉर्निंग को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्म रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

0: वेरी गुड मॉर्निंग सभी को जिन्होंने अभी अभी मेरे साथ कनेक्ट किया है, तो उन सबको बता दूं कि सरवर मिर्ज़ा हाजिर खिदमत है आपके लिए, आपकी सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। भाई, और इससे ज्यादा खूबसूरत बात और क्या होगी कि हमने सुबह सुबह अल्लाह का जिक्र भी कर लिया और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं। इंशाल्लाह ताला सबकी तबीयतें भी अच्छी रहें, ये भी मेरी दुआ है। तो भाई, वेदर के हवाले से बातचीत यहाँ पर करने जा रहा था मैं, तो आइए सबसे पहले वेदर का हाल अहवाल जान लेते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं कि आज का मौजू क्या है।
1: वेदर का हाल 107 दिनाल।
0: भाई 31 डिग्री दिख रहा है यहाँ पर टेम्परेचर मुझे, बाकी मुझे मालूम है अभी अपडेट आना शुरू हो जाएंगी, इसलिए मैं बता दूं कि फील्स लाइक जो है वो 39 है, जो ऑन पेपर है भाई, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में जो दिख रहा है वो 39 है फील्स लाइक। और इस वक्त हवाएं जो हैं वो 3 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रही, जबकि कल तो हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी। 80% पर है ह्यूमिडिटी भाई, 80% पर। इसका क्या मतलब होता है कि जो बात हमें कही गई थी डिपार्टमेंट ने, जो बताया था QMD ने, जो हमें बताया था मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कि बारिश के कुछ इम्कानात हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ हो जाए, क्योंकि सुबह अभी तकरीबन 4 बजे के करीब मैंने जब देखा था तो खूब सारे घने बादल थे आसमान में। अब मुझे नहीं मालूम इस वक्त के बाहर की सूरत हाल क्या है, तो वो आप लोग मुझे अपडेट कर ही देंगे। फिलहाल QMD ने और भी यहाँ पर वेदर अपडेट बताइए तो वो भी सुन लीजिए मेरे साथ। कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज कुछ इलाकों में कहा तो है, कल भी कहा था कि भाई गरज बरस हो सकती है और देखें कि क्या होता है, और लोगों से एहतियात करने की हिदायत भी दी गई है। दोहा में आज सुबह कुछ मकामात पर हल्की धुंध रही है, हेजी कंडीशन जो होती हैं वो रही हैं, वो जो फॉग वगैरह जो हमें दिखता है ना, जो कोहरा वगैरह दिखता है, उसी से मुतालिक ये बात बताई गई है। और मेरे ख्याल में हाईवे वाले इस बात को अच्छी तरीके से समझते होंगे। फिलहाल अगर अभी भी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, और ट्रैफिक के हवाले से भी पूरे 3 घंटे आप कभी भी हमारे साथ कनेक्ट होकर हमें ट्रैफिक का हाल अहवाल बता सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं ट्रैफिक की। तो जनाब, डिपार्टमेंट ने दिन के वक्त मौसम कुछ गर्म रहेगा ऐसा बताया है, जाहिर बात है क्योंकि ह्यूमिडिटी अभी ही 80% है, तो आगे देखिए क्या होती है। और बाज़ इलाकों में बादल जो हैं वो बने रहने के इम्कान तो बताए जा रहे हैं, बट दोपहर के वक्त कुछ जैसे कि बताया गया कि गरज बरस भी हो सकती है, देखने के लिए मिल सकती है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई, तो हम भी मान लेते हैं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने खबरदार भी किया है कि भाई जब गरज बरस हो तो उसके साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, तो आप ख्याल रखें और जितने भी कहना चाहिए एहतियाती तदाबीर हैं उनका जरूर ख्याल करें। इंश्योर इलाकों में हवाओं की बात करें तो 5 से 15 नॉट बताई जा रही हैं, और जबकि विजिबिलिटी इंश्योर इलाकों में 4 से 9 किलोमीटर है। डिपार्टमेंट ने लोगों को मशवरा दिया है कि अगर आपको मौसम के चेंज में कुछ तब्दीली दिखती है, मतलब चेंज होता है दिखता है, तब्दीली होती हुई दिखती है, तो जितनी भी अपनी एहतियात है वो करने की कोशिश करें, बच्चों के हवाले से भी और बुजुर्गों के हवाले से भी। तो भाई यदि कुछ वेदर अपडेट, तो आइए जनाब आज बढ़ जाते हैं खासम खास जो दिन है और उसके हवाले से आज जो हम बात करने वाले हैं अपने मौजू पर भी, वो भी जान लेते हैं। तो आज है साहब वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, दुनिया भर में स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी सिस्टम की अहमियत को उजागर करने का दिन, और इमरजेंसी नर्सेज डे भी है आज। तो साहब, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो काम करने वाली नर्सेज हैं हमारी, या जहाँ भी काम करते हैं जितनी भी नर्स हैं,

0: ब्रदर भी कहलाते हैं अब तो, जो मेल नर्स है उनको ब्रदर कहना शुरू कर दिया है, तो उनका भी आज खासम खास दिन है। और वाकई साहब ये लोग ऐसे हैं जो मतलब माँ और बाप के अलावा अगर कोई है ख्याल करने वाला, खुदा ना खास्ता अगर हमारी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, तो यही लोग हैं जो हमें देखते हैं। तो बहुत सराहना चाहिए और इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अगर आपके भी कोई दोस्त हैं, आपके कोई पड़ोसी हैं और कोई ऐसे नर्स हैं, ब्रदर हैं जिनको आप जानते हैं, तो आज उनको ज़रूर विश कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए और उनकी जो सर्विसेज हैं हमारे लिए दुनिया भर में, उसके लिए भी उनको खूब सराहिए। नेशनल फॉसिल डे भी है आज, और ये अर्थ साइंस के बारे में जो शऊर पैदा करने के हवाले से दिन होता है वो भी है। और जिस पे हम बात करने वाले हैं, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे भी है आज। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, पुराने मोबाइल्स, लैपटॉप, गैजेट्स हैं, ये सारी चीजों को जो रिसाइकलिंग कराया जाता है या इनको जो डिस्पोजल किया जाता है, उसके हवाले से भी अवेयरनेस फैलाने का दिन है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर हम कुछ बात कर ले और क्यों ना जान ले, क्योंकि बड़ा ही कनेक्टेड होता है एक मामला हमसे कि भाई वो पुराना मोबाइल जो घर में पड़ा हुआ है उसके बारे में इस वक्त बात करना चाह रहा हूं। आज सुबह एक ऐसा सवाल कि भाई याद कीजिए, आपने अपना मोबाइल जो है, पहला मोबाइल वो कौन सा था पहले, तो हैं अच्छा नाम हम नहीं शेयर करेंगे कंपनी का, तो वो ज़रा सा क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा उसके हवाले से। बहरहाल जो जिंदगी भर अभी तक आपके साथ चल रहा है, और अब सवाल ये भी है कि आपके घर में सबसे पुराना मोबाइल कौन सा है। ज़रूरी नहीं है आपका ही हो, अब्बा का हो, बड़े भाई का हो, बड़ी बहन का हो, और आज तक भाई वो संभाल के रखा हुआ है, फ़ोन चलता नहीं है बट सिम लगती नहीं है, बट उसको रख रखा है हमने किसी ना किसी तरीके से, बैटरी फूल चुकी होती है उसकी बुरी तरीके से, याद है आपको वो, मैं नाम तो नहीं लूंगा मगर जब बैटरी फूल जाया करती थी, अब वो हुआ किस वजह से करता था मुझे नहीं याद है, बट होता था ऐसा और फिर उसको रिप्लेस करते थे। कुछ लोग तो भाई पुराने फ़ोन बेचते भी नहीं हैं, और मैं भी शायद उनमें से एक हूँ, मेरे घर में भी कुछ ऐसे एंटीक्स पड़े हुए हैं अभी तक। सीधा ड्रॉर खोलते हैं और वो एक ड्रॉर होती है इसके लिए जिसके अंदर सारे वायर्स हैं, सारे पुराने फ़ोन हैं। मैंने जबकि बीच में एक बार कोशिश भी करी थी तो कह रहे थे भाई साहब यहाँ डस्टबिन पड़ी है, इसको यहीं पर डाल दो और चले जाओ। मैं सोच रहा था मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे फ़ोन थे यार उसके अंदर, जो मैंने भाई 2,000 रियाल के खरीदे थे। अब कैसे खरीदे थे ये तो मुझे मालूम है, बट उनकी कोई कीमत ही नहीं रही। तो भाई घर में सबसे बड़ा राज जो इन फ़ोनों का होता है, उस ड्रॉर में बंद होता है। चार्जर मिले ना मिले, केबल उसकी ज़रूर रह जाती है पुरानी, तो उसी के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। मैंने कहा कि शायद ये हमें थोड़ा कनेक्ट करेगी और लोग रिलेट कर पाएंगे कि भाई सबसे पहला आपने कौन सा फ़ोन खरीदा था, ये भी आप बता सकते हैं, कितने का खरीदा था, कौन सा मतलब ये नहीं बताइए कितने का खरीदा था, ये आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर है हमारा 666-22107, मैसेज भेजने के लिए और कॉल करने के लिए 443-443-77। तो भाई अब हम अपनी लाइन्स भी ओपन कर रहे हैं और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। देखते हैं पर पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो वो क्या कहते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: वालेकुम सलाम।
0: हाला हाला, कैसे हैं भाई? नसीम भाई खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है।
0: माशाल्लाह, कैसी हुई सुबह और कैसी गुजर रही है अभी तक? कितने बजे उठे थे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: 5:30 बजे। 5:30 मतलब एक घंटा होने वाला है, तो चाय शाय तो हो गई होगी नसीम भाई? अच्छा अभी जा रहे हैं यार, एक घंटा हो गया विदाउट चाय। खैर मेरा भी ऐसे ही चल रहा है मामला, जब से माशाल्लाह से आप लोगों का साथ मिला है सुबह सुबह तो चाय जो है मेरी सुबह वाली अभी तक नहीं हो पाती है।
1: आपको तो बनी बनाई मिल जाती है।
0: अरे है यार, आप जो बना के पीते हैं उसकी बात ही अलग होती है। बनी बनाई तो आजकल मशीन भी बना रही है नसीम भाई।
1: बना के नहीं पीता, मैं जा रहा हूँ पीने के लिए।
0: तो फिर इसमें क्या फर्क कर रहे थे? मैंने कहा मेरा भाई तो खुद भी तो बनी बनाई पी रहे हैं।
1: आपको फेरे की मिल रहा है ना
0: भैया? काम कर रहे हैं उसके लिए। चलो खैर ये टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। नसीम भाई, सबसे पहला मोबाइल किस सन में खरीदा था, किस डेट में, किस ईयर में, किस साल में?
1: मैं सबसे पहला मोबाइल 2006 में खरीदा था।
0: 2006 में? ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। यार आप पुराने हैं, मोबाइल पुराना
1: ज्यादा है। 6 या 7 में खरीदा था, जब फर्स्ट तरावी पढ़ा के आया तो मेरे पास पैसा था।
0: अच्छा माशाल्लाह, आप हाफिज़ुल कुरान हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: माशाल्लाह, माशाल्लाह।

0: माशाल्लाह यार नसीम भाई, आज से तो और ज्यादा मतलब मुझे संभल के बात करनी पड़ेगी आपसे। मैं तो यार है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। ये तो
1: मेरे पास पैसा था।
0: अच्छा,
1: तो मैं एक वो 1650 था।
0: हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बस यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 1650 मुझे भी याद है, वो उसके ऊपर हल्का सा एंटीना होता था, ब्लैक कलर का होता था वो।
1: एंटीना उसमें नहीं था, वो एंटीना नहीं था।
0: अच्छा, तो फिर मुझे दूसरा याद है शायद।
1: एंटीना वाला दूसरा है।
0: अच्छा,
1: उसमें जो उसके जो बटन है ना, वो थोड़ी शीशे के टाइप के थे।
0: अच्छा, क्लियर थे। ओके ओके ओके। कितने का खरीदा था?
1: किसी से खरीदा था सेकंड हैंड में।
0: ओके,
1: तकरीबन 1500 लिया था उस वक्त इंडियन।
0: अच्छा, ओके ओके ओके ओके ओके। और वो कितने दिन चला और क्या अभी तक मौजूद है?
1: वो तो काफी दिन तक चला।
0: हाँ,
1: उसके बाद जब मैं फिर स्कूल चला गया तो मैं घर में रख के गया उसको, घर के लिए खरीदा था।
0: हाँ,
1: और घर में जानते ही हैं।
0: हाँ,
1: कि 10 हाथ।
0: हाँ,
1: 10 की बात जब 10 अभी यूज करेंगे,
0: सही बात है,
1: वो 10 महीना भी नहीं चल पाएगा, उसका बैटरी खराब हुई, वो ऐसे ही रखा।
0: मगर सही है यार, मतलब तकरीबन 20
1: अभी तक उसकी बॉडी वॉडी तो इधर उधर हो गई है, लेकिन मैं अभी तक उसको रखा।
0: यही बात मैं कह रहा था कि एक वो जो याद होती ना यार, मेरा पहला मोबाइल या दूसरा मोबाइल, तो वो कहीं ना कहीं इंसान के साथ चलता था।
1: उस तरह की जो है ना, मेरे पास 2-3 मोबाइल है अभी तक, है
0: पुराने वाले रखे हुए अभी
1: तक।
0: मैं तो यार दिल पे पत्थर रख के उनको बेचने भी गया, मगर उन्होंने कहा इनको फेंक दो। मैंने कहा भाई नहीं, कम से कम याद के तौर पे ही रख लूं इनको, मैं फेंक क्यों दूं। मैंने कहा शायद कुछ मिल जाए, चलो आंसू पुछ जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं।
1: और एक टीवी भी मैं रखा हूँ।
0: टीवी?
1: सादी टीवी है।
0: अच्छा, तो वो क्या, वो तो कुछ बचा है उसके अंदर?
1: नहीं है, वो हुआ क्या, 2008 में या 9 में खरीदा था उसको।
0: अच्छा,
1: तो मेरा शौक था बहुत देखने का।
0: नहीं तो क्या, वो एलईडी था या ये और पहले की बात?
1: नहीं,
0: है
1: नहीं, वो पुरानी वाली
0: बक्सा बक्सा।
1: हाँ, में खरीदा था 2000 में।
0: तो वो तो अब अचार वगैरह रखने के काम में आ रहा होगा, उसका और कोई काम तो रह नहीं गया जिंदगी।
1: वो सब कुछ वैसा ही है। अभी भी अगर उसमें एंटीना लगा दूं तो पूरी डीडी दिखाता है।
0: अजी हाँ, चल रहा है वो?
1: चल रहा है, लेकिन मैं उसको देखता नहीं हूँ, वो वैसे ही कवाड़ है। वो मेरे अलावा कोई उसको नहीं लगा सकता है।
0: नहीं, और लगाएगा भी कौन उसको, अब लगाएगा भी और लगाना भी कौन चाहेगा भाई, बक्से को अब क्या इस्तेमाल करेंगे। बट यार बहुत ही जबरदस्त यार, मैंने यही सोच के मैंने कहा कि ये बात पूछूं कि हमारे जो डिवाइसेस हैं, जो ई डिवाइसेस हैं, कहना चाहिए
1: तकरीबन 2-3 साल से उस पर ध्यान नहीं दिया हूँ।
0: अच्छा, अच्छा ऐसा। हाँ, ये भी हो सकता है ना, जल्दी जल्दी निकाल दो, अभी नहीं है, निकाल दो उसको, यहाँ से हटा दो, बेचने से भी मतलब नहीं, आदमी हटाना भी तो चाहते हैं ना घर में बहुत से लोग, कि क्या पड़ा हुआ है यार। खासतौर पे जो छोटे हैं, जो छोटे भाई हैं, बच्चे वगैरह हैं, उनको उसकी वैल्यू नहीं पता है ना, तो उनकी भी गलती नहीं है, भारत ये हम ही समझ सकते हैं। तो क्या बात है यार, 20-22 साल पहले की चीज आपने अभी तक संभाल के रखी हुई है अपने दिल के करीब। तो रिश्ते निभाने में आप वैसे अच्छे ही हैं नसीम साहब, मुझे लगता है। जब डिवाइसेस से इधर निभा रहे हैं तो रिश्ते तो निभाते ही होंगे। क्या बात है यार, चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई।
1: कुछ सुना सकता?
0: अच्छा, या शायरी सुनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड।
1: हेलो।
0: हाँ इरशाद, मैं खामोश हो गया भाई शेर के।
1: हाँ, मैं समझे छोड़ के चले।
0: सुलाइए क्या निकालना पड़ रहा है, कहीं छुपाया हुआ है?
1: नहीं नहीं नहीं है।
0: अच्छा। हाँ,
1: अर्ज है नजर लग जाती है जताया ना करो।
0: नजर लग जाती है जताया ना करो,
1: इश्क एक राज है बताया ना करो।
0: बताया ना करो,
1: लाख समझाया तुझे शक करता है जमाना।
0: लाख समझाया तुझे शक करता है जमाना।

0: जब तू पास गुजरे तो मुस्कराया न कर।
1: आए, है, है, है, है, है, क्या बात है यार, ये अपना है या चुराया हुआ है?
0: चुराया हुआ
1: है। अच्छा। अच्छा, चलिए साहब, बहुत बढ़िया साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी ही अच्छी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच भाई, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। तो ये थे हमारे नसीम भाई, और आज भाई साहब इंटरनेशनल ई वेस्ट डे के मौके पर मैंने कहा कि पूछूं भैया कौन कौन अपना जो पुराना मोबाइल है, पुरानी चीजें हैं, पुराने गैजेट्स हैं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं। जैसे कि नसीम भाई ने बताया, उन्होंने भाई पुराना टीवी संभाल के रखा हुआ, वो जो बक्सा बन जाता है, और कुछ मोबाइल भी आज तक उन्होंने संभाल के रखे। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी इस बात का इतराफ करता हूँ, और आप भी कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 4434377 पे। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ, हेलो, सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, भाई उवैस बात कर रहा हूँ।
1: अहलेन अहलेन, कैसे हैं भाई, खैरियत से उवैस साहब?
2: अल्लाह करम, जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कैसी हुई सुबह, कैसी गुजर रही है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, दफ्तर स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, मिसेस को छोड़ा है।
1: मिसेस को छोड़ा है और स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, या स्कूल की तरफ जा रहा हूँ मिसेस को छोड़ने? पहले तो ये करेक्शन।
2: नहीं, उनको छोड़ दिया है, अब मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ।
1: क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा, वो टीचर नहीं है, आप ही टीचर है?
2: जी, हमारा जिक्र, हमारी बात हुई है।
1: नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैम जो है वो टीचर नहीं है,
2: वो भी स्कूल में ही है।
1: अच्छा, वो दूसरे स्कूल में, आप दूसरे चारों तरफ मतलब कब्जा कर रखा है, जड़े चारों तरफ फैलाई हुई है कदर। यार अल्लाह ताला खुश रखे भाई, आप इतना अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। पहले तो वैस भाई, आज आपने शायद मौजू सुन ही लिया होगा हमारा, तो क्या कहते हैं उसके हवाले से?
2: अच्छा, मौजूद है, पहले मेरा एक सवाल है, अब आप लोगों की मैनेजमेंट भी सुन रही होगी, तो मुझे बताएं कि ये जैसे टीवी में टीआरपी वगैरह होती है, एफएम वगैरह में भी होती है टीआरपी?
1: यार ये
2: रेटिंग वगैरह
1: आप लोग है ना हमारी टीआरपी,
2: सवाल है।
1: नहीं, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, हमारी टीआरपी आप लोग हैं भाई,
2: मैं यही कह रहा हूँ ना। तो जब वो हमारा 1:30 बजे वाला शो इतना एक वो चलता है, एक मतलब हम सुनते हैं, तो ये क्या स्प्लिट डिवाइड एंड रूल का क्या है आपके
1: यार? माय गॉड, उवैस भाई, असल में कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, और जैसे आप लोग एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, ऐसी हम लोग भी रिप्लेस करते हैं, और मॉर्निंग एक तो हमारा शफल भी होता रहता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुकूमत का चैनल है ना ये, तो उसमें सारी चीज़ें उसी हिसाब से होती हैं, उसी तरतीब से होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके अंदर कुछ कर सकते हैं या कोई और, जो हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे पास, हाँ बिल्कुल उसी हिसाब से जाता है। एंड व्हेन जब कोई लीव पे जाता है तो ऑब्वियसली have to replace, तो कबीर जो है वो लीव पे चले गए।
2: अच्छा, कबीर हो गए।
1: जी, कबीर लीव पे गए हुए हैं इस वक्त, तो मैं आ गया हूँ आपकी खिदमत के लिए भाई, ये है मसला बस, और कुछ नहीं। अहलन वसहलन भाई, अहलन वसहलन।
2: मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता हूँ, अच्छा डिवाइसेस, तो मेरा अपना रूल ये है कि जो पुराना मतलब जो न्यू गैजेट्स है ना जिसमें डाटा सेव होता है, तो वो मैं मोबाइल हो या लैपटॉप हो, तो हमने एक पैक किया हुआ है घर वालों ने कि वी डोंट सेल इट आउट, क्योंकि डाटा रिकवर हो जाता है। तो
1: वाओ यार, ये क्या बात है, मुझे तो लग रहा था कोई इंजीनियर ये बात करेगा आके, या कोई आईटी वाला, बट टीचर

0: अवेयरनेस वाली बात
1: कुछ हो जाता है उस पर. हाँ जी जी जी
0: वेरी गुड.
1: तो वैसे तो खैर ओल्डेस्ट मोबाइल तो मेरे पास खैर वो 2003 में बड़े भाई मेरे वो पाकिस्तान एयरफोर्स में थे तो उन्होंने वो गए तो हमारे हालात बड़े अच्छे हो गए माशाल्लाह से. तो उन्होंने गिफ्ट किया था 3310 मेरे पास था.
0: अच्छा अच्छा तो समझ गया.
1: वो जो हथौड़ा टाइप
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल वो भाई वो खींच के मारने के काम में आता था लड़ाई झगड़े हुए. आज तक काम में आ रहा है जिसके पास रखा हुआ 3310 और 3315 दोनों ही ऐसे थे आस पास. 3315 बाद में आया था. सही सही सही. मगर ये आपने बहुत अच्छी बात कही वैसे भाई कि डिवाइसेस जो हैं क्यों उनको एक्चुअली किसी को देना या बेचने से हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि आपका जो डेटा है वो रिकवर हो जाता है और उसके अंदर रहते ही रहता है आप जितना भी उसको उड़ा दें. बहरहाल और भी शायद कुछ तरीके होते होंगे बट वेरी नाइस. तो वो अद्धा रखा हुआ आपके घर में अभी तक.
1: वो जो है ना उसमें क्या नाम है अब तो खैर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक वो प्रॉपर वो है उनका उनको डिस्कार्ड करने का प्रोसेस

0: रखते हैं और फिर उसको वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात और लिहाज से रिसाइकिल करने की कोशिश भी करते हैं। भाई बहुत बढ़िया उस्ताद साहब आप तशरीफ़ लाए और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह दिन अच्छा गुजरे। आज हंसी हंसी आप पूरे दिन किसी को परेशानी भी नहीं होगी क्योंकि इतना अच्छा उस्ताद है, इतने अच्छे टीचर जब पढ़ा रहे हो तो फिर उन बच्चों की तो यार नसीब बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश भाई, कनेक्ट होते रहा करें, कनेक्ट होते रहा करें, अपना ख्याल रखिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज भाई। ऑलराइट देन, तो भाई यहाँ पर आज बात चल रही है आपके वो पुराने जो एक क्या कहूँ यार मैं, इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें हम लोगों को याद रहती हैं, हमारे डिवाइसेस वगैरह जो हैं वो याद रहते हैं और कहीं ना कहीं उनसे हमारा कनेक्शन भी होता है। एक कॉल और लेंगे उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक, एक लाजमी ब्रेक मुझे लेना है तो उस तरफ बढ़ेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: अहलन वसहलन, कौन है हमारे साथ?
1: जी मेरा नाम रियाज है।
0: रियाज भाई कैसे
1: होंगे?
0: अरे
1: कोई नाम सुना है आपने?
0: अरे आपको तो यार 74 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, तो आपका नाम किसने नहीं सुना होगा? रियाज साहब क्या बात कर रहे हैं?
1: ये अच्छा है 74 है, 75 नहीं है।
0: मैं कहना नहीं, 75 वाला कौन सा है वो मैं कह रहा, 75 कौन सा है मैं कहना नहीं चाह रहा क्योंकि आप अभी यहाँ मौजूद हैं।
1: आगे नहीं बढ़ेंगे, इधर ही।
0: अल्लाह ताला सेहत दे भाई रियाज भाई। कैसे हैं रियाज भाई और कैसी हुई सुबह? सब खैरियत? सब खैर है।
1: हमारी सुबह तो एपे में सौसात में आपकी आवाज से
0: अहलन वसहलन भाई,
1: वो वाला मामला है जो एक भाई ने कार किया था कि मैंने दुगनी से इधर आता हूँ और हम सुनते हैं पहली बार कॉल कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि अभी आप फंस गए, तो हम तो फंस गए हैं भाई, 6-7 साल से फंसे हुए हैं। अक्षय कुमार की एक मूवी थी ना, वो जो होटल में फंस गए थे भाई, मेरे निकालो मेरे।
0: मोहब्बत है यार आप लोगों की और इसमें तो कोई इसका कोई बदल भी नहीं है एक्चुअली, अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे।
1: नहीं नहीं आप लोग ये मोहब्बत डिजर्व करते हो 100%, इसलिए इतने लोग आपसे सबके साथ, मतलब सिर्फ आप नहीं, सुबह नहीं दोपहर में भी 10 बजे में भी सब कनेक्ट रहते हैं और हमारे कॉलर और मिसेज की एक अलग फैमिली बन गई है अभी।
0: अल्लाह ताला खैर करे भाई, अल्लाह ताला खैर करे, खुश करे और सबको खुश रखे भी। रियाज भाई क्या कहते हैं, आपके पास ऐसा कौन सा डिवाइस है जो पहला आपने कितने का खरीदा था और अभी तक रखा हुआ है?
1: अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो पुराना आप बोल रहे हैं
0: रियाज भाई, आपको बीच में मैं माजरत के साथ रोकूंगा एक 30 सेकंड अगर आप मेरे साथ रह सकते हैं, मुझे एक बहुत ही जरूरी ब्रेक लेना है इस वक्त, बस एक 30 सेकंड, 30 सेकंड मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा।
2: किरायेदार नहीं मालिक बनिए, इज़दान रियल एस्टेट अपने बेहतरीन रिहायशी कम्प्लेक्सेज में आपको दे रहा है अपना घर लेने का मौका, फर्निश्ड अपार्टमेंट और विलास, फौरी कब्जे और मिल्कियती कागजात के साथ, कीमतें 8,25,000 रियाल से शुरू, तादाद महदूद है इसलिए अभी राब्ता कीजिए 4040306।
0: बिल्कुल सही भाई, नंबर भी सुना आपने और जैसे कि बताया गया कि तादाद महदूद है, तो भाई आप इंशाल्लाह ताला जो भी इंटरेस्टेड हैं इसमें ज़रूर देख सकते हैं। और यहाँ रियाज भाई हमारे साथ। जी रियाज भाई
1: जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहे हैं ना, जो
0: जी जी, क्योंकि आज खासम खास दिन है एक्चुअली, आज इंटरनेशनल ई वेस्ट डे भी है जो ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, पुराने मोबाइल से लैपटॉप गैजेट्स वगैरह जितने भी हैं उनके हवाले से उनको रिसाइकिल और उनकी जिम्मेदाराना डिस्पोजल जो है उसके हवाले से अवेयरनेस फैलाने से, तो आज ये खासम खास दिन है, तो मैंने सोचा इसी के ऊपर बात कर ले भाई।
1: हाँ नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और आया, मेरे दिल से गुजर रही है वो भी पुराने हो तो मैं।
0: अच्छा कुछ और भी डिस्पोज करना चाह रहे थे आज के दिन के, आप बिल्कुल कर सकते हैं।
1: मैं सोचा

0: Agora os seis anos.
1: मैं तो जब ये ख्याल आपके दिल में आया मैं जब भी समझ गया था, बोलने की भी जरूरत नहीं थी।
0: मैं अपना दुख सुबह पहले कि मैं सोचा अगर कोई हाल निकला इस मामले का।
1: ओह माय गॉड, नहीं हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अगर समझने वाले समझ गए ना तो मसला हो जाएगा। घर आपको भी जाना है और मैंने भी जाना है भाई, दोनों के घर जाना है।
0: मुझे तो नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मैं सिर्फ
1: Oh my God. अल्लाह खुश रखे भाई, अल्लाह खुश रखे। तो क्या कहते हैं वो सबसे पुराना वाला जो मोबाइल है कितने का खरीदा था पहले तो ये बताइए, याद है आपको या गिफ्ट था?
0: मुझे सरवर भाई याद नहीं है।
1: अच्छा,
0: लेकिन मुझे एक हमारे एक रिश्तेदार थे उसने उस टाइम पे एक फोन भेजा था, तो आपको मतलब सबको याद होगा वो मोबाइल में ना, जो एक तो कीपैड वाले होते थे ना, वो बटन वाले वो नहीं
1: ओके
0: तो नहीं आते, वो
1: फ्लैप वाला जो खुलता था, जो खुलता था
0: हाई वा जी उसमें जो ब्लूटूथ कनेक्ट करते थे हम, और उसकी मेमोरी जो है वो मेमोरी में
1: भाई एक अलग ही ऑरा था उस मोबाइल का, एक अलग ही मामला था वो भाई। होए
0: वो जो मजा था ना सरवर भाई, वो जो मजा था, वो जो उसमें खुशी थी ना, वो आज अगर आपके मोबाइल में 1 TB का भी जगह है ना, तो
1: वो खुशी नहीं है। सही बात है,
0: सही में
1: पहले तो मुझे याद है इंफ्रारेड आया था, उसके बाद इस मोबाइल का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसी में ब्लूटूथ सबसे पहले आया था गालिबन अगर मुझे सही याद है।
0: मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ।
1: सही,
0: तो मेरे को तो याद नहीं है उसकी कीमत, तो वो मैं भूल गया हूँ, लेकिन हाँ वो मेरे को पहले मिला था। तो मैं उसमें क्या कहता था कि एक वीडियो सॉन्ग या एक दो तीन ऑडियो सॉन्ग उसमें आते थे तो वो डाल देता था, तो वो मतलब एक दो दिन तीन दिन सुनता था, फिर वो डिलीट करते थे और फिर
1: दोबारा, हाँ, क्योंकि जगह नहीं होती थी ना,
0: दोबारा डाल देते थे,
1: जगह नहीं होती
0: तो
1: थी।
0: वो जो ना वो एक अलग लेवल का
1: वाकई एक अलग लेवल का ही गिरफ्त था भाई, और मजा था। क्या वो रखा हुआ है अभी तक आपने संभाल के अपने पास याद के तौर पे या नहीं रहा?
0: नहीं नहीं, मैं मेरे को मेरे मेरा मैं कुछ मतलब सिर्फ मोबाइल नहीं, कुछ भी मतलब मैं मेमोरी नहीं रखता,
1: पुराना कुछ भी नहीं रखता पुराना कुछ भी नहीं रखता
0: है, लेकिन उससे कुछ उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए अभी वो रहेगा, बाकी सब चले गए।
1: ओके All right, रियाज भाई, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया हमारी सुबह को ऐसी आस्था मुस्कुराता बनाने के लिए,
1: अल्लाह ताला खुश रखे भाई हम सबको।
0: हम मजाक करते रहते हैं ताकि हंस सके वो सके, तो बहुत शुक्रिया।
1: कभी बुरा ना मानो, ये भी तो कहिए हम मजाक करते हैं, कभी बुरा मत मानिएगा सर्वर, ये भी तो कह दो यार, दिल्ली रख ले।
0: ऑलराइट,
1: थैंक यू सो मच, अहलन वसहलन। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, यहाँ बात हो रही है आज मोबाइल पुराने डिवाइसेस के हवाले से। क्या कहते हैं एक कॉलर और कनेक्ट करे जाए, ये कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे भाई, कोई तो मसला है। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम
1: भाई साहब, मैंने कहा कि यार कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, खादिम भाई कैसे हैं, खैरियत से?
2: मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज को क्या हुआ ये मुझे बताइए।
1: मेरी आवाज को क्या कुछ खराब आ रही है?
2: आवाज ऐसे आवाज आ रही है जैसे आप या नींद से अभी उठे हो, या अल्लाह ना करे आपका गला खराब हो।
1: अरे नहीं नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम है, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई फर्क है मेरे ख्याल में तो।
2: अच्छा, बस ये मेरे फोन में कुछ गड़बड़ है फिर।
1: अरे नहीं, ऐसा क्या, फेंक मत देना, और अगर फेंक रहे हो खादिम भाई तो बता देना कि किस तरफ फेंक रहे हो, ये मुझे पहले
2: नहीं, नहीं, नहीं। मैं दुनिया का वो वाहिद इंसान हूँ जो कभी पुरानी चीज भी नहीं
1: फेंकता। क्या बात है, तो कौन सा था वो कदीम? मेरे ख्याल में आपने तो कब बने हैं मोबाइल, कब इन्वेंट कब हुए हैं, जब ही ले लिया होगा खादिम भाई आपने?
2: मैंने मैंने तकरीबन मेरे ख्याल में 2002 से मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं।
1: वाह वाह, एक्चुअली मैं यही बताना चाहता हूं, मेरे ख्याल में 95 96 या 92 की बात है जब पहला मोबाइल लॉन्च हुआ था, गालबन वो एक अच्छा। पूरे हाथ के बराबर था, मुझे याद है, थोड़ा छोटा कर लीजिए।
2: हां बिल्कुल, ऐसे थे कि वो पूरे ऐसे, वो जेब में भी नहीं रख सकते, पॉकेट में नहीं रख सकते।
1: बिल्कुल सही,
2: लेकिन 2002 से, फिर उसके बाद जब 2004 से जो मोबाइल मैंने लिए, अभी तक मेरे पास उधर पाकिस्तान में रखे हुए मैंने,
1: अच्छा,
2: मेरे ख्याल में 3 मोबाइल अभी मेरे पास उधर है।
1: वाह।
2: और 3 मेरे पास इधर, 2 पुराने इधर मेरे पास पड़े।
1: भाई तो मेरे आपने एक्चुअली मुझे भी पीछे छोड़ दिया, मेरे पास 3 रखे हुए हैं, बाकी तो जितने आए जितने गए वो याद ही नहीं है, बट जो बहुत अजीज थे वो 3 रखे हुए हैं मेरे पास भी अभी तक, मगर आप तो 5 पर पहुंच गए भाई। वाह,
2: मैं ये मेरा छठा मोबाइल, यानी मतलब ये कि ऐसे भी वो कोई कुछ टूट गए कुछ ऐसा हुआ, लेकिन जो रखे हुए हैं वो अभी 5 रखे हुए माशाल्लाह।
1: अच्छा, ओके।
2: हाँ, लेकिन इसमें एक बात और भी है कि सरवर भाई, कभी भी अगर कोई बंदा मोबाइल बेचना नहीं चाहिए, इसमें कुछ ऐसा डेटा होता है
1: exactly.
2: जो हम लोगों को नहीं मालूम होता,
1: सही बात,
2: और वो मोबाइल वाले या कंप्यूटर वाले वो निकाल लेते हैं।
1: एक्चुअली ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि ना बेचें और अपने पास जमा करते रहें, ये क्यों ना इसको हम ऐसे कहें ताकि दूसरे और हम सब मिलकर समझें कि उनको सही से डिस्पोज करें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत भी करती है, कतर की हुकूमत भी करती है, और उसको सही से डिस्पोज किया जाता है। तो अगर आपकी हिम्मत हो रही है और आप उन यादों को अपनी जिंदगी से हटाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं तो जस्ट टू गेट अ रिड उन मोबाइल को अपने पास से दूर करना चाह रहे हैं, तो आप उसको एहतियात से जाकर डिस्पोज करें। इसी के हवाले से आज का ये दिन है, ये हमें यही समझाता भी है एक्चुअली। अब इसमें तो बहुत लंबा खुलासा हो जाएगा जी,
2: ये तो मैंने सुना भी नहीं, बाहर yes, yes, तो yes. डायरेक्ट कॉल मिलाया।
1: आज एक्चुअली इंटरनेशनल ई वेस्ट डे भी है, जो ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स yes. पुराने मोबाइल ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे गैजेट्स हैं, लैपटॉप वगैरह जिसके अंदर हमारा डाटा होता है स्पेशली, उनको जो एक बहुत तरीके से, एक जिम्मेदार तरीके से डिस्पोज करने के हवाले से जो अवेयरनेस दी जाती है, उनका आज दिन है। तो उसी के मैंने सोचा हिसाब से आज बात भी कर लूं और आप सब रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि पुराने मोबाइल पुराने गैजेट सभी के पास रखे होते हैं भाई।
2: जी जी बिल्कुल। और एक दूसरी बात ये कि इसमें जो यूएसबी होती है या जो दूसरी मेमोरी कार्ड है, अक्सर हम लोग देखते हैं वो करप्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता, वो दोबारा वो लोग कर सकते हैं।
1: नहीं, ये तो बहुत नोन है आजकल, और इवन ये जो हमारी हार्ड ड्राइव वगैरह होती है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स वगैरह होती हैं और हार्ड डिस्क होती हैं, इनसे भी जब भी कभी ख़राब हो जाती है तो हम लोग जाते हैं ना शॉप वगैरह पे कि भाई इसकी ये रिकवरी कर दो, डेटा रिकवरी वगैरह कर दो। तो इट्स सो ऑब्वियस एंड कि हमें ये पता होना चाहिए कि मोबाइल तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, मेमोरी कार्ड तो एक बहुत ही मामूली सी चीज़ है, तो ये चीज़ें चलती भी रहती हैं। मेरे पास तकरीबन, मुझे ऐसा लगता है खादिम भाई, मैं 22-23 साल पुराना मेमोरी कार्ड है मेरे पास, जो अभी तक चल रहा है
2: माशाल्लाह। मेरे साथ भी यही है,
1: उसके साथ मैंने उसको संभाल कर रखा हुआ मैंने जी।
2: सरवर भाई, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं शायद कंजूसी भी कर रहा हूँ।
1: अच्छा,
2: कभी ऐसा होता है कि अगर इवन एक मिसाल देता हूँ कि अगर साइकिल का टायर भी चेंज करता तो वो टायर मैं अपने साथ लेकर के आता था।
1: ओके,
2: तो वो छोड़ता नहीं था, यानी मतलब ये कि हर चीज, जो भी चीज आप जो
1: मेरा है वो मेरा है, वो किसी का नहीं है,
2: वो
1: कहने का मकसद ये
2: है, किसी का नहीं है, मतलब ये
1: बेटे मेरा है,
2: वो किसी का नहीं है, वो मेरा
1: किसी का नहीं हो
2: सकता। इसलिए वो अगर एक चीज मोबाइल में आपने एक पुर्जा भी चेंज किया तो वो अपने पास रखो, बेशक वो आपके काम का नहीं है, लेकिन वो अपने पास रखो अपने साथ।
1: वाह वाह, क्या
2: ये बहुत
1: नई नई कहानियां सामने आ रही है, नए नए तजुर्बात हो रहे हैं मुझे आज भाई, क्या बात है,
2: क्या बात है भाई। असल में सुबह सुबह ऐसा है कि नाश्ता बराबर करके ना तो हम लोग भी थोड़े से मूड में हो जाते हैं, और आपसे बातें तो वो तो बस पूरा दिन अच्छा गुजरता है माशाल्लाह।
1: ये आपको नाश्ते का जिक्र करना जरूरी था जाते जाते, मुझे
2: नहीं,
1: क्यों छेड़ा आपने मुझे, क्यों छेड़ा मुझे,
2: आपको मिला कि नहीं मिला।
1: ओके, खादिम भाई, थैंक यू सो मच हमें, हमारे साथ
2: कनेक्ट। सरवर भाई, एक बात और शेयर कर रहा
1: हूँ,
2: जिनसे मेरे ख्याल में 2 बार मुझे कॉल आई, और वो भी गूगल मीट पे आता है, लेकिन उससे थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए. वो कहते हैं कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से और ये और वो बातें करते रहते हैं, तो आप यकीन करें कि वो एक बंदा मेरे साथ वो शुरू हो गया, बोलते हैं कि मेरा ये नाम है, वो कुछ अरबी नाम ले लिया, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. तो मैं वो इंग्लिश में लगा हुआ था, मैंने उनको बोला कि भाई आप अरबी में बात करो. बोलते नहीं मुझे अरबी नहीं मालूम. मैं बोला आपको अरबी कैसे नहीं मालूम, अरबी में अरबी में लगा हुआ था
1: वजारत में काम कर रहे हैं और अरबी नहीं आती, यही देखिए.
2: तो बोलते कि मैं आपका कॉल दूसरे को ट्रांसफर करूं. मैं बोला ट्रांसफर करो. जब भी दोबारा किया वही आवाज है, तो वो ऐसे कुछ बोलते कि आप इंग्लिश में बात करो. मैं बोला मुझे इंग्लिश नहीं मालूम, मैं अरबी में लगा हुआ था. फिर उसके बाद कुछ दिन बाद दोबारा कॉल आई, तो वो फिर इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो मैं पश्तो में शुरू हो गया. एक वर्ड मैंने, अल्लाह गवाह इस बात का, एक वर्ड मैंने इंग्लिश का और उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया. मैंने उनको बोला कि भाई मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, मैं पश्तो में लगा हुआ. वो बोलता है कि वो मुझे
1: वो भी परेशान आ गया होगा.
2: मुझे बोलते हैं कि ये क्या बदतमीजी है. मैं बोला आप क्या बोलते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पश्तो में लगा हुआ.
1: नहीं, आपने
2: तो
1: बहुत अच्छा पॉइंट जो है वादे किया इस वक्त. और आपके साथ ही रहते हुए मैं दूसरों को भी बता दूं कि इवन हम लोग भी, आपने देखा है, और वजारत दाखिला भी हर वक्त हमको इस बात की हिदायत कर रही है कि भैया बहुत ही ज़्यादा एहतियात करें. और ये जितने भी स्कैम्स हैं, स्पेशली हमारे मोबाइल, हमारा इंटरनेट, हमारा AI, जो भी चीज़ें हमारे अराउंड हैं, इससे बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है. और कभी भी कुछ ऐसी चीज़ होती है, आपको कोई भी वीडियो कॉल नहीं करेगा भाई. अम्मा अब्बा और बीवी बच्चे करते हैं वीडियो कॉल बस, बाकी आपको एक सही नंबर से कॉल आएगी. एक कायदे के कतर का नंबर है अगर, और कोई दिख रहा है तो मतलब हम खुद समझदार हैं इतने तो यार. जी
2: सरवर भाई, कोई भी नहीं करता. कतर कतर है,
1: कतर कतर है, बिल्कुल सही बात है.
2: कोई भी नहीं कर सकता. देखो ये कतर माशाल्लाह, आप पूरी दुनिया में घूम के आ जाओ, कतर वाहिद एक ऐसे मुल्क है जिधर आप बिल्कुल सेफ.
1: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह.
2: आप बाहर रूम से बाहर सो जाओ, कोई आपको नहीं जगाएगा कि भाई आप क्यों इधर लेट हो.
1: अल्लाह ताला हमारे कतर को आबाद रखे.
2: ये ऐसा मुल्क है, अल्लाह पाक हमेशा आबाद रखे. ये मैं दिल से कहता हूँ और दुआ मांगता हूँ अल्लाह पाक से कतर के लिए. लेकिन हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए, किसी की बात में
1: नहीं एहतियात करनी चाहिए. ये बिल्कुल उसी तरीके से है ना, जिस तरह से हम बच्चों को या छोटों को समझाते हैं बाहर किसी के हाथ से कुछ लेके टॉफी चॉकलेट मत खाना भाई, तो उनको तो ये कह रहे हैं. मगर हमारी टॉफी चॉकलेट अब इस तरीके से हमारे पास आ रही है, तो उसको हम नहीं समझ पा रहे. मैं तो बहुत एक छोटी नॉर्मल से बात समझाता हूँ.
2: वो हमें चॉकलेट नहीं, वो हमें बर्गर खिला रहे हैं. हाँ, वो बर्गर खिलाने के चक्कर में वो लोग लगे हुए. लेकिन लेकिन मैं समझता
1: हूँ, सही है,
2: जैसे मैं सीधा साधा इंसान हूँ और मुझे वो लोग ऐसे कॉल करके वो यानी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे और भी भाई, मेरे जैसे और भी भाई होंगे, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप अपनी जुबान में, अपनी भाषा में, अपनी जो आपकी अगर हिंदी है या दूसरी जो भी है, इंग्लिश में उसके साथ बात नहीं करो. कोई भी आपको कॉल नहीं करता, कोई भी, लेकिन जो करते हैं वो बिल्कुल फ्रॉड है.
1: सही, बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई, बहुत अच्छी बात है. और अल्लाह ताला खुश रखे भाई, आपके तमाम दिन अच्छे गुजरे. अल्लाह ताला आपको खुश
2: रखे. बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका भी दिन अच्छा गुजरेगा और हमारा भी अच्छा गुजरेगा. अल्लाह करे सब खैरियत से हो.
1: जज़ाकअल्लाह,
2: बहुत शुक्रिया जी. अल्लाह
1: हाफिज. हाँ जी, तो जनाब बात हो रही है आज आपके डिवाइसेस के हवाले से, क्योंकि आज खासम खास दिन है. जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डे है आज, ई वेस्ट डे है. और वो क्यों, इसका नाम ये क्यों रखा है कि इसीलिए कि जितनी भी ये डिवाइसेस वगैरह हैं, हम इनको जब डिस्पोज करते हैं, उनको बहुत एहतियात से करें. जिस तरीके से अभी तक हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स ने हमें बताया, आगाही दी और हमें अवेयर किया कि भाई इनमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिल्कुल, हम एक कॉलर और उसके बाद आप लोगों के ढेर सारे मैसेजेस भी. हेलो, सलाम अलैकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. और जनाब क्या हाल?
1: जासिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप बताइए कैसे हैं, खैरियत से हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया भाई.
1: बहुत देर की मेहरबान आते आते.
3: अरे नहीं ना, मन का थोड़ा जरा सुन ले भाई, क्या चल रहा है, क्या ऐसे कैसे टॉपिक.
1: अरे आज बहुत कहते हैं ना, घड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं.
3: उखाड़ के कुछ हासिल वसूल नहीं होगा, चूरन भी नहीं
1: देगा. जासिम भाई, पहला मोबाइल कितने का खरीदा था? अपनी पॉकेट, अपनी कमाई हुई तनख्वाह, सैलरी या पैसे से?
3: अपने भाई सैलरी से. सबसे पहले
1: नाम मत बताना, नंबर बता देना भले ही मोबाइल का, मैं समझ जाऊंगा.
3: नंबर तो मुझे याद नहीं, मगर उसका कलर याद है, पिंक कलर में आया था।
1: और यार मोबाइल भी पिंक खरीदा पहला जब भी खरीदा
3: नहीं, वो लॉन्च ही तब हुआ था।
1: अच्छा
3: वो लॉन्च भी तब हुआ था।
1: व्हाट्सएप

0: बताना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद दूसरे लोग समझ गए, मैं नहीं समझ पाया कि पहला मोबाइल जो हुआ था लॉन्च और वो पिंक में हुआ था। अच्छा
1: एनी
0: अच्छा ओ बस बस पहुंच गया पेन आता था उसके साथ, पेन आता था, सही कह रहा हूँ, अभी भी आता।
1: 23,000 या 25,000 में लिया था भाई।
0: किस सन में?
1: शायद 8 में या 9 में लिया था।
0: 8 या 9 में, बड़ी बात थी यार, बड़ी बात थी भाई। और मेरे ख्याल में जबी जबी लॉन्च भी हुआ था वो, मेरे ख्याल में 6-7
1: तभी लॉन्च हुआ था, क्योंकि वो लॉन्च हुआ दोस्त का फोन आया कि भाई ये फोन लॉन्च हुआ अभी अभी, मन का चलो चल रहा है।
0: क्या बात है,
1: आ भी है, हम कंपनी से एग्जिट मार के सीधा वहां पहुंच गए भाई लेने के लिए।
0: यार बड़ी बात यह है कि माशाल्लाह से आपके पास इतनी तैयारी थी, वरना तो मैंने तो कितने दिन तक भाई क्या कहूँ, बस लोलो चप्पो करी है और पैरों में और कदमों में गिरा रहा हूँ मैं, दिलवा दो मुझे ये वाला फोन, दिलवा दो ये वाली हालत थी।
1: 2012 में 150 KD में।
0: वाह वाह वाह वाह, मतलब जब आप थे कुवैत में?
1: जी हाँ,
0: 150, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? मुझे मोबाइल उठाना,
1: 150 KD का भाई साहब,
0: मुझे मोबाइल उठाना पड़ेगा भाई इसके लिए तो। कितने कतरी रियाल हो गए?
1: कतरी रियाल तो पता नहीं कितना होगा उस टाइम पे, तो भाई साहब 2012 में वो लिया था मैंने, 2012 में।
0: अच्छा तो मेरे ख्याल में 2000 के करीब, मुझे याद नहीं सही, काफी दिनों से मैंने न्यूज में पढ़ा भी नहीं है करेंसी अपडेट।
1: जो कुवैत से लिया था ना, वो आज भी मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में चलता हुआ आज भी है।
0: वाह वाह वाह भाई, पहले की चीजें होती भी यार ऐसी ही थी जो लंबी चल जाती थी। अच्छा तो ये जो दोनों आपको याद है, ये अभी तक रखे हुए हैं सेठ सेठ के साथ में?
1: ना वो कुवैत वाला है ना, वो
0: पहला वाला जो था,
1: वो चला गया, पता नहीं,
0: इनकी पिंकी पोंकी हो गया, इनकी पिंकी पोंकी। अच्छा है भाई, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, क्या बात है यार जासिम भाई। तो कहाँ पे हैं अभी इस वक्त फिलहाल?
1: घर पे ही है भाई सब, गाड़ी में बैठे हैं।
0: अच्छा पहुंच गए वापस, क्या बात है। अच्छा और कोई और ऐसा डिवाइस, कोई और ऐसा पुराना टीवी, लैपटॉप या कुछ और ऐसा याद है पुराना अपना?
1: हाँ लैपटॉप हैगा भाई सब, लैपटॉप हैगा,
0: पुराना वाला है अभी तक?
1: जी जी बिल्कुल हैगा वो, मैं
0: क्या उम्र हो गई उनकी, क्या उम्र हो गई उनकी, मुझे डाली निकल आई होंगी अभी तक तो,
1: मुझे डाली क्या, वो भाई सब से उठा भी नहीं जाता।
0: अच्छा है,
1: भाई साहब को इतना नहीं होता कि मैं हॉस्पिटल तक ले जाऊं, मैंने तुम बीमार ही हो यार,
0: तुम्हारा कोई काम रहा नहीं इस दुनिया में, पड़े रहो ऐसे ही पड़े रहो।
1: उसके अंदर जो है ना डेटा जो है ना, उसके अंदर जो डेटा आएगा वो काम का, इसलिए रख रखा।
0: यस ये बहुत एक्चुअली हमारी बातचीत ये एक बात बताने के लिए भी ज़रूरी यही थी कि भाई काफ़ी एहतियात करें इसके अंदर, अपना जो डेटा वगैरह है उन सबको बहुत एहतियात से रखें, क्योंकि ज़ाहिर बात है अपनी कोई चीज़ हम दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, इवन हमारे अपनी पर्सनल फैमिली फोटोग्राफ्स ही क्यों ना हो यार बच्चों के।
1: मेरा जो है ना शुरू से सारे फोन का डाटा, जितना भी मेरा फोन का डाटा है ना, सब उसी लैपटॉप के अंदर।
0: सही
1: इतनी बार उसको जो है ना भाई, पहले शुरू में के यार विंडो अपडेट होगी तुम्हारा डाटा चला जाएगा, मैंने कहा भाड़ में जाना तो मैं नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा, मैं ऐसे रहने दूंगा।
0: सही सही, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, मगर बस इसके अंदर ये भी आज का जो दिन है जासिम भाई, वो यही बात बताने के लिए है कि अच्छी तरीके से कायदे से अवेयर रहते हुए हम जो गैजेट्स हैं अपने उनको डिस्पोज भी कर सकते हैं। हाँ अगर वो डेटा आपको चाहिए तो आप उसको ट्रांसफर कर लें, शिफ्ट कर लें। आजकल तो
1: एक चीज आपने ये चीज नोटिस की होगी, आपने अरब कंट्रियों में कहीं भी जाओगे आपने ये नोटिस की होगी, अपने जो अरब लोग होते हैं इन लोग कभी भी अपना फोन किसी को ना देंगे ना बेचेंगे कुछ नहीं।
0: वाह वाह बिल्कुल, उसके पीछे रीजन यही है एक्चुअली,
1: यही रीजन है कि डेटा जो है ना हमारा जो है लीक नहीं हो, ये इधर उधर में हो जाना चाहिए, इस चक्कर में जो फोन कितने भी चेंज करते रहे, कितने भी नए मॉडल आते रहे वो यूज करते रहेंगे, पुराने वाले जो है वो स्टोर करते रहेंगे।
0: बिल्कुल सही, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है बात समझना, और मुझे लगता है कि आज जहां जहां हमारी आवाज पहुंच रही है और जिन लोगों को नहीं पता था, इंशाल्लाह ताला वो इस चीज का ख्याल रखेंगे जरूर इंशाल्लाह ताला।
1: और एक चीज का ये भी है ना भाई, अगर आप अपना अभी एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा हो या आईफोन कोई सा कुछ भी यूज कर रहा हो, आपका जो अपना उसमें अपना आईडी चलाते हो, जीमेल आईडी चलाते हो, अगर आप उसको रेगुलरली अपडेट करते रहोगे ना, जैसे लॉगिन करते रहोगे, तो आपका डेटा कभी भी कहीं भी लीक नहीं होगा।
0: सही बात है,
1: क्या होता है सबसे बड़ी बात क्या होती है,

0: ना ईमेल आईडी पासवर्ड भूल जाते हो या उसकी अपडेटिंग आती है, कुछ अपडेट होता रहता है, तो उस चक्कर में जो है हम उसको भूल जाते हैं, तो उसके चक्कर में हमारा डेटा पूरा का पूरा खत्म चला हो जाता है, क्योंकि जब हम उसको अपडेट नहीं कर
1: अपडेट नहीं कर पाएंगे। इवन हमारे ऑफिस वगैरह भी हम देखते हैं तो क्यों हमसे कहा जाता है, बट हाँ उसमें भी एहतियात जरूरी है, क्योंकि उसमें भी स्कैमर जो है भाई लगे रहते हैं, तो सही उसकी पुष्टि करते हुए कहना चाहिए।
0: दो महीने तीन महीने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप दो महीने में तीन महीने में एक बार लॉगिन करो, उसको लॉगिन
1: खुद ही कर ले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम एक अलग बात कर रहे थे।
0: प्राइवेसी आपके हाथ में, सबसे बड़ी बात क्या है, उसकी प्राइवेसी आपके हाथ में, आप अपनी प्राइवेसी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
1: सही, ऑल राइट जासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ये आपकी लाइन वाला टाइम हो गया, सात दो वाला।
1: ये तो कबीर भाई का था भाई, सात दो
0: मेरा, सात दो
1: साथ दिए भाई सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब हमारा साथ दिए जिस तरह से आप लोग देते आए। तो फिलहाल के लिए इजाजत, क्योंकि जाहिर है मुझे ब्रेक लेना है। जासिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो भाई ख्वातीन हजरात, एक छोटा सा ब्रेक, बस यूं गया और यूं वापस आया। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107, Time Check.
1: हला हला टाइम चेक टाइम चेक। स्टूडियो की घड़ी में 7:04। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। अभी अभी जो हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं उन सभी को मैं कहूंगा गुड मॉर्निंग, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा बनाए, और इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते और खुश होते अपना दिन गुजारें। आज हम बात कर रहे हैं हमारे पुराने गैजेट के हवाले से, हमारे पुराने मोबाइल के हवाले से। वो पहला मोबाइल जो आपने आज तक अपने पास संभाल के रखा हुआ है, या वो घर की ड्रॉर जिसके अंदर ये सारी चीजें जमा रहती हैं, जिसमें पता तो नहीं रहता भाई कि कौन सा चार्जर किसका है और कौन सा वायर किसका है, बट कहीं ना कहीं वो एक खजाना जो है मोबाइल का, मेमोरी कार्ड का, पेन ड्राइव्स का, डिस्क का, वो सब उसके अंदर जमा रहता है। तो आप अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वो कौन सा मोबाइल था आपका पहला आपने जो खरीदा था, और भाई कितने का खरीदा था, ये तमाम बातें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। पुराने फोन उसमें यादें संभाली भी जाती हैं, और जैसा कि लोगों ने बताया, बट ये जो खास दिन है, मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जो आज दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब पुराने मोबाइल से लैपटॉप गैजेट्स वगैरह जितने भी हैं, इनको रिसाइकलिंग के लिए जब आप देते हैं तो उसको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से डिस्पोज कीजिए, क्योंकि इन तमाम चीजों में आपका डेटा वगैरह होता है, और वो तमाम चीजें होती हैं जो आपके अपने करीब होती हैं, और वो दूसरे जो गलत लोग हैं, ओके, जो गलत लोग हैं उनका गलत फायदा उठा सकते हैं और उठाते ही हैं। तो इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। नंबर है हमारा 4434377। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप अपने मैसेजेस मुझे भेज सकते हैं 6662107 पे। तो चलिए साहब, अब आ जाते हैं मैसेजेस की जानिब। कहां से शुरू करें, यहां से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। इरफान अटारी हैं हमारे साथ। मैंने सही नाम लिया इरफान भाई आपका, इरफान अटारी। ब्रो आप तो फुल 440 वोल्ट का पावर हाउस है। ये कौन है? आसिफ आलम मेरा भाई, आसिफ भाई स्मार्टी, पानी के बराबर में बैठो, संभल के बैठना आसिफ भाई, पीछे पानी है। अस्सलाम वालेकुम सरवर, गुड मॉर्निंग, अल्लाह आपको खुश

0: बहुत खेजतान की बात करें तो मुझे लगता है 92 तो होगा ही होगा, क्योंकि मुझे भी याद पड़ता है उसी टाइम पे ये बातें चला करती थी, हम सुना करते थे कि होए होए होए, और शायद देखा भी था उसको कभी। तो बहरहाल यार जबरदस्त जबरदस्त भाई, क्या बात है यार, बहुत पुरानी बात आपने शेयर करी, बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक भाई। और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं?
1: और बस आपको सुनना चाहता हूँ बस।
0: अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआओं में जरूर याद रखिएगा भाई, अल्लाह आपको आपकी फैमिली को खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अहलन वसहलन, अहलन वसहलन। ऑलराइट है, तो ये थे हमारे तौफीक भाई, और भाई मुझे नहीं लग रहा इससे पुराना कोई अब कुछ बता पाएगा या निकाल के ला पाएगा। तो भाई मैसेजेस हैं आपके बिल्कुल, और कॉल भी हैं, मैं एक गाना प्ले कर जाऊं और फिर इंशाल्लाह ताला एक छोटा सा ब्रेक बनता भाई, मैं भी जरा सा चाय पानी, चाय तो नहीं मिलेगी, पानी तो पी लूं एटलीस्ट। फिलहाल सुबह सुबह आपका आगाज इस गाने के साथ, और अजीत, प्रकृति एंड अमाल।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
3: गानों के पीछे की कहानी, latest trends और ढेर सारी मस्ती आपका

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
2: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
1: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

हाँ जी चलिया औरजीत और शिल्पा राव।

0: वेक अप, यहाँ पर कुछ मैसेजेस जो भाई सुबह सुबह के आए हुए हैं वो करके अभी आ रहा हूँ मैं कॉल की जानिब। रुकिए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम भाई, दोबारा बता दें बारिश का कुछ है क्या? मैं सुन नहीं सका। अच्छा ही हुआ आपने नहीं सुना अदील अहमद साहब। अभी तक कुछ नहीं है, ये तो आप मुझे बताएंगे कि क्या है भाई। इस वक्त बाहर बादल वगैरह बन रहे हैं। जब आते वाले 1995 और यार कुछ नंबर लिखे हुए हैं मुबीन भाई ने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कभी मैं कुछ और कह दूं एमबीबी, क्या है ये मामला? रमेश यादव साहब, सरूर भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल है रमेश भाई? किधर है यार, कभी तो बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हिशाम है हमारे साथ। ओके बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, 3310 था, अब्बा ने कतर से भेजा था 2007 में। हाँ बिल्कुल सही, शेख अली हमारे साथ। बिल्कुल यार, ये पहले तो यही मोबाइल चलता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद आसिफ हैं हमारे साथ, कैसे हैं आसिफ भाई? खैरियत से। फोटो भेजिए मेरा पहला फ़ोन। ओके ये कौन सा था? एक्चुअली वही था जो मैं समझ रहा हूँ, शमशाद भाई ने। अच्छा है शमशाद भाई, और क्या ये अभी तक रखा हुआ आपके पास, ये बताइए। फोटो तो भेजिए आपने। अस्सलाम वालेकुम सर भाई गुड मॉर्निंग, और सब खैरियत है? फिरोज खान बलिया उत्तर प्रदेश, पहला फ़ोन ये था और 3500 का लिया था इन्होंने, अभी भी रखा है। क्या बात है यार, क्या कहने, बहुत बढ़िया था। अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, 2004 में नोकिया ये वाला, ओ मैंने यार नाम भी ले लिया, नहीं लेना है, किसी को भी नहीं लेना है, मेरे साथ भी नहीं लेना है। तो इन्होंने लिया था 4700 का। ओके फिर उसके बाद सऊदी अरब से मंगाया था 2006 में ये वाला, और ये वाला और ये वाला। क्या बात है यार, नंबर भी याद है भाई को, और उनके अंदर उसकी क्या कैपेसिटी थी वो भी बता रहे हैं भाई, कितने GB का था, क्या था, क्या बात है यार। कौन है ये मोहम्मद भाई, पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? भारत, उन्होंने तो पूरी डिटेल बता दी यार, कौन कौन सा फोन कब कब था इनके पास। सलाम भाई, मेरा फर्स्ट मोबाइल वॉज दिस एंड इट्स 1085 दरहम ऑन 2001। पुराने भाई, मामा आसिम, क्या बात है, मामा भी लगाते हैं नाम के आगे। ओके अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग, मेरी अम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों एक जैसे हैं, कोई भी चीज़ फेंकते नहीं है। मेरी अम्मी के पास 2006 का बड़ा वाला टीवी जो आज भी चल रहा है। मेरे हस्बैंड के पास पुराने PH एंड लैपटॉप हैं, आई थिंक इट्स सिंस 2009 एंड अ कैमरा विच ही गॉट इन 2012, और कुछ केबल्स भी पड़े हुए हैं, ही नेवर थ्रोस देम अवे। ऑन द अदर हैंड आई एम अपोजिट, आई नेवर कीप ओल्ड थिंग्स, बट ऐसा नहीं कि पुरानी हो गई फेंक दो, बट अगर वो काम नहीं कर रहा है देन आई डोंट कीप इट। समीरा अजीज हैं यहाँ पर। समीरा जी, अल्लाह का शुक्र है कि जो हस्बैंड है उनका नाम नहीं बताया आपने, और अम्मी का भी, कि वो पुरानी चीजें फेंक दी रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। गॉड, और वहीं पे भाईजान हैं जो हमारे दूल्हा साहब, उनको फिक्र भी करनी चाहिए कि आप पुरानी चीजें रहने नहीं देती हैं। तो मुझे तो भाई बड़ी फिक्र हो रही है यहाँ पर ये मैसेज पढ़ के, अल्लाह ताला खैर करे। कबीर अंकल छुट्टी गए हैं क्या भाई? हुसैन अहमद, हुसैन भाई देख के तो नहीं लग रहा कि कबीर आपका अंकल होगा कहीं से भी। अंकल, हाँ कबीर अंकल छुट्टी गए हैं, मैं फिर भी कह सकता हूँ। कहते हैं सलामुअलैकुम सर भाई, चाय आलू पराठा रेडी है, आ जाओ। मोहम्मद मुशीर, आऊं कैसे ये भी तो बताना था साथ में। खैर बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर भाई, आपका सर्वर कितने वोल्ट का है? बिलाल खान, बिलाल किंग है भाई, जब ही तो ऐसी बातें कर रहे हैं, बिलाल किंग, क्या बात है। तौफीक भाई ने यहाँ पर 1 करोड़ मोबाइल की फोटो भेजे हैं, इनमें से आपके कितने हैं, ये क्या बात हुई। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, कैसे हैं आप? सॉरी लेट रिप्लाई, आज ड्यूटी से लेट हो गया। नाइट ड्यूटी थी मेरे भाई की क्या? रिद्वान, चलो यार एक कॉल अब ले ही लेता हूँ मैं, ज्यादा नहीं सताऊंगा, फिर मैसेजेस जरूर शामिल करूंगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह, गुड वाली मॉर्निंग सर जी।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, कौन है हमारे साथ?
1: आसिफ सर।
0: आसिफ भाई कैसे हैं? आसिफ भाई खैरियत से माशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त तकरीबन 10 या 11 आसिफ भाई हमारे साथ कनेक्टेड हैं FM 107 के साथ।
1: बात तो सही है,
0: मगर जो अगला नाम है,
1: अलग अलग नाम,
0: हाँ, नहीं नहीं नहीं, नंबर देने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे आप आफ़ताब अंसारी हैं, इस तरीके से दूसरों के नाम के आगे कुछ और है, तो ये अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं। कैसे हैं आसिफ भाई, खैरियत से हैं, तबीयत वगैरह सेहत वगैरह?
1: आप बताएं, आप
0: अल्लाह का शुक्र है भाई, आपकी दुआएं हैं।
1: नल्ली बिरयानी वगैरह चल रही है
0: बेहतरीन,
1: बिरयानी नल्ली पाव अपना हो जाता होगा।
0: अरे वो तो होना जरूरी भी है यार, इसके बगैर मॉर्निंग होनी भी नहीं चाहिए। अब तो मैंने ट्रेंड बदल दिया, अपने शहर में ट्रेंड बदल दिया, छुट्टी पे जाने के बाद उन लोग को इतना उठाया सुबह सुबह कि बना दिया करो यार, मैं सुबह खाना होती है, बना दिया करो। अब भाई सुबह बिरयानी भी चल रही है।
1: आपके शहर में, आपके शहर में नहीं मिले तो सवेरे सवेरे जो है अपना रात को ट्रेन पकड़ के कानपुर आ जाएंगे, सुबह नाश्ता करके आराम से चले जाएंगे।
0: यार अब बुलाओगे 4 घंटे का सफर करवा के, उसमें तो मेरी बिरयानी बन जाएगी आसिफ भाई।
1: अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होता।
0: क्या बात है यार। आसिफ भाई आज हम बात कर रहे हैं, सुना आपने मौजू हमारा आज का,
1: मोबाइल के हवाले से।
0: मोबाइल के ही हवाले से नहीं, एक तो उसके उसका क्या हमें ख्याल रखना है अपने डेटा वगैरह का, क्योंकि आज खासम खास दिन भी है। तो पहला मोबाइल कौन सा था, कितने का था, नाम मत बताइएगा कंपनी का, बाकी समझाने की कोशिश करिएगा, ये भी एक ये भी एक गेम है, आपको चैलेंज है। और कितने का था
1: पहला मोबाइल, वाले साहब ने मुझे दिया हुआ था 2002 में,
0: 2000
1: नीला वाला। हाँ नीला वाला,
0: अच्छा 33
1: जिसको जो है
0: 33
1: जिससे जब बात करते रहो, उसके बाद जब किसी से झगड़ा हो जाए तो
0: फेंक के मार दो, खोपड़ी खोल दो सामने वाले की।
1: दो मंजिल
0: पे मजाक में कह रहा हूँ, मैं मजाक में कह रहा हूँ। हाँ तो ये ही दौर था उस मोबाइल का एक्चुअली, और वो बहुत ही बड़ी चीज हुआ करती थी यार।
1: समझ लिए, नंबर भी नहीं बताया और आप समझ गए, नाम भी
0: मैं
1: नहीं बताया।
0: मैं समझ गया भाई, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वाकई देखिए आप वालदेन ही इस तरीके के गिफ्ट जो हैं अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी चीज हुआ करती थी यार उस टाइम में।
1: उस वक्त एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो है मोबाइल कार चार्जर मिलता था।
0: ओके,
1: तो कार चार्जर आता था।
0: ओके,
1: तो मेरे पास बाइक हुआ करती थी यामाहा RX 100।
0: ओके,
1: ठीक है, तो मैंने उसमें जो है एक एक्सीडेंटल कार आई थी, उसका फीमेल निकाल के,
0: वाह, कनेक्ट कर लिया
1: से उसको, कनेक्ट करके, तो मैं गाड़ी
0: ओ, पे मेरा भाई
1: बना के, और उसके बाद जो है
0: मतलब बाइक पे मोबाइल चार्ज हो रहा था,
1: बाइक पे मोबाइल चार्ज।
0: क्या बात यार, तालियां के दाने यार, तालियां भाई, इधर आओ ताली वाले, इधर आओ। ये
1: नहीं, अपन इलेक्ट्रिशियन है ना
0: यार, मतलब फिर भी यार, मतलब कोई मतलब कमी नहीं छोड़ी किसी चीज की, बाइक पे मोबाइल चार्ज कर दिया भाई उस टाइम पे। वाह,
1: उस टाइम पे मोबाइल पे बाइक पे,
0: क्या बात है यार,
1: RX 100 से वो भी,
0: क्या बात है, RX 100 और ये चार्जिंग का तरीका और ये वाला मोबाइल, काफी करू रहे हो आसिफ भाई लग रहा है।
1: अल्लाह का शुक्र है, घमंड कभी नहीं किया आपके भाई ने।
0: अल्लाह ताला खुश रखे भाई, अल्लाह ताला खुश रखे। मगर ये तो बड़ी जबरदस्त बात शेयर करी यार आज, माशाल्लाह से नए नए रंग खुल रहे हैं लोगों के, मोबाइल चार्ज कर दिया भाई।
1: फर्स्ट टाइम पे वो देखा हुआ था
0: यार, अगर ये बात
1: मैंने बहुत,
0: नहीं मैं एक मिनट रोकूंगा, अगर ये दूसरों के लिए बहुत आम बात है तो मुझे पता नहीं है, मेरे लिए ये वाकई बहुत एकदम नई चीज है यार। मतलब मोबाइल पे चार्जिंग का इंतजाम कर दिया भाई ने अपनी बाइक के ऊपर, है कमाल है यार।
1: एक्चुअल मैंने एक बहुत लग्जरी कार आई थी हमारे गैरेज में उस टाइम पे इंडिया में।
0: अच्छा, ऐसा तो, ऐसा
1: हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम एक ये था कि उसका कुछ आवाजें आने लगी, उसमें मैंने वो चार्जर लगा हुआ देखा था, मुझे भी नहीं मालूम था ये है क्या दिए थी, लेकिन जब देखा तो कुछ एक एक्सीडेंटल कार आई हुई थी इंडिका, वो बिल्कुल स्क्रैप हो गई थी, तो उसके अंदर से मैंने जब वो मोबाइल चार्जर काफी दिन तक मेरे घर में रखा हुआ था, उस टाइम पे हैंड फ्री यही यहाँ से गल्फ से मिलता था, हैंड फ्री और वो कार चार्जर सब उस देते थे, तो मैंने बहुत 2000-2001 में शायद उसका उस कार में देखा हुआ था, तब मुझे वो ध्यान आया, तो मैंने उसको काट पीट के निकाल के और अपनी गाड़ी में फिक्स करके यूज कर रहा था
0: यार, क्या बात है। नहीं मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये आपकी बात करने के साथ साथ कि यार माशाल्लाह अच्छे खासे, आप तो मैकेनिक छोड़ो, आप तो साइंटिस्ट निकले यार माशाल्लाह से। आसिफ भाई जबरदस्त यार, क्या कहने यार, बहुत ही बढ़िया
1: है, दिमाग लग जाता है।
0: हाँ नहीं बहुत ही बढ़िया, और
1: जरूरत से ज्यादा हुनरमंद आदमी होता है वो कुछ भी नहीं करता, ये भी बात याद रखिए।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जब आपको इतनी ज्यादा नॉलेज मिल जाती है तो वो कहाँ लगाऊं और कैसे इस्तेमाल करूं, वही आदमी रह जाता है।
1: मैं 15-17 साल हो गए काम छोड़ के।
0: वाह क्या बात है यार, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ कतर में आप खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह
1: उतना जो है इतना तो हुनर है।
0: क्या बात है यार, क्या बात है। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और इतनी बढ़िया बात शेयर करने के लिए यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया। आराम से नल्ला बिरयानी खाते रहिए।
0: सहलन भाई, ओके ओके आसिफ भाई,
1: बागी तलाबाद में मेरे कुछ दोस्त हैं अगर आप बोलेंगे।
0: ओके भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपकी मोहब्बत का। ख्याल रखिए अपना, इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ओके भाई लोग क्या क्या मतलब कर चुके हैं भाई, मोबाइल चार्ज कर दिया बाइक पे, मेरे लिए तो बड़ी बात है यार ये। अगर ये आम और खास है तो मुझे नहीं मालूम शायद। हेलो सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: अहलन व सहलन जमाल भाई,
2: कैसे हैं मेरे भाई?
0: जमाल भाई राइट,
2: जी जी जी जी,
0: कैसे हैं जमाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। अरे मेरा भाई आपको अल्लाह ताला भाई हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला सेहतयाब रखे, यही हमारी दुआ है। और कहाँ पे हैं अभी जमाल साहब?
2: एक टनल के नीचे लुसेल से थोड़ा सा आगे।
0: अच्छा तो क्या
2: लुसेल के पास ही,
0: क्या हाल है उधर हमारे ट्रैफिक वगैरह के?
2: नहीं इस रोड पे तो आम तरीके से ट्रैफिक नहीं होती,
0: सब नॉर्मल है, सब खैर है,
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम क्या कह रहा है, कुछ बादल कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कुछ आपसे?
2: अरे भाई मौसम के हवाले से आप ना ही पूछे तो बेहतर होगा।
0: नहीं हो पा रहा भाई, नहीं हो पा रहा,
2: क्योंकि नहीं क्योंकि मुझे पता है कि आप जो है ना इस वक्त स्टूडियो के चार दीवारी के अंदर कैद है। अब बाहर के मौसम का हाल अगर मैं आपको बताऊं।
0: अच्छा क्या अच्छा हो रहा है यार वाकई? तो, रियली
2: नहीं नहीं भाई बहुत जो धीरे धीरे है ना अपना कदम अपनी जो क्या कहते हैं तमाजत है ना उसको खत्म करके ये मौसम धीरे धीरे बुरुदत की तरफ बढ़ रहा है।
0: नहीं बढ़ रहा, बड़ा
2: तो, अच्छा भी लग रहा है।
0: नहीं नहीं बढ़ तो रहा है भाई, मगर आज कल में कुछ बारिश के इम्कान बनने वाले थे, वो मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरीके से अगर अल्लाह ताला रहम करें तो कहीं ना कहीं से हम बारिश भी देख लें भाई, ये है असली।
2: हाँ अगर कुछ अबरे करम हो जाए तो खैर बहुत ही बड़ा करम हो जाएगा अल्लाह का, लेकिन ये है कि
0: जल्दी हो
2: जाएगा, अल्लाह की जात से ना उम्मीद तो है नहीं है ना,
0: बेशक बेशक होना भी नहीं चाहिए,
2: ना उम्मीद नहीं है, खैर की उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हो सकता है कि अगर मौसम के जानकारों ने कुछ खबर दी है।
0: जी बिल्कुल दी है, बिल्कुल दी है। आज तक था कि आज तक कुछ हो सकता है शायद, खैर बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, इंशाअल्लाह ताला जब भी हो और सुकून और रहमत ही बरसे अल्लाह ताला की जब भी बारिश हो। तो जमाल भाई क्या कहते हैं आज के मौजू के हवाले से, सुना आपने अभी तक?
2: अब्र से शिकवा कर सकते हैं लेकिन है ना अल्लाह की जो है ना
0: अल्लाह की जात से बिल्कुल नहीं कर सकते,
2: फजल का यकीन रखते हुए
0: बिल्कुल।
2: ये जो नीचे बादल झुक रहे हैं ना जो दिख रहे हैं हमें,
0: जी
2: ये बादल जो हमें दिख रहे हैं थोड़ा सा आज जरा सा तो

0: मुनफरिद है दो रोज के हिसाब से, है ना, तक कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है हल्का हल्का धुआं धुआं इस तरफ।
1: वही था रिपोर्ट में एक्चुअली सुबह सुबह
0: पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान के एक साथ थे और

0: ये था कि अब थोड़ा सा पढ़ाई खत्म करके कमाना शुरू किए हैं, तो स्पेस इतना तो नहीं था कि एक मोबाइल खरीद सके, लेकिन यह है कि उसी दरमियान हमारे एक बहनोई यहाँ रहते थे कतर में।
1: अच्छा।
0: तो वो यहाँ से लौट के गए थे और उन्होंने एक मतलब सेकेंड हैंड मोबाइल मुझे दी थी, शायद 60-70 थी ऐसे कुछ।
1: अच्छा।
0: नाम उसका 60-70 था।
1: हाँ, मैं समझ गया। ओके।
0: तो वो मैंने इस्तेमाल किया था और एक नई चीज जब हाथ में लगी तो उसका उसका जो तजर्बा था वो भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, अरे बहुत खुशकुन था। और जाहिर है कि कुछ ऐसी चीज है जिसका आप इंतजार शिद्दत से कर रहे हो और अगर वो मिल जाए तो फिर थोड़ा सा एहसास जरा अलग टाइप का होता है ना।
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही
0: है ना। बड़ी खुशी होती है,
1: सही,
0: चाहे वो कुछ दिनों के लिए ही हो। और ये एक चीज गड़बड़ होता है ना कि उसके बाद हमें बहुत कुछ अलग तरीके से, यानी हमारा खर्च बढ़ जाता है।
1: सही।
0: आज हमने ये लिए तो कल एक साइज और उभरती है,
1: सही,
0: जो सोचते हैं ये ले लें।
1: सही, सही।
0: लेकिन मोबाइल वगैरह का मसला मेरे साथ बढ़ा दिया।

0: पहले एग्जाम मेरे हाथ से जाती नहीं।
1: अच्छा, ओ ये तो अच्छी बात है यार। चीज बड़े एहतियात से यूज करते हैं।
0: मैंने तो 4 साल 5 साल कम से कम, तो भी 4 साल 5 साल में यूज करता हूँ।
1: अच्छी बात है, मेरे जैसे ही आप एक्चुअली। मुझे शौक नहीं है बिल्कुल फोन का।
0: हाँ, बाजार में जैसे होता नहीं है कि नई चीजों को देखकर अहले दिल थोड़ा क्या कहते हैं, अरे बड़ी रग़बत हो जाती है, बड़ी तेजी से कदम बढ़ाते हैं, एक तड़प हो जाती है
1: खरीदना। हाँ,
0: नई चीज है यार, जल्दी से ले लूँ यार।
1: हाँ,
0: और वो पाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश भी होते हैं।
1: बहुत गहरा ताल्लुक सब्र से भी है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं किसी को इशारा नहीं कर रहा किसी के ऊपर, मगर मुझे ऐसा लगता है इसका बहुत बड़ा ताल्लुक सब्र से भी है। क्या कहते हैं?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपके अंदर जब तक मादा नहीं होगा तब तक आपको कर नहीं पाओगे ना। तो मेरे साथ ये मसला है कि कभी ऐसा हुआ, अच्छा आपको मैं बताऊं, मुझे 15 साल हो गए कतर में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक सफर में कहीं गलती से एक को छोड़ के दूसरी मोबाइल चेंज हो गई होगी। एक सफर तो छोड़िए, जाके वापस आके और फिर जाके जब वापस आता हूँ तब कोई मोबाइल आती है दूसरी।
1: ये तो यार सही है, मगर मुझे ताज्जुब भी हो रहा है कि वो फोन आपसे छीना नहीं गया वहाँ पे मुल्क में जाने के बाद भी। वरना तो अमूमन ही होता है ना कि फैमिली के हवाले हो जाता है वो कहीं ना कहीं, बच्चों के, बहनों के, भाइयों के। तो ये भी एक ताज्जुब की बात है कि वो ऐसा नहीं हुआ, या तो उनको लगा, उनको ये पता होगा कि जमाल भाई ऐसा फोन इस्तेमाल कर ही नहीं रहे जो हम ले लें।
0: माजरत के साथ क्या कह रहा हूँ, देखिए वही चीज, उसी चीज पे आ रहा हूँ मैं। हमसे बढ़िया जब उनके हाथ में है तो हमारी तरफ नजर क्यों रखेंगे, ये बताइए।
1: सही, वही मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला खुश रखे भाई आपको।
0: एक छोटा सा सवाल करूँ मैं आप।
1: जी जी जी बिल्कुल पूछिए।
0: जानते हैं आम तरीके से होता यह है कि जब आप एक दो बच्चों के बाप हो जाते हैं, चाहे मर्द हो या औरत कोई भी हो, तब वो अपने लिए नहीं आने वाली नस्लों के लिए जीना शुरू कर देता।
1: सही बात है,
0: सही है ना।
1: हाँ,
0: तो उसके जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी ख्वाहिशें ऐसी पसमुर्दा होती है कि उसमें जान बाकी नहीं रह जाता।
1: हाँ ठीक है, ये तो यूजुअल है, हम सभी देखते हैं। इवन हम वालदेन की ही बात ना करें, अगर हम बड़े भाई जो जिम्मेदार हो जाते हैं, फर्ज कीजिए वालिद साहब के बुजुर्ग होने के बाद या वालिद साहब के ना रहने के बाद, वो भी अपना दिल मार देते हैं भले ही उनकी शादी भी ना हुई हो।
0: हाँ बिल्कुल
1: सही। तो सवाल क्या है इसमें, ये तो पूछिए।
0: यही मैंने पूछना था कि आप
1: मुझे बड़ी खुशी हुई। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर घर का बड़ा है कोई, अच्छा यही सेम कंडीशन जाती है घर के अकेले बेटे के साथ भी, तो इसमें जरूरी नहीं है कि उसकी अजवाजी जिंदगी शुरू हो गई हो और उसके बाद भी वो कुर्बानियां दे रहा हो या दूसरों का ख्याल रख रहा हो या दूसरों के लिए जी रहा हो, ये बचपन से ही चीज शुरू हो जाती है। ये जिम्मेदारी समझने वाली बात है जमाल भाई, मुझे जहां तक लगता है कि उसकी कोई उम्र नहीं है। हाँ जब तक बच्चा नादान है कोई बात नहीं, बट कुछ नादान लड़के भी ऐसे होते हैं और लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि भाई इस घर को, इन घर वालों को हमारी जरूरत है, तो क्यों ना हम अपना फर्ज अभी से ही अंजाम देना शुरू करें। मतलब बहुत पहले से शुरुआत कर दें और जिंदगी के उन मराहिल में ज्यादा बेहतर करना शुरू करें जहां हमारी फैमिली के साथ कोई भी ना हो। तो मुझे ये लगता है कि ये जिम्मेदारी जो है ये आपके अपनी सोच से आती है, और जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं या तो जब आती है, मेरा मानना ऐसा है।
0: एकदम उसमें कोई शक नहीं है भाई। देखिए बहुत सारे शौक है ना जो इंसान के जो थोड़ा धुंधला हो जाते हैं या वो खुल के नहीं जी पाता, उसकी एक गहरी और एक खास वजह यही है।
1: सही
0: जो आप कह रहे
1: हैं, सही। अल्लाह ताला सबको खुश रखे भाई, और जितने भी जिम्मेदारान हैं फैमिली के, अल्लाह ताला उनको भी खुश खुर्रम रखे, सेहतयाब रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे अल्लाह ताला। मेरी तो दुआ यही है भाई, और सभी के लिए दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जमाल भाई, हमारे साथ जुड़े, आपने अच्छी अच्छी बातें करी एज यूजुअल और अपना वक्त निकाला मेरी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं?
0: कल के लिए कुछ थोड़ा सा
1: कल तो वीकेंड है यार, मेरे ख्याल में थर्सडे आ गया। नहीं कल ही है जुमेरात, यहाँ तो पता ही नहीं रहता यार।

0: बिल्कुल
1: ऑल राइट जमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ये जो हफ्ता वाले दिन होता है ना भाई, इसमें तो मैं आप लोगों की खुशी में शामिल रहता हूँ।
1: अहलन अहलन,
0: बड़ा मजा आता है।
1: अहलन व सहलन, बिल्कुल आप जरूर कनेक्ट हुईगा और जरूर हमारे साथ वक्त गुजारिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल भाई।
0: जी जी बिल्कुल,
1: शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। ओके भाई, तो अब क्या कहते हैं, ब्रेक ले लिया जाए? कॉलर हमारे साथ हैं यार, नाराज ना हो जाए, कनेक्ट कर दूं क्या? चलिए साहब, हेलो, सलाम अलैकुम। सबाह नूर, कौन है हमारे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नाम तो बताइए। अरे अरे अरे अरे अरे अच्छा है भाई, अच्छा है, ये आप मुझे याद करा के ही छोड़ेंगे मुझे लग रहा है। कार्लोस भाई,
0: अरे कबीर भाई, इत्तेफाक देखो कबीर भाई, मैं खैर रेडियो तो नहीं खोला, मैं चलो मिलाएंगे बोल के, मतलब 2 मिनट है मेरे पास, मतलब चलो 2 मिनट मिलाएंगे बोल के, किस्मत देखो लाते के फोन लग गया ना।
1: ये तो आपकी मोहब्बत है भाई जो आपने कॉल किया, मगर आप कबीर भाई को ढूंढते फिर रहे हैं अभी तक, ये ऐसा ही कह रहा हूँ मैं? खामोश नहीं हो, मेरी बात तो करो यार मुझसे।
0: जी बोलो कबीर
1: भाई। कार्लोस आप हो गए लॉस। यार कबीर गया हुआ छुट्टी यार।
0: जी।
1: तो मेरा नाम बताइए क्या है? अब आप फंसे मेरे साथ, बंद कर दो भाई सारी म्यूजिक। मेरा नाम बताइए क्या है? अब आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, ना इंटरनेट चेक करना है, ना कोई और चीज चेक करनी है, और मेरा नाम बताना है। आज और अभी, आज और अभी
0: मैं रेडियो वगैरह नहीं खोलता हूँ, कल तो खोल भी नहीं सकता मैं फिर खुद।
1: अच्छा, तो फिर कल का इंतजार क्यों?
0: सोचूंगा।
1: मुझे सता रहे थे आप कल से, आपको उल्टी जो है इस वक्त पड़ गई है ये, और नाम बताना पड़ेगा वरना मैं फोन काटूंगा नहीं, आज कॉल नहीं काटूंगा। अरे मेरा भाई, तो अब अपना नाम बताइए पहले।
0: मेरा नाम बोला ना, कार्लो जोस लो स्वातंत्रो।
1: फिर मैं नहीं बताऊंगा अपना, मैं भी अपना नाम नहीं बताऊंगा।
0: फरमान है भाई, आप तो सबके दिलों में बसे हुए, कोई ना कोई बताया था आपका नाम।
1: फरमान भाई,
0: इल्ले इल्ले इल्ले।
1: अच्छा, तो क्या बता दिए यार, क्यों सता रहे थे ना?
0: रंडे ने उन्हें, हाँ सर, कटवे कर पाएंगे इनका।
1: हैं?
0: हाँ भैया।
1: क्या मलयाली में बात कर रहे थे?
0: नहीं भैया, तेलुगु है।
1: अच्छा तेलुगु है।
0: जय तेलंगाना।
1: जय तेलंगाना। तो नाम बता दिए यार, जाते जाते क्यों तड़पा रहे हैं, मैं भी फिर बता दूंगा अपना।
0: है? ओके चलिए, मेरा नाम है अहमद।
1: अहमद
0: येंटमा,
1: पूरा नाम
0: फोन जेले दो, अहमद जेले दो। हाँ सर, हाँ भैया,
1: कौन है? सलाम हमारा भी कह दीजिए।
0: अरे भाई,
1: अच्छा नाम, पूरा नाम क्या है आपका? अहमद क्या?
0: अहमद है, अहमद है।
1: अहमद पे ही
0: शेख अहमद।
1: शेख अहमद, मेरा नाम सरवर है अहमद भाई।
0: अच्छा सरवर भाई, हाँ सरवर भाई। मैं बोला भाई, मैं टाइम एक दिन का टाइम इस वजह से दिया, मैं कभी ड्यूटी है ना तो मैं आपको।
1: अरे मैं कोई इतना बड़ा आदमी थोड़ी हूँ यार अहमद भाई।
0: नहीं, अरे भाई आपकी अब अंदाजा लगा लो सरवर भाई, मैं ना रेडियो सुन रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं, मैं आपको उठा के फोन कर दिया। वो तो
1: अहलन वसहलन, एनी टाइम आपकी खिदमत में हाजिर हैं हम लोग, और FM 107 तो आप लोगों के लिए हमेशा है ही भाई ना भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शेख अहमद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुझे फंसाने आए थे अहमद भाई, खुद फंस गए मेरे जाल में। ऑल राइट देन भाई, अब क्या कहते हैं, ब्रेक हो जाए क्या? कॉल आ रही है मुझे, मैं निराश नहीं करना चाह रहा हूँ किसी को भी। शेख अहमद साहब कॉल तो काट देते, इतना बिजी है वो, पता नहीं किसी चीज में अभी तक। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: जी
1: वालेकुम
2: सलाम, मैं गुलाम मुस्तफा अंजुम बात कर रहा हूँ।
1: गुलाम मुस्तफा अंजुम
2: जी,
1: क्या बात है यार, आपके तो नाम में ही अंजुम लगा हुआ है, तो फिर आप तो माशाल्लाह से आदमी भी महफिलों वाले ही होंगे, दिल जीतने वाले। गुलाम मुस्तफा साहब खैरियत से हैं
2: जी? लगता है आप मुझे भूल गया, मुझे मिले थे अलकोर में, मिले थे आप।
1: अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ भाई, मैं पहचान नहीं पाया, और मुलाकात जरूर हुई होगी जाहिर है।

0: कितने दिन पहले थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ क्योंकि अलखोर आना जाना रहता है जी।
1: ओ नदी महर के प्रोग्राम में मस्जिद में मिले थे।
0: ऑल राइट जी जी जी जी जी जी ओला मुस्तफा साहब खैरियत से हैं?
1: बस वो मैंने भी देखा है कहीं से कोई चांद निकला है दिन में, तो मैंने कहा आज हम चांद से बात ही कर।
0: अरे रे रे रे रे, मैंने कहा ना कि आप तो वैसे ही दिल जीतते होंगे महफिलों का। कैसे हैं गुलाम साहब और क्या चल रहा है अभी, कहाँ खोर में ही आप?
1: नहीं नहीं, मैं तो अभी ड्यूटी पे भी पहुंचा, भी पार्किंग पहुंचा। आज मैंने कहा हिम्मत कर ही लेता हूँ थोड़े से।
0: बहुत अच्छा किया सर,
1: मेरा भी आर्ट
0: बहुत अच्छा किया।
1: मैंने कहा आज थोड़ा सा ना आपसे बात कर ही लेते हैं।
0: अरे बहुत अच्छा किया, आपने पहली बार कॉल करी है हमें
1: जी। आपको पहली बार किया लेकिन नाजिया से कभी कभी कर लेते
0: हैं, पहले बात हो चुकी है नाजिया से। चलिए बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपके फोन को तौफीक दे कि वो हमसे कनेक्ट होता रहे, मेरी तो यही दुआ है। और नहीं मतलब आप खोर से कहीं और इस वक्त ड्यूटी पे होते हैं, दोहा या कहीं और?
1: नहीं नहीं नहीं, वो खोर में तो मैं।
0: अच्छा आप खाली वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहाँ रिहाइश है आपकी?
1: मैं तो न्यू सलाता में रहता हूँ।
0: न्यू सलाता में किधर?
1: न्यू सलाता में तुर्किश हॉस्पिटल की बैक साइड में।
0: अच्छा हॉस्पिटल की बैक साइड में कौन सा विला?
1: वो विला नंबर 38।
0: 38। नाश्ते में क्या बनाया आज गुलाम भाई?
1: आज लेकर आए।
0: मैं तो एड्रेस इसलिए पूछ रहा था, मैंने कहा कि यहाँ से करीब पड़ेगा मुझे लौटते में, तो जरा सा होता हुआ चला जाता मैं अपने भाई के पास। अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई। तो आज हमारी बातचीत तो यही चल रही थी कि भाई पुरानी, सुना आपने मौजू आज का हमारा जो आज हम बात कर रहे थे टॉपिक में?
1: आज मैंने सुना था पुरानी चीजों, बाकी मुझे
0: पुरानी चीजों में तो बहुत कुछ आ जाता है। ये मत कहिए गुलाम मुस्तफा साहब, आपको घर में भी जाना है वापस। आज हम मोबाइल जो पुराने हो गए उसके हवाले से बात कर रहे
1: हैं। सर वो मैंने ना एक दफा एक नेट पे पढ़ा था, एक साहब जो है वो उनके मुल्क के अंदर ना वो कहते हैं कि हर 10 साल के बाद ना मर्द को शादी करनी चाहिए। अगर आपने 30 साल में शादी की तो 10 साल के बाद वो बीवी पुरानी हो गई तो 40 में दूसरी करो, फिर उसके बाद 50 में कर लो, 60 में कर लो, क्योंकि इस्लाम ने तो 4 की इजाजत दी है। तो अब मैं 56 ईयर्स का हो गया, तो मैंने तो 2 की है, तो मैं सोचता मैंने क्यों इतनी बड़ी गलती क्यों की
0: भाई। मैं इसमें मैं बता दूं कि हम ऑन एयर हैं और ये एक जो आर्टिकल पढ़ा था गुलाम मुस्तफा साहब ने वो शेयर किया है, बाकी इसमें हमारा और गुलाम भाई का कोई हाथ नहीं है इस बातचीत से।
1: क्योंकि हर 3-10 साल के बाद तो वाकई पुरानी हो ही जाती है।
0: तो ये बताइए कि वो सबसे पहला मोबाइल आपको याद है जो आपने खरीदा था और कितने का खरीदा था?
1: ये तो याद ही कितने का, लेकिन वो अब मेरे पास वो नहीं है।
0: अब आपके पास नहीं है? ओके, ना याद रहा और ना पास रहा, खतरनाक है आप इस मामले में पुरानी चीजों को रखने में।
1: असल में मैं अपनी कोलीग से ना कल ही बात कर रहा था, तो उससे पूछ रही थी, मैंने कहा वो मुझे ना बहुत शौक है, मैंने बहुत गाड़ियां चलाई हैं दोहा में
0: जी।
1: तो मैं चाहता हूँ मुझे ना एक नई गाड़ी मिल जाए, एक नई गाड़ी का भी शौक है। कहते हैं आपके शौक जो ना नए नए होते हैं, मैंने कहा हाँ बहुत चीजों में मैं नई नई चीजों का शौक रखता हूँ, तो मैंने कहा इस चीज का भी शौक पूरा कर ही लिया जाए, नई गाड़ी हो बिल्कुल
0: अल्लाह ताला
1: जीरो मीटर की गाड़ी, ये मेरा बहुत शौक है।
0: बातचीत जो है बड़ी ही प्यारी आपकी और इसमें इससे ज्यादा अब हम क्या ही कहें और क्या ही सुने। बहरहाल गुलाम मुस्तफा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल करी और बड़ी अच्छी बात करी, बड़ा मजा आया मुझे। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहा करें।
1: एक बात कह दूं
0: जी? बिल्कुल।
1: कभी कभार मैडम नूरजहां का कोई गाना लगा दिया करें, आप लोग तो बिल्कुल उनको बाजी फजाना सबसे कही है आप लोगों ने, मैडम नूरजहां के सारे वो जो रिकॉर्ड वगैरह थे उनके साथ।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं उनको बहुत गौर से और बहुत ज़्यादा सुनता भी हूँ। और मामला ऐसा होता है कि ये जो हमारी प्लेलिस्ट कहलाती है जो हमें गाने वगैरह हम लोग चलाते हैं, तो ये एक तो प्रोग्राम का जो मिजाज है, जो नौइयत है, उसके हिसाब से चलाए जाते हैं और ये हमें बने बनाए मिलते हैं। ये हमें जो लिस्ट है ना, ये इसमें हमारा दखल बहुत कम होता है एक्चुअली, और जो औकात हैं दिन के उसके हिसाब से होता है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई प्रोग्राम भी होगा जिसमें आप सुन सकते हैं ज़रूर गुलाम मुस्तफा साहब, और कभी ऐसा हो गया कि इंशाल्लाह आपकी बात सुन सके तो ज़रूर हाजिर है इंशाल्लाह ताला। ठीक है,
1: आखिर में एक शेर सुना देता हूँ
0: इरशाद।
1: शिकवा अपनों से किया जाता है गैरों से नहीं।

0: आप कह दें तो कभी आपसे शिकवा ना करे।
1: हाय हाय हाय, इसी पे सुन लिया अब भी जाते जाते कि शिकवा किसी से दिल के न मिलने का क्या करें, शिकवा किसी से दिल के न मिलने का क्या करें, दो हर्फ ही लफ्ज़ दिल में थे वो भी जुदा मिले।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो महफिल जम ही गई।
1: अहलन व सहलन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफा साहब, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, तो यहाँ हो रही है बातचीत दिलों के हवाले से, उठे थे मोबाइल लेकर और पहुंचे दिलों तक, हो रहा भी यही था भाई। फिलहाल एक गाना तो चला ही दूं यार, रंगी सारी, कनिष्क सेठ और कविता सेठ एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, आप भी इनके साथ जुड़ जाइए, सुबह सुबह का वक्त है।

0: 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। देसी
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
1: FM 107,
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.
2: मैं गलत न था, मुझे समझा गया गलत, लिखा गया गलत, कभी बोला गया गलत, मैं भी गलत न था, मेरी बातें गलत न थीं, मुझको मेरे कलाम को जांचा गया गलत, मीज़ान ठीक था, परहले दुरुस्त थे, लेकिन ये कौन देखता है कि तोला गया गलत, मुझ में नहीं थे ऐब, कसौटी में ऐब थे, मेरा था ये कसूर कि परखा गया गलत। स्टूडियो की घड़ी में 8:03 मिनट
1: आप सुन रहे हैं।

0: सबाह नूर, सबाह खैर भाई, जिन जिन ने अभी हमारे साथ अभी अभी कनेक्शन अपना जोड़ा, अभी अभी अपने तार जोड़े हैं, उनको सरवर मिर्जा का सलाम व आदाब। और आज हमने खूब सारी बातें करी हैं, और वो किस हवाले से करी हैं ये आपको बता देता हूँ कि आज खासम खास दिन था, आज था इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के हवाले से जो अवेयरनेस होनी चाहिए उसके हवाले से हमने बातचीत करी, और पुराने मोबाइल और जो आपका पहला मोबाइल था उसके हवाले से भी हमने बहुत कुछ जाना, लोगों ने बहुत कुछ बताया, मुझे समझाया भी, कुछ सिखाया भी। अब आइए हमारे साथ एक और चैंपियन यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, जानते हैं कि क्या हालचाल है इनका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात, क्या हाल चाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कौन है हमारे साथ?
1: जी सरवर भाई, मेरा नाम सैयद अली हैदर है, वैसे मुझे शाहजी कहते हैं।
0: शाहजी?
1: तो जी शाहजी, शाहजी कह सकते हैं आप।
0: शाहजी?
1: जी जी,
0: अपना पंजाब वाला शाहजी?
1: नहीं, ये शाह जिसको बोलते हैं ना, सैयद शाह वाला शाह।
0: ओके शाह जी, ओके। तो हम शाह जी बोलें आपको या अली भाई बोल के आपसे मुखातिब हूँ मैं?
1: आप कुछ भी बोल लें, मेरे लिए काबिले कबूल
0: है। अरे अरे अरे, क्या बात है। तो चलिए आपको अली ही बोलूंगा, क्योंकि इससे खूबसूरत नाम क्या ही हो सकता है। तो अली भाई, खैरियत से, और कैसी गुजरी आपकी सुबह अभी तक, और कैसी शुरू हुई आपकी सुबह? अभी शुरू हुई है?
1: जी बिल्कुल, मैं दरअसल शुरू से ही आपको सुन रहा हूँ और आपके साथ ही गुजरी है सुबह।
0: अरे
1: कॉल बस लगते लगते बहुत टाइम लग गया, बहुत ऐसे ही जिस तरह बंदा वोडाफोन में मिला ले और होल्ड में डाल दे तो 10-12 दफा मिलानी पड़ी कॉल।
0: अरे अरे मेरे भाई, और देखिए दिल से दिल को राह होती है और दिल से दिल के तार जुड़े होते हैं, एंड हम दोनों इस वक्त साथ हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आज आप, जो हम बातचीत करी उसके हवाले से पहले तो जानना चाहूंगा, कुछ कहना चाहते हैं?
1: जी जी बिल्कुल, दरअसल मैं ये कहना चाहता था, पहली बात तो आप और जो अपने भाई साहब स्टोरी वाले हैं ना कबीर भाई, दोनों बहुत जो ना ज्यादती करते हैं हम लोग के साथ, हमें अपना बचपन में ले जाते हैं हमारे।
0: अच्छा,
1: ऐसी ऐसी चीजें आप हमें देते हैं, टॉपिक देते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने भी किया था, अभी जो आपने देखा ना, वो जो शुरू किया ना, उस वक्त से मेरे दिन में पूरी स्टोरी जो ना वो बैकअप की तरह घूम गई
0: है। थोड़ा हमारे साथ भी शेयर कीजिए अली भाई।
1: जी जी, मेरा दरअसल फोन जो पहला था 2002-2003 में था, तो उस वक्त हम लोग मैट्रिक फर्स्ट ईयर में थे।
0: okay.
1: तो छोटा सा जो बटन वाला होता है फोन,
0: जी जी जी,
1: वो वाला था। तो उसके बाद फिर जो ना एक फोन लिया गया, वो बिल्कुल फ्लिप वाला था, जो बंद करें तो अंडा, बिल्कुल अंडा।
0: मैं समझ गया, मैं समझ गया, वो तो चीज ही अलग थी भाई, ये ऐसा फोन मिल जाना, आप बहुत नसीब वाले थे यार, मोहब्बत थी आपके बड़ों की, यकीन जानिए। हम तो तीन तीन साल हमने हाथ पैर जोड़े हैं उसके लिए, दे दो, दिलवा दो, खुदा के वास्ते दिलवा दो, फिर भी कुछ करना ही पड़ा हमें, अच्छा जब ही मिला हमें वो।
1: जी जी बिल्कुल, इसमें मेहनत ज्यादा अपनी होती थी, पैसे जमा कर करके थोड़े थोड़े पेट काट काट के तो फिर खरीदना पड़ता था। बाकी हमें शौक था, घर वाले तो चले जो भी सपोर्ट करते थे करते ही थे, हम लोग भी समझ ले बचपन जवानी जो भी लगा लें वही था।
0: सही।
1: तो लेकिन एक सवाल, एक फोन तो कुछ फोन जो है ना मैंने रखे हैं घर पे।
0: अच्छा।
1: एक जो जब मेरी मंगनी हुई थी, मेरी जो मंगेतर है फियांसी, अब्बू ने उनको गिफ्ट किया था, अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है।
0: अरे अल्लाह
1: की बात है, 8 और 9 की।
0: तो नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो आपने बताया उस हिसाब से जो मैं समझा हूँ, तो इसका मतलब रिश्तेदारी में ही शादी हो रही है इंशाल्लाह ताला।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही हुआ, वो मेरे के कहते वालदेन की ख्वाहिश थी और मैं उनकी ख्वाहिश के साथ बहुत खुश था।
0: क्या बात है यार, ये भी बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी बात है। क्या बात
1: है, दो तीन फोन जो है ना वो पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, और एक तो मैं लेके जब भी मैं जाता हूँ यहाँ से वहाँ चला जाता है, वहाँ से यहाँ आ जाता है, जो उनसे मुल्क में जाता हूँ मेरे साथ साथ घूमता है, छोटा सा बिल्कुल समझ लेके आप, वो तीन उंगलियां जोड़ेंगे ना तो
0: मैं समझ गया,
1: उसके अंदर लंबाई और उतनी चौड़ाई जितनी होगा वो,
0: उसके अंदर ट्रेन वाली जो टोन थी वही बात कर रहे हैं आप, ट्रेन साउंड थी उसके अंदर,
1: ट्रेन वाली भी, और क्या कहते हैं बारीक पिन वाला चार्जर भी अभी तक मेरे साथ ही पड़ा हुआ है बैग।
0: क्या बात है यार, मुझे

0: भेजिएगा उसका आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, मुझे फोटो भेजिएगा, क्या बात है यार अली
1: एक
0: भाई।
1: और सर्वेगा ने चीज की, जिस तरह लोग जमा करते हैं ना, मैंने एक और चीज की, यही 2002 और 3 की बात है।
0: अच्छा,
1: उस टाइम पे लैपटॉप और कंप्यूटर नए नए थे, हार्ड ड्राइव की ना एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बनाई जाती थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल अभी भी बनाई जाती है और जब शुरुआत हो चुकी थी, सही बात है, तो वो भी है अभी तक।
1: मैंने वो अभी तक, वो पहली मेरी 20 GB वाली, मैंने अभी तक वो संभाल के रखी है और उसमें सारा डाटा, और आगे बैकअप फिर नई हार्ड ड्राइव आ जाती है, अब तो खैर टेराबाइट्स में आ गई है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल,
1: और इसी तरह मेमोरी कार्ड्स 256 MB तक के मेरे पास
0: भी है यार, 256 का एक मेरे पास भी पड़ा है, अपने अच्छे याद दिलाया। दूसरी बात ये कि जो आपने अपनी डिस्क की बात करी, उसके ऊपर कवर लगवाया था आपने?
1: जी कवर लगाया था,
0: कवर लगवाना पड़ता था
1: जी वो उस टाइम पे बहुत महंगी थी उस टाइम पे
0: सर।
1: तो फिर वो ऐसा ऐसा करके वो चेंज हुई। और मजे की बात, मैं दरअसल डाटा सेव जो ना, मेरी आदत थी पिक्चर्स खींचते रहना, मतलब की चीजें सेव करते रहना, तो इससे घर वाले कहते थे ये क्या तुम्हें आदत पड़ी है, जहाँ भेजा तस्वीर खींच ले। तो और यकीन करें अभी 2005 की बात है और उस वक्त खींची है, मेरे हार्ड ड्राइव में पड़ी है, और वो मुझे कहते हैं यार तुम्हारे पास पड़ी होगी, वो तस्वीरें चेक करो। उस वक्त आपको पसंद नहीं था, मैं तस्वीरें खींचा था, अब आप मुझे मांग रहे हैं सारी तस्वीरें। तो अभी तक सोच लेंगे 22-23 साल हो गए मेरे पास डाटा सेफ पड़ा हो।
0: बहुत जरूरी होता है, और कुछ ऐसी मेरे ख्याल में ये सभी लड़कों का शौक होता है, और ये आदत अच्छी भी है जाहिर है, मगर वही वाली बात है कि जो यादें हैं वो परेशान भी बहुत करती हैं, है ना। तो बहरहाल मेरे साथ भी ऐसी कुछ हुआ। एनीहाउ चलिए अली भाई, बड़ी अच्छी बात आपकी। अब हम जरा गेम की जानिब बढ़ जाते हैं और आपसे गेम की शुरुआत करते हैं। तीन कदम खेल रहे हैं हम, बहुत ही आसान, तीन सवाल पूछूंगा मैं, तीनों का आपने जवाब दे देना है, बस 30 सेकंड आपके पास टाइम होगा, ठीक है, आखिरी वाले के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, शुरू करते हैं। पहला सवाल ये कि सूरज दिन में निकलता है या रात में?
1: दिन में निकलता है, जो अभी निकला हुआ है।
0: जो अभी निकला हुआ है। क्या पानी पिया जाता है?
1: बिल्कुल पानी पिया जाता है।
0: पानी पिया जाता है। वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा साफ करो उतनी ही काली होती चली जाती है?
1: काली होती चली जाती है। काली होती चली जाती है। इतनी साफ करो उतनी काली, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछनी है। इतना मुझे पता था, एक एक तौलिया होता है जो जितना साफ करो गंदा हो जाता है, काली हो जाती है।
0: याद करिए,
1: सवाल बहुत ढूंढ के लेके आए आप आज।
0: टॉय हो गया अली भाई।
1: इसका नहीं पता चला मुझे।
0: ओके, नहीं, वेल ट्राइड, आपने सोचा तो कम से कम, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी फैमिली को भी अच्छा रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, कल इंशाल्लाह वीकेंड है तो फिर कल जवाब देने जरूर आइएगा, आसान सवाल
1: इंशाल्लाह। और मैं एक और जैसे बात करूँ कि दरअसल ऐसे आप हमसे जुड़ गए ना, फैमिली यहाँ पे समय हमें फील नहीं होता कि फैमिली यहाँ पे नहीं है, पहले कबीर भाई थे, अब आप आ गए, तो जब मैंने दरअसल मिस कर गया, मुझे जेन से निकल गया कि वो छुट्टी चले गए, वो जब आपको मैंने सुना, मैंने सोचा अल्लाह खैर करे, पता नहीं तबीयत वगैरह खराब हो गई हो, हमें फिक्र होना शुरू हो जाती है आप लोगों की।
0: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे, और बिल्कुल फिक्र ना करें।
1: आमीन आमीन।
0: और इंशाल्लाह ताला आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, मैं आपके यहाँ खाने पे भी आ जाऊंगा, बेफिक्र रहे आप।
1: दरअसल आपका ना जिक्र हर रोज होता था, और मैं ये सोचता था कि कबीर भाई और बाकी हमारे कुछ कॉलर्स हैं वो आपका जिक्र बहुत ज्यादा करते हैं।
0: अल्लाह ताला खुश रखे, सबको मोहब्बत है आप लोगों की।
1: तो
0: भाई
1: ठीक है, आप भी मेरे तरह खुश खुराक है इंशाल्लाह, जब कहेंगे।
0: अच्छा, ऐसा है क्या?
1: जी, हम तो उस शहर से हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ खाने के लिए मशहूर है।
0: कराची या लाहौर?
1: नहीं नहीं, खाना खाने के लिए, खिलाने के लिए नहीं, खाने के लिए। ये शहर है, ये गुजरांवाला है, इनको गुजरांवाला का शहर भी कहते हैं।
0: ओके ओके ओके ओके, अल्लाह ताला खुश रखे भाई,
1: बहुत खाते हैं भाई,
0: और आपके शहर को भी शादो आबाद रखे अल्लाह ताला खैर के साथ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की,
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: बातें करने के लिए, बाकी सबको भी सलाम,
0: अहलन व सहलन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह अली भाई, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
1: बहुत शुक्रिया।
0: All right then, ladies and gentlemen, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इस वक्त शुरू हो चुका है FM 107 पे तीन का दम, और जहां पर निकाला जा रहा है दम नहीं, सवाल का जवाब। यार यहां पर एक और चैंपियन हमारे साथ, आइए करते हैं इनसे बात। हेलो, सलाम अलैकुम।
2: हेलो,

0: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। दम क्या पूरी दम की बिरयानी।
1: क्या बात है भाई, अज्जू आई हमारे साथ। अज्जू आई,
0: क्या बात है।
1: आज देखिए, आज सताया नहीं आपको मैंने बिल्कुल भी, है ना।
0: नहीं, मगर आप हमारा मैसेज पढ़ो भाई, कहीं को ऐसा जरूर।
1: अरे यार, आई एम वेरी सॉरी, असल में यार अगर मैसेज नहीं पढ़ू तो कॉल वाले नाराज ना हो जाएं, ये रहता है। और कॉल पे रहूं तो मैसेज वाले देखिए नाराज हो ही रहे हैं। बिल्कुल पढ़ता हूं अभी मैं, इंशाल्लाह ताला मैसेज भी पढ़ता हूं, मैसेज की जाने आऊंगा।
0: क्या करेंगे, ये दिल का मामला ऐसा है, ये मोहब्बत है, क्या करेंगे।
1: अरे
0: मोहब्बत जो ना लड़की छोड़ दिए तो उतनी तकलीफ होती, लेकिन मैसेज नहीं पढ़े तो उतनी तकलीफ होती।
1: भाई क्या कहूँ, हमने बात ही ऐसी कर दी। अज्जू भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और कैसी रही सुबह और कहाँ पहुंचे अभी तक, ये बताइए पहले तो।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वकेर गया था, अभी वकेर से रिटर्न जा रहा हूँ अभी।
1: अच्छा, वो कह रहे, अच्छा क्या बात है। तो माशाल्लाह ड्यूटी शुरू हो चुकी है, अल्लाह ताला आसानी करे, आपको सेहतियाब रखे भाई। ट्रैफिक वगैरह के क्या हालचाल है वकरा से वापसी में? और
0: नहीं, अभी तो मैं इधर ये उमसेद की रोड पे हूँ मैं, इधर तो ट्रैफिक वगैरह तो कुछ है नहीं,
1: अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ऑल गुड, ओके रिपोर्ट।
0: सुबह अलखिसा भी गया था तो थोड़ी बहुत ट्रैफिक थी वो केबल ब्रिज के करीब में।
1: ओके,
0: फिर उसके बाद
1: वहाँ यूजुअली सुबह के औकात में, क्योंकि बच्चों के स्कूल वगैरह का भी मामला होता है ना।
0: हाँ,
1: अपने इंडियन स्कूल पाकिस्तानी स्कूल दोनों तरफ ही हैं, तो माशाल्लाह से वो जो ट्रैफिक आवन गावन होता है बच्चों की बसेस वगैरह का, तो इसलिए एक जनरल उस वक्त होता ही होता है। बहरहाल क्या बात है भाई। अज्जू भाई गेम की जाने बढ़ जाए
0: जी, वो होते रहता। और कभी कभी क्या है, जरा मोहब्बत ज्यादा बढ़ गई तो एक दूसरे को पपिया भी ज्यादा ले लेते वो ब्रिज पे।
1: हाँ, तो वो कहने का मतलब, अज्जू भाई का कहने का मतलब ये है कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करे हर एक चीज में, यहाँ तक कि गाड़ी बम्पर से बम्पर में भी डिस्टेंस मेंटेन करे। और
0: एक बात बोलता हूँ आपको सर्वर भाई, माजरा
1: जी जी जी
0: आपकी बात को रोकने के लिए, लेकिन मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, हकीकत है आप भी देख रहे हैं। पहले लोगों में क्या है, थोड़ा अवेयरनेस था, जैसे कि ड्राइविंग करने के टाइम पे थोड़ा केयरफुल रहते थे, और जब आगे वाला इशारा यानी इंडिकेटर दे रहा है तो उसको थोड़ा हम लोग चांस देते थे जाने के लिए, जैसे अरे चलो बंदा राइट में जाना चाह रहा, जाने दो, लेफ्ट में जाना जा। लेकिन अभी कैसा हो गया, लोगों में दिल वो डर खौफ का कोई नाम है ही नहीं, डर खौफ का तो नाम है ही नहीं। और रही बात जो है ना, बस वो आगे वो पीछे वाला कुछ भी कर लेगा, बस अपन इंडिकेटर डाल दो, उन्हें कंट्रोल में है या अनकंट्रोल
1: नहीं,
0: में
1: दिस इज
0: बट आप राइट डालो जट बल्कि खुद जाओ, खलास हो गई बात।
1: नहीं भाई, ये अच्छी बात है जो इस वक्त टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो अजहर भाई, बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और हमारा तो कतर भाई इतनी, हमारा जो कतर है खूबसूरती, ये जो एक आदत है हमारी, यकीन जानिए।
0: माजरा चाहूँ
1: जी,
2: ये कंटिन्यू टू होल्ड।
1: अच्छा, होल्ड पे चले गए। नहीं तो मैं इनकी बात कंटिन्यू कर दूं, हमारा कतर तो इसलिए बहुत ज्यादा मशहूर भी है दुनिया भर में भाई, इस बात को सराहा जाता है जो हम एक दूसरे को रुक कर मौका देते हैं कि भाई आप पहले वाली बात पे, तो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है कि सब्र का मुजाहरा तो करें ही करें, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और ये भी ख्याल करा करें कि ऐसा तो नहीं आगे वाले किसी तरह से कुछ चैलेंज्ड हैं, है ना, माजूर अफराज से मेरा मैं कह रहा हूँ, और लेडीज़ हैं, बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग भी हैं, तो बहुत ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत है। और बम्पर टू बम्पर बिल्कुल भी नहीं भाई, एक तो कानूनन भी गलत है, अब इस पे फाइन भी है, फ्लैश जो हम करते हैं पीछे से उसके ऊपर भी कानून है अब तो। वज़ारत दाखला हमें हर वक्त इन सारी चीज़ों के बारे में बताती है और हम आप तक ये पैगाम पहुँचाते भी हैं। हमारे अब्बा ने हमेशा हमें सिखाया भाई एक बहुत अच्छा तरीका, जब आप अपनी गाड़ी में हो, अब आप सामने देखिए, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो सामने देखिए, आपको गाड़ी कहाँ रोकनी है सिग्नल वगैरह पे, जहां पे आपको उस सामने वाली गाड़ी का टायर दिख जाए, ये होता है सेफ एंड बेस्ट डिस्टेंस टू मेंटेन। अपना ख्याल रखते हुए सब ड्राइव करें और बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, ये हम सब ही जानते हैं। तो अज्जू भाई तो नहीं है इस वक्त हमारे साथ, कोई और हमारे साथ कनेक्टेड है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम जी, गुलजार हुसैन पर बात कर रहा हूँ।
1: गुलजार भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं?
3: अल्लाह का करम है जी, बहुत मेहरबानी
1: अल्लाह ताला।
3: तो जनाब जी बिल्कुल ठीक भाई ने बात किया, ये जो सिग्नल देते हैं खासकर जो हैवी ट्रैफिक है ना बड़ी गाड़ियों का
1: जी,
3: ठीक है, उन्होंने अगर राइट को मुड़ना हो तो ये कभी उसको चांस नहीं देते, सिग्नल लगाया हुआ होता है उनको तो लाजमी चांस देना चाहिए पहले भाई, ठीक है। जो राइट को खासकर वो जो हैवी ट्रैफिक वाले मुड़ते हैं, क्यों उनको लेफ्ट साइड चलना होता है ना, लेफ्ट से क्रॉस करके राइट को जाते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल रास्ता भाई नहीं देते। मैं लाइट का है, मैं लाइट गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन मैं काफी जगह देखा ना, वो बहुत मजबूर हो जाते हैं गरीब लोग, ट्रेले वाले या निचाल वाले जी। बाकी ठीक है, लोग देते हैं चांस, लेकिन इसमें थोड़ा ये लोग कहने का दूसरा मोटरसाइकिल वालों को बहुत मिठे है भाई, इनका कोई हल निकालो, किधर जाओ पार्किंग, पूरी गाड़ी की पार्किंग में इन्होंने खड़ा किया हुआ था।
1: अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अदा फरमाए सबसे पहले तो, और इस बात का ख्याल करें भाई, जैसा कि हमारे साथ इस वक्त लोग शेयर कर रहे हैं, तो हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे मुझे लगता है, तो इंशाल्लाह ताला इस परेशानी से हम आज़ाद हो जाएंगे और इस पे काबू भी पा लेंगे। तो इंशाल्लाह
3: बात यह है ना, बड़ी गाड़ी वाला तो कुछ नहीं जाएगा उसका, ठीक है,
1: बिल्कुल सही बात है, नुकसान भी छोटी गाड़ी का जो भी जी कानून है और जो भी परेशानियों से बचने की चीजें, तो हम एक दूसरे को समझाते भी रहे, खाली सुने ही नहीं उस बात को, उस पे अमल भी करें। इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ और मैं खुद बात कहता भी हूँ, ये पैगाम भी मैं पहुंचाता हूँ इदारत दाखिला से FM 107 की जानिब से, मगर इस बात का हम बहुत ज्यादा ख्याल करें और इस पे अमल भी करें कहने सुनने से ज्यादा, इंशाल्लाह ताला सभी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया भाई गुलजार भाई। तो अब छोटा सा नहीं, अब अगर थोड़ा दो मिनट है अगर, तो कुछ एक गेम है खेलेंगे, तीन सवाल है मेरे, बहुत बहुत आसान से
3: बात कर सकते हैं, लेकिन चलो
1: बहुत आसान से तीन सवाल है, बस उसका जवाब देना, ठीक है, चलिए ठीक है, तो तैयार हैं तो खेल लेते हैं भाई। सबसे पहला सवाल, किताब पढ़ते हैं या पीते हैं?
3: नहीं पढ़ते।
1: पढ़ते हैं। पैरों से चलते हैं या लिखते हैं?
3: चलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे सबकी।
1: आमीन। ऐसा क्या है जो है तो आपका ही, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला जब याद आ जाए तो मुझे मैसेज कर दिएगा, ठीक है भाई,
3: खैर करेगा इंशाल्लाह।
1: इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, अपना ख्याल रखिए, इतना प्यारा नाम है, शायरी भी अच्छी करते होंगे आप मुझे लगता है।
3: नहीं शायरी नहीं करता, लेकिन मैं एक बात बताऊं, वो जो है ना गुलजार आपका सनपुर सिंह गुलजार जो है इंडिया के फिल्मों काम का गाने लिखते हैं, वो मेरे शहर के जीना के।
1: जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ये देखिए आज एक नई कहानी जुड़ी।
3: नहीं हकीकत है, वो जिस स्कूल में मैं पढ़ू ना, जो हाई स्कूल में, उसमें जनाब सुनील दत्त का बाप है ना, संजय दत्त का बाप सुनील दत्त पढ़े स्कूल में।
1: ओके,
3: स्कूल में पढ़े हम, दो साल स्कूल में पढ़े, दूर था काफी, लेकिन ये जो गुलजार साहब है ना, ये बिल्कुल मेरे गांव के शहर के।
1: क्या बात है भाई गुलजार साहब, मजा आ गया ये बात सुन के, अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई,
3: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
3: अल्लाह खुश रखे सबको, आमीन, ओके सलाम,
1: अपना ख्याल रखिए, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑलराइट, कुछ मैसेजेस यहां पर और फिर उसके बाद ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। क्या कहते हैं, तुम्हें देखता हूं तो मालूम हुआ इश्क क्या है, अच्छा तुम्हें देखा तो मालूम हुआ इश्क क्या है, वरना हम तो मोहब्बत को फकत लफ्ज समझते थे। आए हाय हाय हाय हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मोहम्मद सरवर मिर्ज़ा भाई, ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब, बहुत खुशी होती है आपसे बात करते, आपके लिए बहुत सारा प्यार और दुआएं, क्या बात है सैयद खादिम हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शायरी का भी। ओके, ये हैं जमाल शेख साहब, यहाँ पर सुबह बखैर कहते हैं सबको, अस्सलाम वालेकुम भाई हरदिल अजीज, अरे वो तो आप हैं जमाल शेख साहब, माशाल्लाह प्यारे प्यारे। आसिफ भाई हमारे साथ, क्या कहते हैं, मेरी तरफ से सारे FM सुनने वालों को अल्लाह ब्लेस, आज कल गर्मी कम हो रही है, इतनी खुशी लगता सरवर भाई ने कल अपनी पुरानी अलमारी या कबर्ड खोल कर देख लिया, उसमें भाई को पुरानी चीज़ें मिल गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला फ़ोन ओके नाम भी बताया उसका, आज भी मेरे पास मौजूद है इंडिया में, उसमें सिम नहीं आती थी और मेरे पास एक चीज है, पुरानी यादें अभी तक संभाल कर रखा हूं ब्रो। क्या बात है यार आसिफ भाई, बहुत ही प्यारे और

अब हैं भी कुछ ऐसे ही मोहब्बत ही। शहजादा सलीम साहब ने भी यहाँ पर इसमें से एक मोबाइल मेरा था भाई ने यहाँ पर मुझे 76 फोन की लिस्ट भेजी है और कह रहे हैं इसमें से एक मेरा था, होगा ही होगा, इसमें क्या बात है। शहजादा सलीम साहब कहते हैं हमारा भी मैसेज पढ़ो भाई। अच्छा सर बिल्कुल पढ़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हम सबके प्यारे सरवर भाई, आपकी बात कुछ अलग ही है, अल्लाह आपको सेहत दे खुशी दे। शेख अजहर, लव यू हैदराबाद। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। माई गॉड ये क्या है, माई मोबाइल 2003 में, मोहो यार ये तो बहुत ही चिंटू सा है यार। वेरी गुड, मुझे ऐसे मोबाइल बड़े पसंद थे भाई। और सीबी भाई यार नाम तो बता दो अपना, मैं आपसे 4 दिन से आपका नाम पूछ रहा हूँ, आप नाम नहीं बता पा रहे, बता दो भाई नाम। तारिक जमील हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, परसों बारिश का उम्मीद दिला के खामोश हो गए, क्या हो गया भाई, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया था ना। चलो कोई नहीं, आए जल्दी रात को, नेहारी बनाया पराठा भी लाया, कबीर भाई तो आता नहीं, प्लीज आप आ जाइए, बड़ी खुशी होगी, सेम प्लेस बिसाइड द मस्जिद। अरे यार अपना शेख इरफान अल कासमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आना नहीं चाहते, इंशाल्लाह ताला कभी ऐसा इंतज़ाम हो गया कि मिल पाए तो ज़रूर यार, वाई नॉट। गुड मॉर्निंग, दिस इज हबीब बाबर फ्रॉम पाकिस्तान लाहौर। अस्सलाम वालेकुम कतर एफ एम 107 टीम, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, अच्छा कुछ इन्होंने यहाँ पे अर्जी डाली है, कोई इशू रेस करना चाहते हैं। ओके ओके ओके ओके बाबर भाई, मैं इसको पढ़ता हूँ मैसेज को, और हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है गालबन, मगर ये है कि मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, आपने जो बात कही है इसमें हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है सर, हम क्या क्या ही कर सकते हैं इसके अंदर, कानून सारे अपनी जगह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सरवर भाई, राना नदीम फ्रॉम सऊदी सलवा, आपको और आपकी सारी टीम को सलाम, सुबह सुबह आपकी आवाज़ सुन ली, इंशाल्लाह आज दिन अच्छा अरे गुजरेगा ही गुजरेगा मेरे भाई राना भाई, इंशाल्लाह ताला खैर होगी और मेरा भी दिन आपने बना दिया मेरे साथ वक्त गुजार कर। सलाम सरवर भाई जान, कैसा है मेरा जर्द सितारा सरवर भाई जान। ओए ओए ओए ओए यार ये क्या भेज दिया यार सुबह ही सुबह, ये है क्या साथ में पूरी है क्या, चाय के साथ में क्या है ये। अरमान भाई, अरमान मलिक है हमारे साथ भाई साहब, वही हैं ये सिंगर जो गाना गाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इंडीड अल्लाह इज विद द राइचियस एंड द डूअर्स ऑफ गुड, मे अल्लाह मेक टुडे इजी फॉर अस, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एवरी हार्म and increase our risk if Allah has blessed you today, say Alhamdulillah, sabr Allah will give you more than you have expected. Good morning, subah bakhair kehte hain. Jazakallah khair, Allah ta'ala khush rakhe bhai aapko, naam nahi likha aapne. Can you please share me your number to call you, I miss FM 107 number. मोहम्मद आसिफ यहाँ पर, एक और आसिफ भाई हमारे साथ माशाल्लाह जुड़ते हुए, तो नंबर है भाई 443-443-77, ये हमारा कॉल करने का नंबर है 443-443-77, और वहीं आप अगर मैसेज के जरिए हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं देन द नंबर इज 666-22-107, और यहाँ पर कुछ और मैसेजेस। यूसुफ भाई हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग सरवर भाई, कैसे हैं आप, होप वेल, वेलकम टू वेकअप दिल से देसी, वेनसडे मॉर्निंग सबको विश कर रहे हैं। कह रहे हैं मुझे ने सबसे पहले यहीं कतर में आके फर्स्ट मोबाइल यूज किया वो था, ये नंबर बताया एंड दैट वॉज 2004, वो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, फीलिंग नॉस्टैल्जिक। हाँ यूसुफ भाई वाकई उस जमाने में वाकई बड़ी बात थी, आप भी हमारे बड़े हैं यूसुफ भाई, आप जब उस जमाने के हैं तो आप भी बड़े ही हुए हमारे। हेलो सरवर भाई कैसे हैं आप, ग्रेट शो, मैं कबीर भाई को एक्सपेक्ट कर रहा था बट अ सरप्राइज गॉट टू हेयर यू, सो मैंने लाइफ में 25 प्लस फोन बदले हैं 2004 ऑनवर्ड्स, नाम बताएं सारे भाई ने कंपनी के, मजा आता है टू ट्राई न्यू टेक्नोलॉजीज, ये है मेरा भाई जिंदा दिल बिरेंदर भाई हैं यहाँ पर हमारे साथ, क्या बात है बिरेंदर भाई। नसीम भाई ये कहते हैं, ये इन्होंने सवाल जो मैंने पूछा था किसी से उसका जवाब बताया नहीं है, नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नेम कहते हैं यार, सही है यार, सही है सरवर मिर्जा है भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह, इनवाइटेड फॉर पूरी भाजी विद कोकोनट चटनी, मेरा भाई कौन है, तनसीम, तनसीम है हमारे साथ, और नाश्ते का अपना फोटो भी

भेजा, बारक अल्लाह खैर, अल्लाह मुबारक फी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। कबीर भाई कहते हैं, सॉरी सरवर भाई, छेड़ लो यार, कहानी मिस कर रहा हूँ। कबीर भाई की कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, कभी क्रोकोडाइल की कहानी ही सही। वो तो मैं खुद हूँ यार अब्दुल आदि, इसे सुनाऊंगा क्या। ओके, यहाँ पर कुछ और मैसेजेस भी हैं, बट यार इतना बोर ना हो जाएं हम कि गाना ही ना सुन पाए सगेरे सगेरे। फिलहाल अरिजीत जैम एंड हर्षदीप एक दूसरे का साथ निभाते हुए कह रहे हैं, जालिमा एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, सर्वर मिर्ज़ा आपके साथ है, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: और जुल्म तो जब होता है जब आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाती, यहाँ सरवर मिर्ज़ा हाजिर खिदमत है। भाई वक्त कम होता जाता है और प्रोग्राम का टाइम भी पूरा हुआ जाता है, तो मैंने सोचा कि जल्द से जल्द हमारे जो कनेक्ट हो रहे हैं चैंपियंस उनको कनेक्ट करा जाए। हेलो, सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
1: अस्सलाम
0: वालेकुम व बरकातुहू। मैं खैरियत से हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन है हमारे साथ?
1: सर मैं नाम तो नहीं मेंशन कर सकता।
0: अच्छा, ओ अच्छा,
1: लेकिन
0: ऐसा भी है।
1: बस आपसे बात करना चाहता था तो मैंने कहा चलो आपसे बात करते
0: हैं। ये तो कमाल हो गया यार, कोई बेनाम बादशाह हमारे साथ जुड़ गया है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं
1: सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूं। और मैं अब आपसे पूछूंगा भी नहीं आप क्यों नहीं मेंशन करना चाहते, जाहिर बात है अपनी अपनी मजबूरी होती है, बट ये जो मोहब्बत है ना, मतलब आपने मुझे हर दिल जो प्यार करेगा याद दिला दी इस वक्त, यकीन जानिए। नाम नहीं बता सकता मगर बात
1: ये कि काफी देर से इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैं ट्राई कर रहा हूं कि कभी कॉल कनेक्ट हो जाए और आपसे बात हो जाए।
0: अरे सर, अहलन बस

0: फैलन, ये तो आपकी मोहब्बत है।
1: मरहबा,
0: क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से हैं?
1: सर मैं तो बाय द वे मैं पाकिस्तान से हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन इस वक्त मैं यहाँ रासलाफान में होता हूँ।
0: ओके, अच्छा, ये भी बहुत है यार। मतलब भाई फ्रॉम रासलाफान, ये भी मेरे लिए काफी है भाई। नो वरीज एट ऑल। तो क्या कहते हैं, गेम खेलेंगे हमारे साथ?
1: सर गेम में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुन सकता हूँ लेकिन।
0: अरे बहुत, यही तो चीज मुझे उजागर करनी है। तीन सवाल है खाली और उसका आपको जवाब देना, बहुत ही आसान।
1: जी जी
0: ठीक है, तीन सवाल पूछूंगा बहुत ही आसान आसान से, उसका जवाब दे देना आपको बस। ठीक है
1: ठीक है ठीक है सर।
0: चलिए ठीक है, तो पहला सवाल आता हुआ आपकी जानिब ये कि ये बताइए, मछली पानी में रहती है या हवा में?
1: हवा में। आपकी बात काट रहा हूँ, आपके जो पहले दो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला होता है ना वो जरा थोड़ा सा डेंजरस होता है, क्योंकि उसकी समझ नहीं आती।
0: तो देखिए यार, आप सुनते तो हैं, तो खेलने में क्या हरज है यार? पहला जवाब आपने सही दे दिया, बिल्कुल दो जवाब भी सही दे रहे हैं तो आप चैंपियन है यार। एक साल में कितने महीने होते हैं?
1: सर 12।
0: 12 होते हैं, वेरी गुड, जबरदस्त। वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं?
1: फरवरी।
0: वेरी गुड, फंस गए आप मेरे जाल में। थोड़ा और सोचिए।
1: जी सर,
0: थोड़ा और सोचिए, आपका जवाब सही नहीं है।
1: सर फरवरी 28 होता है, 28 का मंथ।
0: अच्छा चलिए ठीक है यार, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि आपने जो मोहब्बत दिखाई है ना अपनी, वो कमाल है भाई। बाकी
1: सर यकीन मानिए कि मैं
0: काफी, बाकी जवाब आपका सही नहीं है तीसरा वाला। देखिए मैंने आपसे क्या पूछा,
1: मैं 1000% श्योर हूँ कि 28 का जो मंथ होता है वो फरवरी है।
0: नहीं गलत।
1: ओके सर,
0: पूछी कैसे? पूछी कैसे मुझसे? पूछी कैसे? आपकी मोहब्बत में बता दे रहा हूँ, वरना मैं दूसरों को भी सताता। हर महीने मैंने पूछा आपसे वो कौन सा महीना जिसमें 28 दिन होते हैं, हर महीने में 28 दिन होते हैं मेरे भाई, खाली फरवरी में ही नहीं। मैंने ये नहीं पूछा सिर्फ वो महीना बताइए जिसमें सिर्फ 28 दिन होते हैं, मैंने पूछा कि वो महीना बताइए जिसमें 28 दिन होते हैं। तो भाई 12 के 12 महीने में 28 दिन होते हैं, सही है नहीं है?
1: सर आप ये पूछना चाहते हैं कि वो कौन सा
0: महीना? यही तो फसाना था, यही तो फसाना था मेरे भाई, यही तो फसाना था।
1: मैंने पहले इस तरह आपको बताया था कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसको टाइम दो, इसके लिए मैंने आपको पहले बताया।
0: मैंने अपना देखिए सवाल खराब किया आपकी मोहब्बत में, क्योंकि दूसरों को मैं सताता काफी।
1: मोहब्बत है, थैंक यू, आई अप्रिशिएट।
0: अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और जिस वजह से आप नाम छुपा रहे हैं मुझे लगता है कि कोई ऐसी परेशानी ना हो, और अगर कोई परेशानी वाली बात है तो अल्लाह वो परेशानी आपकी जिंदगी से दूर कर दे खैर के साथ, मैं ये चाहता हूँ।
1: आमीन आमीन आमीन।
0: चलिए भाई,
1: साहब भाई एक गाने का रिक्वेस्ट मैंने करना था।
0: गाने का रिक्वेस्ट करना है, ये तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अच्छा? हमारे पास रिक्वेस्ट सॉन्ग के लिए भी प्रोग्राम होता है। बहरहाल आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? क्योंकि
1: वो गाना है हाय हाय ये मजबूरी।
0: मसला यह है कि ये जो हमारी प्लेलिस्ट होती है, अभी मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था, और ये हमें बनी बनाई मिलती है कि हमें यही प्रोग्राम और यही एड्स वगैरह प्ले करने हैं, तो इसमें हमारा दखल बहुत कम होता है। फिर भी यह है कि हाँ, मिजाज जो भी चल रहा हो मौसम के हिसाब से, कोई बारिश वगैरह का मामला है या कुछ ऐसा है, तो हम फिर भी कुछ दखल

0: की वजह से कोई बिना मजबूरी के हमसे कनेक्ट होता ही रहता है। यहाँ पर आपके दो मैसेजेस, उसके बाद कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, रहमतुल्लाहि व बरकातहू, दिस इज मोहम्मद मुनीर पटेल, और पाटल पटेल होने चाहिए। आई वॉज हैविंग अ मोबाइल कॉल्ड Alcatel, बिल्कुल मुझे याद है, एंड 1998 में द कंपनी वॉज दिस ओके, जब के टाइम में इनकमिंग को भी चार्ज होता था सरोर भाई, और बहुत बड़े साइज का मोबाइल था, एकदम हैवी। आई रिमेम्बर मुनीर भाई, आई रिमेम्बर, एंड वो दिन भी याद है, इनकमिंग कॉल के भी पैसे हुआ करते थे। यहाँ पर एक चैंपियन, उसके बाद आप लोगों के मैसेजेस भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम सरोर भाई।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला, कौन है हमारे साथ?
1: मैं अरफात बात कर रहा हूँ।
0: अरफात,
1: क्या हाल है आपका?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरफात, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है।
0: कहाँ से ताल्लुक है अरफात आपका?
1: मैं बांग्लादेश हूँ।
0: बांग्लादेश में? बांग्लादेश में किधर?
1: चट्टग्राम।
0: अच्छा, चट्टग्राम में किधर?
1: चट्टग्राम मैं हिल डिस्ट का पास हूँ, रंगनियाबाद।
0: अरे रंगनियाबाद में किधर यार, किधर?
1: और कितना मालूम है बता दीजिए, मैं उसके बाद बताता हूँ आपको।
0: अरे मेरा भाई, कैसा भाई, कैसा? अल्लाह ताला खुश रखे आपको।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बताइए।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और अल्लाह ताला हमारे सब बांग्लादेशी भाइयों को खुश रखे। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है जब आप लोग आते हैं और उर्दू में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, या एक जो लफ्ज है उर्दी में बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है यार, बड़ा अच्छा लगता है।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: तमाम हमारे पश्तून भाई, पख्तून भाई, और बांग्लादेशी भाई, श्रीलंका वाले भाई, जो कोशिश करते हैं बात करने की कनेक्ट हो के, और जबकि वो आपकी लैंग्वेज नहीं भी है, सो दिस इज ऑसम, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, यकीन जानिए। उन तमाम भाइयों को मैं ये बता रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं भाई।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: चलिए तो आपसे गेम खेल लें फिर,
1: इंशाल्लाह ट्राई करूंगा।
0: ट्राई करेंगे, इससे पहले खेला है मेरे साथ कभी?
1: नहीं,
0: कभी नहीं खेला।
1: पहली बार बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, मुझसे पहली बार? यार बताइए, पड़ोसी हो गए यार पहली बार है?
1: या मैं सुबह में ज्यादा रहता हूँ इसलिए।
0: अच्छा चलिए ठीक है, तो आपसे बहुत आसान कुछ पूछ लेता हूँ, क्या कहते हैं?
1: जरूर।
0: या मुश्किल पूछूं?
1: मुश्किल नहीं, ठीक है जी, आप, मैं भी कोशिश करता हूँ
0: यार। मुझे असल में आसान पूछना भी चाहिए ना, क्योंकि आपको समझना भी मांगता है ना मेरा भाई को। ओके, तो करते हैं शुरुआत यहाँ से।
1: ओके,
0: हम खाना कान से खाते हैं, मुंह से खाते हैं?
1: मुंह से।
0: वेरी गुड। क्या आप पानी पीते हैं या पानी को खाते हैं?
1: पानी पीते
0: हैं। अरे बंगाली तो पानी खाता है भाई। मैंने जानबूझ के पूछा था, चलिए ठीक है, इसको भी
1: मैं अभी हिंदी में हूँ, हिंदी में बता दिया।
0: पानी खाता है ना आप लोग? पानी खाता है, मुझे पता है, मुझे पता है। नेपाली भाई भी पानी खाता है। पानी खाता है। चलिए साहब, क्या पूछूं यार, बहुत आसान कुछ करना पड़ेगा भाई के लिए। ओके, 10 मोमबत्ती है, वो जल रहा है, मोमबत्ती मालूम है, कैंडल
1: मालूम है?
0: ओके, 3 बुझ गया, कितना बचा?
1: 3 बुझ गया, कितना बचा?
0: हाँ,
1: अभी जल रहा है तो पूरा ही जल जाएगा ना?
0: नहीं, अभी अभी 10 जल रहा है, 3 बुझ गया हवा से, या मैंने बुझा दिया, अभी कितना बचा?
1: एक भी बचा नहीं है,
0: एक भी नहीं बचा,
1: पूरा बुझ जाएगा हवा।
0: नहीं नहीं नहीं, और सोचिए थोड़ा, देखो 10 है टोटल, टोटल 10 है, है? अशरा, ओके, 3 बंद हो गया, तलाता बंद हो गया, अभी कितना बचा?
1: 7।
0: कैसे?
1: कंफ्यूज कर दिया अभी। लगता है पहले
0: नहीं,
1: हवा से बंद होगा तो पूरा 10 ही बंद होगा।
0: 10 बंद नहीं हो रहा ना, वो 10 हमने, वो जल रहा है कैसे भी करके, जल रहा है, खाली 3 बंद हुआ, तो अभी कितना बचा?
1: नहीं आ रहा है दिमाग,
0: नहीं आ रहा है। अरे मेरा भाई, क्या नाम बताया आपने? सॉरी, मैं जहन से निकल, अरफात भाई, माशाल्लाह अरफात भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और ये जो मोहब्बत है ना आपकी हमारे साथ यार, आप टाइम निकालता है, हमसे कनेक्ट होता है, और
1: इंशाल्लाह हमारा भी दिन बन जाता है आप लोगों का बात सुन के।
0: अरे यार मोहब्बत है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और माल में भाग रखिएगा, ठीक है?
1: जरूर,
0: माल में भाग भी रखने का है, ठीक है? मैं कह रहा हूँ माल में भाग यार बंगाली में कैसे बोलूं, मुझे आली रही बंगाली इस वक्त बिल्कुल भी। बहरहाल अराफात भाई ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपको।

0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा है।
0: सेम हियर भाई, मैं भी ऐसे ही खुश हो रहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो भाई यहाँ पर एक मैसेज लेते हैं, उसके बाद एक और चैंपियन, क्योंकि अब वक्त भी हुआ जा रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर, आई विन। ओके, प्राइस के हवाले से बात कर रहे हैं, प्लीज डू समथिंग यार। इंशाल्लाह ताला आपको जरूर मिलेगा आपका प्राइस, कुछ लोगों के प्राइस रह गए हैं, उन तमाम लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला मिलेंगे जरूर। कब है उसकी डेट वो हमें भी नहीं पता है, जैसे हमें पता चलेगी इंशाल्लाह ताला हम अपडेट जरूर करेंगे। मुबीन बुखारी यहाँ पर अपना फोटो भेज रहे हैं और शाहरुख खान सामने खड़ा हुआ। तेरी याद भी नसीम कितनी बुरी है यार, ये लिखा आपने लिटरली। जब भी सोचता हूं तकलीफ ही होती है, ये आपने खुद लिखा है नसीम भाई, लग तो रहा है मुझे ऐसा। तेरी याद भी नसीम कितनी बुरी है, जब भी सोचता हूँ तकलीफ होती है, इस तरीके से होगा। खैर चलिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एक और चैंपियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज एक कॉलर को मैं कॉल बैक भी करूंगा जिन जिन ने कहा है मुझे कॉल करने के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि
0: वबरकातुहु। अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
2: पहले वाला, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो 75 ममालिक
0: रियाज भाई कैसे हैं रियाज भाई, खैरियत से हैं?
2: ठीक ठीक है, मैं सोचा मैं भी गेम खेल लेता हूँ।
0: अरे बिल्कुल यार, क्यों नहीं खेलेंगे, आप आइए, चलिए शुरू करते हैं। रेडी हैं?
2: जी बिल्कुल।
0: जीतेंगे?
2: जी जी, दो हो जाएगा, तीसरे
0: दो हो जाएगा, नहीं नहीं इंशाल्लाह सारे हो जाएंगे। तो बताइए दिन के बाद क्या आता है?
2: दिन के बाद रात आती है।
0: रात आती है। कार में स्टीयरिंग होता है या हैंडल होता है?
2: सॉरी, फिर से।
0: कार में स्टीयरिंग होता है या हैंडल होता है?
2: हैंडल होता है।
0: कार में हैंडल होता है?
2: कार में
0: स्टीयरिंग होता है या हैंडल होता है?
2: अच्छा, स्टीयरिंग होता है। ओके ओके, सॉरी, सुन नहीं पाया,
0: यही दबा देता अभी आपको मैं। अच्छा ये ओके, एक दरख्त के नीचे ओके तीन दोस्त बैठे हुए हैं, एक पीपल के दरख्त के नीचे तीन दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है? अब सुनिएगा उनकी कंडीशन। एक नाबीना है ओके, एक बोल नहीं सकते हैं और एक सुन नहीं सकते हैं, ठीक है?
2: ओके,
0: अब यहाँ पर जब सेब गिरेगा दरख्त से, सबसे पहले कौन उठाएगा?
2: पीपल का पेड़ है,
0: ये तो आपने बताला है।
2: नहीं नहीं, आपने कहा पीपल का पेड़ है तो सिर्फ जैसे आ गया,
0: ये यही सही है, यही सही है। अच्छा है यार, अच्छा है, चलो आज आज संभाल लिया। रईस भाई है, देखो मैं चाहता तो
2: सात करोड़।
0: अच्छा है, अच्छा है, चलिए भाई आज का चैंपियन हमें मिल गया भाई, क्या बात है, क्या बात है। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, कल इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ओके ओके ओके ओके, एक कॉल अब मुझे यहाँ पे मिलाना है। ओके ओके ओके, कोशिश जारी है। खादर भाई हमारे साथ हैं और अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो उनसे भी बात हो जाएगी हमारी। चलते चलते ट्राइंग खादर अब्दुल हादी, आप अगर अवेलेबल हैं तो। यस हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला, कैसे हैं खादर भाई, खैरियत से? अरे भाई वो ये तो मोहब्बत है आपकी खादर भाई, आपकी आवाज थोड़ी गड़बड़ आ रही है, काफी दबी हुई आवाज आ रही है। हेडफोन हटा के बात करेंगे तो अच्छा है।
3: नहीं नहीं नहीं, अभी देखो, अभी तो बराबर है।
0: अभी अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है खादर अब्दुल हादी, चलिए जल्दी से क्योंकि वक्त कम है, तो हम गेम शुरू करते हैं, ठीक है? रेडी हैं?
3: जी जी जी, इंशाल्लाह।
0: चिड़िया उड़ती है या तैरती है?
3: चिड़िया उड़ती है।
0: उड़ती है। मौसम गर्म हो तो लोग क्या पीते हैं?
3: ठंडा पानी पीते हैं।
0: एक दीवार को

0: बनाने में 8 आदमी 10 घंटे लेते हैं, तो उसी दीवार को 4 आदमी कितने वक्त में बनाएंगे? फिर पूछता हूं, एक दीवार को बनाने में 8 आदमी 10 घंटे लेते हैं, तो उसी दीवार को 4 आदमी कितनी देर में बनाएंगे?
1: वही 10 घंटे ही लेंगे।
0: कैसे?
1: तो एक ही दीवार बन रही है ना उधर।
0: यार दीवार तो पहले ही बन चुकी है, तो बनाएंगे क्यों खादर अब्दुल हादी? भैया 8 आदमी ने दीवार बना दी, तो दोबारा क्यों बनवा रहे हो? क्या क्या जरूरत है? ऑलराइट खादर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया परेशान होने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए सर, थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह बात होती रहेगी, बेफिक्र रहिए और अल्लाह ताला आपको और हम सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज। तो भाई अब इसी के साथ मुझे लगता है कि मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा, आप लोगों की मुआज़रत, और यहाँ पर कुछ मैसेजेस और उसके बाद हम लेंगे विदाई आज के लिए, क्योंकि अब से थोड़ी सी देर में आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन विद अवल विद आर न्यूज टीम। और यहाँ पर यार दो वॉइस नोट हैं तो मैं चला तो नहीं पाऊंगा, मैं बता देता हूँ कि भेजे कितने। एक तो शेख इरफान है, इरफान भाई माजरत क्योंकि मैं वॉइस नोट नहीं चला सकता, हमें इजाजत नहीं है, हम मैसेज पढ़ के जरूर शेयर कर सकते हैं। और एक यहाँ पर है फिरोज आलम साहब, इन्होंने भी वॉइस नोट भेजा। बहरहाल तो फिलहाल आज के लिए आपसे ले लेता हूं इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला कल वीकेंड है भाई, साथ में मिलके मनाएंगे और खूब ज्यादा तफरी करेंगे। और फिलहाल जाते जाते यही कहूंगा कि किसी शर्त पर तेरे ख्याल से नहीं जाऊंगा, मैं किसी हाल अपने मकान से नहीं जाऊंगा, और जरा ध्यान से मेरे जायके का चुनाव कर, मुझे अगर चख लिया तो जबान से नहीं जाऊंगा। फिलहाल आपकी मॉर्निंग को और भी ज्यादा रंगीन बनाने के लिए छोड़ा जा रहा हूँ आपको सोनू निगम और विशाल डाडलानी के साथ। एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और एक बहुत ज्यादा जरूरी बात जो किसी ने नहीं भूलनी है, देखते और सुनते रहना है FM 107 दिल से देसी।

0: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
1: गल्ला ते तू लड़दा है।

0: मैचों की टी20 क्रिकेट सीरीज के चौथे मैच में आज मेजबान इंडिया का सामना वेस्ट इंडीज से होगा। सीरीज में इंडिया 2-1 से आगे है। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में जितना ही आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समत फरमाई।
1: FM 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद फुरकान शाहिद।
2: साहिब सुमो अमीर ने मजलिस शूरा के 55वें सालाना इजलास का इफ्तिताह करते हुए साहिब सुमो अमीर वालिद रहिमुल्ला की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और गैर मामूली हालात के बावजूद रियासती इदारों की मजबूती और कौमी इत्तेहाद और एकजहती को सराहा। वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा ने बरादर मुल्क सऊदी अरब और कुवैत के वज़राए खारजा से टेलीफोन पर अपनी गुफ्तगू में खित्ते में कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के क़याम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत का यादा किया। वज़ीर मम्लकत बराए उमूर खारजा ने वारसा सिक्योरिटी फोरम में शिरकत की जिसमें मशरक़ वस्ती की सूरत हाल, क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात, सालिसी की कोशिशों और खलीजी ममालिक को यूरोप के दरमियान तआवुन पर तबादला ख्याल किया गया। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में दो मिज़ाइलों को फिज़ा में रोकने के बाद उनके टुकड़े गिरने से 4 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि जहरान में आरामको की एक इंतज़ामी इमारत में मिज़ाइल का निशाना बनने के नतीजे में आग भड़क उठी। इसी के साथ साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडियो से तकनीकी मुआविन नूर, सोशल मीडिया से युसरा, न्यूज़ रूम से मोहम्मद अमीन और मुझे फरकान शाहिद को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
3: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, प्रोग्राम आज की दुआ में हम आज उस दुआ का जिक्र करेंगे जिसका जिक्र सूरतुल हश्र में आया है। ये दुआ हमें ईमान वालों के लिए दिल में मोहब्बत और खैरख्वाही पैदा करने का दर्स देती है। रब्बना गफिर लना व लि इखवानिना अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान ولا تجعل في قلوبنا

पाकिस्तान क्रिकेट के बुनियाद रखने वाले पहले टेस्ट कप्तान और वन ऑफ द लीडिंग क्रिकेटर ड्यूरिंग द 1950s अब्दुल हफीज करदार। या दोस्तों, आज हम बात करेंगे अब्दुल हफीज करदार के बारे में। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। अब्दुल हफीज करदार साहब का नाम पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक टीम की क्यादत नहीं की बल्कि एक नए मुल्क को क्रिकेट की दुनिया में पहचान दिलाने में बुनियादी किरदार अदा किया। ऑल इन ऑल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान डेवलप्ड एज अ क्रिकेटिंग नेशन अंडर हिज कैप्टनसी। अब्दुल हफीज करदार की पैदाइश 17 जनवरी 1925 को लाहौर में हुआ। 1947 में पाकिस्तान के कायम के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि नए मुल्क की क्रिकेट टीम को एक मुस्तहकाम आइडेंटिटी दी जाए। ना कोई पुरानी टेस्ट हिस्ट्री थी, ना इंटरनेशनल क्रिकेट का लंबा तजुर्बा। ऐसे वक्त में अब्दुल हफीज करदार साहब सामने आए। उनमें लीडरशिप की सलाहियत, खुद एतमादी और मुश्किल हालात में फैसला करने का हौसला मौजूद था। दैट वॉज सम काइंड ऑफ एन इनबॉर्न टैलेंट, आई वुड राइट टू से ओवर हियर। एंड इसी वजह से शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त समझा कि इनको ही कप्तान बना देते हैं। पाकिस्तान ने 1952 में इंडिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला और अब्दुल हफीज करदार को टीम का पहला टेस्ट

देकर अपनी पहली टेस्ट विक्ट्री हासिल की, बहुत बड़ी बात है। फजल महमूद, आपने अगर थोड़ा सा क्रिकेट हिस्ट्री फॉलो करते हैं तो आप थोड़ा सा उनको भी जानिएगा कि फजल महमूद किस तरह के बॉलर थे एंड अब्दुल हफीज करदार किस तरह उनमें बिलीव करते थे, उनकी बॉलिंग पे बिलीव करते थे। एंड फजल महमूद वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर्स ड्यूरिंग दैट एरा, जिन्होंने पाकिस्तान को कई सक्सेस दिलाने में मदद की। ये कामयाबी इसलिए भी खास थी क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल नया था। दे वर द आउट से की रूकी टीम। जहां इंडियन टीम 1936 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, वहीं 1952 में पाकिस्तान को अपना टेस्ट डेब्यू करना पड़ा। आई मीन 16 साल के बाद। सो तजुर्बा अगर कहें तो तजुर्बा वॉज नॉट देयर, लेकिन इनके पास इस तरह के खिलाड़ी थे जो नो दे न्यू दे हैड दैट एक्सपीरियंस, दे प्लेड क्रिकेट इन एन अनडिवाइडेड कंट्री में। सो फजल महमूद अगर है तो अब्दुल हफीज करदार साहब थे, तो इनके पास सलाहियत, इनके पास तजुर्बा, एवरीथिंग वाज देयर। ओनली थिंग दैट वाज लैकिंग इन द टीम वाज एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, टेस्ट क्रिकेट एक्सपीरियंस, वो भी मिल गया था 1952 में अगेंस्ट इंडिया। और इंग्लैंड को हराने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उनके कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने ये बता दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट में शिरकत करने नहीं आया बल्कि मुकाबला करने आया। इस कामयाबी ने मुल्क में क्रिकेट के जुनून को मजीद मजबूत किया और खिलाड़ियों के अंदर भी ये यकीन पैदा किया कि वो दुनिया की बेहतरीन टीमों का मुकाबला कर सकते हैं। दैट इज सो एसेंशियल कि कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट, दैट कॉन्फिडेंस टेक्स यू टू द मून, वो एक कहावत है। तो क्रिकेट में भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो अब्दुल हफीज करदार और फजल महमूद और उस जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह सपोर्ट किया कि आज पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जब हम देखते हैं, बात करते हैं, वी फील दैट हाँ इस इन सब खिलाड़ियों की वजह से तो पाकिस्तान क्रिकेट के फॉर्मेटिव ईयर्स में जो बूस्ट मिला, जो कॉन्फिडेंस उन्हें हासिल, सो दैट रियली गेन्ड फॉर पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन। अब्दुल हफीज करदार खुद भी एक जबरदस्त ऑलराउंड क्रिकेटर थे, वो लेफ्ट आर्म बॉलर और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और टीम के लिए बैट और बॉल दोनों से अहम किरदार अदा करते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कुव्वत उनकी लीडरशिप थी। वो खिलाड़ियों में डिसिप्लिन, यूनिटी और कॉन्फिडेंस पैदा करने पर जोर देते थे, एंड दैट इज सो एसेंशियल। आई मीन एज अ कप्तान, जैसे बाद में बहुत सारे ऐसे कप्तान आए इन वर्ल्ड क्रिकेट में, सो उनका काम ही होता था कि टीम में कॉन्फिडेंस डालो, टीम के अंदर में मॉरल बूस्ट करो। तो अब्दुल हफीज करदार के साथ ये एक बात, एक खूबी थी कि वो अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंटली जो जिसको कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम जो लेक्चर्स हैं, ड्रेसिंग रूम में जो पेप टॉक्स हैं, वो बहुत बखूबी कर सकते थे। और उनके कप्तानी का एक खास पहलू ये था कि वो खिलाड़ियों को सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए खेलने का जज्बा देते थे। कंट्री प्राइड कम्स टू योर फर्स्ट देन योर पर्सनल अचीवमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। उनके लिए क्रिकेट एक खेल से कहीं बढ़कर था, ये नए पाकिस्तान की पहचान का एक जरिया था। 1958 तक अब्दुल हफीज करदार ने पाकिस्तान की टेस्ट टीम की क्यादत की और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियाद मजबूत करने में जो किरदार अदा किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी अब्दुल हफीज करदार ने पाकिस्तान क्रिकेट से अपना रिश्ता ख़त्म नहीं किया। उन्होंने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी जिम्मेदारियां संभाली और सेलेक्टर्स और मेंटोर के तौर पर अपना तजुर्बा अगली जनरेशन तक पहुंचाया। यहां पर मैं बताऊं कि जावेद मियांदाद के डेब्यू जो हुआ था फॉर पाकिस्तान इन 1976, उससे पहले जावेद मियांदाद को इन्होंने नोट किया था इन वन ऑफ द मैचेस इन कायदे आजम ट्रॉफी। ये आपके लिए एक एनेक्डोट है, मैं आप लोगों को बता दूं। So, जावेद मियांदाद was basically a find of Abdul Hafiz Kardar in the 1970s early की बात है। So, overall अगर देखा जाए तो Abdul Hafiz Kardar सिर्फ पाकिस्तान के पहले टेस्ट कप्तान नहीं थे, वो उस टीम के रहनुमा थे जिसने दुनिया को बताया कि एक नया मुल्क भी क्रिकेट के नक्शे पर अपनी जगह बना सकता। उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि बुनियाद मजबूत हो तो कामयाबी की इमारत खुद बुलंद होती जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट की आज की पहचान के पीछे जिन लोगों की मेहनत और विजन शामिल है, अब्दुल हफीज करदार उनमें सबसे नुमाया नाम है। करदार का मिशन एक दिन, एक मैच या एक सीरीज तक महदूद नहीं था दोस्तों।

उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को एक सोच दी, एक पहचान दी और सबसे बढ़कर जीतने का यकीन दिलाया। और शायद इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी जब भी लिखी जाएगी उसके पहले पेज पर अब्दुल हफीज कारदार का नाम जरूर लिखा जाएगा। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और जबरदस्त स्पोर्टिंग कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं दुहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट. आज के अपडेट में मैं मेडिसिन की दुनिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया को साथ में मिला के बात करने वाला हूं बिकॉज पीपल आर टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली. रिसेंटली जब एप्पल का लॉन्च हुआ था, एप्पल का 18 आया और मार्केट में खलबली मची, लेकिन उसमें एक और चीज थी जिस पे बहुत काम किया गया और वो थी एप्पल की वॉच. उसमें कहा गया कि भाई अब हम जो हैं आपको हार्ट रेट इतना बढ़िया मॉनिटर करके देंगे कि ऑलमोस्ट एक्यूरेट लगेगा आपको. रिमेंबर दे सेइंग ऑलमोस्ट एक्यूरेट लगेगा, बट ठीक है, आई गिव इट टू देम क्योंकि अभी लोग वॉचेस खरीद रहे हैं फॉर मेजरिंग हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग. दे वांट टू हैव समथिंग जो कि उन्हें मेडिकली थोड़ा सा एक्यूरेट रख सके, अपार्ट फ्रॉम द वर्कआउट सिग्नल्स जो उन्हें पता लगता है कि भाई इतना भागा, इतना दौड़ा, इतनी साइकिलिंग करी या इतनी कैलोरीज बर्न करी, वो तो है ही. लेकिन मार्केट में एक और चीज जो मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज्यादा यूज में आने वाली आने वाले वक्त में, बट आ चुकी है फॉर्चुनेटली, वो है स्मार्ट रिंग्स. इनका बूम आया मार्केट में. आपने देखा होगा ऑरोस रिंग हेल्थ एरा, वो भी शुरू हो चुका है. स्मार्ट रिंग्स जो है स्क्रीन फ्री है, एक ऑल्टरनेट है, थोड़ा सा वॉच के मुकाबले सस्ती भी पड़ती है और ट्रेडिशनल वॉचेस को कहीं ना कहीं रिप्लेस करती है. आई एम नॉट अगेंस्ट स्मार्ट वॉचेस, पर अगर स्मार्ट वॉचेस सिर्फ आप इसलिए ले रहे हैं कि मुझे अपना वर्कआउट रेजिम को फॉलो करना है, तो आई थिंक रिंग्स आर आल्सो अ बेटर ऑप्शन. ऑरा और सैमसंग दोनों ने इस स्पेस में अपनी एंट्री मारी है. टाइटेनियम वेरिएबल्स लेकर आए हैं वो, जिसमें ऑफ कोर्स आपको अपने फोन से उसे ब्लूटूथ वाईफाई के जरिए कनेक्ट करना होता है और आपको पूरा का पूरा लिंक मिलता है जिसमें आपको रिंग सारी अपडेट देती रहती है और काफी लाइट वेट है. रिस्ट बैंड हैं, रिंग्स हैं जो हर चीज की अपडेट आपको देती हैं. इसमें मल्टी वेवलेंथ ऑप्टिकल पीपीजी सेंसर्स लगाए गए हैं जो आपको स्किन टेम्परेचर्स बताते हैं, उसके मॉड्यूल्स हैं, 3D एक्सेलेरोमीटर्स हैं और ये जो स्मार्ट वॉचेस स्मार्ट रिंग्स ट्रेडिशन है वो बढ़ता चला जा रहा है. ये कंटिन्यूसली आपके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV जिसे मेडिकल टर्म में कहते हैं वो ट्रैक कर रही हैं, जो स्मार्ट वॉचेस भी कर रहे हैं. स्लीप स्टेजिंग आपको मिल रही है, आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी है, बॉडी टेम्परेचर कितना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है. तो आई डोंट नो, क्या आप स्मार्ट वॉच सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि मुझे ये सब मिलेगा, तब तो भाई आपको रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए. या फिर आप स्मार्ट वॉच इसलिए ले रहे हैं कि भाई वो बढ़िया दिखता है भाई, एकदम टच स्क्रीन मजा आ जाते हैं, तो बात दूसरी है. यू हैव टू डिसाइड एंड फिर आपको ये भी देखना है कि आप कौन सी स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं. अगर आप कहीं भागम दौड़ी का काम नहीं कर रहे, देखो मैं कड़वा सच बोलता हूं, आप कहीं भाग भाग नहीं रहे, आप उसे कहीं वर्कआउट के लिए नहीं यूज कर रहे हैं और आप सिर्फ स्मार्ट वॉच भी ले रहे हैं वो भी महंगी महंगी, तो फायदा कुछ नहीं है, है ना. यू कैन रिप्लेस इट बाय अ रिंग सिंपली, अगर आपको लिटरल वर्कआउट वगैरह सब कुछ ट्रैक करना है, क्योंकि एनी डे स्मार्ट वॉच से ज्यादा प्रिसाइज रिंग्स ट्रैक करके देंगी आपको. और अगर आपको स्मार्ट वॉच चाहिए तो बहुत सारी स्मार्ट वॉच बजट में आती है जिसमें कि नथिंग की जो स्मार्ट वॉच है बेहतरीन है भाई, बेहतरीन. वो आपका सारा ट्रैकिंग व्रैकिंग का काम भी करती है और आपके लिए बजट फ्रेंडली भी है. तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो महंगी खरीदे ही मत, अरे बुरी बात है, पर जरा आपको यूसेज समझने की जरूरत है. जिस तरीके से हम फोन के केसेस में बात करते हैं कि भाई तुम्हारा फर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, आप फोन क्यों यूज करते हैं, कैमरा चाहिए आपको, बैटरी चाहिए आपको, चाहिए क्या, स्क्रीन चाहिए क्या, चाहिए गेमिंग कर रही है, उस हिसाब से यू सेलेक्ट योर फोन. दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि स्मार्ट फोन स्मार्ट वॉच पे आपको कितना खर्चा करना है, आपका यूसेज उसमें है क्या, ये आपको समझने की जरूरत है. एंड ये बायोमेट्रिक ट्रैकिंग जो है जो आपके फिंगर पे आ चुके, दिस इज फार बेटर अगर आपको सोलली आपको वर्कआउट के लिए ही इसको यूज करना है. एंड ये जो आर्टेरियल ब्लड फ्लो सिग्नल्स हैं ये स्ट्रांग होते हैं जब आप रिस्ट बैंड पे पहनते हैं. रिस्ट बैंड्स में की मार्केट में भी सैमसंग आ चुका है और ये डिवाइसेस जो हैं ये आपको ट्रैक भी करते हैं, डिस्टर्ब भी नहीं करते और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं क्योंकि स्क्रीन नहीं है. तो मैंने आपको लिटरली एक आइडिया दे दिया, आप अगर बिल्कुल वर्कआउट वाले हैं एंड यू वेरी सीरियस अबाउट इट, देन रादर देन गोइंग फॉर अ वेरी हेफ्टी अमाउंट, पेइंग अ वेरी हेफ्टी अमाउंट फॉर अ स्मार्ट वॉच, आप एक रिंग या रिस्ट बैंड के लिए जा सकते हैं बिकॉज आपको ज्यादा प्रिसाइज डिटेल मिलेगी. आपके ऊपर है, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे तो टेक अपडेट बताते रहिएगा और सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar. Stay tuned for more.
0: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट. अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और आजकल हम बात कर रहे हैं नए जमाने के नए स्कैम के बारे में. और हर रोज एक नए स्कैम के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं और आपको कोशिश करता हूं कि जो नए स्कैम हैं जिनसे आप बच सकते हैं. कई बार आपको पता नहीं होता है, आपको लगता है कि आप किसी जेन्युइन शख्स से बात कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी काम को लेकर, है ना, लेकिन असल में वो स्कैम हो सकता है. एक और स्कैम जो आजकल बहुत ही ज्यादा चलन में है वो है OTT या मीडिया स्कैम. आजकल के दौर में एंटरटेनमेंट के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि OTT के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है. हर कोई अपने मोबाइल में या फिर टीवी पे लेटेस्ट एपिसोड और पॉपुलर मूवीज देखना चाहता है, लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं. इसी चीज का फायदा उठाकर स्कैमर्स एक नया स्कैम चलाते हैं जिसे OTT और मीडिया स्कैम कहा जाता है. वो सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीग्राम चैनल्स पर या बल्क SMS के जरिए लोगों को धोखा देने के लिए बड़े क्लेम्स और ऑफर्स शेयर करते हैं. इनके एड्स में लिखा होता है कि आपको सभी पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स और TV एपिसोड का फुल प्रीमियम एक्सेस मिल जाएगा और फला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा जिसकी कीमत सिर्फ 100 कतरी रियाल पर मंथ होगी. अब आप सोचते हैं यार कि 4 से 5 ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो सिर्फ 100 कतरी रियाल पर मंथ में मिल जाए, सबको अलग अलग लेंगे तो यार 300 रियाल, 400 रियाल, 500 रियाल लग जाएंगे, लेकिन अगर 100 रियाल में पर मंथ हो रहा है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. ये कीमत रेगुलर प्राइस के मुकाबले आपको बहुत ही कम लगती, इसलिए लोग सोचते हैं और आप भी सोचते हैं कि यार इतने कम पैसे में अगर सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं तो डील बुरी थोड़ी है. जब कोई यूजर उनसे इस ऑफर के लिए कॉन्टेक्ट करता है तो स्कैमर उन्हें कहता है कि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है और उन्हें सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करने के लिए फी अपफ्रंट पे करनी होगी. पेमेंट के लिए वो अक्सर अनवेरिफाइड लिंक्स या डायरेक्ट कार्ड डिटेल्स मांगते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक चीज है. कभी भी आपसे कोई कार्ड डिटेल्स मांगे तो मना कर दे. एक बार पेमेंट हो जाती है, स्कैमर्स दो तरह के फ्रॉड करते हैं. पहला तरीका ये होता है कि वो यूजर को बिल्कुल फेक लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आईडी और पासवर्ड सेट कर देते हैं. जब यूजर उन्हें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो इनवैलिड पासवर्ड या अकाउंट सस्पेंडेड का एरर आता है उन्हें. दूसरा तरीका ये होता है कि पेमेंट मिलते ही स्कैमर कस्टमर से अपना सारा कम्युनिकेशन बिल्कुल कट ऑफ कर देता है. अगर आपने पोस्ट देखा है तो वो पोस्ट नहीं दिख रही है. फिर आपने जिसे जिस नंबर से कांटेक्ट किया वो नंबर नहीं दिख रहा है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है. जहां पर आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं उसे आप ट्रैक नहीं कर सकते. मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर देता है, कॉल उठाता नहीं है. और फिर इन सब के बाद आपको एहसास होता है कि वो 100 कतरी रियाल का स्कैम हो चुका आपके साथ. ये स्कैम आपके लिए हो सकता है छोटा हो, क्योंकि 100 कतरी रियाल की ही तो बात है, लेकिन ये स्कैमर्स ऐसे हजारों लोग को ठगते हैं और ये हजारों लोगों के साथ 10,000, 20,000 और फिर लाखों रियाल का स्कैम हो जाता है. रियलिटी में उनके पैसे चोरी हो जाते हैं, लोगों के पैसे चोरी हो जाते हैं और उन्हें कोई भी मीडिया एक्सेस नहीं मिलता. लेकिन बचने के कुछ आसान तरीके हैं. इस तरह के स्कैम को सबसे पहले पकड़े कैसे? दोस्तों, कोई भी चीज अगर लीगल है तो वो आपको लीगली ही लेनी चाहिए. अगर कोई आपको लालच दे रहा है कि फला फला एप्लीकेशन है, फला फला OTT प्लेटफॉर्म है, एक साथ मैंने फला एप्लीकेशन में डाल दिया है, बस आप उस एप्लीकेशन को खरीद लिए और आपको 100 कतरी रियाल में फलाना मिल जाएगा, या फिर ये TV खरीद लीजिए, आप इस TV में एप्लीकेशन का TV का नाम भी होता है, उसमें आपको दुनिया भर के एपिसोड्स मिल जाएंगे, दुनिया भर के चैनल्स मिल जाएंगे, दुनिया भर के आपको अलग अलग तरह के मूवीज शोज मिल जाएंगे, तो ये एक फेक चीज है और ये इलीगल भी है. दूसरा तरीका है बचने का, जो सबसे आसान है, कि किसी भी तरह की डिटेल्स अपने कार्ड की किसी से शेयर ना करें. पेमेंट आपको हमेशा 1 या 2 महीने बाद करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते जब हम बात कर रहे होंगे किसी भी तरह के स्कैम के बारे में तो आमतौर पे, जैसे कल हमने बात करी थी टिफिन के बारे में, तो टिफिन का जो स्कैम है वो इसलिए हो जाता है लोगों के पास क्योंकि वो एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, लोग एडवांस में पेमेंट करते हैं. बट एडवांस में नहीं, एडवांस में खाना आना चाहिए. ऐसे ही एडवांस में OTT प्लेटफॉर्म आपके पास आना चाहिए, उसके बाद अगर वो चल रहा है रेगुलर बेसिस पे तो भी अगर आपको पेमेंट करनी भी है ना, 1 महीना यूज कर लिया आपने OTT, फिर अगर आपको पेमेंट करनी है
4: तो आपको हमेशा पेमेंट करनी है थ्रू लीगल मींस और साथ ही साथ थ्रू ऐसे वेबसाइट के या थ्रू ऐसे एप्लीकेशन के जो वेरीफाइड हो कतर में, ऐसी जगह पे आप पेमेंट करें जिसे आप ट्रैक कर सके। तो दोस्तों ये था नए जमाने का नए स्कैम जो आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
5: स्कैम अलर्ट। हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
6: Game Changer Season 2
3: Qatar ka pehla Desi radio station FM 107 Dil se Desi
7: Smart Money
8: Hello and welcome to a segment called Smart Money. Main hu aapki dost aapki host Nazia. आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एसेट एलोकेशन पर। देखिए फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, करते वक्त सिर्फ ये सोचते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट देती है। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर सबसे पहले ये सवाल पूछता है कि अपना पैसा किस किस जगह और कितने परसेंटेज में लगाना है। इसी प्लानिंग को एसेट एलोकेशन कहा जाता है। यानी और सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ एसेट क्लासेस में डिवाइड करना ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न बेहतर हो सके। यानी सारा पैसा एक ही जगह लगाने की बजाय उसे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में स्प्रेड करना। देखिए एसेट एलोकेशन में आमतौर पर तीन मेजर एसेट क्लासेस होती हैं। पहला होता है स्टॉक्स, दूसरा होता है बॉन्ड्स, तीसरा है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। हर एसेट क्लास का अपना रिस्क और रिटर्न होता है। इन्वेस्टर अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक इनका मिक्स तैयार करते हैं। स्टॉक कंपनी के ओनरशिप का एक हिस्सा होता है। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अगर कंपनी ग्रो करे तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ सकती है, और अगर कंपनी लॉस में जाए तो वो भी आपके हिस्से आता है। अगर कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे तो आपको डिविडेंड्स भी मिल सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स असल में लोन होता है। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप गवर्नमेंट या फिर कंपनी को पैसा उधार देते हैं, बदले में आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है और मैच्योरिटी के वक्त असल पैसा वापस मिल जाता है। अब बात करते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पर। कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स है या वो इन्वेस्टमेंट्स होती है जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे सेविंग अकाउंट्स, मनी मार्केट फंड्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट। ये सबसे सेफ एसेट क्लास मानी जाती है, लेकिन इनका रिटर्न भी आमतौर पर कम होता है। अब जानेंगे कि एसेट एलोकेशन जरूरी क्यों है। देखिए अगर आप सारा पैसा स्टॉक में लगा दें और मार्केट क्रैश हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर सारा पैसा कैश में रखें तो इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू कम कर सकती है। अगर सारा पैसा बॉन्ड्स में रखें तो ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स बैलेंस क्रिएट करते हैं। इसी बैलेंस को एसेट एलोकेशन कहते हैं। एक यंग इन्वेस्टर के पास रिकवरी के लिए ज्यादा टाइम होता है, इसीलिए वो स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है।

वहीं पर एक रिटायर्ड इन्वेस्टर, उसके पास कम रिस्क लेने का चांस है, इसीलिए बॉन्ड्स और कैश को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। वहीं पर कुछ लोग कुछ गलतियां भी करते हैं। बहुत से लोग ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, दूसरों की बात सुनकर इन्वेस्ट कर देते हैं, सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं और ये काफी डेंजरस अप्रोच हो सकती है। जी हाँ, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन एसेट्स एलोकेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना काफी नहीं है, उस पैसे की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है। इसीलिए दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स रिस्क मैनेज करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं और ये स्ट्रेटेजी उन्हें मार्केट के खराब होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। तो बस जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि एसेट एलोकेशन इन्वेस्टिंग का एक स्टीयरिंग व्हील है। सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना कामयाबी नहीं है, बल्कि पैसों को मुख्तलिफ एसेट क्लासेस में समझदारी से डिवाइड करना असल विजडम है। जब आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश का सही बैलेंस बनाते हैं तो आप सिर्फ रिटर्न्स नहीं कमाते बल्कि अपने फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। याद रखिए, ग्रेट इन्वेस्टर्स मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, वो अपने एसेट एलोकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से दिल।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
2: रहमतुल्लाह वबरकातुहू। साथियों इस वक्त FM 107 की घड़ी बज रही है 10:02 और महावेश अपना गला साफ करते हुए और आवाज आई आपको।
3: अस्सलाम वालेकुम।
2: सफा और महावेश हाजिर हो गए।
3: कैसे हैं?
2: मैं देखिए आज है वेडनेसडे तो कैसा ही हो रहा है?
3: गुम तो नहीं गया ना? सही है ना?
2: इस दफा
3: मौजूद है ना?
2: अरे इस दफा हफ्ता सही चला है।
3: सही चला है।
2: अरे भाई वेदर देखा है? वेदर
3: ये क्या हो गया है इसको? कल हम खुश हो रहे थे आज फिर हो गया। अच्छा आज सुबह में ना बादल थे।
2: अलखोर में मैंने पोस्ट देखी थी कि अलखोर की साइड पर बारिश हुई है कल।
3: मैंने देखा है कल सलवा रोड पे बारिश हुई है। मेरा घर भी उसी पे आता है। ये मेरे घर पे क्यों नहीं हुई?
2: आपका घर छोड़कर हुई है?
3: ये क्या मसला क्या है? ये हमसे क्यों मसला है?
2: तो भाई पहले तो
3: आज बड़ा अजीब सा वेदर है, मतलब फिर दोबारा से, लेकिन ये कह सकते हैं ह्यूमिडिटी कुछ
2: ऊपर पहुंच गई, ऊपर 50-60 से भी ऊपर है ह्यूमिडिटी,
3: लेकिन हो सकता है बारिश हो जाए। अब वहां जब कराची में ऐसा मौसम होता है तो लोग बड़े मतलब तैयार होकर बढ़ जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं होता ऐसा?
2: उम्मीद तो दुनिया का है, उम्मीद पे एक्सपेक्टेशंस।
3: बारिश चाहिए मुझे
2: इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए। तो भाई आप सुन रहे हैं शो जिसका नाम है यू मैटर और हमारा और आपका साथ रहेगा एक घंटे तक का। आप चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।
3: मैं सोच रही हूँ जो टॉपिक है हमारी अभी की गुफ्तगू से बहुत रिलेट करता है।
2: अरे हाँ
3: है ना?
2: अरे वाह क्या तो बात कर दी।
3: क्या बात कर दी।

0: बात कर
1: दी सफा ने नहीं की ये बात मैंने बात की
0: मौसम के बारे में सफा ने मतलब एक्सपेक्टेशन के बारे में
1: मौसम ये क्या बात हुई मतलब क्रेडिट हर चीज पर खुद लेके जा रहे
0: हैं देखिए नंबर आप हमें कॉल कर सकते हैं अल्लाह
1: माफ करे कैसे लोग हैं यार दुनिया में मतलब किसी को क्रेडिट देने को तैयार ही नहीं
2: देखो एक क्रेडिट तक नहीं दिल लेने दे रही औरत
1: हद होती है मतलब बात मैं कर रही हूँ कि
0: औरत ही औरत की दुश्मन अरे सीरीज बन सकती है इसके ऊपर औरत की दुश्मन
1: हद हो गई भाई हद हो गई चलो खैर नंबर बताओ
0: माविश अगर हमारे ऊपर कोई ड्रामा बनता तो किसका नाम क्या होता
1: अच्छा तो ना होता
0: अच्छा भाई नंबर कॉल करने के लिए है 4434377 द नंबर इज 4434377 और चाहें तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं
1: 6221077 पे आप कर सकते हैं हमें मैसेज और जो कि हम पढ़ेंगे लेकिन है कहाँ मोबाइल
0: देखें ये मेरे आगे पीछे घूमता रहता है
1: दीजिए आप छुपा के रखती हैं छुपा के रखती हैं तो अच्छा जी तो फिर हम आ जाते हैं टॉपिक की तरफ
0: देखिए भाई कभी कभी ना आपने सोचा है आपको भी सोच आती है कि हमारी जिंदगी में जो स्ट्रेस होता है ना वो क्या क्या वाकई में वो हालात और सिचुएशंस की वजह से होता है या आपको लगता है कि हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से होता है अक्सर होता है ना हम अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं भाई जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हर काम परफेक्ट हो हम चाहते हैं कि भाई लोग हमारी बात समझें हमारी वाह वाह हो सब हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चलें
1: हम चाहते हैं कि हर वक्त बारिश होती रहे
0: हाँ लेकिन जब चीज़ें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती तो क्या होता है
1: स्ट्रेस होता है लोगों को या नहीं होता
0: स्ट्रेस हो जाता है
1: स्ट्रेस ये जानना पड़ेगा
0: तो लोग परेशान हो जाते हैं भाई देखिए मेरे जैसे रहे ना कोई एक्सपेक्ट ना किसी से कोई एक्सपेक्टेशन खुद से नहीं रखी तो दूसरों से क्या रखेंगे तो भाई मिसाल के तौर पर अगर आपको एक मिसाल दी जाए ना तो होता है ना हमारे ऑफिस में होता है अक्सर होगा तो ऑफिस वाले लोग हैं कि भाई बहुत मेहनत करते हैं क्या उम्मीद करते हैं बॉस जो है ना वो चमचमाते हुए सितारे देगा हमारे शोल्डर पर
1: हाँ वो नहीं मिलते
0: ना इंक्रीमेंट होता है बॉस अगर सुन रही हैं तो ना इंक्रीमेंट मेहनत कर रहे हैं हम लोग मेहनत कर रहे हैं हमारी बॉस बहुत अच्छी है मिलेगा सबको मिलेगा लेकिन क्या होता है फिर उससे उसकी वजह से हम डबल ट्रिपल मेहनत करते हैं एक एक हकीकत बात है हमें जो है ना चाहिए होती है प्रमोशन जो कि नहीं मिलती फिर हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं रोना धोना होता है मेरी तरह 18 घंटे काम करके भी कुछ नहीं मिल रहा लेकिन हमारी बॉस अच्छी है तो हमें तो मिलेगा माविश क्या कहते
1: सही से
0: इंशाल्लाह
1: चलो मैं
0: आपके साथ क्या मामला चल रहा है
1: मस्का नहीं लगाओ ज़्यादा अब कॉल ले लेते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम मैडम
1: जी अली सा क्या हाल चाल है
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैडम मेरी शिकायत आपसे
1: जी जी बोले
0: इनसे शिकायत ही होनी चाहिए कोई काम पूरा नहीं करते
3: 10 कॉल नहीं है 10 एक भी नहीं उठाया
1: ओ नहीं हमें बिल्कुल बहुत कॉल्स आ रही थी अच्छा किया था आपने सबसे पहले मिला दी
0: नहीं नहीं मैं आपको बता रही हूँ जानबूझ के आपका नंबर देख कर जानबूझ के नहीं उठाई थी इन्होंने कहते कहती थी अली रजा बहुत कॉल करता है
1: अल्लाह माफ करे अब आपको तो पता ही ना अली आप तो अंदाजा लगा सकते हैं ना तो इग्नोर करें इग्नोर जी अली क्या कहेंगे
0: अच्छा भाई हमारा टॉपिक ये चल रहा है मतलब ये कि हमारी बातचीत इस बारे में शुरू होने वाली है आपसे कि जरा ये बताएं हाउ मच ऑफ आवर स्ट्रेस कम्स फ्रॉम आवर ओन एक्सपेक्टेशंस हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ये जो सारा लोड आ रहा है स्ट्रेस का ये कहाँ से आ रहा है हालात से आ रहा है या हमारी एक्सपेक्टेशन से आ रहा है
3: एक्सपेक्टेशन से आ रहा है मैडम एक्सपेक्टेशन रखनी ही चाहिए इंसान को आपको पता ही आप जिंदगी में क्या होना है एक्सपेक्टेशन रख के क्या करोगे
1: सही बात है
3: मेरे मैंने जब मैं बहुत परेशान रहा तो मेरे अब्बू जो है ना बड़ी अच्छी बात कर जाते हैं और दिमाग में फंस जाती है ऐसी बात कर जाते हैं
1: सही
3: वो कहते हैं कि बेटा गो विद द फ्लो
1: सही
3: जैसा हो रहा है उन्हें दो चलते रहो साथ में अपना काम सीधा रखो और गो विद द फ्लो चलते रहो
1: सही
3: ना फिर एक्सपेक्टेशन होती है ना फिर बुरा लगता है ना फिर कोई उम्मीद रहती है फिर जब अच्छे से चीजें सही होने लगती है ना सब अच्छा लगने लगता है
1: सही सही बात है
0: आई एग्री विद यू मैं भी यही कहती हूँ गो विद द फ्लो हाँ आप ये ज़रूर जिंदगी में टारगेट्स और गोल्स ज़रूर रखें लेकिन आप इतनी ज़्यादा उससे वो क्या कहते हैं तवक्को ना रखें एक्सपेक्टेशन ना रखें कि नहीं हुआ तो भाई मैं पंखे से लटक जाऊँगा ऐसा ना हो
3: होता है मैडम होता है ये भी होता है जिंदगी में ऐसा भी वक्त होता है
0: नहीं इसी के अंदर तो इंसान की जो हम कहते हैं ना फेथ आपका ईमान जो होता है वो काम आता है क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन रखते हो अल्लाह ताला से और फिर जब आप अल्लाह ताला से एक्सपेक्टेशन रखते हो ना तो आपको आपकी मर्जी का दरवाज़ा ज़रूर बंद मिल रहा होता है लेकिन आपको थोड़े टाइम बाद उससे ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है
3: ठीक है
0: और जो

0: फेज वो सबर का, वो जो सबर का कहा जाता है ना, जिसने वो पेशेंस के साथ वो वक्त गुजार लिया, वो हो जाता है दुनिया में भी और आगे आगे के मामलात में भी कामयाब हो जाता है वो।
1: बिल्कुल,
0: जिसने सबर कर लिया उस वक्त में।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
2: मैं तो बहुत बेचैन बन रहा हूँ, मैं अब इतना मैं सबर वाला हो गया, मैं सोच भी नहीं सकता था मैं और सबर वाला और पॉसिबल।
0: अल्लाह ताला के तरीके होते हैं सिखाने के,
1: जिसको वो सिखाना चाहता है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही।
0: मैंने एक दफा ना एक हदीस पढ़ी थी, उसका कुछ ऐसा मफहूम था कि अगर तुम अपने अपने आप को देखना चाहते हो ना, तो ये देखो कि तुम्हारा कल जो है, नहीं तुम्हारा आज जो है वो तुम्हारे कल से बेहतर है। अगर तुम अपनी प्रोग्रेस नापना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान ईमान के साथ खासतौर पे मोमिन हो ना, तो वो अपने आप को जब देखे तो मुझे लगता है 99.9% तो लोग ऐसे होंगे जो कह सकते नहीं भाई मैं पहले से बेहतर इंसान हूँ, अब हार्डशिप के बाद मैं बेहतर हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आपको मिलेगा एक वाटर कूलर फ्री, जब मुझे मिल जाएगा वसूली हो जाएगी तो मैं आपको पहुंचा दूंगी।
1: तो ये है अली, अली चाहिए आपको
0: वाटर कूलर?
2: मैडम आप खुशी से दे यहाँ पर ले लो,
0: सही है, पहले मुझे तो मिले, पहले मुझे तो मिल जाए। अच्छा फिर जब हमारी वसूली होगी ना तो फिर हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है,
2: ठीक है मैडम,
1: चलें जी। अली रजा जबरदस्त, थैंक यू आपकी कॉल के लिए, और अच्छा लग रहा है मुझे कि आप रेगुलर आ रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, ये और अच्छा लग रहा है।
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: चलें जी इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है, और मैं कल आपका नंबर ना मैं जहन में रखती हूँ, कल उठा लूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, चले रही है, ओके अल्लाह हाफिज। रही तो हमारे साथ अली रजा थे। अच्छा कॉल करने के लिए जो हमारा नंबर है ना वो हम बता दें आपको कि कॉल आप हमें कर सकते हैं 4434377 पे, क्योंकि मुसलसल व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है।
0: अच्छा भाई आपको याद दिलाते चलें कि आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो बड़ा सिंपल सा है कि इंसान का जो ये सारा स्ट्रेस होता है ना, ये जो हम कह रहे हैं एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो भी कह रहे हैं, ये जो टेंशन होती है, टेंशन घर जो हम बने हुए ना, ट्यूबलाइट बने घूम रहे हैं, ये आपको क्या लगता है ये हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन से आता है, या ये कह लें कि लोग कहते हैं हाय मेरे साथ क्यों हुआ, सिचुएशन ही ऐसी है, मामलात ही ऐसे चल रहे हैं। अरे भाई मामलात को तुम जिस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, कभी उस बारे में सोचा है कि क्या ये
1: सिर्फ एक्सपेक्टेशन से भी का तो काम नहीं बनता ना, कि आप एक्सपेक्ट करके बैठे रहे हैं, और फिर वही जैसे हमने पहले बात की थी कि मेहनत भी तो जरूरी है ना चीजों को सही
0: डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए, गिरा है तो उसको उठा के खाना भी तो है ना, कि वो गिरा हुआ है तो मेरे मुंह तक क्यों नहीं पहुंच रहा।
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
1: जी
3: खैरियत है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र।
0: आसिफ भाई
3: जी?
0: हाँ जी आसिफ भाई
1: जी।
0: आसिफ भाई ये बात शुरू ऐसे ऐसे वाले मोमेंटम के साथ क्यों करते हैं, जैसे बड़े सीरियस मोड पर है?
1: सीरियस भी नहीं, सीरियस
0: किसी को पीट कर आए जैसे अभी अभी उस समय हूं मैं, अभी बस बात ना करो। आपकी आवाज की टोन बिल्कुल वैसी वाली होती है। नहीं इनकी आवाज की टोन बिल्कुल वैसी वाली थी। मैं जब सुबह सुबह उठती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कोई ना मुझे अपनी शक्ल दिखाए, ना कोई मुझसे बात करे।
1: ये मुझे ये बात है बात करने के लिए कॉल की है।
3: मैं चिल्ला के बात नहीं करता।
1: अब सफा सबको अपने जैसा समझ रही है ना,
0: चीखती चिल्लाती
3: तेज आवाज में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, आवाज उतनी जानी है सामने सामने वाले को समझ में उतना ही आएगा, तेज आवाज में बात करके फायदा क्या है।
1: हाँ सफा सीखो कुछ,
0: क्या तो
1: सही कह रहे हैं आसिफ भाई, अब मैं एग्री करती हूँ। अच्छा ये बताएं कि क्या आपको क्या लगता है ये स्ट्रेस हमारी जिंदगी में एक्सपेक्टेशंस की वजह से होता है?
3: बिल्कुल
0: कह रहे हैं।
3: कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जो हम लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं या जो है स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है उम्मीदों की वजह से। ठीक है, हमने किसी चीज की उम्मीद लगा के रखी हुई है कि यार फला बंदे से हमने ये बोला था वो ऐसा कर देगा, और उसके बाद लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे वो मना कर दे या कुछ पहले मना कर दे, तो हमें जो है स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, डिप्रेशन में जाने लगते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जी और कभी
1: पता क्या मुझे मुझे ये बात समझ में आई है आसिफ भाई, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, मुझे ये बात समझ में आई है बाय द टाइम कि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी बंदे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमें उससे उम्मीद होती है और हमें लगता है कि वो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि लास्ट मोमेंट पे वो नहीं उतरता, तो ये भी मुझे बाय द टाइम समझ में आई है बात। ये नहीं है कि उस बंदे का कोई कसूर होता है, बेसिकली अल्लाह ताला ने ये जो एक होता है ना कि हम तवक्को इंसान से कर बैठे हैं, हमें दिखाना होता है कि आपकी तवक्कात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ होनी चाहिए। वहाँ पे हो सकता है कि वो बंदा मदद भी करता, सब कुछ होता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो मदद नहीं करता हमारी, क्योंकि हमने तवक्को गलत, डायरेक्शन गलत थी हमारी।
3: बात तो सही है, लेकिन मेरा जो कहना है कि हम अगर लोगों की जगह अगर अपने रब से उम्मीद लगा के रखें वो ज्यादा बेहतर है, जो
0: जी,
3: हमारे हक
0: में exactly,
1: यही पॉइंट है।
3: ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बंदे से सिर्फ हम आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन होना वही है जो अल्लाह तबारक ताला
1: एग्जैक्टली ऐसा ही
3: है। तो उससे जो है इतना ज्यादा वक्त के साथ में चलते रहना चाहिए, अपनी अपना मेहनत करते रहना चाहिए लोगों को, ठीक है, और अच्छा इखलाक बना के रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जिससे हम उम्मीद नहीं रखते हैं कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता वो कर जाता है, और जिससे बहुत सारी उम्मीदें होती है वो नहीं करता, जिससे हमें मतलब एक जर्रा बराबर भी जो है हमें उम्मीद नहीं होती है कि ये करेगा कभी हमारे लिए, लेकिन कभी कभी वही है अल्लाह ताला उसको फरिश्ता बना के हमारी जिंदगी में भेज देता है।
1: ऐसे ही
3: तो यही है और क्या। वैसे आप लोग ड्रामा बनाने जा रहे थे
0: क्या? हाँ, नाम से बताएं हमारे पर क्या ड्रामा बनता
3: है। तूतू मैम है
1: तूतू मैम
0: ये अच्छा अरे ये अच्छा
1: तूतू मैम सही है।
0: हाँ अच्छा बनाएंगे
3: या फिर ये मुझसे बड़ा कौन
1: मुझसे बड़ा कौन
0: अरे भाई क्या नाम दिया है हमसा हो तो सामने आए अरे भाई ये अच्छा है। अच्छा ना नाइस नाइस
1: गुड गुड
0: आपकी तो शुरू करेंगे
1: हाँ, काफी काफी कुछ है।
3: हाँ आज सवेरे जो है हमारे भाई साहब ने जो है मोबाइल की दुकान लगा के रखी थी।
1: अच्छा
3: कल जो इंस्टीट्यूट खोल के रखा हुआ था
1: सही
3: सर्वर भाई ने
1: समझ गए।
3: कल कौन सी दुकान लगाते हैं
1: अब देखें आप वो क्या क्या निकालते हैं।
3: कल सवेरे रेस्टोरेंट भी खुल जाता है उसके बाद आफ्टरनून फिर 10 बजे जो है हमें फूलों की दुकान मिल जाती है।
0: कल जो है ना शटर डाउन होने का दिन होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कल थर्सडे है ना जितने शटर खोले हैं ना इन्होंने सब शटर बंद करेंगे ये फिर।
3: सारी दुकानें लगा देते हैं वो नल्ली बिरयानी और आज तो मोबाइल बेच रहे थे
1: क्या बात
0: अरे भाई
1: सही है सही जा रहे हैं सर्वर भाई। मेरा ख्याल में टेंशन लेना जरूरी है, लेना भी जरूरी है, अगर हम किसी चीज की टेंशन ही नहीं लेंगे तो उस पर फोकस कैसे करेंगे। हमें सोचना चाहिए कि ये काम कैसे होगा और कैसे हम कामयाब होंगे, बस टेंशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें मेहनत करने और सोल्यूशन ढूंढने पर मजबूर करे, ना कि हमें परेशान
0: ना, ना, ना, टेंशन टेंशन में और अपने आप को स्केड्यूल करने में प्रायोरिटी देने में चीज़ों को फ़र्क होता है। टेंशन आपका दिमाग याद रखें कि मल्टीपल फीलिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता एक साथ नहीं कर सकता
1: सही।
0: इट मेक्स यू कंफ्यूज्ड तो आपकी प्रायोरिटी
1: गलत इस्तेमाल किया बात बिल्कुल सही है लेकिन
0: स्ट्रेस जो है ना वो आपको अंदर से खा जाता है
1: ऐसे ही तो लफ्ज़ बदल लें कि हमारे पास मोटिवेशन होनी चाहिए। मोटिवेशन जो है वो अगर है जिंदगी में तो फिर तो सब कुछ चलता रहेगा। और अब सफा खांसते हुए जी हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम कैसे हो मैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: आप कैसे मुदस्सिर भाई
1: अल्लाह का शुक्र
4: खैरियत है मुदस्सिर बात कर रहा हूं।
0: जी जी कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं माविश ने जाया करे माविश मैं डांट नहीं खाती मुदस्सिर भाई की
4: जी?
0: मैंने कहा फिर डांटेंगे मुझे कहेंगे बात तो सुनो
4: डांटेंगे नहीं अभी मैं तुमसे एक बात पूछूंगा अभी मेरे साथ मैं जरा गया वो अमूर हॉट सी पे, मैंने वेटर को बोला कि मुझे एक मीडियम कड़क दे दो, तो वो तो मैं गाड़ी में रख दिया, उसने दे दिया तो मैं चला गया। अभी जरा रास्ते में मैंने उसको चेक किया, उसने ब्लैक कॉफी दिया है।
0: मेरे भाई मुदस्सिर भाई, ब्लैक कॉफी की मैं दीवानी हूँ और बता रही हूँ, जिसने एक दफा ब्लैक कॉफी पीना शुरू कर दी ना, उसको फिर वापसी का रास्ता जो है ना नहीं है। फिर उस एक दफ़ा अगर आपको एडिक्शन हो जाए ना ब्लैक कॉफी की, तो उससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं है, और वो लिवर भी बहुत साफ रखती है आपका।
4: मैं कॉफी पीने ही पीता हूं, जिसने तो फिर ब्लैक दिया है अभी तो।
0: भाई हर चीज़ का पहला दिन होता है, इस स्कूल का ब्लैक कॉफी के स्कूल का पहला दिन।
1: लेकिन आप पूछना क्या चाह रहे थे ये बताएं,
0: कह रहे हैं अब क्या करूं इसका।
1: अच्छा अब क्या करूं, कॉफी का क्या करूं?
4: क्या करना है
0: पता है, क्या करें कुछ नहीं करें, सामने से बकाला आ रहा होगा, फ्रेश दूध का छोटा वाला डब्बा उठाएं, इसके अंदर डाल लें, पी लें।
4: अरे ये नहीं करेगा उसको, तरफ से कोई मिलेगा उसको देगा।
1: मधुसर भाई जब मशवरा लेना ही नहीं था आपने सफा से, तो सफा के दिमाग पे इतना जोर क्यों डलवाया सुबह सुबह?
0: देखिए मेरा सर कल रात से दर्द कर रहा है, तभी
1: तुम्हें टास्क, तुम्हें लोग टास्क दे रहे हैं, प्रैक्टिस करो, कुछ तो रमा हो,
0: कुछ तो एक्सपेक्टेशन रखो जिंदगी से।
1: बिल्कुल ऐसा ये
0: अरे भाई लोगों को मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैं इतना स्ट्रेस लूंगी। आपको ये देखिए, मैंने तो आपको फौरन झटपट से सलूशन बता दिया, मैं स्ट्रेस पर्सनल थी, मैं कहती हूँ भाई पैसा दिया है तो वसूली तो करूंगी, अब चाहे ब्लैक आई हो, चाहे नीली आई हो, चाहे पीली आई हो,
1: पी लूंगी
0: मैं तो, पीऊंगी।
1: ये हालात है मुदस्सिर भाई।
0: हाँ अलखोर की तरफ, मुझे खुद जो है ना वो मुझे नहीं पता था, मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे नहीं पता था, बच्चों ने मुझे पोस्ट दिखाया था कि भाई ये देखो खोर की तरफ बारिश हो रही है।
1: मैंने भी पोस्ट ही देखी है और उस पर सब पूछ रहे थे कहाँ हुई है।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, तो फिर क्या कहेंगे टॉपिक पे?
0: मुदस्सिर भाई जरा ये बताएं कि जिंदगी में हमारे पास जो ये स्ट्रेस नाम की चीज होती है, जो परेशानी होती है, ये किस वजह से होती है? हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से होती है, हमारी अपनी तवक्कुआत की वजह से होती है, या ये जो है सिचुएशन की वजह से होती है, हालात की वजह से?
1: सही हालात की वजह से।
4: एक हमारा दोस्त है वो फजूल बातों पे वो सोचता था, फिर उसका वो बीमार भी हो गया था, उसके साथ बन गया ना फिर।
1: अच्छा
4: वो काम नहीं होता था उसके, वो सोचता था।
1: सही
4: तो मेरे एक मेरा एक मेरा भाई है वो डॉक्टर है, इस्लामाबाद से। हम दोनों एक पेशेंट के पास लेके गया था इस्लामाबाद में, तो वो डॉक्टर ने उसको पहले जो बात बोला ना, वो अभी तक वो बात नहीं भूल रहे। वो डॉक्टर के साथ बात कर रहा, डॉक्टर उसको बोल रहे था कि ये जो टाइप को जो पेशेंट होता है ना, ये ठीक नहीं होता है। तो वो मेरे खुद से उधर से होता कि जब मैं ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं इधर किस लिए आया हूँ? तो फिर हमने उसको दूसरे डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर उसको बोला कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है कि, लेकिन जो जिस चीज पे तुम स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन ये तो काम नहीं है ना। वो होता है कि मैं गाड़ी में चला रहा हूँ, वो बैठा है
1: सही,
4: वो बोलते है कि आप ये गाड़ी अभी पलट जाएगा, इसकी टर्न हो जाएगा, वो फजूल चीजों पे होता।
1: वहम हो गया था मतलब उनको, वहम
0: वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी ना था।
4: मैं वो इतना फिर बीमार हो गया ना कि वो उठ भी नहीं सकता था घर पास से।
1: अच्छा
0: मेरे ख्याल से वो जो जिसे हम कहते हैं ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है, वो इंसान को, मैं एक दफ़ा पहले भी इस बारे में बात हुई थी और मैंने इसी बात के बारे में कहा था कि साइकोलॉजिकली ना इंसान अगर बैठ जाए ना घुटनों पर आ जाए तो उसकी सेहत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो बस बिस्तर से लग जाता है फिर खत्म। और कुछ लोग मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, कि कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ जाते हैं भाई, उनके पास विल पावर होती है, वो माशाल्लाह इतने इतने साल गुजार लेते हैं।
1: सही बात है
4: बिल्कुल, जैसा आप लोग हम लोग कहते हैं ना कि टेंशन, ये टेंशन हम लोगों का सिर्फ मुंह में आता है, टेंशन का बिमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। फिर वो मैं उसके साथ क्या करता था, मैं उसको ज्यादा था, मैं मोटरसाइकिल जानबूझ कर मैं उसको बैठाता था, कभी कार पे बैठाता था, कभी जिधर मेल होता था मैं उसको लेके जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज इतना सेट है ना कि वो खुद उसका आज एक शॉप है हमारे पाकिस्तान
1: में,
4: आज इतना सेट है। लेकिन उसका उम्र कम था, उम्र कम था, वो ट्रस्ट इतना लेता था ना कि उसने वो ट्रस्ट इतने हावी हो गया था कि वो बहुत तकरीबन 8 साल हुआ उसके साथ। फिर उसने खुद उसको बोला कि मैं इसके साथ फाइट करेगा।
1: सही।
4: जब उसने उसके साथ फाइट शुरू किया,
1: हाँ चक्कर यही है ना कि उसने समझ लिया इस बात को।
4: जी जी। तो एक डॉक्टर ने उसको बोला था, एक लेडीज डॉक्टर था साइको, वो उसको बोला था कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ ये है कि उस आप इसके साथ फाइट करोगे, जब तुम फाइट करोगे तो तुम्हारा ये बीमारी खत्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी ठीक है, अपना शॉप है, अच्छा पैसा कमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो स्ट्रेस आते हैं वो हालात की वजह से भी आते हैं।
0: अच्छा ये मुदस्सिर भाई थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन एक एक एक मुझे आपसे बात पूछनी है। आपको क्या लगता है ये जो हालात को हम लोग जोर पकड़ के टोपी पहना देते हैं, ये आपको नहीं लगता कि हालात भी इंसान के क्रिएट किए गए होते हैं कहीं ना कहीं?
4: नहीं ऐसा होता है, लेकिन इंसान तो सोचता नहीं है ना कि यह हालात है मेरे ऊपर आई, उम्र भर के लिए नहीं है, कुछ दिन के लिए होता है। अगर हम किसी तरह सोचते फिर ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम तो फेस के ऊपर और ड्रेस पे ड्रेस लेता है यार, या बिजनेस में नुकसान क्यों किया, या ऐसा क्यों किया, या ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसकी वजह से बनता है। लेकिन मसलन एक आदमी है वो बिजनेस में नुकसान करेगा तो वो बोलेगा कि यार हर उम्र कर लीजिए कुछ दिन के लिए, तो फिर सेटअप हो जाएगा। तो फिर वो टेंशन नहीं दे, एक आदमी होता है वो थोड़ा सा नुकसान हो जाए वो भी फिर टेंशन लेता है। तो हालात की वजह से भी होता है, ऐसे फजूल चीजों पे भी टेंशन होता है। ओटेशन बीमारी जो है ना उससे हर इंसान को अल्लाह बचाए, वो हमने देखी है ना अपनी लाइफ में।
0: अरे भाई लोग गल जाते हैं टेंशनों में। मैंने कहा लोग गल जाते हैं टेंशन में, जो कि जिसका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन पता नहीं किस चीज की टेंशन हो रही होती है।
4: बस ये फजूल चीजों में भी लोग टेंशन लेते हैं ना, मैंने आपको बोला ना हमारे एक दोस्त उसने फजूल चीज पे टेंशन लिया था।
1: सही सही।
4: कोई नहीं ना कोई इसका बिजनेस था या उसका कोई ऐसा था कि उसने उसमें नुकसान किया होगा तो फिर वो टेंशन लेता था। ना उसका शादी था ना कुछ था ना कुछ, ऐसे फजूल टेंशन लेता था।
1: सही सही सही। चले ये खैर बहुत अच्छा हुआ कि माशाल्लाह से वो ठीक हो गए, वो उस चीज से निकल गए, पॉजिटिव अच्छी चीज है।
4: अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत ठीक है आज। आज हम इतना कतर में नहीं कमाते जितना वो पाकिस्तान में।
1: माशाल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जल्दी से मैं कुछ मैसेजेस पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं सॉन्ग की तरफ। और ये माविश एंड सफ़ा, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद तौफीक अलवकरा से, और कहते हैं इंसान जब अच्छा सोचता है तब अल्लाह ताला खुद ब खुद उसके रास्ते आसान कर देते हैं। और इसके अलावा जी शहजादा सलीम, हम हैं आपके साथ FM 107। अच्छा कोशिश करते हैं शहजादा सलीम। बिल्कुल बिल्कुल। मुबीन बुहारी के बहुत सारे मैसेजेस हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आपने हमें कहा सलाम मुझे सफ़ा को, और उसके बाद बहुत सारे वॉइस मैसेजेस भेजे हैं जो कि अभी हम नहीं सुन पाएंगे। खैर जी इसके साथ ही हमारे पास अस्सलाम वालेकुम मैम एंड सफ़ा जी, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एनजाइटी और स्ट्रेस कुछ टाइम से तो है, लेकिन और उसका रेगुलर ट्रीटमेंट वगैरह जारी है, बट अगर मैं देखता हूँ तो मुझे एक्सपेक्टेशंस नज़र आती हैं, लोग हैं, रिश्ते हैं, बट एनीवे अपनी कोशिश करो और ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशंस नाकाम नहीं, एक्सपेक्टेशन नाम निकाल लिया है और लोग कम किए हैं, दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। मैं ये शो कभी मिस नहीं करता और कॉल करके बातें भी करना चाहता हूँ, बट अभी वही एनजाइटी है, क्या है, क्यों लगता है कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्यों ऐसा लगता है भाई? रियाज आपको ज़रूर कॉल करनी चाहिए, हम आपकी कॉल का वेट करेंगे, आप ज़रूर कॉल कीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही जो फयाज सैयद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अरे वो ब्लैक कॉफ़ी गलती से दे दिए तो आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं?
0: कुछ नहीं कर सकते।
1: यही मैं सोच रही थी, यही मेरा पॉइंट था कि सफ़ा क्या करेगी आखिर, सफ़ा के पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है जिससे
0: मैंने बताया ना दूध लो दुकान से उसमें डालो पी लो
1: पी लो, ये वाला
0: सफ़ा ये करती।
1: अच्छा लेकिन सवाल तुमसे ही क्यों हुआ था, तुम क्यों इतनी चाय एक्सपोर्ट चल रही हो?
0: वो चाह रहे थे कि नहीं मैंने अपना ढाबा खोल रखा है ना,
1: ढाबा खोल रखा है। और इसके अलावा जी भाई हमारे साथ हैं सुभान, सुभान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सफ़ा मैम, माविश मैम, कैसे हैं आप? अब दोनों उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मौजू पर बात नहीं करूँगा, लेकिन माविश मैम से एक रिक्वेस्ट है कि भाई बार बार कराची का जिक्र ना करें, रुलाएंगे क्या? मैंने तो आज एक दफ़ा भी नहीं किया भाई, कब किया मैंने, मैंने तो एक दफ़ा भी नहीं किया, कब की बात हो रही है? कराची का जिक्र किया
0: नहीं,
1: नहीं किया ना, फिर मेरी आवाज़ सुन के आपको कराची याद आ जाता तो मैं क्या करूँ? چلے جی ہم اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں ایک میوزیکل ٹریک کی طرف، پھر آپ کی کالز لیں گے 4434344 پہ 377 پہ، سوری کیا بول رہی ہوں،
0: مجھے کراچی یاد آ گیا
1: اور 6622107 پہ آپ ہمیں کر سکتے ہیں میسج، لیکن ہم چلیں گے ایک میوزیکل بریک کے بعد، اس کے بعد کالز اور میسجز۔

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है,
4: नजर यूं झुकाना मेरे लिए है बस, मेरे लिए है।
3: कभी नए सपने दिखाता है, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: क्वेस्ट शो सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के दौरान हिफाजती कवानीन पर अमल जरूरी है। विदारत दाखला ने स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के शौकीन अफराद को हिदायत दी है कि हिफाजती कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि पानी के नीचे होने वाले हादसात से बचाव मुमकिन हो और गोताखोरी या वाटर डाइविंग को महफूज बनाया जा सके। याद रखें कि डाइविंग शुरू करने से पहले ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है जो किसी ऑफिशियल इदारे से हासिल की जाए। इसके साथ साथ समंदर और मौसमी सूरत

लाजमी है ताकि ये यकीन हो जाए कि वो ठीक हालत में है। डाइवर को चाहिए कि डाइविंग लोकेशन और वापसी के वक्त के बारे में घर वालों या दोस्तों को पहले से इत्तला दें और पानी की सतह पर डाइविंग फ्लैग के साथ नुमाया ब्योय लगाएं, ताकि वहां पे जो कश्तियां या दूसरे लोग हैं उनको आपकी मौजूदगी का अंदाजा हो सके। डाइविंग के दौरान पानी की गहराई, प्रेशर और एयर कंजम्पशन पर लगातार नजर रखनी चाहिए, जबकि ममनू इलाकों और मुल्क की समंदरी हुदूद से दूर रहना जरूरी है। और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन 999 पर राब्ता कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहती है कि हिफाजती कवानीन पर अमल करें, महफूज रहें और समंदर का लुत्फ जिम्मेदारी के साथ उठाएं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश।

0: क्रिकेट हो
1: एंड ही इज हुक दैट अवे दैट्स फोर रन
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन हम लाते हैं आप तक हर एंगल हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी

0: Thursday at 1 PM.
1: क्योंकि यहां होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
0: आप सुन रहे हैं यू मैटर
2: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: FM 107 पर दिल से देसी।
3: राइट, वेलकम बैक। हम आगे एक दफा फिर से और यू मैटर में हम क्या लेकर आए हैं?
4: हम लेकर आए हैं
3: टॉपिक है आज का
4: स्ट्रेस। किससे रिलेटेड होता है? हमारी एक्सपेक्टेशन से या सिचुएशन से?
3: ये बस हो जाता है।
4: आदत है ना, वो विरासत में एक चीज मिली है, जदादे और पैसा नहीं, टेंशन मिली है, टेंशन ब्लड प्रेशर मिला है।
3: मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, गुड मॉर्निंग महाशय और सफा जी, और वेलकम आप लोगों को। और मैंने देखा था कल सोशल मीडिया पे, कल कराना में बारिश हुई है। कराना कौन सी जगह है?
4: नहीं पता मुझे भी नहीं पता
3: ये कहाँ है। और यस, टेंशन से लोग मौत तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग टेंशन छोटी छोटी बात पर ले लेते हैं जबकि वो उतनी बड़ी बात भी नहीं होती। सो ट्राई टू अवॉइड टेंशन और अल्लाह सबकी परेशानियों तकलीफ दूर करें, आमीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जी हमारे पास है सफा मैडम। सब खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
3: खवातीन हजरात फिरोज खान और माय फ्रेंड उवेश खान, मतलब
4: क्या चल रहा है? ये कौन सी दुनिया में रहते हैं?
3: फिरोज खान, सफा मैडम सब खैरियत है, माय फ्रेंड उवेश खान, ये क्या है?
4: ये सब एक साथ मतलब कह रहे हैं, डीकोड कर लो।
3: हाँ तुम करो।
4: देखिए आज जो है ना, मैं छुट्टी पे चल रही हूँ, आज वेनसडे है। मैं एक दिन पहले थर्सडे मनाती हूं।
3: सफा सिस्टर एंड मावे सिस्टर, क्या हाल चाल है? टेंशन दूर करने के लिए नेचर के करीब हो जाना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए 5 टाइम। जब रूह को सुकून मिलेगा ना तो टेंशन दूर भाग जाएगी। और ये कहना है अहमद अजहर का।
4: देखिए अहमद भाई ना हमारे साथ रह कर ना बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, इंटेलिजेंट। समझ रही हूँ,
3: बिल्कुल समझ रही हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कराची का जिक्र लाजमी होना चाहिए बिकॉज कराची इज बेस्ट, टेंशन लेने का नहीं देने का बस। हाँ बिल्कुल, हम लोग ये कह के ही खुद को तसल्ली देते रहते हैं कराची इज बेस्ट। हम लोगों ने यही रखा हुआ है, हम टेंशन नहीं लेते। और कराची के लोग तो भाई टेंशन लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, किस किस बात में लेंगे।
4: मजे की बात ये है कि ना लेते ना देते हैं टेंशन, बस ऐसे ही मन मौजी लोग,
3: मन मौजी ऐसे ही चल रहा है, बस चल रहा है, अल्लाह चला रहा है। और मोहम्मद का मैसेज था ये, और अली कहते हैं कि अली विजदात, इन्होंने अपना नाम लिख के भेज दिया हमें। अली अस्सलाम वालेकुम,
4: चलिए किसी ने सलाम नहीं किया,
3: हम आपको सलाम करते हैं, ठीक है। अजय जी आगे हमारे साथ कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग?
3: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं जुल्कर्णन साहब, कैसे हाल चाल हैं?
5: अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम अच्छा है बाहर, अगर आप खिड़की नहीं है आप झांक नहीं सकती, बादल हैं, धूप नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हीट है।
4: ह्यूमिडिटी वो बारिश से पहले वाला जैसा दबाव मौसम होता है ना वैसा।
3: अब सवाल ये है क्या ये होगी? बारिश शर्मीली है कतर की, छुपके होती है।
5: बाकी वो सफा गिला कर रही थी ना कि हमारी सैलरी या इतना काम या वो नहीं है, तो वो बॉस ने बुला के नहीं कहा, उस कंपनी से इतने लोगों को निकाल दिया, उससे इतने को निकाल दिया, बंदा सहम जाता है। नहीं नहीं मैं ठीक
4: मैं तो ये कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 28 तारीख आ रही है ना, और 28 तारीख को जो भी आ रहा है वो आ रहा है ना, बस सही है, फिर
3: हमें सहमाने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी सहमे हुए हैं।
5: तो वही आदमी की ना सारी वो एनर्जी जो है ना रिलीज हो जाती है, वो पूछता है बस मैं ठीक काम अपने करने जा रहा
3: हूँ, बस चलाता रहे, रोजी रखे बस।
5: सही बात है, इंसान को अपने शहर से तो मोहब्बत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम लोग जो निकले हैं या शहरों को इस तरह बना दी।
3: हेलो,
4: कहाँ गए हैं?
5: बिजली गई, पानी गई और मसले हुए, तो फिर टिकट उस वक्त इतना नहीं होता था, कंफर्म करके बोलते थे मेरी टिकट तो कंफर्म है ना भाई जाने की, जाने पूरा हो गया हमारा शौक। तो ये बात तो इंसान की ना चलती रहती है। अच्छा आप लोगों ने माशाल्लाह आप दोनों फूफियां भी हैं, कभी एक लफ्ज पे गौर किया होगा?
3: किस बात?
5: मैंने ऐसी सोचा किसी हाँ? निकला पप्पे कुटनी,
4: पापा कुटनी, पापा कुटनी, पापा कुटनी,
3: ये क्या फूफो से निकला है? क्या हो रहा है जुल्करन साहब, कहाँ जा रहे हैं बीच बीच में?
4: ग्लिच कर जा रहे हैं, ग्लिच।
5: इसीलिए मैंने आपके ऊपर है कि आप थोड़ी रिसर्च करें, ये बड़ी यानी मोहब्बत वाला रिश्ता है।

0: है, लेकिन आपको पता है ना ये जो बीवियां होती हैं, चांद मामू बनाती हैं, चाचा मामू।
1: तो ये फूफो को दिया ये वाला लकब?
2: नहीं भाई, मेरे बच्चों की फूफो तो बहुत इकलौती है और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह।
1: तो ये फूफियों को लकब दिया गया है क्या?
2: हाँ, ये फूफियों को दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: फूफो तो बच्चों की हुई ना, आप लोगों की तो नंद हुई ना।
1: हाँ,
0: तो ये इंतकाम का एक तरीका,
1: इंतकाम का तरीका। सही।
2: ये एक बात बताएं, आज आप कौन से मोड में आए हैं?
1: कोई सुबह सुबह मुहावरा सुनाए या कहीं पे किसी ने घर पे तो नहीं सुनाई वाला लफ्ज?
0: असल में आप लोगों की डिस्कशन ना बहुत सारे सोए हुए ख्याल जगा
2: दिया। ये सही बात है।
1: सही हो गया।
0: तो अब आप अगले ये वाली स्लॉट किसके हिस्से में आई है? 10 से 11
1: ये मेरा ही है। अच्छा, इधर मैं नहीं रहना। सफा को भी दखल कर दिया गया है रियासत से।
2: उन्होंने कहा सफा को पब्लिक नहीं झेल पा रही, ये वाली नहीं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से आपने इनको शिफ्ट कर दिया, तरक्की दे दी।
1: हाँ।
2: मेरा जो है 130 से 230 का शो हो जाएगा।
0: और सरवर साहब अपने शो में कायम रहेंगे कि उनको भी कहीं आगे?
1: सरवर भाई मॉर्निंग में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया गया ना उनका। हाँ, उनको तो भेज दिया गया ना ऑलरेडी,
0: उनको यानी पहले से भेज दिया।
1: हाँ, उनको जी
0: वापस मुड़
2: किसी को सरवर भाई को तक पता ना चला एकदम से कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। सुबह आए तो वो सुबह के शो में थे।
0: तो बहरहाल आपको प्रोग्राम में बड़ा इंजॉय करते हैं। और वैसे सफा अगर कहीं पब्लिक प्लेस पे जा रही हो ना, इनकी आवाज, इसका स्टाइल अगर तो यही है, छुप नहीं सकता, लोग मुड़ के देखते होंगे सफा में।
2: जो छुप रहे होंगे ना वो मेरे घर वाले होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो मुझसे कितने एम्बेरस्ड हैं।
0: बहरहाल बड़ा अच्छा था, होप सो। और ऐसे ही आपके
1: अब हम आखिर में मिलेंगे, लेकिन आखिर में हम दोबारा मिलेंगे दिसंबर में, है ना?
2: दिसंबर में आप जा रही होंगी,
1: लेकिन तुम तो आ रही होगी ना, कुछ दिन तो हम साथ
2: रहेंगे। आड़ियां जाड़ियां लगी रहेंगी हमारी, टेंशन ना ले।
1: है दिसंबर में कुछ अरसे फिर हम इंशाल्लाह।
2: अच्छा भाई, हमने तो टॉपिक पे बात ही नहीं की। हमारा टॉपिक पे आपसे मुद्दा ये था हमारा कि जरा ये बताइएगा कि स्ट्रेस जो होता है इंसान को, वो उसकी एक्सपेक्टेशन की तवक्कोआत की वजह से होता है या सिचुएशंस की वजह से होता है?
0: सिचुएशन आपको स्ट्रेस देती है तो फिर आपको दूसरों से एक्सपेक्ट होता है कि वो रिलीफ देने में आपकी हेल्प करेंगे। मसला ये होता है कि आपको कोई इश्यू हुआ है तो फिर आपका किसी के साथ कनेक्शन होता है या आप देखते हैं, उम्मीद होती है, फिर वो जब उम्मीद पे लात मारते हैं तो आपको स्ट्रेस और बढ़ जाता है।
2: मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, गहरी बात है, मुझे समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सिचुएशंस भी इंसान की क्रिएटेड होती हैं। इंसान ही क्रिएट करता है सिचुएशन को, जो मामला उसने कुछ सालों पहले किया होता है उसी को फिर वो एक सिचुएशन बन के उसके सामने कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद आती, लाजमी नहीं साल, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ घंटों बाद हो सकता है मामला, कि जो आप करते हो वो ही एज अ सिचुएशन फिर आगे आपके सामने आता है और फिर उसके अंदर आप उलझ जाते हो।
0: नहीं, ज़रूरी नहीं है, ना करदा गुनाहों की भी सज़ा इंसान भुगतता है, ऐसे मामला भी होते हैं। और कहते हैं ना कि आप वो सजा भी भुगतते हैं जो जुर्म आपने किया ही नहीं है, और ऐसी बड़ी मिसालें हैं इसके ऊपर रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनके पास एक स्ट्रेंथ या पावर आ जाती है और रियलिटी का पता चल जाता है। ये बल्कि ये अपने हमारे महमूद साहब कह रहे थे कि अच्छे दिनों में लोगों को आपका पता चलता है और बुरे दिनों में
1: आपको लोगों का पता
0: आपको
1: चलता
0: पता चलता है। तो ये तो चीजें आती रहती, यानी आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी, बोला मैं तो सही लाइन में जा रहा था, मेरा क्या कसूर, कसूर तो दूसरे का है। तो इसमें आप इस सिचुएशन को देखते हैं या हैंडल करते हैं, हर वक्त आपका कसूर नहीं होता। और यही जिंदगी का मामलात हैं, कहीं आपका भी है और कहीं आप दूसरों को। एक बात आपने सुनी होगी, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता यार, गलत बात ही बर्दाश्त की जाती है, सही बात तो हर बंदा ही ठीक है। अक्सर जब आप किसी की बर्दाश्त करते हैं तो गलत बात को बर्दाश्त करते हैं।
1: सही कह रहे,
0: बुलाती हैं इस तरह एक्सपेक्टेशन सिचुएशन ये वही है। अब सबर, सबर क्या है? सबर वो भी एक हद तक है, ऐसा भी नहीं है कि सबर आपको ना गुलामी में ले जाए, आपकी अपनी एफर्ट या शख्सियत को ही मसक कर दे, फिर तो वो बात ही खत्म हो गई कि जुल्म के खिलाफ या आपके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए या अपने आप को दिफा करना चाहिए। हर चीज की लिमिटेशन है, उसको बढ़ाना नहीं है बहुत ज्यादा। और क्या सिचुएशन है, एक्सपेक्टेशन या ये सब चीजें, आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं, उन चीजों को कोशिश करते हैं, और इस दौरान यकीनन आपके जो मोहब्बत करने वाले अपने हैं वो आपको देख के खुश नहीं हो सकते, वो भी फिर आपके साथ शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ उनका खलूस मोहब्बत उस सिचुएशन से निकलने में मदद करता है। जैसे 2005 में जलजला आया था, सैलाब आया था, या लोग थे एक कलेक्टिवली कोऑपरेट करते हैं, इसी तरह फैमिली में है। अभी वो बीच में अच्छा वो चल रहा था ना प्रोग्राम, अभी आप कह रही थी बात से बात है कि भाई हम लोग कोई प्रोग्राम ही इस तरह करेंगे तो अक्सर कहते हैं ना, एक तो लफ्ज ये होता है मैं ठीक हूँ, तो एक में हाँ दूसरा ऐड कर लेता है मैं ठीक हूँ तो अपनी खैर मना।
1: अच्छा जी, तो हमारे साथ जो है ना शहजादा सलीम बेचारे टंगे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ उनको लू या लू बादशाह सलामत के साथ हम क्या ही कर रहे हैं।
2: सिर्फ सलाम करके जो ना अल्लाह हाफिज कर देते हैं बादशाह।
1: हाँ बिल्कुल कर देते जी सलाम।
3: अच्छा वो आपने ले लिया, मैं इस मौजे पे आखिरी मतलब पढ़ावे पे आ चुका है ये मौजो जो टॉपिक है ना। ये क्या होता है ना सिचुएशन है ना, हम खुद क्रिएट करते हैं किस तरह से पता है। एग्जांपल आप है ना जा रहे हो किसी को कुछ देने के लिए कि वो शॉप खुला रहेगा मैं जाके दे देता हूँ, लेकिन उसके बीच में एक आ गया यार नहीं यार पहले इसको कर लेते हैं तो इसको देते हुए भी सेम है उसको कर लेंगे। तो ये जब आप उसको अवॉइड करके इसको ट्रस्ट करके जाते हैं ना तो ये आपको ना ठेंगा दिखा देता है। आप डिले करते करते बाद में यार आप यहाँ से मायूस होते जब वहाँ जाते वो भी बंद हो चुका होता है। तो ये चीजें ना हम खुद है ना क्रिएट करते हैं उसको को इस तरह की है ना जो एक सिंपल ही एक शेड्यूल के हिसाब से फॉलो करके जो उसको कंप्लीट करे तो वो बेहतर होता है ना।
1: सही हो गया।
3: और जो आपने जो सफा बजी और आपने ये कहा था ना कि हमारे पे कोई अगर ड्रामा बनेगा तो उसका टाइटल क्या होगा, मेरे पास टाइटल मैंने ना ढूंढ लिया हूँ, वो टाइटल आपका होगा पहले आप पहले आप पहले
1: पहले आप पहले तो हम इतने इतने आदाब के साथ चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। चले चले सलीम बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे करते हैं किसी दिन लंबी बात। ठीक है चले थैंक यू जी अल्लाह हाफिज। अच्छा अरमान मलिक ने मैसेज किया हम दोनों को सलाम वलाम कह के, इन्होंने खैरियत भी पूछी थी। इसके साथ ही हम जो है ना टेंशन, मैंने इनका मानना है टेंशन आती ही एक्सपेक्टेशन से, और ये हैं मोहम्मद अरफातुल इस्लाम। और इसके अलावा जी हमारे पास लास्ट मैसेज अवेज़ खान का है, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर कैसी हैं आप, और आपके साथ जो सिस्टर हैं उनको मेरा सलाम, मतलब आपको का है सलाम।
2: अच्छा
1: अवेज़ खान
2: वालेकुम सलाम।
1: ये इश्क ना इंसान को क्या बना दिया है, किसी को शायर तो किसी को कातिल बना दिया है। ओए होए होए। और इसी के साथ हम आखिर में इजाजत ले देते हैं। सफा को
2: कहां से आया, मैं ये सोच
1: इश्क आ गया बस, इश्क आ जाता है, बुलाना थोड़ी पड़ता है।
2: मोहब्बत में लोग गिरते हैं, इश्क में लोग चले जाते हैं।
1: हाँ
2: आ जाते हैं,
1: कभी भी हो जाता है, इश्क हो जाता है, करते नहीं है।
2: हाँ हो जाता है, हो जाता है।
1: चले दीजिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।

देखेंगे कि आखिर कुरान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हनीफन कहता है तो इस लफ्ज के अंदर कैसा फिक्री और ईमानी सफर छुपा हुआ है। और फिर बेइज्जते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब के उन अफराद की तरफ भी देखेंगे जिनके बारे में तारीखी मसादर में आया है कि वो अपने माहौल की बुतपरस्ती से मुतमईन नहीं थे और मिल्लत इब्राहिम की तलाश में मसरूफ थे। अब आइए कुरान की तरफ। अल्लाह फरमाता है, इरशाद खुदावंदी है, अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين। कह दीजिए अल्लाह ने सच फरमाया, बस इब्राहिम के तरीके की पैरवी करो, मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करो जो यकसू थे, हनीफा, وما كان من المشركين, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे, यानी मुशरिकों में से न थे। अब जरा आयत के मंजर को महसूस कीजिए, कुरान क्या कह रहा है। यहाँ एक सिमत मुतय्यन हो रही है, एक तरफ शिर्क है तो दूसरी तरफ तौहीद, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दूसरे रास्ते पर पूरी यकसुई के साथ खड़े हैं। यही लफ्ज हनीफ हमारे सामने खुलने लगता है। हनीफ उस शख्स को कहा गया जो बातिल, शिर्क और जाहिली कजी से मुड़कर अल्लाह की तौहीद की तरफ यकसू हो जाए। गोया इस लफ्ज के अंदर एक टर्निंग है, एक रास्ता छोड़ना और दूसरे रास्ता का रुख करना। समझ कराम गोया इसे इस तरह कह सकते हैं कि जैसे कोई मुसाफिर एक ऐसी शाहराह पर चल रहा हो जिस पर पूरा काफिला चला जा रहा है, अचानक उसे मालूम हो कि काफिले की सिमत गलत है। अब उसका इम्तिहान ये है कि क्या वो सिमत बदलने की हिम्मत रखता है या नहीं। कितनी तेजी से चलना ये मसला नहीं है। हनीफियत में यही माना बहुत नुमाया है कि हुजूम के भाव से निकलकर तौहीद की तरफ रुख करना। और इसीलिए हनीफियत कोई नया मजहब नहीं जो इस्लाम के बराबर एक अलग दीन हो। कुरानी इस्तेमाल में मिल्लत इब्राहिम की हनीफियत वही खालिस तौहीदी रास्ता है जिसकी दावत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम देते रहे और जिसकी तकमील आखिरी शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे जाने की एक रिवायत मुस्तद अहमद में मंकूल है, अय्युल अदियान अहब्बु इलल्लाह, قال الحنيفيه السمحه, यानी अल्लाह के नजदीक कौन सा दीन ज्यादा महबूब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसान, सहल और कुशादा हनीफियत। तो السمحه, यहाँ हनीफिया के साथ जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया ये बड़ी खूबसूरती पैदा करता है। गोया मिल्लत इब्राहिम का रास्ता इसके मिजाज में भी एक एतदाल, वसअत और फितरत के साथ मुनासिबत है। न ऐसा गुलू के इंसान दीन के नाम पर अपने लिए वो बोझ घड़ ले जो अल्लाह ने रखा ही नहीं, और न ऐसी बेपरवाही के दीन की हदूद ही तहलील कर दी जाए। यानी हनीफियत की तस्वीर अगर एक मीज़ान की सूरत में बनाएं तो एक पलड़े में तौहीद की गैर मुतजलजल यकसुई है और दूसरे में समाहत, फितरी तवाजुन और एतदाल। अलबत्ता यहाँ एक लफ्जी इश्तिबाह भी साफ कर लें, वो ये कि हनीफियत और फ़िक्ह का मारूफ हनफी मजहब एक चीज़ नहीं। फ़िक्ही मजहब हनफी की नस्बत इमाम अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रहमतुल्लाह की तरफ है जिनका इंतकाल 150 हिजरी में हुआ, जबकि कुरान की हनीफियत उससे कहीं पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के हवाले से है। यानी शिर्क से हटकर तौहीद की तरफ यकसू होने के माने में है ये हनीफियत। बसमिलकराम अब चले हम जरा सीन बदल लेते हैं, बेइज्जत से पहले के अरब में पहुंचते हैं। मक्का और जजीरा अरब का माशरा है, बुत मौजूद हैं, कबाइली रिवायात मौजूद हैं, मजहबी रसूम अपनी मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या इस पूरे माहौल में हर इंसान अपने जमाने के मजहबी मंजरनामे से मुतमइन था। तारीखी मसादर हमें कुछ ऐसे नाम देते हैं जिन्हें बाद की तहरीरों में हुनफा से जोड़ा गया। हाँ, ये बात तो सही है कि इन तमाम शख्सियात के बारे में रिवायात एक दर्जे की मजबूत और मुत्तफ़क आले नहीं हैं। बाज़ खबरें कदीम सीरत व अदब की किताबों में हैं, बाज़ के बारे में अहले तारीख का इख्तिलाफ़ है। इसीलिए हम इन सब को एक ही दर्जे की कतई तारीखी हकीकत बनाकर नहीं सुनाएंगे, बल्कि यूँ कहेंगे कि तारीखी पर्दे पर चंद किरदार नमूदार होते हैं और हर किरदार हमें बेसत से पहले अरब की फिक्री बेचैनी की एक झलक दिखाता है। सबसे पहले एक नाम आता है, कुस बिन साद अलियादी। अब मंजर अपने जहन में बनाइए कि लोग जमा हैं, बाजार का माहौल है, जिंदगी अपनी पूरी हरकत के साथ जारी है।

0: 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामिन किराम, प्रोग्राम आज की दुआ में हम आज उस दुआ का जिक्र करेंगे जिसका जिक्र सूरतुल हश्र में आया है। ये दुआ हमें ईमान वालों के लिए दिल में मोहब्बत और खैरख्वाही पैदा करने का दर्स देती है। रब्बना अग़फिर लना व लि इख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान ولا تجعل في قلوبنا

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन

में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं दुआ वाला कबीर एफएम 97.8 एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। आज के अपडेट में मैं मेडिसिन की दुनिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया को साथ में मिला के बात करने वाला हूं, बिकॉज पीपल आर टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली। रिसेंटली जब एप्पल का लॉन्च हुआ था, एप्पल का 18 आया और मार्केट में खलबली मची, लेकिन उसमें एक और चीज़ थी जिस पे बहुत काम किया गया और वो थी एप्पल की वॉच। उसमें कहा गया कि भाई अब हम जो है आपको हार्ट रेट इतना बढ़िया मॉनिटर करके देंगे कि ऑलमोस्ट एक्यूरेट लगेगा आपको। रिमेंबर दे सेइंग ऑलमोस्ट एक्यूरेट लगेगा, बट ठीक है, आई गिव इट टू देम, क्योंकि अभी लोग वॉचेस खरीद रहे हैं फॉर मेजरिंग हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग। दे वांट टू हैव समथिंग जो कि उन्हें मेडिकली थोड़ा सा एक्यूरेट रख सके, अपार्ट फ्रॉम द वर्कआउट सिग्नल्स जो उन्हें पता लगता है कि भाई इतना भागा, इतना दौड़ा, इतनी साइकिलिंग करी या इतनी कैलोरीज बर्न करी, वो तो है ही। लेकिन मार्केट में एक और चीज जो मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज्यादा यूज में आने वाली आने वाले वक्त में, बट आ चुकी है फॉर्चुनेटली, वो है स्मार्ट रिंग्स। इनका बूम आया मार्केट में, आपने देखा होगा ऑरोस रिंग हेल्थ एरा वो भी शुरू हो चुका है। स्मार्ट रिंग्स जो है स्क्रीन फ्री है, एक ऑल्टरनेट है, थोड़ा सा वॉच के मुकाबले सस्ती भी पड़ती है और ट्रेडिशनल वॉचेस को कहीं ना कहीं रिप्लेस करती है। आई एम नॉट अगेंस्ट स्मार्ट वॉचेस, पर अगर स्मार्ट वॉचेस सिर्फ आप इसलिए ले रहे हैं कि मुझे अपना वर्कआउट रेजिम को फॉलो करना है, तो आई थिंक रिंग्स आर आल्सो अ बेटर ऑप्शन। ऑरा और सैमसंग दोनों ने इस स्पेस में अपनी एंट्री मारी है, टाइटेनियम वेरिएबल्स लेकर आए हैं वो, जिसमें ऑफकोर्स आपको अपने फोन से उसे ब्लूटूथ वाईफाई के जरिए कनेक्ट करना होता है और आपको पूरा का पूरा लिंक मिलता है जिसमें आपको रिंग सारी अपडेट देती रहती है और काफी लाइट वेट है। रिस्ट बैंड्स हैं, रिंग्स हैं जो हर चीज की अपडेट आपको देती हैं। इसमें मल्टी वेवलेंथ ऑप्टिकल पीपीजी सेंसर्स लगाए गए हैं जो आपको स्किन टेम्परेचर्स बताते हैं, उसके मॉड्यूल्स हैं, 3D एक्सेलेरोमीटर्स हैं, और ये जो स्मार्ट वॉचेस स्मार्ट रिंग्स का ट्रेडिशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये कंटिन्यूसली आपके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV जिसे मेडिकल टर्म में कहते हैं वो ट्रैक कर रही हैं, जो स्मार्ट वॉचेस भी कर रहे हैं। स्लीप स्टेजिंग आपको मिल रही है, आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी है, बॉडी टेम्परेचर कितना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। तो आई डोंट नो, क्या आप स्मार्ट वॉच सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि मुझे ये सब मिलेगा, तब तो भाई आपको रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, या फिर आप स्मार्ट वॉच इसलिए ले रहे हैं कि भाई वो बढ़िया दिखता है भाई, एकदम टच स्क्रीन मजा आ जाते हैं, तो बात दूसरी है। यू हैव टू डिसाइड, एंड फिर आपको ये भी देखना है कि आप कौन सी स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं। अगर आप कहीं भागम दौड़ी का काम नहीं कर रहे, देखो मैं कड़वा सच बोलता हूं, आप कहीं भाग भाग नहीं रहे, आप उसे कहीं वर्कआउट के लिए नहीं यूज कर रहे हैं और आप सिर्फ स्मार्ट वॉच भी ले रहे हैं वो भी महंगी महंगी, तो फायदा कुछ नहीं है, है ना। यू कैन रिप्लेस इट बाय अ रिंग सिंपली, अगर आपको लिटरल वर्कआउट वगैरह सब कुछ ट्रैक करना है, क्योंकि एनी डे स्मार्ट वॉच से ज्यादा प्रिसाइज रिंग्स ट्रैक करके देंगी आपको। और अगर आपको स्मार्ट वॉच चाहिए तो बहुत सारी स्मार्ट वॉच बजट में आती है जिसमें कि नथिंग की जो स्मार्ट वॉच है बेहतरीन है भाई, बेहतरीन। वो आपका सारा ट्रैकिंग व्रैकिंग का काम भी करती है और आपके लिए बजट फ्रेंडली भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो महंगी खरीदे ही मत, अरे बुरी बात है, पर जरा आपको यूसेज समझने की जरूरत है। जिस तरीके से हम फोन के केसेस में बात करते हैं कि भाई तुम्हारा फर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, आप फोन क्यों यूज करते हैं, कैमरा चाहिए आपको, बैटरी चाहिए आपको, चाहिए क्या, स्क्रीन चाहिए क्या, चाहिए गेमिंग कर रही है, उस हिसाब से यू सेलेक्ट योर फोन। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि स्मार्ट फोन स्मार्ट वॉच पे आपको कितना खर्चा करना है, आपका यूसेज उसमें है क्या, ये आपको समझने की जरूरत है। एंड ये बायोमेट्रिक ट्रैकिंग जो है जो आपकी फिंगर पे आ चुके, दिस इज फार बेटर अगर आपको सोलली आपको वर्कआउट के लिए ही इसको यूज करना है। एंड ये जो आर्टेरियल ब्लड फ्लो सिग्नल्स हैं ये स्ट्रांग होते हैं जब आप रिस्ट बैंड पे पहनते हैं, रिस्ट बैंड में की मार्केट में भी सैमसंग आ चुका है, और ये डिवाइसेस जो हैं ये आपको ट्रैक भी करते हैं, डिस्टर्ब भी नहीं करते और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं क्योंकि स्क्रीन नहीं है। तो मैंने आपको लिटरली एक आइडिया दे दिया, आप अगर बिल्कुल वर्कआउट वाले हैं एंड यू वेरी सीरियस अबाउट इट, देन रादर देन गोइंग फॉर अ वेरी हेफ्टी अमाउंट, पेइंग अ वेरी हेफ्टी अमाउंट फॉर अ स्मार्ट वॉच, आप एक रिंग या रिस्ट बैंड के लिए जा सकते हैं, बिकॉज आपको ज्यादा प्रिसाइज डिटेल मिलेगी। आपके ऊपर है, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे तो टेक अपडेट बताते रहिएगा और सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar। Stay tuned for more Tech Update। Tech Update।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @

0: FM 107 Qatar, दिल से देसी।
1: 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Maximum music, maximum fun
0: on FM 107. Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और आजकल हम बात कर रहे हैं नए जमाने के नए स्कैम के बारे में, और हर रोज एक नए स्कैम के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं और आपको कोशिश करता हूं कि जो नए स्कैम हैं जिनसे आप बच सकते हैं। कई बार आपको पता नहीं होता है, आपको लगता है कि आप किसी जेन्युइन शख्स से बात कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी काम को लेकर, है ना, लेकिन असल में वो स्कैम हो सकता है। एक और स्कैम जो आजकल बहुत ही ज्यादा चलन में है वो है OTT या मीडिया स्कैम। आजकल के दौर में एंटरटेनमेंट के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि OTT के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स, उनका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर कोई अपने मोबाइल में या फिर TV पे लेटेस्ट एपिसोड और पॉपुलर मूवीज देखना चाहता है, लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर स्कैमर्स एक नया स्कैम चलाते हैं जिसे OTT और मीडिया स्कैम कहा जाता है। वो सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीग्राम चैनल्स पर या बल्क SMS के जरिए लोगों को धोखा देने के लिए बड़े क्लेम्स और ऑफर्स शेयर करते हैं। इनके एड्स में लिखा होता है कि आपको सभी पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स और TV एपिसोड का फुल प्रीमियम एक्सेस मिल जाएगा और फला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा जिसकी कीमत सिर्फ 100 कतरी रियाल।

पर मंथ होगी। अब आप सोचते हैं यार कि यू नो चार से पांच ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो सिर्फ 100 कतरी रियाल पर मंथ में मिल जाए, सबको अलग अलग लेंगे तो यार 300 रियाल, 400 रियाल, 500 रियाल लग जाएंगे, लेकिन अगर 100 रियाल में पर मंथ हो रहा है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये कीमत रेगुलर प्राइस के मुकाबले आपको बहुत ही कम लगती, इसलिए लोग सोचते हैं और आप भी सोचते हैं कि यार इतने कम पैसे में अगर सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं तो डील बुरी थोड़ी है। जब कोई यूजर उनसे इस ऑफर के लिए कॉन्टेक्ट करता है तो स्कैमर उन्हें कहता है कि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है और उन्हें सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करने के लिए फी अपफ्रंट पे करनी होगी। पेमेंट के लिए वो अक्सर अनवेरिफाइड लिंक्स या डायरेक्ट कार्ड डिटेल्स मांगते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक चीज है। कभी भी आपसे कोई कार्ड डिटेल्स मांगे तो मना कर दे। एक बार पेमेंट हो जाती है, स्कैमर्स दो तरह के फ्रॉड करते हैं। पहला तरीका ये होता है कि वो यूजर को बिल्कुल फेक लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आईडी और पासवर्ड सेट कर देते हैं। जब यूजर उन्हें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो इनवैलिड पासवर्ड या अकाउंट सस्पेंडेड का एरर आता है उन्हें। दूसरा तरीका ये होता है कि पेमेंट मिलते ही स्कैमर कस्टमर से अपना सारा कम्युनिकेशन बिल्कुल कट ऑफ कर देता है। अगर आपने पोस्ट देखा है तो वो पोस्ट नहीं दिख रही है, फिर आपने जिसे जिस नंबर से कांटेक्ट किया वो नंबर नहीं दिख रहा है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, जहां पर आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं उसे आप ट्रैक नहीं कर सकते, मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर देता है, कॉल उठाता नहीं है, और फिर इन सब के बाद आपको एहसास होता है कि वो 100 कतरी रियाल का स्कैम हो चुका आपके साथ। ये स्कैम आपके लिए हो सकता है छोटा हो, क्योंकि 100

0: दोस्तों कोई भी चीज अगर लीगल है तो वो आपको लीगली ही लेनी चाहिए। अगर कोई आपको यू नो लालच दे रहा है कि यू नो फला फला एप्लीकेशन है, फला फला OTT प्लेटफॉर्म है, एक साथ मैंने यू नो फला एप्लीकेशन में डाल दिया है, बस आप उस एप्लीकेशन को खरीद लिए और आपको 100 कतरे रियाल में फलाना मिल जाएगा, या फिर ये टीवी खरीद लीजिए, आप इस टीवी में यू नो एप्लीकेशन का टीवी का नाम भी होता है, उसमें आपको दुनिया भर के एपिसोड्स मिल जाएंगे, दुनिया भर के चैनल्स मिल जाएंगे, दुनिया भर के आपको अलग अलग तरह के मूवीज शोज मिल जाएंगे, तो ये एक फेक चीज है और ये इलीगल भी है। दूसरा तरीका है बचने का जो सबसे आसान है कि किसी भी तरह की डिटेल्स अपने कार्ड की किसी से शेयर ना करें। पेमेंट आपको हमेशा 1 या 2 महीने बाद करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते जब हम बात कर रहे होंगे किसी भी तरह के स्कैम के बारे में, तो आम तौर पे जैसे कल हमने बात करी थी टिफिन के बारे में, तो टिफिन का जो स्कैम है वो इसलिए हो जाता है लोगों के पास क्योंकि वो एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, लोग एडवांस में पेमेंट करते हैं, बट एडवांस में नहीं, एडवांस में खाना आना चाहिए। ऐसे ही एडवांस में OTT प्लेटफॉर्म आपके पास आना चाहिए, उसके बाद अगर वो चल रहा है रेगुलर बेसिस पे तो भी अगर आपको पेमेंट करनी भी है ना, 1 महीना यूज कर लिया आपने OTT, फिर अगर आपको पेमेंट करनी है तो आपको हमेशा पेमेंट करनी है थ्रू लीगल मींस और साथ ही साथ थ्रू ऐसे वेबसाइट के या थ्रू ऐसे एप्लीकेशन के जो वेरीफाइड हो कतर में, ऐसी जगह पे आप पेमेंट करें जिसे आप ट्रैक कर सके। तो दोस्तों ये था नए जमाने का नए स्कैम जो आज हमने डिस्कस किया, उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, Qatar's most heard radio station FM 107, FM 107, दिल से देसी।

पाकिस्तान क्रिकेट के बुनियाद रखने वाले पहले टेस्ट कप्तान और वन ऑफ द लीडिंग क्रिकेटर ड्यूरिंग द 1950s अब्दुल हफीज करदार। या दोस्तों, आज हम बात करेंगे अब्दुल हफीज करदार के बारे में। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। अब्दुल हफीज करदार साहब का नाम पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक टीम की क्यादत नहीं की बल्कि एक नए मुल्क को क्रिकेट की दुनिया में पहचान दिलाने में बुनियादी किरदार अदा किया। ऑल इन ऑल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान डेवलप्ड एज अ क्रिकेटिंग नेशन अंडर हिज कैप्टनसी। अब्दुल हफीज करदार की पैदाइश 17 जनवरी 1925 को लाहौर में हुआ। 1947 में पाकिस्तान के कायम के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि नए मुल्क की क्रिकेट टीम को एक मुस्तहकाम आइडेंटिटी दी जाए। ना कोई पुरानी टेस्ट हिस्ट्री थी, ना इंटरनेशनल क्रिकेट का लंबा तजुर्बा। ऐसे वक्त में अब्दुल हफीज करदार साहब सामने आए। उनमें लीडरशिप की सलाहियत, खुद एतमादी और मुश्किल हालात में फैसला करने का हौसला मौजूद था। So that was some kind of an inborn talent, I would like to say over here. And इसी वजह से शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त समझा कि इनको ही कप्तान बना देते हैं। पाकिस्तान ने 1952 में इंडिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला और अब्दुल हफीज करदार को टीम का पहला टेस्ट कप्तान बनाया गया। हिस्टोरिक बात है, तारीखी बात है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था दोस्तों, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के एक नए सफर का आगाज था। करदार ने इस जिम्मेदारी को सिर्फ कप्तानी नहीं बल्कि एक मिशन समझा। उनके क्यादत में पाकिस्तान ने चंद ही सालों में दुनिया को अपनी सलाहियत का एहसास दिला दिया। दो साल बाद यानी 1954 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया, जहां टीम को एक मुश्किल चैलेंज का सामना था। लेकिन ओवल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर अपनी पहली टेस्ट विक्ट्री हासिल की। बहुत बड़ी बात है। फजल महमूद, अपने अगर थोड़ा सा क्रिकेट हिस्ट्री फॉलो करते हैं तो आप थोड़ा सा उनको भी जानिएगा कि फजल महमूद किस तरह के बॉलर थे एंड अब्दुल हफीज करदार किस तरह उनमें बिलीव करते थे, उनकी बॉलिंग पे बिलीव करते थे। एंड फजल महमूद वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर्स ड्यूरिंग दैट एरा, जिन्होंने पाकिस्तान को कई सक्सेस दिलाने में मदद की। ये कामयाबी इसलिए भी खास थी क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल नया था। दे वर द आउट से की रूकी टीम। जहां इंडियन टीम 1936 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, वहीं 1952 में पाकिस्तान को अपना टेस्ट डेब्यू करना पड़ा। आई मीन 16 साल के बाद। सो तजुर्बा अगर कहें तो तजुर्बा वॉज नॉट देयर, लेकिन इनके पास इस तरह के खिलाड़ी थे जो नो दे न्यू दे हैड दैट एक्सपीरियंस, दे प्लेड क्रिकेट इन अनडिवाइडेड कंट्री में। सो फजल महमूद अगर है तो अब्दुल हफीज करदार साहब थे, तो इनके पास सलाहियत, इनके पास तजुर्बा, एवरीथिंग वाज देयर। ओनली थिंग दैट वाज लैकिंग इन द टीम वाज एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, टेस्ट क्रिकेट एक्सपीरियंस, वो भी मिल गया था 1952 में अगेंस्ट इंडिया। और इंग्लैंड को हराने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उनके कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने ये बता दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट में शिरकत करने नहीं आया बल्कि मुकाबला करने आया। इस कामयाबी ने मुल्क में क्रिकेट के जुनून को मजीद मजबूत किया और खिलाड़ियों के अंदर भी ये यकीन पैदा किया कि वो दुनिया की बेहतरीन टीमों का मुकाबला कर सकते हैं। दैट इज सो एसेंशियल कि कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट, दैट कॉन्फिडेंस टेक्स यू टू द मून, वो एक कहावत है। तो क्रिकेट में भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो अब्दुल हफीज करदार और फजल महमूद और उस जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह सपोर्ट किया कि आज पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जब हम देखते हैं, बात करते हैं, वी फील दैट हाँ, इस इन इन सब खिलाड़ियों की वजह से तो पाकिस्तान क्रिकेट के फॉर्मेटिव ईयर्स में जो बूस्ट मिला, जो कॉन्फिडेंस उन्हें हासिल, सो दैट रियली गेन

for Pakistan in the long run. Abdul Hafiz Kardar khud bhi ek zabardast all-round cricketer the. Wo left-arm bowler aur left-handed batsman the aur team ke liye bat aur ball dono se ahem kirdar ada karte the. Lekin unki sabse badi quwwat unki leadership thi. Wo khiladiyon mein discipline, unity aur confidence paida karne par zor dete the. And that is so essential. I mean, as a captain, jaise baad mein bahut sare aise captain aaye, in world cricket mein. So, unka kaam hi hota tha ki team mein confidence dalo, team ke andar mein moral boost karo. So, Abdul Hafiz Kardar ke saath ye ek baat ek khoobi thi ki wo apne khiladiyon ko confidently, jo jisko kehte hain ki dressing room jo lectures hain, dressing room mein jo pep talks hain, wo bahut bakhoobi kar sakte the. Aur unki kaptani ka ek khaas pehlu ye tha ki wo khiladiyon ko sirf apni performance ke liye nahi balki Pakistan ka naam roshan karne ke liye khelne ka jazba dete the. Country pride comes to your first, then your personal achievement. ये एक इंपॉर्टेंट बात है उनके लिए क्रिकेट एक खेल से कहीं बढ़कर था ये नए पाकिस्तान की पहचान का एक जरिया था 1958 तक अब्दुल हाफिज कारदार ने पाकिस्तान की टेस्ट टीम की قیادت की और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियाद मजबूत करने में जो किरदार अदा किया वो हमेशा याद रखा जाएगा क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी अब्दुल हाफिज कारदार ने पाकिस्तान क्रिकेट से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया उन्होंने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी जिम्मेदारियां संभाली और सेलेक्टर्स और मेंटोर के तौर पर अपना तजुर्बा अगली जनरेशन तक पहुंचाया यहां पर मैं बताऊं कि जावेद मियांदाद के डेब्यू जो हुआ था फॉर पाकिस्तान इन 1976 उससे पहले जावेद मियांदाद को इन्होंने नोट किया था इन वन ऑफ द मैचेस इन कायदे आजम ट्रॉफी ये आपके लिए एक एनेक्डोट है मैं आप लोगों को बता दूं So Javed Miandad was basically a find of Abdul Hafiz Kardar in the 1970s early ki baat hai. So overall agar dekha jaye to Abdul Hafiz Kardar sirf Pakistan ke pehle test captain nahi the, wo us team ke rehnuma the jisne duniya ko bataya ki ek naya mulk bhi cricket ke nakshe par apni jagah bana sakta. Unki zindagi hame ye sabak deti hai ki buniyad mazboot ho to kamyabi ki imarat khud buland hoti jati hai. पाकिस्तान क्रिकेट की आज की पहचान के पीछे जिन लोगों की मेहनत और विजन शामिल है अब्दुल हफीज करदार उनमें सबसे नुमाया नाम है करदार का मिशन एक दिन एक मैच या एक सीरीज तक महदूद नहीं था दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को एक सोच दी एक पहचान दी और सबसे बढ़कर जीतने का यकीन दिलाया और शायद इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी जब भी लिखी जाएगी उसके पहले पेज पर अब्दुल हफीज कारदार का नाम जरूर लिखा जाएगा उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा अगली बार एक और जबरदस्त स्पोर्टिंग कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीर और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़

0: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain Culture Moment. Main hoon aapki RJ Mahavish. Is 5 minute ke safar mein hum baat karenge Qatar ki khoobsurat saqafat, riwayat aur virse ki. Yahan हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस वर्षे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। ईद कतर में खुशी, इबादत, मुलाकात और शुक्र का मौका होती है। इस दिन की रौनक सिर्फ नए कपड़ों और सजाए हुए

घरों में नहीं होती बल्कि खुशबुओं से भरे दस्तरखान में भी नजर आती है। ईद के रिवायती खाने खानदान को एक जगह जमा करते हैं और मेहमानों के लिए मोहब्बत का इजहार बनते हैं। ईद की तैयारी अक्सर चंद दिन पहले शुरू हो जाती है। घर की सफाई, नए लिबास की तैयारी, मिठाइयों का इंतजाम और मेहमानों के लिए जरूरी अशिया खरीदना इसी सिलसिले का हिस्सा है। पुराने वक्त में कई घरों में खवातीन मिलकर बैठे और नमकीन पकवान तैयार करती थी। आज बाजारों से तैयार खाने भी मिल जाते हैं लेकिन घर के बने हुए पकवानों की अहमियत अब भी बरकरार है। ईद की सुबह अक्सर नमाज और मुबारकबाद से शुरू होती है। इसके बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बुजुर्गों से मुलाकात करते हैं और उनका अहवाल पूछते हैं। घर में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। हर आने वाले के लिए कहवा, खजूर और मिठाई पेश की जाती है। मजलिस में बैठ के पुरानी यादें, घर के हालात और ईद के खानों के बारे में गुफ्तगु की जाती है। ईद उल फितर में रमजान के बाद पहला नाश्ता खास अहमियत रखता है। मीठे और नमकीन पकवानों का तवाजुन इस खुशी को पुरकशिश बनाता है। बलालीद तो मीठी वर्मिसली और अंडे से तैयार होती है, कई खानदानों में पसंद की जाती है। इसके अलावा लुकेमात, असीदा और खजूर से बने पकवान भी ईद के दस्तरखान को सजाते हैं। ईद उल अज़हा का दस्तरखान गोश्त की बुनियादी अहमियत की वजह से जरा मुख्तलिफ होता है। कुर्बानी के गोश्त को खानदान, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जरूरतमंद अफराद में तकसीम करने का मकसद प्यारी नियमत को सबके साथ शेयर करना है। गोश्त और चावल से तैयार होने वाला मजबूज या गोश्त के साथ सुरीद ईद की दावत में पेश किए जा सकते हैं। अलग अलग घरों में ईद के खानों का अंदाज मुख्तलिफ होता है। कहीं चावल वाला गोश्त ज्यादा पसंद किया जाता है, कहीं ग्रिल्ड गोश्त, हरीस या दूसरे रिवायती पकवान, लेकिन इन तमाम डिशेस में एक बात मुश्तरक होती है। खाना आमतौर पर मिल बांट कर खाया जाता है। बड़े प्लेटर या छोटी डिशों में दस्तरखान लगाया जाता है जहां हर शख्स अपनी पसंद की चीज ले सकता है। ईद के दस्तरखान पर मिठाइयों का भी खास मकाम होता है। लुकेमात, खजूर से बनी मिठाइयाँ, बिस्किट और मुख्तलिफ पेस्ट्रीज को मेहमानों के सामने पेश किया जाता है। बच्चों को मिठाइयों का इंतजार रहता है जबकि बुजुर्ग कहवे के साथ उनका लुत्फ उठाते हैं। घर में मौजूद हर शख्स अपने तरीके से ईद की मिठास महसूस करता है। पहले जमाने में किसी घर की खुशी का अंदाजा इस बात से भी होता था कि वहाँ कितने मेहमान आए और कितना खाना दूसरों के घर भेजा गया। पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त एक दूसरे को पकवान भेजते थे। अज्जा और खाने का तबादला सिर्फ बावर्ची खाने की चीजों का तबादला नहीं था बल्कि अपनाइयत और ताल्लुकात को मजबूत करने का तरीका भी था। ईद पर बच्चों के लिए ईदी का रिवायती तोहफा भी खुशी बढ़ाता है। वो बुजुर्गों से मुलाकात करते हैं, दुआ लेते हैं और अपने छोटे छोटे तोहफों या रकम को खुशी से संभालते हैं। इसके साथ मिठाई और कहवे की महफिल उनके लिए ईद की याद को और दिलचस्प बनाती है। बुजुर्गों का एहतराम और बच्चों की खुशी उस दिन के खानों को एक जज्बाती मायने देती है। आज दोहा में ईद के दस्तरखान रिवायती और जदीद दोनों रंगों के हामिल हैं। कुछ खानदान पुराने कतरी खाने तैयार करते हैं जबकि कुछ बाजारों या रेस्टोरेंट से नए अंदाज के पकवान हासिल करते हैं। इस तब्दीली के बावजूद खानदानी इज्तमा और मेहमान नवाजी की बुनियादी कदर नहीं बदली। ईद के खाने असल में कतर की सामाजिक दार को जाहिर करते हैं। शुक्र, सखावत, इज्जत और मिलजुल कर खुशी मनाने का जज्बा। एक प्लेट खाना किसी मेहमान के लिए इस्तकबाल बन सकता है और एक दावत टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकती है। ईद का दस्तरखान हमें याद दिलाता है कि खाना ज्यादा पुरजोश होता है जब वो बांटा जाए। कतरी ईद की रिवायत में असल जायका सिर्फ मसालों का नहीं बल्कि मोहब्बत, दुआ और अपनाइयत का होता है। तो लिसनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।

0: 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश और शो लेकर आ गई हूं आपके लिए एक दफा फिर से स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स। इस शो में अंबिया कराम अलैहि सलाम के वाकयात हम आपको सुनाते हैं और साथ ये भी बताते हैं कि ऐसा ना समझा जाए कि कोई माजी की कहानियां हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए रहनुमाई का जरिया है। इन वाकयात में हमें ईमान की हकीकत, सब्र की ताकत, तवक्कुल की खूबसूरती और अल्लाह के सामने झुक जाने की अजमत नजर आती है। अपनी गुज़श्ता एपिसोड में हमने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की जिंदगी के सफर का आगाज किया था। हमने देखा कि किस तरह हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपनी कौम को गौर व फिक्र की दावत दी। उन्होंने बुत परस्ती के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने लोगों को समझाया कि जिन चीजों को वो माबूद बनाते हैं वो ना तो सुन सकती हैं, ना नुकसान दूर कर सकती हैं और ना किसी को हकीकी फायदा पहुंचा सकती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपनी कौम के सामने तौहीद का पैगाम पेश किया, लेकिन जब उनकी कौम ने उनकी बात कबूल करने से इनकार किया तो मुखालफत बढ़ गई, यहां तक कि उनकी कौम ने उन्हें आग में डालने का फैसला किया। जाहिरी हालात को देखें तो एक इंतहाई खतरनाक लम्हा था। एक तरफ पूरी कौम की ताकत थी और दूसरी तरफ एक अकेला अल्लाह का नबी। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का ईमान उन्हें ये यकीन दिला रहा था कि इंसानों की ताकत अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने उन्हें आग से महफूज रखा और वाजे कर दिया कि जब अल्लाह किसी बंदे की हिफाजत फरमाए तो कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का सफर यहां खत्म नहीं हुआ। आज हम इसी सफर को आगे बढ़ाएंगे। आज की किस्त का मरकजी मौजू है अल्लाह के सामने मुकम्मल तस्लीम और फर्मा बरदारी। यानी जब रास्ता मुश्किल हो, जब हालात हमारी समझ से बाहर हो, जब हमें मुस्तकबिल का पूरा नक्शा मालूम ना हो और जब हमें किसी फैसले की हिकमत फौरी तौर पर समझ ना आए, तब भी अल्लाह ताला पर एतमाद रखते हुए उसके हुक्म की पैरवी करना। आज हम हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, हजरत हाजरा अलैहि सलाम और हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की जिंदगी से जुड़े चंद अजीम वाकयात पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की अल्लाह की खातिर हिजरत कैसी थी। हजरत हाजरा अलैहि सलाम और हजरत इस्माइल अलैहि सलाम का एक बेआबो गया वादी में पहुंचना। हजरत हाजरा अलैहि सलाम की पानी की तलाश और उनकी जद्दोजहद, जमजम के पानी का जहूर, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम और हजरत इस्माइल अलैहि सलाम का अजीम इम्तिहान और फिर बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद करना। एक बाप अपने खानदान को एक ऐसी वादी में छोड़कर वापस जाता है

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक। राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 1:30।
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर विद आरजे नाजिया, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर विद आरजे नाजिया, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: सलाम आदाब, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अब ये कह सकती हूँ, क्योंकि हुआ क्या, जैसे ही मैं स्टूडियो में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि भाई प्लेलिस्ट तो अभी है नहीं। फिर मैंने कुछ आस, थोड़ी सी उम्मीद से आगे बढ़ के फ़ोन उठाया और मैंने देखा कि भाई हमारा जो फ़ोन है ना स्टूडियो का, वो अपनी आखिरी सांस ले रहा है या भर रहा है। फिर मुझे लगा कि अब क्या, अब मुझे तलाश थी ना किसी ऐसे मददगार की, तो फिर मुझे ये गाना मिल गया। मैंने कहा वाह, चलो व्हाट अ रिलीफ। कई बार छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हमने बिल्कुल साइड में रख रखा होता है ना, वो हमारे लिए इतनी यूज़फुल, इतनी हेल्पफुल हो जाती हैं कि हाय, पिछले 2 दिन से मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी गाने की, मुझे ख्याल ही नहीं आ रहा था कि गाने की तरफ भी जाना चाहिए, और आज गाने ने ना अपनी दमदार प्रेजेंस का एहसास दिलाया। तो बस कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो हम यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर हमें पता चलता है ये तो हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है या कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो बस आज भी कुछ ऐसा ही है जिसे हम अप्रिशिएट तो करते हैं लेकिन शायद उतना हाईली अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो बस मैंने सोचा क्यों ना आज हम बात करें उन हेल्थ केयर हीरोज की जो अक्सर स्पॉटलाइट में नहीं होते हैं, लेकिन हर मुश्किल लम्हे में देखा जाए तो सबसे आगे नज़र आते हैं। जब हम या हमारा कोई भी अपना दर्द से, घबराहट से, इमरजेंसी में हो और परेशान हो, तो अक्सर सबसे पहला चेहरा उस शख्स का जो हमें तसल्ली देता है, हाँ उस शख्स का तो बहुत तसल्ली देता है जो हमारे सारे मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर कर रहा होता है, लेकिन उसके अलावा एक और चेहरा जो बहुत ज़्यादा तसल्ली देता है वो होता है हमारे नर्स या फिर ब्रदर। तो आज इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम आपके साथ जुड़ गए हैं। पूरे 1 घंटे आपके साथ जुड़े रहेंगे, 1 घंटे तक बात करेंगे। आप कहाँ जुड़ सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ, 666-22-107 पर। देखिए आज है 14th of October, वेंसडे का दिन, और आज हम जो हैं वो हम और आप ऑब्जर्व करते हैं इमरजेंसी नर्सेज डे, जो हर साल देखा जाए तो अक्टूबर के दूसरे वेंसडे को मनाया जाता है। ये बेसिकली उन डेडिकेटेड नर्सेस और ब्रदर्स को अप्रिशिएट करने का दिन होता है जो हर रोज़ प्रेशर में, हर रोज़ चैलेंजिंग सिचुएशन में पेशेंट्स की देखभाल करते हैं। तो आज आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करेंगे, हम आज इनके बारे में बात करेंगे। भाई बिल्कुल बात करेंगे और बहुत दमदार तरीके से बात करेंगे। देखिए मुझे पता है कि हर किसी का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, यहाँ इस कंट्री में भी नर्सेस के साथ आपका अलग हो सकता है एक्सपीरियंस हो, अगर आप अपने कंट्री में भी हो सकता है कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, कुछ नॉट सो कूल एक्सपीरियंसेस हो, बट स्टिल हम और आप ये तो मानते ही हैं और जानते ही हैं कि ये जो रोल है नर्सेस का ये बहुत ही कमाल का है। एक नर्स सिर्फ हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये मेडिसिन ट्रीटमेंट ये नहीं देती, कई बार हमें हिम्मत भी देती है, हमें कई बार उम्मीद भी देती है। इनिशियली डॉक्टर्स तो बाद में आते हैं, इनसे हमें कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है। तो सवाल जो निकल कर आया मेरे जहन में वो ये कि एक नर्स, ग्रेट नर्स कैसे बनती है, कौन से ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि एक नर्स को ग्रेट नर्स बना देती है। क्या आपको लगता है कि उसका जो केयरिंग नेचर है वो उन्हें बहुत ग्रेट बनाता है, या आपको लगता है कि उनका सो कॉल्ड पेशेंस वाला जो उनका जो उनकी ट्रेट है वो उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रेट बनाती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इनका जो प्रोफेशनल, जो इनकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो उन्हें बहुत ग्रेट बनाती है, या फिर उनका शायद पॉजिटिव एटीट्यूड, या फिर शायद कुछ हो, जो भी। तो बस आज हम बात यही करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो डे है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इमरजेंसी नर्सेस डे के तौर पे। तो आज आपको मुझे बताना है एक नर्स, ग्रेट नर्स कैसे बनती है, व्हाट आर द क्वालिटीज यू बिलीव जो बहुत मैंडेटरी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ ये तो नर्सेस में या फिर जो इस प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं उनमें डेफिनेटली होनी ही होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो बड़ा मसला है। कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखो डॉक्टर में ना इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो पेशेंट को बहुत आराम से, इत्मीनान से देर तक सुन सकें। जो कि हर पेशेंट की ख्वाहिश भी होती है, लेकिन इतना हो नहीं पाता है शायद उस तरह से. बहुत बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा उतना हार्ड सा या थोड़ा सा हार्ड सा एक्सपीरियंस हो जाता है डॉक्टर्स के हवाले से, यहाँ नहीं अपने कंट्रीज में. बट आज इन सब चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को तो साइड में रखेंगे, वील जस्ट टॉक एंड फोकस ऑन मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स. तो बस आपको मेरे साथ जुड़ना है, अपना हाल चाल मुझे बताइए और कहाँ हैं आप, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, वो भी आप मुझे बता सकते हैं. नंबर्स हैं 6622107. अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कॉल ही करना है, कॉल पर बात करनी है, तो क्यों नहीं, कॉल करने के लिए नंबर है 4433477. इसी के साथ मेरे साथ कोई है, चलिए बात कर लेते हैं. हेलो, गुड आफ्टरनून, सलाम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, आप कैसे हैं?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह.
2: मुदस्सिर जी मेरे साथ, रईस जी
3: नहीं, आसिफ अंसारी.
2: आसिफ अंसारी, माय बैड. अच्छा, कैसे हैं, सब ठीक? अभी तक का दिन अच्छे से गया? आज तो

0: बारिश होनी चाहिए और थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया इसकी बड़ी खुशी है बारिश की है तो प्रेडिक्शन सो लेट्स सी
1: लेकिन बारिश होनी चाहिए थोड़ी सी दो चार बूंद ही गिर जाए
0: कुछ तो हो मेहरबानी हम पर
1: कुछ तो हो
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह
1: कौन सी सजा दे रहा है अल्लाह ताला
0: ये किसको सजा मिलनी चाहिए थी जो हम लोग को मिल रही है ये भी एक सवाल है अच्छा चलिए आसिफ जी आज हमारा जो डे है वो है इमरजेंसी नर्सेस डे इस डे को हम सेलिब्रेट करते हुए आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपके नज़दीक एक अच्छी नर्स की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी आपके हिसाब से क्या है क्या कंपैशन है कि बहुत बहुत ही यू नो मेहरबान मेहरबानी वाली है क्या आपको लगता है पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है मतलब सब्र हो या उनकी प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर उनका जो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए वो बहुत आपको लगता है इंपॉर्टेंट है या कोई और क्वालिटी
1: सबसे अच्छी चीज़ जो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए ठीक है
0: नाइस
1: बाकी चीज़ जो है बंदा क्या है मैं आपको बताऊँ आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ बीमारी है कुछ भी है अगर आपको एक बिलीव है ठीक है कि उस डॉक्टर के पास मैं गया जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा ठीक है और सेम मेडिसिन दूसरा डॉक्टर दे रहा सारी चीजें दे रही है लेकिन अंदर से आदमी खुश नहीं होता है तो वो जो है ठीक नहीं होता है ठीक है कितनी भी अच्छी मेडिसिन यूज कर लो लेकिन जो आपका जो है परमानेंट डॉक्टर है आप उसके वहां गए आप आधे से ज्यादा तो वहीं पे सही हो जाते 50% आपको जो इसके बाद जाते ही सही हो जाते
0: बिल्कुल सही है यही होता है दर्द हो तकलीफ हो पहुंचे आप हॉस्पिटल आप थोड़ा बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं
1: बस ये होता है डॉक्टर का डॉक्टर हो या नर्स हो सामने वाले जिसके ऊपर ब्लीप सबसे ज्यादा होता है आदमी उसी के पास जाता है आधी बीमारी वो ऐसे ही सही कर देता है
0: यूं ही सही हो जाती है
1: चेहरा देख के
0: हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने तो मतलब आपके हिसाब से सबसे ज्यादा जो है वो पेशेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड हाँ ये आपने कहा ये दो चीजें बहुत जरूरी हाँ ये बात तो है अगर कोई आपसे एकदम रूडली बात करेगा ना तो फिर परेशानी में
1: मतलब एक तो फिर बंदा परेशान है एक तो बंदा परेशान है बीमार है ऊपर से हम रूडली बात कर रहे हैं उससे तो उसको कैसा लगेगा ठीक है पॉजिटिव एटीट्यूड होता है एसेंस होता है आदमी को जो है क्या बोलते हैं उसको थोड़ा सा हौसला देना
0: राइट
1: बंदा अपने आप जो है सही हो जाता है उतना प्रॉब्लम नहीं होता
0: बेहतर फील करते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा
1: बेहतर फील करता है क्योंकि कभी जो है बोला नहीं जाता है डॉक्टर भी बोलते दुआ कीजिए
0: सही
1: दवा तो दे ही रहे दुआ भी कीजिए तो वही मसला है कि दवा के साथ साथ जो है अगर आपको अच्छी चीज बात सुनने को मिलेगी पॉजिटिव तो बंदा अपने आप सही हो जाएगा अगर निगेटिव सोचते रहोगे तो बंदा वो उसी में एक बीमारी छोड़ के दूसरी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा
0: सही कहा आपने ये बात है तो सामने वाले का पॉजिटिव एटीट्यूड जो है आपको एकदम इंस्टेंट आप कहिए कि वो डोज का काम करता है एंड जाहिर है डॉक्टर तो बाद में आते हैं नर्सेज या फिर जो ब्रदर्स हैं वही हमें अटेंड कर रहे होते हैं हाँ तो उनका थोड़ा सा पेशेंस
1: है बहुत से लोग अब अपना अपना नेचर है बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब पेशेंस इतना होता है उनके अंदर की मरीज को जो है बहुत डॉक्टर के आते आते उनको जो है संभाल के रखते हैं और अच्छी बात करते हैं तो उससे बंदा जो है थोड़ा सा रुका रहता है अगर पेन भी हो रहा है तब भी वो कितना भी हो और अगर किसी खतरनाक डॉक्टर के पास चले जाए तो फिर आधा जो है डबल बीमारी जितनी बीमारी लेके गए दूसरी बीमारी भी लेके वो बोल
0: नहीं कई बार ऐसा होता है डॉक्टर्स तो देखिए अपने पेशेंट का बेस्ट ही चाहते हैं लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि बहुत बेचारे हम्बल काइंड या उतना सॉफ्ट स्पोकन नहीं होते थोड़ा सा हार्श हो एकदम रूड सा वैसे तो अब इस प्रोफेशन में नहीं कोई भी ऐसा नहीं है सबको ट्रेन किया जाता है कि आप थोड़े सॉफ्ट स्पोकन आप थोड़े से कूल हम्बल रहिए व्हेन यू आर हैंडलिंग द पेशेंट बट स्टिल आई से कि कई बार इरिटेटिंग पेशेंट्स भी बहुत इरिटेट कर देते हैं
1: आपको मैं एक चीज बताऊं मेरा जो एक्सपीरियंस है
0: जी जी
1: आप जितने बड़े डॉक्टर के पास जाओगे ठीक है उनका नेचर बिल्कुल सॉफ्ट ठीक है और वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो डॉक्टर के यहाँ काम वाम करके बहुत सारे लोग जो है बन जाते हैं या छोटे डॉक्टर जो होते हैं ठीक है
0: हाँ,
1: तो उनका नेचर अलग होता है उनका एटीट्यूड अलग होता है

0: कि वो सोचते हैं कि मुझे 100 रुपए एक मरीज देके जा रहा है, बस टेंशन नहीं है मुझे.
1: ठीक है, सही कहा आपने, ये बात तो है,
0: वही चीज है.
1: बिल्कुल, जितना बड़ा डॉक्टर उतना हम्बल, उतना कूल हेडेड. दैट्स राइट, बिल्कुल.
0: उसने मेडिसिन लिख देनी है, राइट कर देनी है, आप जाओ ले लो और थोड़ा सा जो है बता देते हैं. कुछ भी उसका परहेज करने का तरीका भी अलग होता है, कुछ भी खा सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा इस चीज से जो है ये चीज थोड़ा सा अभी मत खाओ तो ज्यादा बेहतर होगा.
1: हाँ,
0: वो अपना काम कर देता है.
1: अगर कोई डॉक्टर एकदम बम्बार्ड कर दे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो आपको लगता है कि ये सब चीजें तो मेरी फेवरेट थी, सब कुछ तो मना हो गया, मैं खाऊंगा क्या.
0: वो डॉक्टर बोलते अभी थोड़ा सा परहेज कर लो इस चीजों से, दो चार दिन के बाद स्टार्ट कर देना.
1: स्टार्ट कर ठीक है. सही सही, बहुत ही अच्छी और बहुत डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया आसिफ जी. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कॉल, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज. सो यार, आज का दिन वी आर सेलिब्रेटिंग लाइक इमरजेंसी नर्सेस डे. चलो इमरजेंसी तो साइड में कर देते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नर्सेस. तो आपके हिसाब से एक नर्स, ग्रेट नर्स कब बनते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो उनमें होना मैंडेटरी है. कुछ तो मैंने अपनी तरफ से बोला, हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और बहुत कुछ आपके जहन में आ रहा हो. एक क्वालिटी पे ज़रूर फोकस कीजिएगा जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है. और अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका तो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट एंड शेयर विद अस. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107. कॉल करने के लिए नंबर है 4434377. एंड यस, वी आर कनेक्टेड टू वन मोर कॉलर. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
2: कैसे
1: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या नाम है आपका?
2: नौमान.
1: कैसे हैं नौमान, खैरियत से हैं?
2: तो
1: लो वो ये ना सारा इल्जाम हम पे ही. अरे वो तो खुद वो खुद इतना छटपटा रहे थे, पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि एक घंटा कम में, पहले बोले मेरा कम में गुजारा ही नहीं है, मेरा गुजारा ही नहीं है. मैंने कहा चलिए कर लीजिए कुछ कुछ, थोड़ा बहुत 15 मिनट मुझे दे दीजिए, ज़्यादा आप ले लीजिए कर लीजिए. बट नहीं, ही इज़ लाइक एडमेंट, कम में मेरा गुजारा नहीं है, मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए. यही इन्होंने रट लगा रखे थे, वही वही प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम थी. अब ज़्यादा ज़्यादा इन्होंने रट लगाई तो सबने कहा चलो ठीक है, फिर इन्होंने मॉर्निंग शो दिया जाए. एंड दैट्स हाउ ही इज़ डूइंग द मॉर्निंग. 3 घंटे का वही था मैक्सिमम टाइम का, तो बस ये कहानी है. अच्छा, उनसे बात नहीं, चलिए किसी दिन आप उठिएगा, वो तो 3 घंटा है, कभी भी आपको टाइम मिले तो ज़रूर जुड़िएगा इंशाल्लाह.
2: आज आपने जो टॉपिक दिया है उसके ऊपर अभी जो थोड़ी सी बात हुई है, मैं ये समझता हूँ उसके ऊपर कि एक नर्स हो, देखें डॉक्टर की क्राइटेरिया अलग है, नर्स का क्राइटेरिया अलग है. मैं ये समझता हूँ कि नर्स को जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ प्रोफेशनलिज्म जरूर होना चाहिए उसमें. अगर वो उसको छोड़ देना तो जो एज ए पेशेंट मैं है ना, मैं उसके साथ बिहेवियर अच्छा, उसको नर्स समझकर एक इंसान है ना कि बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं रहेगा. ये तो फ्रैंक है, या ये तो बिल्कुल ही पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोफेशनलिज्म उसका बहुत जरूरी है.
1: प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए.
2: नहीं है तो फिर जो है वो हम उसको बहुत लाइटली, एक नर्स का ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उसको इंसान इतना ज्यादा जो है ना इतने ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता एज ए डॉक्टर, एज ए डॉक्टर
1: कंपेयर करें तो. ठीक है, बिल्कुल सही.
2: तो इस वजह से
1: नहीं, आपने बहुत ही वैलिड बात कही. प्रोफेशनल स्किल्स ही नहीं है तो फिर आप तो एलिजिबल ही नहीं है, है ना? तो फिर आप तो क्या ही हैंडल करोगे, वो बात है. एंड देन
2: कस्टमर, अगर वो एज ए पेशेंट को जो है वो सिर्फ उसका दर्द महसूस करके या उसके साथ फ्रैंक होकर तो उसको खुद जो है वो महसूस होने लग जाएगा मैं क्या करूँ, इतना परेशान है वो. नहीं भाई, उसे आप अपना काम करना पड़ेगा.
1: अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि जैसे आप मान, चलिए मेरे साथ होता है, मैं अपना बताऊँ कि मुझे थोड़ा सा इंजेक्शन वगैरह से बहुत डर लगता है, तो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट होके कि मैं हाथ नहीं, अरे तो कुछ कई बार ऐसा, यहाँ पे तो नहीं मैं आपको बताऊंगी, अपने कंट्री में वहाँ पे जो है ना नर्स या वो जो ब्रदर्स होते हैं वो ऐसे कस के कहते हैं अरे हमारे पास 75 काम है, देखो 4 लोग लगे हुए हैं पीछे लाइन में, आप ये नाटक कर रहे हो मैडम, इस तरह से बोलते हैं. तो आपको लगता है ठीक है, हालांकि दे आर क्वाइट प्रोफेशनल, उनका तो काम है, उन्हें तो लगाना ही है, उनको जो कहा है डॉक्टर ने करना ही करना है. बट अब हम भी डर रहे हैं एंड दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वे, यू नो, पेशेंट की साइकोलॉजी. एंड दैट्स ट्रू कि उनके पास इतने पेशेंट्स हैं.
2: आप जो है वो

0: सनशाइन वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर होते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा लोगों को डील कर चुके होते हैं डेली बेसिस के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक. ऐसा हो सकता है बिल्कुल ऐसा उनके वो भी ऐसा कर लेते हैं लेकिन हम में भी तो पेशेंस नहीं है तो.
1: हम में भी नहीं है ट्रू. और ये बात जो आपने की ना उनपे बर्डन भी बहुत है लोड भी बहुत है शायद काम का तो उस तरह से हम नहीं सोचते.
0: तो आपको डॉक्टर तो आपको देख के जाता है सारी चीजें आपको बात करके जाता है वो आपसे बात भी कर लेता है आपको मुतमईन भी कर लेता है उसका तो पेशेंस होना जरूरी है क्योंकि आप उसी से मुतमईन हो रहे हैं. लेकिन बाकी का जितना काम है बैंडेज है या ईच एंड एवरीथिंग जो भी इसके बाद के डिसीजन है वो जो नर्स ने करने एक एक पेशेंट तो नहीं है हजारों पेशेंट है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो परेशान हो जाता है समझे होता है लेकिन बहरहाल उसको प्रोफेशनलिज्म उसका बरकरार रहना चाहिए.
1: दैट्स ट्रू.
0: बिल्कुल ही उसको जो है वो बहुत ज्यादा पोलाइट भी सही नहीं है बहुत ज्यादा जो है वो
1: गुड बैलेंस क्रिएट करें. एंड एज यू सेड कि प्रोफेशनल स्किल्स सबसे ज़्यादा मैंडेटरी हैं. हाँ वो तो है ये तो बात है. हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि कोई अनप्रोफेशनल बंदा आ जाए और वो हमें हैंडल करें तो हमें भी नहीं अच्छा लगेगा ना. तो वी ऑल्सो लुक फॉर समबडी
0: कि हम चाहते हैं कि हमसे पोलाइटली बात करें तो उसके अंदर वो इतना हमारी जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है पेशेंट के अंदर उससे मिस्टेक होने का खतरा है समटाइम्स हो सकता है पॉसिबल है.
1: पॉसिबिलिटी
0: अगर बिल्कुल ही इन्वॉल्व हो जाएगा बिल्कुल ही पोलाइट हो जाएगा पोलाइट से मतलब एटीट्यूड सही रहना चाहिए बात अच्छे तरीके से करें
1: सही
0: लेकिन इन्वॉल्व ना हो जाए भी.
1: सही बहुत सही कहा वेरी वेल सेड. बहुत ही अच्छी बात और थैंक यू सो मच नमान कि आप जुड़े और आपने कॉल की और इतनी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए हमारे ऑडियंस के लिए. थैंक यू सो वेरी मच. अपना ख्याल रखिएगा जी. ओके अल्लाह हाफिज. ऑलराइट आज बात हो रही है नर्सेस की तो आपका कोई एक्सपीरियंस है कोई कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं या फिर आप यही बताना चाहते हैं कि एक नर्स ग्रेट नर्स कैसे बनती हैं तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए. 666-2107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है. आपसे थोड़ी देर बाद जैसे ही फ़ोन महाराज जागेंगे तो आपके मैसेजेस हम वहाँ पर शामिल करेंगे. और हाँ अगर आप डायरेक्टली कॉल करना चाहते हैं we have the number 443-443-77. A caller hamare saath yahan par connect ho gaya. Hello.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kya haal chaal hai aapke?
2: Alhamdulillah. Mera naam Riyaz hai.
1: Riyaz ji, khairiyat se?
2: Alhamdulillah. Theek hai.
1: Alhamdulillah, bilkul theek. Acche wale mausam ko enjoy kar rahe hain
2: aap? Aaj mashallah mashallah. बस उम्मीद है अभी ये आगे और भी अच्छा होगा
1: इंशाल्लाह. कुछ सुबह बादल वादल नजर आए आपको कि नहीं?
2: जी जी आप जब से कबीर किया है तो उसी दिन
1: अंधेरा जा गया है.
2: अंधेरा अंधेरा तो हर सुबह होता है लेकिन आज थोड़े बादल थे तो
1: अच्छा. मैंने कहा जब से कबीर गया सरवर भाई आए हैं अंधेरा छा गया आंखों के नीचे.
2: मैं इतना खुल के नहीं बोल सकता ना
1: नहीं ऐसा मुझे लगा आप सॉरी मुझे ऐसा लगा कि आप ये बोलने वाले वैसे मेरे दिल में
2: मैं अभी समझ गया हूँ ना थोड़ा सा मतलब वो क्या बोलते है कि सब कुछ एक साथ नहीं बोलते है ना फिर दीवारों की भी कान होती है कल सुबह फिर उनसे सामना होगा तो ऐसा ना हो कि कहीं सुन
1: हाँ भाई ये बात तो है दीवारों की भी कान होते हैं
2: मेरे को बोलेंगे कि हाँ आ जाओ भाई साहब आप कल 1:30 बजे क्या बोल रहे थे थोड़ा सा
1: मुकर जाएगा. मैं तो 1:30 बजे था ही नहीं बिल्कुल एकदम खुला क्योंकि 1:30 बज भी नहीं रहे आप एकदम मुकर जाइएगा ठीक है. अच्छा चलिए हम आपको भी सेव करते हैं और अपने आप को भी सेव करते हुए अब सवाल पे आते हैं. कुछ कहना चाहेंगे आज हम जो हैं वो नर्सेस के हवाले से बात कर रहे हैं. आपके नज़दीक एक अच्छी नर्स की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी आपके हिसाब से क्या है?
2: अच्छा नर्सेस जो होते हैं ना वो आमतौर पर जो जैसे नॉर्मल बीमारी वगैरह होती है वो एक अलग बात है लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें सबसे आगे ये लोग होते हैं.
1: सही कहा.
2: और उनको उनको उतना एप्रिसिएशन और वो अक्सर नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए.
1: बिल्कुल सच बात है.
2: और दूसरी बात यह है कि सबसे जरूरी चीज मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए हौसला है. जिस हौसले के साथ वो लोग सिचुएशन को हैंडल करते हैं ना, अक्सर क्या होता है, अक्सर बहुत से पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जो उल्टा इरिटेट कर देते हैं, जो उनको भी समझ नहीं आता है कि मतलब जल्दी जल्दी करते हैं या मतलब होते हैं कुछ
1: बिल्कुल।
2: उन लोगों का जो सबर होता है ना, एक और चीज सबर, इस सबर के साथ जिस हिसाब के साथ वो लोग सब कुछ आराम से हैंडल करते हैं, तो उनको सलूट है। क्योंकि मेरे हिसाब से क्या होता है कि पेशेंट को हैंडल करना अलग बात है, लेकिन जैसे गांव साइड में या ऐसे बोलते लोग पेशेंट के साथ जो आते हैं वो अक्सर पेशेंट से ज्यादा पेशेंट होते हैं। एक पेशेंट होता है, एक पेशेंस होता है, तो कुछ कुछ में पेशेंस नहीं होता है, पेशेंट होता है लेकिन पेशेंस
1: नहीं होता। वेरी वेल सेड, बहुत अच्छा बोला।
2: ये लोगों का काम नाजिया जी बहुत ज्यादा टफ है। अगर मैं सामने से देख रहा हूँ ना तो बहुत इजी है, लेकिन वो लोग वो कहते हैं ना कि किसी के जूते में अपना पाँव रखो और थोड़े देर चलो तो आपको पता चल जाता है कि वो किस सिचुएशन में है।
1: स्पेशली कोई जैसे रईस जी, कोई स्पेशली कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो देखिए हम और आप तो है, मतलब हम देख लें सब चीज़ें, हम तो बिल्कुल पैनिक, एकदम अजीब सी हालत हो जाएगी। और उस सिचुएशन में सही फैसले करना, जल्दी से सारी चीज़ें करना, जो फर्स्ट एड हो सकती है वो करना, तो बहुत चैलेंजिंग जॉब है, बहुत चैलेंजिंग,
2: बहुत बहुत चैलेंजिंग है। और मैं एक छोटा सा वाक्या शेयर करना चाहूँगा।
1: जी जी।
2: मेरे मतलब मेरे कजन का एक बेटा है, तो वो उस टाइम पे मेरे ख्याल में तकरीबन होगा 12-13 साल का होगा, इस आसपास उम्र में 11-12 साल का। तो वो लोग एक बड़ा ग्लास लेके आए थे घर में, लेकिन लगाया नहीं था, दीवार के साथ लगाया था, एसी रखा था, मतलब लगाने के लिए, लेकिन लगाया नहीं था और एसी रखा था, और उसका इसकी जो जमीन थी ना वो गीली थी, उधर पानी गिरा था। तो ये मेरा भांजा जो है ये आया, और तकरीबन शाम के बाद का टाइम था, और किस्मत देखो उधर ही फिसल गया और सीधा शीशा के साथ उसका हाथ सब कुछ लग गया एकदम से। और इतने में मतलब थोड़ी बहुत चीखे मीखे और चिल्लाने की आवाजें आई, तो मैं भाग किया और गाड़ी माड़ी सब कुछ हो गया इमरजेंसी। तो वो मेरे गोद में था, मैंने पकड़ा हुआ था, और उसका हाथ मैं नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर मेरा उसका हाथ छोड़ता तो वो पूरा खून तो खून था, वो जो गोश्त था ना वो भी अलग होने वाला था, इतना वो मतलब इशारत में था। तो उस सिचुएशन में ये इमरजेंसी और ये नर्स और ये डॉक्टर सब ने मिलकर जो हमको संभाला, सिचुएशन को संभाला, ये एक बात है मेरे जिंदगी के साथ ना एक। तो मैं कभी भी किसी भी नर्स को, किसी भी डॉक्टर, मैं सबसे पहले सलूट करता हूँ कि भाई लोग आप जो करते हो ना वो कोई नहीं करता है। और
1: तो और शायद इसीलिए ना, अगर हर कोई बहुत ही कंपैशनेट हो जाए या बहुत ज़्यादा यू नो इमोशनली, जैसे एक हमारी कॉलर जुड़े उनका जुड़ेगा, तो वो अपना प्रोफेशनल स्किल्स उस तरह से नहीं दिखा पाएगा। अब कुछ सिचुएशन में आपको फॉरन ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है, तो फिर अगर आप बहुत इमोशनली अटैच है तो आपके लिए मुश्किल होगा करना।
2: मुन्ना भाई MBBS में वो प्रोफेसर का करेक्टर वो बहुत स्ट्रिक्ट दिखाया है ना।
1: जी जी जी।
2: वो इसलिए दिखाया है कि अपने पेशेंट के साथ मतलब ज्यादा वो नहीं होना है, ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, लेकिन ज्यादा वो भी नहीं, क्योंकि वो जब इमोशन आ जाता है ना तो आपको फिर वो उस हिसाब से आप नहीं कर सकोगे। तो कभी कभी ना पेशेंट के सेहत के लिए या पेशेंट के ठीक होने के लिए उनको डिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कोई बोलना पड़ता है।
1: सही। तो बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छा किस्सा भी आपने शेयर किया अपना पर्सनल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
2: बाकी कल का शो आखिर आगे आओगे फिर,
1: सॉरी
2: नेक्स्ट वीक में आओगे आप? नेक्स्ट वीक में
1: नहीं, नेक्स्ट वीक में तो मैं नहीं हूँ, सफा जी होंगे आपके साथ।
2: जी जी जी जी।
1: 2 weeks के बाद फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके साथ 1st November से। انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا. اوکے تھینک یو ونس اگین. اللہ حافظ. اللہ حافظ. آل رائٹ دوستو, یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک پہ فردر بات کریں گے. تب تک آپ بھی سوچ کے رکھیے کوئی ایسا قصہ جو نرس کے ساتھ پرٹیکولرلی ایسوسیٹ کرتا ہے, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا جہاں آپ واقعی آج ٹائم نکال کے اس انسیڈنٹ کو یاد کرتے ہوئے انہیں اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, یا پھر لیٹس اسٹک ٹو آر کوشچن جو ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ ایک نرس کمال کی نرس کیسے بنتی ہے, کون کون سی کوالٹیز ان میں ہونا مینڈیٹری ہے. تو یہ سوچ کے رکھیے, واپس آتے بس میں یوں گئی اور یوں ہی آئی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक। दोस्तों टाइम फॉर द टाइम चेक और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में दो चार नहीं दो तीन हो रहे हैं, 2:03।
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर विद आरजे नाजिया सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी, देसी।
1: हाँ जी वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर, मैं हूँ नाजिया आपके साथ 2:03 ऑन द क्लॉक और हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो
3: सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये तो रही जी की कॉल है, कैसे आप?
3: लगता किचन उचन में तो नहीं है आप नहीं पूछेगी।
1: किचन में तो सर्वर भाई
3: कल थोड़ा सा मैं गाड़ी से बाहर निकला तो सर्वर भाई इतनी खिंचाई कर, अरे भैया रईस भाई क्या पका रहे हो किचन में हो क्या?
1: सर्वर भाई किचन में होते नहीं, किचन में फंस जाते हैं, निकलते ही नहीं। वहाँ पहुँच भी जाएंगे आप, बस एड्रेस मत दीजिएगा सर्वर भाई।
3: बेहतरीन बेहतरीन, मतलब बात करने में बड़े इंतजार, बात को ऐसा घुमाते ना।
1: अरे बस पूछिए मत, क्या घुमाते हैं लोगों को और बहुत अच्छी टोपी पहनाते हैं। कभी आपको महसूस हो कि अरे मुझे टोपी की जरूरत है, सर्वर भाई से मिल ली थी।
3: मिल ली थी फ्री में टोपी।
1: अरे ऐसी वैसी इतनी बढ़िया नाप की आपकी बिल्कुल फिट आने वाली टोपी पहनाएंगे आपको। ये तो इनका माशाल्लाह अपने काम में ना ये बंदा जो है वो स्किल्ड है इस मामले में, तो माशाल्लाह लगाइए। वैसे मुझे लगता है कि सुबह सुबह का माहौल जो है वो कोरमे बिरयानी का होगा। अब पता नहीं कैसा माहौल है बट मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह दावतें सुबह शिफ्ट हो गई, कोरमे सुबह चले गए, बिरयानियां सब सुबह चली गई, जितना कुछ आफ्टरनून में तो
3: मैं कोशिश असल में ये आपका आप लोगों का ये जो 12 बजे 1 बजे के बाद वाला होता है ना, ये थोड़ा सा टफ होता है।
1: हाँ,
3: लोग अपने ड्यूटी में ज्यादा मशगूलियत का या किसी का लंच ब्रेक या और कुछ मसला, और सुबह में लोग एकदम फारिग होते हैं, तो फारिग होने के उसमें उसका अंदाज और उस बात करने का उसमें कुछ वो लोगों का अलग
1: टाइम मिल जाता है। हाँ ये तो हमेशा से ही है कि सुबह जो है वो सबसे ज्यादा लोग होते हैं रोड पे, स्पेशली गाड़ियों में होते हैं, तो सुन भी रहे होते हैं, कनेक्ट भी हो जाते हैं। आफ्टरनून में थोड़ा सा यू नो हसल बसल तो रहती है,
3: मतलब ये टाइम या तो फिर इवनिंग में, मतलब जो लोग परागत के टाइम पे जिसका शाम को ड्यूटी है फिर उन लोगों का फिर टाइम आ जाता है,
1: आ जाता है। सही बात है,
3: तो यही सब है,
1: अपना टाइम आएगा।
3: आप अपना टाइम लेके जा रही है,
1: फिर आएगा मेरा इंशाल्लाह। फ्राइडे के दिन है और मैं फ्राइडे इंशाल्लाह ट्रैवल कर रही हूँ, फिर 2 weeks के बाद इंशाल्लाह 1st November से इंशाल्लाह।
3: भाई कुछ हो सकता है, कुछ इनविटेशन भी हो सकता है, कुछ घर का काम हो सकता है।
1: रईस जी बस दुआ कीजिए कि सारे काम ठीक ठाक तरीके से हो जाए,
3: इंशाल्लाह हो जाएगा। मतलब हो सकता है किसी के मतलब घरेलू उसमें कुछ मतलब जब रहता है कुछ
1: चलती रहती है,
3: मतलब शादी या और ये सब के उसमें तो उसमें भी आदमी का ये रहता है ख्वाहिश की पहुँच जाएंगे, ये सब जरूरी है भाई।
1: सही बात है, कुछ थोड़ी बहुत दुनियादारी तो रखनी ही पड़ती है ना, ये भी होते हैं
3: भाई रखनी, पर दुनिया में है तो भाई दुनियादारी भी तो
1: आपका। वैसे अभी प्लान है इस साल जाने का या आप अभी नेक्स्ट ईयर ही प्लान किए?
3: अभी तो मैं जस्ट आया हूँ घर से, अभी तो तकरीबन 7-8 महीने पूरे हुए हैं, तो अभी तो नहीं।
1: हाँ इंशाल्लाह
3: जाइए, अगर हालात है तो मतलब कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर अपना थोड़ा सा टाइम लगा के 1-1.5 साल का वो इसी हिसाब से ये कर किया जाता है।
1: हाँ ये भी करते हैं लोग, आराम से चले जाते हैं तो 2 महीने रह लिए, 3 महीने रहने का मौका,
3: हम 4-5 महीने भी रहने का हमको चांस मिल जाता है, तो ये सबसे
1: बड़ा माशाल्लाह।
3: 6 महीने के पहले आ जाना, तो ये चीज मतलब यहाँ से थोड़ा सा दिन पूरा करके तो फिर घर पे भी आराम से फैमिली के साथ में वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है। प्लानिंग रहता है तो कुछ कर असल में जब से मैं शुरुआत से जहाँ जितनी कंपनियों में मैं ज्वाइन किया
1: जी जी.
3: तो मैं मुझे एक महीना दो महीने वाला मुझे समझ में नहीं आता है तो या उसमें तो खाली अपने लोगों से अपना अपना ही पर्सनल जो होता है लोगों से रिश्तेदारियाँ इतनी होती हैं फिर भी इतने दिनों के बाद भी लोगों का शिकायत रह जाता है हमारे यहाँ पे इतना टाइम में एक बार से आए दो बार नहीं दिन में
1: देखिए कितना लोग आपको पसंद करते हैं कितना आपसे प्यार करते हैं.
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल वैसा है भाई बातचीत लोगों से थोड़ा सा जुड़े रहते हैं ये ऐसा नहीं है कि नहीं अब हम यहाँ पे हैं तो अब लोगों से कनेक्टिविटी अपना खत्म कर लो ये गलत है बिल्कुल कनेक्ट रहना चाहिए
1: जुड़े रहना चाहिए.
3: कि भाई देखो हम लोगों के यहाँ पे रहने के वक्त में कितने लोग हम लोगों को मतलब दुनिया में कुछ आते भी हैं और कुछ चले भी जाते हैं तो ये बड़ा मतलब होता है ये परदेश के रहने वालों के लिए और उतने जल्दी हर उसमें हम पहुंच नहीं पाते हैं घर पे नहीं पहुंच सकते ऐसे मामला भी होते हैं.
1: बिल्कुल सही बात है
3: अल्लाह माफ करे.
1: सही अच्छा रईस जी आज जो हम टॉपिक जिस पे बात कर रहे हैं वो है नर्सेस को लेकर कोई आपका एक्सपीरियंस है जहां आपको लगा कि वाकई नर्स ने आउट ऑफ वे जाकर आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट किया और आपके हिसाब से एक अच्छी नर्स की सबसे जरूरी क्वालिटी क्या हो सकती है.
3: नर्स के अंदर बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ उनके अंदर पेशेंट और ये बहुत ज्यादा लोगों को बर्दाश्त करने का उनके अंदर ये होता है मैं देखता हूँ. आजकल जो डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं तो जो थोड़ा सा बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं तो उनका एटीट्यूड कुछ अलग होता है लेकिन जो नर्स होते हैं या होती हैं तो उनका मतलब अंदाज और लोगों के साथ में रवैया कुछ और खासकर हम लोगों की इधर तो कुछ मतलब लोगों का बदलाव होता है लेकिन खासकर यहाँ के जो गल्फ के अंदर हैं तो माशाल्लाह उनका कुछ और अंदाज उनका उनसे मुख्तलिफ है और ज्यादा नरम मैं देखता हूँ तो उनको बहुत बर्दाश्त करती है क्योंकि मरीज का ऐसे ऐसे मतलब पोजीशन होते हैं कि मतलब बहुत बुरा भला भी कह जाते हैं उनको मैंने देखा है तो लोग फिर भी बेचारे बर्दाश्त करके और बेचारियां बर्दाश्त करके मतलब उनको फिर भी अपने सर पे लेके और उनका उनका खिदमत करते हैं तो ये बहुत बड़ा मतलब उनका ये होता है समझ लो.
1: बहुत ही बड़ी बात आपने कही रईस जी. बाकी डॉक्टर्स से तो कुछ कहने की असर बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं होती लोगों का फ्रस्ट्रेशन गुस्सा कई बार नर्सेस पर ही निकल जाता है.
3: जी बिल्कुल नर्स बेचारे बहुत बहुत मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को गालियां से लेके और बुरा भला तक उनको सहना पड़ जाता है तो असल डॉक्टर लेट हुआ या उसमें कुछ कोई चीज का मसला करा तो उसी के ऊपर उतारना शुरू कर देते हैं लोग हालांकि उनका ऐसा कुछ नहीं रहता है उनका लोगों का मरीजों का खिदमत करना ही और ये करना है अक्सर तकरीबन इसी वजह से रहता है. उनका एक के शायद साल में नर्स डे भी शायद इसके ऊपर किया जाता है कोई ऐसा है साल
1: का इंटरनेशनल नर्सेस डे वो भी होता है
3: इंटरनेशनल नर्स डे भी शायद किया गया तो ये उनका बहुत मतलब क्रिटिकल उनका ये होता है सिचुएशन और कोई कोई बेचारे बड़े और मेरे सामने भी मेरे ऊपर भी कुछ ऐसे आए हैं हालात कि बॉम्बे में रहने के टाइम की कुछ ऐसे सिचुएशन बन गए थे कि मतलब मैंने बहुत उनको बुरा भला कहा लेकिन वो लोग जो बताते थे मतलब हालात कुछ ऐसे बन गए थे मतलब बेहोशी के उसमें बस अल्लाह रहे तो वो लोग बताते थे कि मतलब वो लोग बहुत बर्दाश्त करके और लोगों के साथ में फिर भी अच्छे उसमें सलूक करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती
1: है उनके अंदर
3: और उनके उनका भी जज्बात होता है उनका भी ये होता
1: है और उनके अपने इतने चैलेंजेस होते हैं जो हम आप सोच ही नहीं सकते. देखिए कितनी लंबी लंबी उनके आवर्स होते हैं कई बार इमरजेंसी है रात में भी है वीकेंड्स में भी है छुट्टियों में भी है उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी है तो हम इतना नहीं सोच पाते हैं लेकिन हमें वाकई इस चीज का ख्याल रखना चाहिए जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा हम्बल रहिए थोड़ा
3: सा बुरा भला कहने लग जाते हैं उनके साथ में ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भाई बिल्कुल. कुछ लोग अगर थोड़े होते हैं सख्त रवैये के तो उनको देख के आप मतलब सारे लोगों को एक मीजान में ना लेके जाएं बहुत अगर उनका ही खिदमत है कि लोग आज इंसानियत के दुनिया के अंदर बहुत बड़ा खिदमत है कि लोगों की जान बची हुई लोग मुसीबत से मतलब समझ लो ये हो जाते हैं तो उनके साथ उतने सलूक रखे मेरा मेरा ये ख्याल है
1: बहुत ही अच्छा
3: ये बहुत जरूरी होना चाहिए
1: बहुत जरूरी है. जज़ाकअल्लाह थैंक यू जी बहुत ही अच्छा आपका मैसेज एंड थैंक यू फॉर योर कॉल. मुझे मालूम है आप इस वक्त बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं बट फिर भी आपने टाइम निकाला और जुड़े
3: मींस अ लॉट. कल तक आप हैं ना इंशाल्लाह.
1: कल तो मैं हूँ आपके साथ इंशाल्लाह
3: इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर ड्यूटी है तो उसमें हाँ हाँ
1: जरूर जरूर जरूर ठीक है मुझे इंतजार रहेगा. चलिए ओके अल्लाह हाफिज़ वालेकुम अस्सलाम. ऑलराइट, आज हो रही है बात नर्सेस की और मैं आपसे पूछ ही रही हूँ कि एक नर्स, एक ग्रेट नर्स जो है वो कैसे कैसे बन सकती है. वैसे तो ग्रेट नर्स है ही विदाउट अ डाउट, बट स्टिल कुछ और आपको ऐड करना है, कोई आपका पास एक्सपीरियंस है, कोई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जहाँ आपके आउट ऑफ वे जाके नर्सेस ने हेल्प की, या कुछ और आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ. तो और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं. हेलो.
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कौन है हमारे साथ?
4: जी, उसामा बात कर रहा हूँ.
1: उसामा, कैसे हैं उसामा आप?
4: जी ठीक ठाक. अब मॉर्निंग में वो कबीर भाई आ गए हैं तो थोड़ी शिफ्ट आप लोगों की शफल होती है, हमारी नींद होती.
1: कबीर भाई मॉर्निंग में आ गए, फिर से आ गए कबीर भाई, ये छुट्टी में कब जाएंगे?
4: मॉर्निंग में आ गए, अब तो सरवर भाई आ गए उनको रिप्लेस करने के लिए.
1: वही तो, सरवर भाई तो प्लेस से एकदम ही बिल्कुल प्लेस कर देते हैं. सरवर भाई सुबह आ गए,
4: वेकेशन पे गए हैं.
1: हाँ ये तो है, कबीर भाई जो है वो छुट्टी में.
4: अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो बहुत मुझे टॉपिक साथ ही, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा मजे का टॉपिक है ये.
1: क्या कहेंगे आप
4: इस पे? तो बोल सकते हैं जितना मर्जी बोले, यानी कि अगर आप.
1: नाइस.
4: तो हाँ जी बिल्कुल, ये बात यानी कि नर्सिस की एक इसमें ना मेरा एक एक्सपीरियंस एक रहा है कि एक मुझे ना एक पाकिस्तानी नर्स मिले. वो बड़े यानी कि आपको पता है कुछ नेशनैलिटीज के यानी कि वो होते हैं स्पेसिफाई, यानी कि आप उनको देख के उनकी नेचर से आप कर सकते हैं कि यार इसकी नेचर ऐसी हो सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं उनका बाइसनेस होती है उनकी. मोस्टली पाकिस्तानी हम लोग सोचते हैं यार वो खड़ूस होंगे, ऐसे होंगे या थोड़े से यानी कि इतने अच्छे हैप्पी मूड में नहीं होंगे. वो बहुत बहुत अच्छा है, यानी कि आप बड़े अच्छे मूड में. तो मैंने उनसे वैसे कहा, मैंने कहा मैंने फर्स्ट टाइम यानी कि बार बार नेशनैलिटी नहीं मैं कर रहा कि यानी कि इस नेशनैलिटी के मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं यानी कि इतने हैप्पी मूड में. तो वो बड़ा बहुत पॉजिटिव वो सोचते थे, वो कहने लगे कि देखिए ये काम तो हमने ड्यूटी तो करनी करनी है. तो मैं इसको समझता हूँ कि मैं खिदमत खल्क कर रहा हूँ, तो एक किस्म की मैं ये खिदमत खल्क भी कर रहा हूँ और मेरी जॉब भी पूरी हो रही है और मेरी ये भी चीजें हो रही है. तो यानी कि इस चीज को पॉजिटिव लेके चल सकते हैं. और वैसे भी इसमें दो तीन चीजें मैं समझता हूँ कि बहुत मैटर करती है नर्सिस की. फर्स्ट वन के आपके पेशेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो फ्रस्ट्रेट हुआ होता है. और क्या उसका नाम है, देखिए डॉक्टर्स ने तो वो क्या उसका नाम है सिर्फ डायग्नोसिस करना होता है, मेन आपका ट्रीटमेंट प्लान तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है नर्सिस.
1: और ये प्रोफेशन इसीलिए चैलेंजिंग भी है क्योंकि मुझे लगता है इमोशनल स्ट्रेस भी आता है नर्सेस पर. कोई पेशेंट तकलीफ में है, क्रिटिकल कंडीशन है, यू नो.
4: बिल्कुल, आप अगर देखेंगे ना जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो स्टाफ हो गए या डॉक्टर्स हो गए और ये टेक्नीशियन हो गए, इनकी अपनी फैमिली लाइफ, एक किस्म की अपनी फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं.
1: बहुत सही काम, बहुत बिल्कुल
4: बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ये.
1: ट्रू ट्रू,
4: किस लिए कर रहे होते हैं, सारी बात है ये हेल्थ केयर के लिए के इनके बाकी दूसरे लोगों के लिए ही कर रहे होते हैं ना.
1: प्रेशर है, चैलेंज है, सेकंड्स में फैसला करने, जब तक डॉक्टर आ रहा है तब तक आप फर्स्ट एड स्टार्ट कीजिए ऑल दैट. तो ऐसे में बहुत काम रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़ा मुश्किल भी है.
4: कोई कहता हूँ पेशेंट, और दूसरी बात की आपका मूड कैसा, आप पेशेंट के साथ किस मूड से रहते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका. वो कहते हैं ना कि डॉक्टर्स और ये जो नर्सिस होते हैं, अगर ये अच्छे मूड से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, एक किस्म का आधा पेशेंट आपका वैसे ही अपने आप को ठीक महसूस करने लग जाता है. और आपको पता तो है कराची लाहौर वगैरह में अगर आपने तो कतर का, तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला कतर को सलामत रखे, हिफाजत करे. कतर ने तो ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम दिया ना हमें कि जो हमारे अपने उसमें भी नहीं दिया. मेरी जब मिसेस ये मेरी बेटी जब हुई थी
1: जी जी,
4: तो इधर हमद में एडमिट रहे थे हम, हमद हॉस्पिटल में. हम यकीन माने के डॉक्टर्स का बिहेवियर, नर्सिस का आगे से आपका इतना पॉजिटिव रिस्पांस, इतना पॉजिटिव बिहेवियर आपके साथ, आप मैं कहता हूँ कि एक दफा आपको खुशी होती है कि यार ये असल खिदमत तो ये कर रहे हैं.
1: हाँ वाकई, हम वाकई इसी प्रिविलेज कंट्री में है जहाँ पे इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं आपको अटेंड कर रहे हैं, इरिस्पेक्ट ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम व्हाटसोएवर नेशनैलिटी. आपका ख्याल रखना और करना बहुत ही हम्बली, यू नो. तो
4: आप कभी देखना अच्छा ना कि ये अंदर से खुद इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लेकिन कभी उन्होंने पेशेंट के सामने या अपने वर्क प्लेस पे वो चीज फ्रस्ट्रेशन शो नहीं होने देते.
1: देखिए कितनी बड़ी बात है,
4: ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्रोमाइज होता है आपका अपने इमोशंस के साथ, क्योंकि यानी कि आप सिर्फ इस वजह से अपने आप को वो नहीं फ्रस्ट्रेट शो कर सकते क्योंकि पेशेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा.
1: सही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है.
4: खास तौर पर जब ये मेरी वो लेबर रूम में थे मेरी मिसेज, तो मैंने उनका वो देखा बिहेवियर तीन माने के, यानी कि वो आपको एक किस्म के मोटिवेशन दे रही होती है, नॉर्मल ये ऐसे है ये ऐसे है वो ऐसे, यानी कि बहुत सी चीजें वो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला इस कतर को सलामत रखे. फिर उसके बाद लोग हैं इनकी वो
1: इनकी सलामती की दुआ वापसी
4: जितना बोल सकते हैं कम है.
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा. हम लोग बोलते ही चले जाएं आज से नाज, वी कैन स्पीक एंड अप्रिशिएटिंग इनके एफर्ट्स को, डेडिकेशन को, इनको प्रोफेशनल एटीट्यूड को जितना भी. और इस कंट्री में तो खैर बहुत ही एक्सेप्शनल लेवल का प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है, एंड दे आर सो गुड टू एवरी सिंगल वन. ये तो है, तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.
4: वो नाइस, अच्छा उनकी फैमिली बहुत कॉम्प्रोमाइज हम लोगों की होती है, लेकिन वो अपने वर्क प्लेस पे मैंने यानी कि घर में उनका जैसा भी मूड हो जितनी भी फ्रस्ट्रेशन उनकी हो, लेकिन कभी भी मैंने उनको वर्क प्लेस पे ड्रॉप करते हुए या पिक करते हुए उनको हमेशा हैप्पी मूड में देखा. क्यों वो कहते हैं कि जी हम इस तरह पेशेंट्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. हमारी तो हो रही है
1: नहीं नहीं, आपको भी उतना ही वो है, मुझे लगता है क्रेडिट जा रहा है. बीइंग अ हस्बैंड आप इस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, यू आर सो अंडरस्टैंडिंग. आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी अपनी वाइफ की प्रोफेशन.
4: जी
1: आमीन सुम्मा आमीन. हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ. मेरे रिगार्ड्स आप अपनी वाइफ को जरूर दीजिएगा, एंड रियली नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. ओके, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह
4: हाफिज़.
1: अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट, इतनी अच्छी अच्छी बातें. देखिए कितने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो भर भर के रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं. बड़ी बात है भाई, होना भी चाहिए. और आज का दिन क्या, आज का क्या, वैसे तो हमें हमेशा करना चाहिए, लेकिन इस तरह के डे निकल के आते हैं तो कुछ बातें, कुछ चीज़ें हमारे जहन में निकल आती हैं. और फिर अगर आ रही हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके जहन में, तो बस अपने तक मत रखिए, उसको हम सब तक पहुँचाइए. एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं. हेलो
5: जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
5: जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.
1: अल्हम्दुलिल्लाह. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आई एम श्योर आपने सुन रखा है.
5: जी जी, अभी जस्ट मैंने रेडियो ओपन किया था, तो मैं मतलब अभी सुना मैंने भाई से. अच्छा. नर्स के रिगार्डिंग आप मतलब मैम. हाँ. ये मैं तो खुद एक नर्स रहा हूँ एक टाइम पे. आई मीन मेरे ताए अब्बू का एक छोटा सा क्लिनिक था.
1: हाँ हाँ.
5: तो टीन एज में मैं अपने अब्बू की हेल्प किया करता था.
1: अच्छा.
5: बहुत ज्यादा ये बहुत बहुत टाइम की डेथ हो गई.
1: अच्छा अच्छा. ओह, तो आपने क्या कुछ ऐसे कोर्स समथिंग यू हैव डन, या फिर आप यूं ही खुद से आपने सीखा?
5: नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे मतलब छोटा सा क्लिनिक था गांव में.
1: अच्छा,
5: तीन गांव के जो मतलब से, तो वो उधर देखते थे मेरे ताएबू, तो उनके साथ मतलब जैसे कि मेडिसिन के छोटी चोट लगी तो उनको बैंडेजेस वगैरह वगैरह ये सारी चीजें, इंजेक्शन लगाना, ब्लड प्रेशर नापना, ये सारी चीजें वो मुझे सिखाते थे. मैं करता भी था, अच्छा लगता था उसको.
1: बाकी
5: मैम ये काम आपको भी पता है, इस काम को तो जितना सैल्यूट किया जाए उतना कम है, क्योंकि भाजी ये काम बहुत ज्यादा हार्ड है, हर कोई नहीं कर सकता इसके लिए प्रॉपर टाइम ट्रेनिंग. एक तरह से आप बोल सकते हैं कि 70-60% डॉक्टर ही होता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ सीख जाते हो. मुझे लगता है उनकी ड्यूटी डॉक्टर से ज्यादा टफ और चैलेंजिंग है, हर चीज उन्हें हैंडल करना.
5: ड्यूटी अगर कहें तो टफ है, क्योंकि जो काम वो करते हैं वो डॉक्टर नहीं कर पाते. और देखो जाहिर बात है एक सर्जन होता है तो वो काम नर्स नहीं कर पाए.
1: सही बात है. हाँ, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन ये शायद प्रोफेशन है तो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल और बहुत चैलेंजिंग, बट डिस्पाइट ऑफ दैट मुझे लगता है अंडर रेटेड है. उस तरह की इज्जत, उस तरह की रिस्पेक्ट, उस तरह का हमारा उनकी तरफ झुकाव नहीं है जो होना चाहिए. नर्सेस को हम लोग उतना ज़्यादा वो नहीं करते. डॉक्टर्स के तो चलिए आप एहतराम भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, आप थोड़े से हम्बल भी हो जाते हैं, क्वाइट भी हो जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू नर्स एंड ऑल दिस, तो हम थोड़ा सा हार्श भी हो जाते हैं टाइम्स, यू नो. कई बार थोड़े से ऐसे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते. ठीक है हम आप परेशान हैं, दर्द में हैं, दुख में, तकलीफ में, तो कुछ चीज़ें निकलती हैं मुँह से, बट मुझे लगता है फिर भी वो एक थिन लाइन हमेशा रहनी चाहिए जहाँ पर हमें अपनी एक उस चीज़ को याद रखना और समझना चाहिए कि ये भी अपना काम कर रहे हैं और ये हम तो एक पेशेंट हैं, इनके लिए तो हजारों करोड़ और लाखों पेशेंट्स जो रोज़ आ रहे हैं, हर वक्त आ रहे हैं, उन्हें तो वैसे ही काम करना
5: है. थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है हर इंसान को. अगर ऐसा हल्का सा, जाहिर नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल प्रॉपर है, थोड़ा सा एक एक बार चेंज करके देखिए तो आपको उस प्रोफेशन से प्यार हो जाएगा. क्योंकि मुझे लगता है कि ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है मैम. मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बीच में जो नर्स की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं वो बीच में छोड़ देते हैं. कुछ रीजन ऐसे हो जाते हैं कि वो बहुत से लोग छोड़ देते हैं, मैंने देखा है.
1: होगा सच कह रहे
5: हैं. ये बहुत ज्यादा हार्ड काम है, हर किसी से नहीं हो पाता है. बाकी एक आपको एक हंसी का वाक्य बताता हूँ.
1: जी जी बताइए प्लीज.
5: That time is around 2015 or 14 की बात है. मुझे मलेरिया और मतलब डेंगू कुछ ऐसा हो गया था. कुछ ज्यादा मतलब स्टेज कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गई थी तो मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा उस टाइम. तो मैं तकरीबन 2 दिन तक वहां पर रहा. तो एक नर्स थी, मैं उस टाइम में मैं स्मोक करता था बहुत ज्यादा, मतलब कॉलेज डेज थे तो थोड़ा सा मैं कर लिया करता था.
1: अच्छा.
5: तो 2 दिन हो गए तो मैं उनसे बोला मैम यार प्लीज कुछ तो करो ना. मैं मतलब उन्होंने 2 दिन में मैंने स्मोक नहीं किया तो बोले यार चलो ठीक है, किसी को बोलना मत प्लीज, तुम्हारी हेल्प करती हूँ.
1: आपने तो काफी अच्छा खासा इम्प्रेस कर लिया नर्स को कि वो आपको खुद दे रही है सामान, वो औजार लाके दिया. वाह भाई वाह. चलिए लेकिन देखिए वाकई होती है, इनमें भी है तो इंसान ही हम सब. थोड़ा सा आप अच्छे से बात कीजिए, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखिए तो वो खुद भी आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं. ख्याल तो खैर करते ही करते हैं, ये तो उनकी जॉब भी है, वो कहते भी हैं कि हमारी जॉब है. मैंने तो कितने नर्स को देखा जब मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ तो कहते नहीं मैम ये तो हमारा काम था. मतलब दे डोंट नीड योर थैंक्स ऑल्सो, लेकिन बट दिल में तो रखो, थोड़ा थोड़ा जबान में तो रखो, स्माइल तो जेस्चर्स तो हो आपके अलाइन हो रहे थे कि पॉजिटिव आप दिखें.
5: अपने एटीट्यूड को बस पॉजिटिव रखो. बाकी देखो मैम, देखो आप कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप अपने पॉजिटिव को सॉरी अपने एटीट्यूड को अगर निगेटिव रखेंगे तो कोई भी प्रोफेशन है वो बेकार हो जाएगा. अगर जैसे कि अभी मैं जैसे कि हॉस्पिटलिटी से बिलोंग करता हूँ तो मुझे सिखाया गया है कि आपको जाना स्माइल करते रहना है हर वक्त.
1: ये बात तो सच है, ये भी बड़ा बड़ा मुश्किल होता होगा. अंदर तो दिल अजीब खुन्नस खा रहा है मगर नहीं स्माइल कर रहे हैं सामने से.
5: बड़ा मुश्किल है. हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं है वो हमें छोड़ के आनी है घर पे. सामने वाले को नहीं दिखाना है कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है, कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है.
1: ये बात तो
5: नर्स का भी यही सिस्टम है. उनको जो है ना उनकी भी लाइफ में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उनको जो है ना उनकी जो जॉब है मैं मानता हूँ सच में कि बहुत ज्यादा, तो मैंने बहुत करीब से इस जॉब को देखा है. बहुत ज्यादा हद से ज्यादा टफ है.
1: बिल्कुल, इसीलिए और ज्यादा हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और करनी चाहिए. वेरी वेल सेड, इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम योर साइड. थैंक यू सो वेरी मच कि आप जुड़े और आपने इतनी अच्छी बात शेयर की हमारी ऑडियंस के साथ. थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा जी. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कमाल का डिस्कशन चला और मुझे लगता है जितने भी कॉलर्स अभी तक हमारे साथ जुड़े उन सब ने भरपूर रिस्पेक्ट दिखाई बताई और अपने जितने भी उनके एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर किए. मैं कह सकती हूँ कि आज का हमारा जो डिस्कशन रहा वो ये बात उससे तो समझ में आती ही आती है कि जो नर्सिंग का जो प्रोफेशन है वो सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये सर्विस है, सेक्रीफाइस है, ये डेडिकेशन है और जितने चैलेंजेस जो हैं और प्रोफेशंस में होंगे उससे कहीं ज़्यादा इस प्रोफेशन में है. और शायद हम और प्रोफेशनल्स को जितनी रिस्पेक्ट देते हैं उतनी इन्हें नहीं मिल पाती जो कि हमें देना चाहिए. आज हम सेलिब्रेट या ऑब्जर्व करते हैं इमरजेंसी नर्सेस डे और इस मौके पर मैं तमाम नर्सेस और जो ब्रदर्स हैं उनको सल्यूट करना चाहूँगी और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर ऑल द वर्क और जितना भी काम आप कर रहे हैं हम सब के लिए. वाकई ट्रूली ट्रूली मीन्स अ लॉट. अब हमारे पास टाइम तो बहुत कम है, मैंने मैसेज भी नहीं लिए हैं. आई थिंक मुझे अभी पिक करना है फ़ोन और झटपट से आपके मैसेजेस लेने हैं तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा. फिलहाल के लिए प्यारा सा गाना आप सबके लिए, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, सचेत टंडन असीस कौर की आवाज़ में सचिन जिगर, बड़ा कमाल का गाना. जस्ट एंजॉय दिस.

0: जी हमारे साथ हैं अरमान मलिक जी, सलाम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं खैरियत से हूँ। जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से हूँ।
1: मुझे तो किसी पे भी कभी प्यार आया ना था इस तरह।
0: शहजादा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए एंड सॉरी आज नहीं कर पाई, कल करूंगी आपको कॉल।

बहुत शुक्रिया शेख आरिफ जी. कासिम हमारे साथ हैं. मोहम्मद यूसुफ जी, आई एम सो सॉरी आज आप लोग के मैसेजेस नहीं ले पाए, बट या इंशाल्लाह कल देखेंगे. पहले से फ़ोन को चार्ज करके रखेंगे. यहाँ पे अब्दुल वहाब जी, थैंक यू. मुबीन बुखारी जी, थैंक यू सो मच.

हाँ जी दोस्तों, इसी के साथ वक्त आपसे इजाजत लेने का। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियां बांटिए एंड सुनते रहिए FM 107 दिल से तीसी।

0: उन्होंने स्पेस में अपनी एंट्री मारी है, टाइटेनियम वेरिएबल्स लेकर आए हैं वो, जिसमें ऑफकोर्स आपको अपने फोन से उसे ब्लूटूथ वाईफाई के जरिए कनेक्ट करना होता है और आपको पूरा का पूरा लिंक मिलता है जिसमें आपको रिंग सारी अपडेट देती रहती है और काफी लाइट वेट है, रिस्ट बैंड्स हैं, रिंग्स हैं जो हर चीज की अपडेट आपको देती है। इसमें मल्टी वेवलेंथ ऑप्टिकल पीपीजी सेंसर्स लगाए गए हैं जो आपको स्किन टेम्परेचर्स बताते हैं, उसके मॉड्यूल्स हैं, 3D एक्सेलेरोमीटर्स हैं और ये जो स्मार्ट वॉचेस स्मार्ट रिंग्स का ट्रेडिशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये कंटिन्यूसली आपके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV जिसे मेडिकल टर्म में कहते हैं वो ट्रैक कर रही हैं, जो स्मार्ट वॉचेस भी कर रहे हैं। स्लीप स्टेजिंग आपको मिल रही है, आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी है, बॉडी टेम्परेचर कितना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। तो आई डोंट नो, क्या आप स्मार्ट वॉच सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि मुझे ये सब मिलेगा, तब तो भाई आपको रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, या फिर आप स्मार्ट वॉच इसलिए ले रहे हैं कि भाई वो बढ़िया दिखता है भाई, एकदम टच स्क्रीन मजा आ जाते हैं, तो बात दूसरी है। यू हैव टू डिसाइड एंड फिर आपको ये भी देखना है कि आप कौन सी स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं। अगर आप कहीं भागम दौड़े का काम नहीं कर रहे, देखो मैं कड़वा सच बोलता हूँ, आप कहीं भाग भाग नहीं रहे, आप उसे कहीं वर्कआउट के लिए नहीं यूज कर रहे हैं और आप सिर्फ स्मार्ट वॉच भी ले रहे हैं वो भी महंगी महंगी, तो फायदा कुछ नहीं है, है ना। यू कैन रिप्लेस इट बाय अ रिंग सिंपली, अगर आपको लिटरल वर्कआउट वगैरह सब कुछ ट्रैक करना है, क्योंकि एनी डे स्मार्ट वॉच से ज्यादा प्रिसाइज रिंग्स ट्रैक करके देंगी आपको। और अगर आपको स्मार्ट वॉच चाहिए तो बहुत सारी स्मार्ट वॉच बजट में आती है जिसमें कि नथिंग की जो स्मार्ट वॉच है बेहतरीन है भाई, बेहतरीन, वो आपका सारा ट्रैकिंग व्रैकिंग का काम भी करती है और आपके लिए बजट फ्रेंडली भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो महंगी खरीदे ही मत, अरे बुरी बात है, पर जरा आपको यूसेज समझने की जरूरत है। जिस तरीके से हम फोन के केसेस में बात करते हैं कि भाई तुम्हारा फर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, आप फोन क्यों यूज करते हैं, कैमरा चाहिए आपको, बैटरी चाहिए आपको, चाहिए क्या, स्क्रीन चाहिए क्या, चाहिए गेमिंग कर रही है, उस हिसाब से यू सेलेक्ट योर फोन। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि स्मार्ट फोन स्मार्ट वॉच पे आपको कितना खर्चा करना है, आपका यूसेज उसमें है क्या, ये आपको समझने की जरूरत है। एंड ये बायोमेट्रिक ट्रैकिंग जो है जो आपकी फिंगर पे आ चुके हैं, दिस इज फार बेटर अगर आपको सोली आपको वर्कआउट के लिए ही इसको यूज करना है। एंड ये जो आर्टेरियल ब्लड फ्लो सिग्नल्स हैं ये स्ट्रांग होते हैं जब आप रिस्ट बैंड पे पहनते हैं, रिस्ट बैंड्स में की मार्केट में भी सैमसंग आ चुका है और ये डिवाइसेस जो हैं ये आपको ट्रैक भी करते हैं, डिस्टर्ब भी नहीं करते और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं क्योंकि स्क्रीन नहीं है। तो मैंने आपको लिटरली एक आइडिया दे दिया, आप अगर बिल्कुल वर्कआउट वाले हैं एंड यू वेरी सीरियस अबाउट इट, देन रादर देन गोइंग फॉर अ वेरी हेफ्टी अमाउंट, पेइंग अ वेरी हेफ्टी अमाउंट फॉर अ स्मार्ट वॉच, आप एक रिंग या रिस्ट बैंड के लिए जा सकते हैं बिकॉज आपको ज्यादा प्रिसाइज डिटेल मिलेगी। आपके ऊपर है, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे तो टेक अपडेट में बताते रहिएगा और सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar। Stay tuned for more. Tech update. Tech update.
1: आप सुन रहे हैं FM 107. FM 107. दिल से देसी.
2: Scam alert. अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और आजकल हम बात कर रहे हैं नए जमाने के नए स्कैम के बारे में और हर रोज एक नए स्कैम के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं और आपको कोशिश करता हूं कि जो नए स्कैम हैं जिनसे आप बच सकते हैं। कई बार आपको पता नहीं होता है, आपको लगता है कि आप किसी जेन्युइन शख्स से बात कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी काम को लेकर, है ना, लेकिन असल में वो स्कैम हो सकता है। एक और स्कैम जो आजकल बहुत ही ज्यादा चलन में है वो है OTT या मीडिया स्कैम। आजकल के दौर में एंटरटेनमेंट के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि OTT के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर कोई अपने मोबाइल में या फिर TV पे लेटेस्ट एपिसोड और पॉपुलर मूवीज देखना चाहता है, लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर स्कैमर्स एक नया स्कैम चलाते हैं जिसे OTT और मीडिया स्कैम कहा जाता है। वो सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीग्राम चैनल्स पर या बल्क SMS के जरिए लोगों को धोखा देने के लिए बड़े क्लेम्स और ऑफर्स शेयर करते हैं। इनके एड्स में लिखा होता है कि आपको सभी पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स और TV एपिसोड का फुल प्रीमियम एक्सेस मिल जाएगा और फला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा जिसकी कीमत सिर्फ 100 कतरी रियाल पर मंथ होगी। अब आप सोचते हैं यार कि 4 से 5 ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर

0: वो सिर्फ 100 कतरी रियाल पर मंथ में मिल जाए। सबको अलग अलग लेंगे तो यार 300 रियाल 400 रियाल 500 रियाल लग जाएंगे, लेकिन अगर 100 रियाल में पर मंथ हो रहा है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये कीमत रेगुलर प्राइस के मुकाबले आपको बहुत ही कम लगती, इसलिए लोग सोचते हैं और आप भी सोचते हैं कि यार इतने कम पैसे में अगर सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं तो डील बुरी थोड़ी है। जब कोई यूजर उनसे इस ऑफर के लिए कॉन्टेक्ट करता है तो स्कैमर उन्हें कहता है कि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है और उन्हें सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करने के लिए फी अपफ्रंट पे करनी होगी। पेमेंट के लिए वो अक्सर अनवेरिफाइड लिंक्स या डायरेक्ट कार्ड डिटेल्स मांगते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक चीज है। कभी भी आपसे कोई कार्ड डिटेल्स मांगे तो मना कर दे। एक बार पेमेंट हो जाती है, स्कैमर्स दो तरह के फ्रॉड करते हैं। पहला तरीका ये होता है कि वो यूजर को बिल्कुल फेक लॉगिन क्रेडेंशियल्स आईडी और पासवर्ड सेट कर देते हैं। जब यूजर उन्हें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो इनवैलिड पासवर्ड या अकाउंट सस्पेंडेड का एरर आता है उन्हें। दूसरा तरीका ये होता है कि पेमेंट मिलते ही स्कैमर कस्टमर से अपना सारा कम्युनिकेशन बिल्कुल कट ऑफ कर देता है। अगर आपने पोस्ट देखा है तो वो पोस्ट नहीं दिख रही है, फिर आपने जिससे जिस नंबर से कांटेक्ट किया वो नंबर नहीं दिख रहा है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। जहां पर आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं उसे आप ट्रैक नहीं कर सकते, मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर देता है, कॉल उठाता नहीं है, और फिर इन सब के बाद आपको एहसास होता है कि वो 100 कतरी रियाल का स्कैम हो चुका आपके साथ। ये स्कैम आपके लिए हो सकता है छोटा हो, क्योंकि 100 कतरी रियाल की ही तो बात है, लेकिन ये स्कैमर्स ऐसे हजारों लोग को ठगते हैं और ये हजारों लोगों के साथ 10,000, 20,000 और फिर लाखों रियाल का स्कैम हो जाता है। रियलिटी में उनके पैसे चोरी हो जाते हैं, लोगों के पैसे चोरी हो जाते हैं और उन्हें कोई भी मीडिया एक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन बचने के कुछ आसान तरीके हैं। इस तरह के स्कैम को सबसे पहले पकड़े कैसे? दोस्तों, कोई भी चीज अगर लीगल है तो वो आपको लीगली ही लेनी चाहिए। अगर कोई आपको लालच दे रहा है कि फला फला एप्लीकेशन है, फला फला OTT प्लेटफॉर्म है, एक साथ मैंने फला एप्लीकेशन में डाल दिया है, बस आप उस एप्लीकेशन को खरीद लिए और आपको 100 कतरी रियाल में फलाना मिल जाएगा, या फिर ये TV खरीद लीजिए, आप इस TV में एप्लीकेशन का TV का नाम भी होता है, उसमें आपको दुनिया भर के एपिसोड्स मिल जाएंगे, दुनिया भर के चैनल्स मिल जाएंगे, दुनिया भर के आपको अलग अलग तरह के मूवीज शोज मिल जाएंगे, तो ये एक फेक चीज है और ये इलीगल भी है। दूसरा तरीका है बचने का, जो सबसे आसान है, कि किसी भी तरह की डिटेल्स अपने कार्ड की किसी से शेयर ना करें। पेमेंट आपको हमेशा 1 या 2 महीने बाद करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते जब हम बात कर रहे होंगे किसी भी तरह के स्कैम के बारे में, तो आम तौर पे जैसे कल हमने बात करी थी टिफिन के बारे में, तो टिफिन का जो स्कैम है वो इसलिए हो जाता है लोगों के पास क्योंकि वो एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, लोग एडवांस में पेमेंट करते हैं, बट एडवांस में नहीं, एडवांस में खाना आना चाहिए। ऐसे ही एडवांस में OTT प्लेटफॉर्म आपके पास आना चाहिए, उसके बाद अगर वो चल रहा है रेगुलर बेसिस पे तो भी अगर आपको पेमेंट करनी भी है ना, 1 महीना यूज कर लिया आपने OTT, फिर अगर आपको पेमेंट करनी है तो आपको हमेशा पेमेंट करनी है थ्रू लीगल मींस और साथ ही साथ थ्रू ऐसे वेबसाइट के या थ्रू ऐसे एप्लीकेशन के जो वेरीफाइड हो कतर में, ऐसी जगह पे आप पेमेंट करें जिसे आप ट्रैक कर सके। तो दोस्तों, ये था नए जमाने का नया स्कैम जो आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी। Hello and welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नाजिया। आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एसेट एलोकेशन पर। देखिए, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, करते वक्त सिर्फ ये सोचते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट देती है। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर सबसे पहले ये सवाल पूछता है कि अपना पैसा किस किस जगह और कितने परसेंटेज में लगाना है। इसी प्लानिंग को एसेट एलोकेशन कहा जाता है। यानी और सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ एसेट क्लासेस में डिवाइड करना ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न्स बेहतर हो सके। यानी सारा पैसा एक ही जगह लगाने की बजाय उसे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में स्प्रेड करना। देखिए एसेट एलोकेशन में आमतौर पर तीन मेजर एसेट क्लासेस होती हैं।

पहला होता है स्टॉक्स, दूसरा होता है बॉन्ड्स, तीसरा है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। हर एसेट क्लास का अपना रिस्क और रिटर्न होता है। इन्वेस्टर अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक इनका मिक्स तैयार करते हैं। स्टॉक्स स्टॉक कंपनी के ओनरशिप का एक हिस्सा होता है। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अगर कंपनी ग्रो करे तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ सकती है, और अगर कंपनी लॉस में जाए तो वो भी आपके हिस्से आता है। अगर कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे तो आपको डिविडेंड्स भी मिल सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स असल में लोन होता है। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप गवर्नमेंट या फिर कंपनी को पैसा उधार देते हैं, बदले में आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है और मैच्योरिटी के वक्त असल पैसा वापस मिल जाता है। अब बात करते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पर। कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स है या वो इन्वेस्टमेंट्स होती है जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे सेविंग अकाउंट्स, मनी मार्केट फंड्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट। ये सबसे सेफ एसेट क्लास मानी जाती है, लेकिन इनका रिटर्न भी आमतौर पर कम होता है। अब जानेंगे कि एसेट एलोकेशन जरूरी क्यों है। देखिए, अगर आप सारा पैसा स्टॉक में लगा दें और मार्केट क्रैश हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर सारा पैसा कैश में रखें तो इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू कम कर सकती है। अगर सारा पैसा बॉन्ड्स में रखें तो ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स बैलेंस क्रिएट करते हैं। इसी बैलेंस को एसेट एलोकेशन कहते हैं। एक यंग इन्वेस्टर के पास रिकवरी के लिए ज्यादा टाइम होता है, इसीलिए वो स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। वहीं पर एक रिटायर्ड इन्वेस्टर, उसके पास कम रिस्क लेने का चांस है, इसीलिए बॉन्ड्स और कैश को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। वहीं पर कुछ लोग कुछ गलतियां भी करते हैं। बहुत से लोग ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, दूसरों की बात सुनकर इन्वेस्ट कर देते हैं, सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, और ये काफी डेंजरस अप्रोच हो सकती है। जी हाँ, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन एसेट्स एलोकेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना काफी नहीं है, उस पैसे की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है। इसीलिए दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स रिस्क मैनेज करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं, और ये स्ट्रैटेजी उन्हें मार्केट के खराब होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। तो बस जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि एसेट एलोकेशन इन्वेस्टिंग का एक स्टीयरिंग व्हील है। सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना कामयाबी नहीं है, बल्कि पैसों को मुख्तलिफ एसेट क्लासेस में समझदारी से डिवाइड करना असल विजडम है। जब आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश का सही बैलेंस बनाते हैं तो आप सिर्फ रिटर्न्स नहीं कमाते बल्कि अपने फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। याद रखिए, ग्रेट इन्वेस्टर्स मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, वो अपने एसेट एलोकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों की इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से दिल।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
4: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
3: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
5: अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद टू फ्यूचर करियर। ये वो प्रोग्राम है जहां हम उन प्रोफेशंस के बारे में बात करते हैं जो हमारी दुनिया को बदल रहे हैं और उन करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं जो आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल बना सकती हैं। मैं हूं आपकी आरजे माविश और हमारा आज का टॉपिक है एक ऐसी फील्ड जो कभी साइंस फिक्शन का हिस्सा समझा जाता था, लेकिन आज हमारी एवरीडे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। जी हाँ, हम बात करेंगे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन करियर्स की। जरा सोचिए, एक मशीन जो खुद मूव कर सकती है, एक रोबोटिक आर्म जो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स को बिल्कुल एक्यूरेटली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, एक रोबोट जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की मदद कर सकता है, एक ऑटोमेटेड वेयरहाउस जहां मशीन्स प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, और ऐसे व्हीकल्स जो अपनी सराउंडिंग्स को सेंसर और कैमरास की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें अब सिर्फ फ्यूचर की कहानियां नहीं है। रोबोट्स आज फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, वेयरहाउसेस, लेबोरेटरीज, एयरपोर्ट्स और कई दूसरी जगहों पर यूज हो रहे हैं। लेकिन जब हम एक रोबोट को काम करते हुए देखते हैं तो अक्सर हम सिर्फ मशीन को देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इस मशीन के पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है। किसी ने रोबोट का स्ट्रक्चर डिजाइन किया होता है, किसी ने उसके मोटर्स और सेंसर सिलेक्ट किए होते हैं, किसी ने सॉफ्टवेयर लिखा होता है, किसी ने उसकी मूवमेंट प्रोग्राम की होती है, किसी ने सेफ्टी टेस्टिंग की होती है, और किसी टेक्नीशियन ने इंश्योर किया होता है कि रोबोट प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है। यानी एक रोबोट सिर्फ एक मशीन नहीं होता, उसके पीछे इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह ऑटोमेशन भी मॉडर्न वर्कप्लेसेस को चेंज कर रही है। ऑटोमेशन का सिंपल मतलब है टेक्नोलॉजी की मदद से किसी प्रोसेस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाना। एक मशीन एक ही टास्क को बार बार स्पीड और प्रिसिशन के साथ परफॉर्म कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमंस की जरूरत कम हो गई। ह्यूमंस को अब भी सिस्टम डिजाइन करने, मशीन्स को मॉनिटर करना है, प्रॉब्लम्स को समझना है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का सलूशन निकालना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने हैं। आज के एपिसोड में हम रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के डिफरेंट करियर्स एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि अगर आपको रोबोट्स के साथ काम करना है तो यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स को किस तरह स्मार्टर बना रही है, और कतर में इस फील्ड के लिए किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो सकती हैं। तो अगर आपको मशीन्स, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है तो आज का एपिसोड आप ही के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, एनर्जी और दूसरी इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनाइजेशंस रोबोटिक्स और ऑटोमेशन को इंक्रीजिंगली यूज कर रही हैं। इसका मकसद प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, सेफ्टी इन्हांस करना, रेपिटेटिव वर्क को ऑटोमेट करना और ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। इस वजह से ऐसे प्रोफेशनल्स की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है जो मशीन्स के साथ सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को समझते हों। यानी फ्यूचर में सिर्फ रोबोट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, रोबोट का समझना, प्रोग्राम करना, मेंटेन करना और सेफली ऑपरेट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। और अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आपको रोबोटिक फील्ड में करियर चूज करना हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? क्या आप रोबोट्स डिजाइन करना चाहेंगे या उन्हें प्रोग्राम करना या रोबोट्स को मेंटेन और रिपेयर करना या फिर किसी इंडस्ट्री में रोबोट्स के साथ डायरेक्टली वर्क करना? अपना जवाब जहन में जरूर रखिए, क्योंकि एपिसोड के एंड में हम इस क्वेश्चन पर दोबारा बात करेंगे। और अब वक्त आ गया है हमारे सेगमेंट जॉब्स फॉर टुमारो का। रोबोटिक्स एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है। इसका मतलब यह है कि इस फील्ड में सिर्फ एक सब्जेक्ट का नॉलेज काफी नहीं होता। रोबोटिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एरियाज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ऑटोमेशन का फोकस प्रोसेसेस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने और रेपिटेटिव ह्यूमन टास्क को टेक्नोलॉजी के जरिए परफॉर्म करवाने पर होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्साइटिंग फील्ड में कौन कौन से करियर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोबोटिक इंजीनियर की। रोबोटिक्स इंजीनियर रोबोट्स को डिजाइन, डेवलप और टेस्ट करता है। यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक नया रोबोट बनाना चाहती है तो रोबोटिक्स इंजीनियर उस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। रोबोटिक्स इंजीनियर रोबोट का फिजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकता है। वो डिसाइड करता है कि रोबोट के लिए किस टाइप के मोटर सुटेबल होंगे, कौन से सेंसर यूज किए जाएंगे और रोबोट किस तरह मूव करेगा और मशीन डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन डिजाइन के बाद काम खत्म नहीं हो जाता, रोबोट को टेस्ट करना होता है और अगर रिपोर्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रहा तो इंजीनियर को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है। हो सकता है कि मोटर की स्पीड एडजस्ट करनी हो, हो सकता है कि सेंसर को चेंज करना हो सकता है सॉफ्टवेयर में करेक्शन करनी हो और सेफ्टी को भी केयरफुली चेक करना होता है। रोबोटिक्स इंजीनियर्स इंडस्ट्रियल रोबोट्स, मेडिकल रोबोट्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स और रिसर्च रोबोट्स पर काम कर सकते हैं। इस करियर के लिए क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सोचना पसंद होना चाहिए कि इस मशीन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आपको प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रॉब्लम को एक चैलेंज समझकर सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। अगला करियर है ऑटोमेशन इंजीनियर। ऑटोमेशन इंजीनियर ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करता है जो मशीन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने में मदद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्शन लाइन पर मूव कर रहे हैं। ऑटोमेशन इंजीनियर ऐसा सिस्टम डिजाइन कर सकता है जो प्रोडक्ट्स को मूव करे, उनकी क्वालिटी चेक करे और फिर उन्हें पैकेजिंग के लिए प्रिपेयर करे। इस प्रोसेस में डिफरेंट मशीन्स, सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ऑटोमेशन इंजीनियर का काम होता है कि ये इंटायर प्रोसेस एक्यूरेटली और सेफली ऑपरेट करे। ऑटोमेशन इंजीनियर्स प्रोडक्शन लाइंस, कंट्रोल सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, पैकेजिंग सिस्टम्स और क्वालिटी इंस्पेक्शन सिस्टम्स पर काम कर सकते हैं। ये करियर उन स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जिन्हें मशीन और टेक्नोलॉजी दोनों पसंद हो। अब बात करते हैं रोबोट टेक्नीशियन की। अगर इंजीनियर्स रोबोट डिजाइन करते हैं तो टेक्नीशियंस उन रोबोट्स की प्रैक्टिकल ऑपरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रोबोटिक टेक्नीशियन रोबोटिक इक्विपमेंट को इंस्टॉल, मेंटेन, टेस्ट और रिपेयर करते हैं। अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो टेक्नीशियन उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। वो डैमेज्ड कंपोनेंट रिप्लेस कर सकता है, सेंसर्स को कैलिब्रेट कर सकता है, मशीन के डिफरेंट पार्ट्स इंस्पेक्ट कर सकता है और रेगुलर मेंटेनेंस परफॉर्म कर सकता है। सोचिए, एक

0: फैक्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रोबोटिक मशीन अचानक काम करना बंद कर दे। अगर मशीन आवर्स तक बंद रहे तो प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है, इसलिए ट्रेन टेक्नीशियन की जरूरत होती है जो प्रॉब्लम को क्विकली अंडरस्टैंड करके मशीन को दोबारा ऑपरेशनल बनाए। इस करियर में प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मशीन्स को सिर्फ बुक्स में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली समझना होता है। अगला करियर है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट। ये प्रोफेशनल्स फैक्ट्रीज और लार्ज इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में ऑटोमेटेड सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। वो इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स, सेंसर्स, रोबोटिक आर्म्स, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम और मशीन कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ काम कर सकते हैं। उनका मेन गोल होता है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम्स स्मूथली ऑपरेट करें, प्रोडक्शन एफिशिएंट रहे, क्वालिटी मेंटेन हो और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हों। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट को मशीन के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को भी समझना होता है, यानी उन्हें सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि मशीन कैसे चलती है, उन्हें ये भी समझना होता है कि मशीन प्रोडक्शन प्रोसेस का किस पार्ट में यूज हो रही है। अगर आपको मैकेनिकल सिस्टम्स भी पसंद है और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग भी, तो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपके लिए इंटरेस्टिंग फील्ड हो सकती है। मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम और कंट्रोल टेक्नोलॉजी को कंबाइन करती है। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स स्मार्ट मशीन्स, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स, रोबोटिक डिवाइसेस और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स पर काम कर सकते हैं। इस फील्ड की खास बात यह है कि आपको मल्टीपल टेक्निकल एरियाज का कॉम्बिनेशन सीखने का मौका मिलता है। एक स्मार्ट मशीन को इमेजिन कीजिए, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हैं, उसका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है और उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम्स की जरूरत होती है। मैकेट्रॉनिक्स इन डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करती है। और अब बात करते हैं एक रैपिडली डेवलपिंग फील्ड की, ऑटोनोमस व्हीकल्स। ऐसे व्हीकल्स जो अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकें और लिमिटेड ह्यूमन कंट्रोल के साथ ऑपरेट कर सकें, उन्हें डेवलप करने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। ऑटोनोमस व्हीकल स्पेशलिस्ट सेंसर्स और कैमरास के साथ काम करते हैं, नेविगेशन सिस्टम्स डेवलप करते हैं, व्हीकल कंट्रोल को इम्प्रूव करते हैं, सेफ्टी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और रियल टाइम डिसीजन सिस्टम्स पर काम करते हैं। यहाँ रोबोटिक्स के साथ प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक ऑटोनोमस व्हीकल को सिर्फ रोड पर मूव नहीं करना होता, उसे सराउंडिंग्स को समझना होता है, ऑब्स्टिकल आइडेंटिफाई करने होते हैं और सिचुएशन के मुताबिक रिस्पॉन्स देना होता है। इसीलिए इस फील्ड में मल्टीपल टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है। और अब एक और इम्पोर्टेंट करियर, रोबोटिक्स रिसर्चर। रोबोटिक रिसर्चर्स नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज डेवलप करने पर फोकस करते हैं। वो स्टडी कर सकते हैं कि रोबोट्स ह्यूमंस के साथ किस तरह बेटर इंटरेक्ट कर सकते हैं, रोबोट मूवमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोबोटिक्स में किस तरह यूज किया जा सकता है, कंप्यूटर विजन को कैसे बेटर बनाया जा सकता है और हेल्थ केयर में रोबोट्स का रोल किस तरह डेवलप हो सकता है। रिसर्च यूनिवर्सिटीज, लेबोरेटरीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज और इनोवेशन सेंटर्स में की जा सकती हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस पूछना और उनके आंसर डिस्कवर करना पसंद है तो रिसर्च एक एक्साइटिंग करियर पाथ हो सकता है।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम समझकर उठाइए।
0: एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि रोबोट्स सिर्फ फैक्ट्रीज में यूज होते हैं।

लेकिन रोबोटिक्स का यूज बहुत सी इंडस्ट्री में हो रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर में रोबोटिक टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, प्रिसिशन प्रोसीजर्स, लेबोरेटरी प्रोसेसेस, रिहैबिलिटेशन और लॉजिस्टिक्स जैसे एरिया में सपोर्ट कर सकती है। एग्रीकल्चर में ऑटोमेशन प्लांटिंग, मॉनिटरिंग और हार्वेस्टिंग जैसे टास्क में हेल्प कर सकती है। वेयरहाउसेस में रोबोट्स गुड्स को मूव और ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऑटोमेटेड सिस्टम सेफ्टी और एफिशिएंसी इंप्रूव करने में रोल प्ले कर सकते हैं। हॉस्पिटलिटी और रिटेल में रोबोटिक सिस्टम्स कस्टमर असिस्टेंट, डिलीवरी, क्लीनिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। स्पेस सेक्टर में रोबोटिक सिस्टम्स उन एनवायरमेंट्स में काम कर सकते हैं जहां ह्यूमंस के लिए जाना डिफिकल्ट या रिस्की हो। यानी रोबोटिक्स एक सिंगल इंडस्ट्री करियर नहीं है, ये एक ब्रॉड फील्ड है। आप इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, रिसर्च, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, डिजाइन और मैनेजमेंट जैसे डिफरेंट एरियाज में अपना करियर बना सकते हैं। और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट करियर टू कैंपस का। अब सवाल ये है, अगर एक स्टूडेंट फ्यूचर में रोबोटिक्स या ऑटोमेशन में करियर बनाना चाहता है तो उसे स्कूल और यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रोबोटिक्स के लिए कोई एक ही एकेडमिक रूट नहीं है। आपका पाथवे आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको मशीन्स और मैकेनिकल डिजाइन पसंद है तो एक रूट हो सकता है। अगर प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पसंद है तो दूसरा रूट हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम पसंद है तो आप डिफरेंट इंजीनियरिंग पाथवे चूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्किट्स, सेंसर्स, मोटर्स और कंट्रोल सिस्टम को समझने में हेल्प करती हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मशीन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंटरेस्टिंग लगते हैं तो ये फील्ड आपके लिए यूजफुल हो सकती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन्स के स्ट्रक्चर्स, मूवमेंट, मटेरियल्स और डिज़ाइन पर फोकस करती है। रोबोट्स का फिजिकल बॉडी और मूवमेंट डिज़ाइन करने में मैकेनिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग के साथ कंबाइन करती है। रोबोटिक्स के लिए ये नेचुरली रेलिवेंट पाथवे है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हार्डवर्क और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन पर फोकस करती है। एम्बेडेड सिस्टम्स और रोबोटिक हार्डवेयर के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का नॉलेज यूजफुल हो सकता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्राम विजन और रोबोट लर्निंग में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर साइंस स्ट्रॉन्ग पाथवे हो सकता है। मॉडर्न रोबोट्स को इंटेलिजेंट बनाने में सॉफ्टवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑटोमेशन, प्रोडक्शन सिस्टम्स, एफिशिएंसी और प्रोसेस इंप्रूव करने से रिलेटेड करियर्स का पाथवे प्रोवाइड कर सकती है। स्कूल लेवल पर स्टूडेंट्स को कुछ सब्जेक्ट पर स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए। सबसे पहले है मैथ। रोबोटिक्स में कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स, ज्योमेट्री, स्टेट्स और लॉजिकल थिंकिंग इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आता है फिजिक्स। मूवमेंट, फोर्स, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल सिस्टम्स को समझने के लिए फिजिक्स हेल्पफुल है। उसके बाद प्रोग्रामिंग। आज के रोबोट्स सिर्फ मैकेनिकल मशीन्स नहीं हैं, उनके बिहेवियर को सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, इसलिए प्रोग्रामिंग सीखना बहुत यूजफुल है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेंसर्स और सर्किट्स किस तरह काम करते हैं ये समझना रोबोटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, स्टेट्स, कंट्रोल सिस्टम्स और इंजीनियरिंग सेफ्टी भी रेलेवेंट एरियाज हैं। सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड करना रोबोटिक्स में इनफ नहीं होता। अगर आप स्टूडेंट हैं तो छोटे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें। आप एक सिंपल रोबोटिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक बेसिक सेंसर को प्रोग्रामिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रोबोटिक्स क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एजुकेशनल रोबोटिक किट्स यूज कर सकते हैं, स्मॉल प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी

अपॉर्चुनिटी मिले तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रोजेक्ट का बहुत एडवांस होना जरूरी नहीं, आप एक सिंपल आइडिया से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंसर बेस्ड सिस्टम जो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे, फिर आप उस सिस्टम में एक मोटर ऐड कर सकते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग इम्प्रूव कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक कंप्लीट रोबोटिक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। रोबोटिक्स में लर्निंग स्टेप बाय स्टेप ही होती है। टेक्निकल नॉलेज के साथ कुछ पर्सनल स्किल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग। रोबोटिक्स में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मशीन काम नहीं करेगी, कोड में एरर आ जाएगा, सेंसर करेक्ट रीडिंग नहीं देगा और डिजाइन को मल्टीपल टाइम्स चेंज करना पड़ेगा। इसलिए पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरी स्किल है क्रिएटिविटी। रोबोटिक्स सिर्फ फॉर्मूलाज फॉलो करने का नाम नहीं, कभी कभी आपको कंप्लीटली न्यू सॉल्यूशन सोचना पड़ता है। कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोबोटिक्स प्रोजेक्ट अक्सर टीम्स में डेवलप होते हैं। इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, टेक्नीशियंस और मैनेजर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होता है। टीम वर्क के बगैर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स डिफिकल्ट हो सकते हैं। अटेंशन टू डिटेल भी इसेंशियल है। एक छोटी सी मिस्टेक मशीन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी अवेयरनेस। रोबोट्स पावरफुल मशीन हो सकती हैं, इसलिए सेफ ऑपरेशंस और रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करने की अपॉर्चुनिटीज भी सर्च करनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंजीनियरिंग फर्म्स, रिसर्च सेंटर, टेक्नोलॉजी कंपनीज, लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, एनर्जी कंपनीज, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, ये सब पोटेंशियल लर्निंग एनवायरनमेंट हो सकते हैं। इंटर्नशिप से स्टूडेंट को ये समझने का मौका मिलता है कि क्लासरूम में जो कॉन्सेप्ट सीखे गए हैं वो रियल वर्क प्लेस में किस तरह यूज हो सकते हैं। मेरी स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल एडवाइस है, आपको एक कॉम्प्लेक्स रोबोट से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करें। समझें कि सेंसर कैसे काम करता है, एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, मैकेनिकल सिस्टम को ऑब्जर्व करें, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स समझें, फिर इन कॉन्सेप्ट को कंबाइन करना शुरू करें। अगर पहली अटेम्प्ट में प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोबोटिक्स के लिए सूटेबल नहीं हैं। एक्चुअली फेलियर लर्निंग का पार्ट है। रोबोट को इम्प्रूव करने के लिए टेस्टिंग और मिस्टेक्स दोनों ज़रूरी हैं। रोबोटिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे इंटरेस्टिंग फील्ड हो सकती है जो एक्सपेरिमेंट करना, क्वेश्चंस पूछना और सॉल्यूशंस इम्प्रूव करना पसंद करते हैं। कतर का एनर्जी सेक्टर भी एडवांस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सिस्टम से क्लोजली कनेक्टेड है। लार्ज इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में मॉनिटरिंग, कंट्रोल और ऑटोमेटेड सिस्टम्स का कंट्रोल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्रोफेशनल्स टेक्नोलॉजी को सेफली ऑपरेट करने, इक्विपमेंट परफॉर्मेंस मॉनिटर करने और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस फील्ड में इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन स्किल्स यूजफुल हो सकती हैं। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन भी रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं। पोर्ट्स, वेयरहाउसेस, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में गुड्स को एफिशिएंटली मूव करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है। ऑटोमेटेड वेयरहाउसेस में मशीन्स प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई और मूव करने में हेल्प कर सकती हैं। फ्यूचर प्रोफेशनल्स वेयरहाउसेस, ऑटोमेशन, स्मार्ट लॉजिस्टिक, रोबोटिक हैंडलिंग सिस्टम्स और ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज में काम कर सकते हैं। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी भी रोबोटिक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। रोबोटिक सिस्टम्स मेडिकल असिस्टेंट्स, लेबोरेटरी प्रोसेसेस, रिहैबिलिटेशन और इंटरनल लॉजिस्टिक्स जैसे एरियाज में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्थ केयर और रोबोटिक्स को कंबाइन करने वाले प्रोफेशनल्स को इंजीनियरिंग के साथ हेल्थ केयर इन्वायरमेंट को भी समझना होता है। ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट पर्पस ह्यूमन वेलबींग और बेटर सर्विसेज को सपोर्ट करना होता है। कतर की हॉस्पिटलिटी और सर्विस

एक्सप्लोर कर रहा है. रोबोटिक सिस्टम्स फ्यूचर में कस्टमर असिस्टेंट, क्लीनिंग, डिलीवरी और इन्वेंटरी मैनेजमेंट जैसे टास्क में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. लेकिन इन सपोर्ट्स को ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी. यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कॉम्पिटिशन, इंजीनियरिंग एक्टिविटीज और इनोवेशन प्रोग्राम्स के जरिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं. अगर आप कतर में स्टूडेंट हैं और रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो यूनिवर्सिटीज, कम्युनिटी प्रोग्राम्स और टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशंस को फॉलो करना यूजफुल हो सकता है. कतर में रहने वाले तमाम यंग स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है कि सबसे पहले अपनी मैथ और साइंस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज हासिल करें, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल डिज़ाइन को एक्सप्लोर करें, रोबोटिक्स कॉम्पिटिशंस और साइंस प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करें, यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को फॉलो करें, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज सर्च करें और कतर के डिफरेंट इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी किस तरह यूज हो रही है इस पर नज़र रखें. आपको हर चीज़ एक साथ सीखने की ज़रूरत नहीं, एक स्किल से स्टार्ट करें फिर दूसरी स्किल्स ऐड करें. फॉर एग्जांपल पहले आप प्रोग्रामिंग शुरू करें, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर सेंसर्स की तरफ आ जाएं और फिर एक सिंपल रोबोटिक प्रोजेक्ट. इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं. रोबोटिक्स एक ऐसी फील्ड है जहां इमेजिनेशन को एक रियल वर्किंग सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है. अगर आप एक आइडिया इमेजिन करते हैं, उसे डिज़ाइन करते हैं, उसे बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसे इम्प्रूव करते हैं, यही प्रोसेस एक स्टूडेंट को फ्यूचर प्रोफेशनल बनाने में हेल्प कर सकता है. हम आज के एपिसोड से क्विक करियर चेक करते हैं. अगर आपको मशीन्स पसंद हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सप्लोर करें, इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग हो सकता है, प्रोग्रामिंग और एआई पसंद है तो कंप्यूटर साइंस एक्सप्लोर करें, मशीन्स और सॉफ्टवेयर दोनों पसंद है तो मैकेट्रॉनिक्स कंसिडर करें, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और एफिशिएंसी में इंटरेस्ट है तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग देखें, और अगर आपको नए आइडियाज डिस्कवर और एक्सपेरिमेंट करना पसंद है तो रोबोटिक रिसर्च आपके लिए एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकता है. करियर चूज करते हुए सिर्फ जॉब टाइटल ना देखें, अपनी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, लर्निंग स्टाइल को भी समझें. आपको किस काम करते हुए एनर्जी मिलती है, क्या आप डेस्क पे प्रोग्रामिंग करना पसंद करते हैं, क्या आप मशीन्स के साथ हैंड्स ऑन वर्क करना चाहेंगे, क्या आप डिज़ाइन और क्रिएटिविटी इंजॉय करते हैं या आप रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन पसंद करते हैं. इन सवालों के जवाब आपको अपना करियर डायरेक्शन समझने में हेल्प कर सकते हैं. और अब आ जाते हैं अपने सेगमेंट, जो मैंने आपसे शुरू में सवाल पूछा था उसकी तरफ, कि आपसे मैंने आज ये सवाल किया था कि हम ह्यूमंस और मशीन मिलकर कितना बेहतर काम कर सकते हैं. आपसे मैंने आज सवाल पूछा था कि अगर आप रोबोटिक फील्ड्स में करियर चूज करें तो आप रोबोट्स डिज़ाइन करना पसंद करेंगे, उन्हें प्रोग्राम करना, मेंटेन करना या किसी इंडस्ट्री में रोबोट्स के साथ डायरेक्टली वर्क करना. इस सवाल का कोई करेक्ट आंसर नहीं है. अगर आपको ड्राइंग और डिज़ाइन पसंद है शायद आप रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं. अगर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर्स पसंद है तो एआई या रोबोटिक सॉफ्टवेयर आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है. अगर आपको मशीन्स को प्रैक्टिकली हैंडल करना पसंद है तो रोबोटिक्स टेक्नीशियन का रोल आपको सूट कर सकता है. और अगर आपको किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी अप्लाई करना पसंद है तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर की जा सकती है. इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें और फिर उस इंटरेस्ट को स्किल्स में कन्वर्ट करें. तो अपने आंसर के बारे में सोचिए, शायद आपका आज का आंसर आपके फ्यूचर करियर का पहला क्लू हो. आज के एपिसोड में हमने रोबोटिक्स और ऑटोमेशन को देखा एक ब्रॉड और इवॉल्विंग करियर के तौर पे. इसमें इंजीनियरिंग भी है, इसमें जो कुछ बहुत सारे चांसेस हैं, स्कोप्स हैं, वो मैंने आपको बताए. इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द करियर्स ऑफ टुमारो.

0: मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे माविश, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक. अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

पाकिस्तान क्रिकेट के बुनियाद रखने वाले पहले टेस्ट कप्तान और वन ऑफ द लीडिंग क्रिकेटर ड्यूरिंग द 1950s अब्दुल हफीज करदार। या दोस्तों, आज हम बात करेंगे अब्दुल हफीज करदार के बारे में। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। अब्दुल हफीज करदार साहब का नाम पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक टीम की कयादत नहीं की बल्कि एक नए मुल्क को क्रिकेट की दुनिया में पहचान दिलाने में बुनियादी किरदार अदा किया। ऑल इन ऑल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान डेवलप्ड एज अ क्रिकेटिंग नेशन अंडर हिज कैप्टनसी। अब्दुल हफीज करदार की पैदाइश 17 जनवरी 1925 को लाहौर में हुआ। 1947 में पाकिस्तान के कायम के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि नए मुल्क की क्रिकेट टीम को एक मुस्तहकाम आइडेंटिटी दी जाए। ना कोई पुरानी टेस्ट हिस्ट्री थी, ना इंटरनेशनल क्रिकेट का लंबा तजुर्बा। ऐसे वक्त में अब्दुल हफीज करदार साहब सामने आए। उनमें लीडरशिप की सलाहियत, खुद एतमादी और मुश्किल हालात में फैसला करने का हौसला मौजूद था। दैट वॉज सम काइंड ऑफ एन इनबॉर्न टैलेंट, आई वुड लाइक टू से ओवर हियर। एंड इसी वजह से शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त समझा कि इनको ही कप्तान बना देते हैं। पाकिस्तान ने 1952 में इंडिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला और अब्दुल हफीज करदार को टीम का पहला टेस्ट कप्तान बनाया गया। हिस्टोरिक बात है, तारीखी बात है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था दोस्तों, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के एक नए सफर का आगाज था। करदार ने इस जिम्मेदारी को सिर्फ कप्तानी नहीं बल्कि एक मिशन समझा। उनके क्यादत में पाकिस्तान ने चंद ही सालों में दुनिया को अपनी सलाहियत का एहसास दिला दिया। दो साल बाद यानी 1954 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया, जहां टीम को एक मुश्किल चैलेंज का सामना था। लेकिन ओवल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर अपनी पहली टेस्ट विक्ट्री हासिल की। बहुत बड़ी बात है। फजल महमूद, अपने अगर थोड़ा सा क्रिकेट हिस्ट्री फॉलो करते हैं तो आप थोड़ा सा उनको भी जानिएगा कि फजल महमूद किस तरह के बॉलर थे एंड अब्दुल हफीज करदार किस तरह उनमें बिलीव करते थे, उनकी बॉलिंग पे कितना बिलीव करते थे। एंड फजल महमूद वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर्स ड्यूरिंग दैट एरा, जिन्होंने पाकिस्तान को कई सक्सेस दिलाने में मदद की। ये कामयाबी इसलिए भी खास थी क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल नया था। दे वर द आउट से की रूकी टीम। जहां इंडियन टीम 1936 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, वहीं 1952 में पाकिस्तान को अपना टेस्ट डेब्यू करना पड़ा। आई मीन 16 साल के बाद। सो तजुर्बा अगर कहें तो तजुर्बा वॉज नॉट देयर, लेकिन इनके पास इस तरह के खिलाड़ी थे जो नो दे न्यू दे हैड दैट एक्सपीरियंस, दे प्लेड क्रिकेट इन अनडिवाइडेड कंट्री में। सो फजल महमूद अगर है तो

तो यू नो अब्दुल हफीज कादर साहब थे, तो इनके पास सलाहियत, इनके पास तजुर्बा, एवरीथिंग वाज देयर. ओनली थिंग दैट वाज लैकिंग इन द टीम वाज एक्सपीरियंस, यू नो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, टेस्ट क्रिकेट एक्सपीरियंस. वो भी मिल गया था 1952 में अगेंस्ट इंडिया. और इंग्लैंड को हराने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई. उनके कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने ये बता दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट में शिरकत करने नहीं आया बल्कि मुकाबला करने आया. इस कामयाबी ने मुल्क में क्रिकेट के जुनून को मजीद मजबूत किया और खिलाड़ियों के अंदर भी ये यकीन पैदा किया कि वो दुनिया की बेहतरीन टीमों का मुकाबला कर सकते हैं. दैट इज सो एसेंशियल कि कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट. दैट कॉन्फिडेंस टेक्स यू टू द मून, वो एक कहावत है. तो क्रिकेट में भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है. वो अब्दुल हफीज करदार और फजल महमूद और उस ज़माने में पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह सपोर्ट किया कि आज पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जब हम देखते हैं, बात करते हैं, वी फील दैट हाँ, इस इन इन सब खिलाड़ियों की वजह से तो पाकिस्तान क्रिकेट के फॉर्मेटिव ईयर्स में जो बूस्ट मिला, जो कॉन्फिडेंस उन्हें हासिल, सो दैट रियली गेन फॉर पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन. अब्दुल हफीज करदार खुद भी एक ज़बरदस्त ऑलराउंड क्रिकेटर थे. वो लेफ्ट आर्म बॉलर और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और टीम के लिए बैट और बॉल दोनों से अहम किरदार अदा करते थे. लेकिन उनकी सबसे बड़ी कुव्वत उनकी लीडरशिप थी. वो खिलाड़ियों में डिसिप्लिन, यूनिटी और कॉन्फिडेंस पैदा करने पर जोर देते थे. एंड दैट इज सो एसेंशियल. आई मीन एज अ कप्तान, जैसे बाद में बहुत सारे ऐसे कप्तान आए यू नो वर्ल्ड क्रिकेट में, सो उनका काम ही होता था कि टीम में कॉन्फिडेंस डालो, टीम के अंदर में मॉरल बूस्ट करो. तो अब्दुल हफीज करदार के साथ ये एक बात, एक खूबी थी कि वो अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंटली यू नो जो जिसको कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम जो लेक्चर्स हैं, ड्रेसिंग रूम में जो पेप टॉक्स हैं, वो बहुत बाखूबी कर सकते थे. और उनकी कप्तानी का एक खास पहलू ये था कि वो खिलाड़ियों को सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए खेलने का जज्बा देते थे. कंट्री प्राइड कम्स टू योर फर्स्ट देन योर पर्सनल अचीवमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. उनके लिए क्रिकेट एक खेल से कहीं बढ़कर था, ये नए पाकिस्तान की पहचान का एक जरिया था. 1958 तक अब्दुल हफीज करदार ने पाकिस्तान की टेस्ट टीम की क्यादत की और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियाद मजबूत करने में जो किरदार अदा किया वो हमेशा याद रखा जाएगा. क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी अब्दुल हफीज करदार ने पाकिस्तान क्रिकेट से अपना रिश्ता ख़त्म नहीं किया. उन्होंने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी जिम्मेदारियां संभाली और सेलेक्टर्स और मेंटोर के तौर पर अपना तजुर्बा अगली जनरेशन तक पहुंचाया. यहां पर मैं बताऊं कि जावेद मियांदाद के डेब्यू जो हुआ था फॉर पाकिस्तान इन 1976, उससे पहले जावेद मियांदाद को इन्होंने नोट किया था इन वन ऑफ द मैचेस इन कायदे आजम ट्रॉफी. ये आपके लिए एक एनेक्डोट है, मैं आप लोगों को बता दूं. सो जावेद मियांदाद वाज बेसिकली अ फाइंड ऑफ अब्दुल हफीज करदार इन द 1970s अर्ली की बात है. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब्दुल हफीज करदार सिर्फ पाकिस्तान के पहले टेस्ट कप्तान नहीं थे, वो उस टीम के रहनुमा थे जिसने दुनिया को बताया कि एक नया मुल्क भी क्रिकेट के नक्शे पर अपनी जगह बना सके. उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि बुनियाद मजबूत हो तो कामयाबी की इमारत खुद बुलंद होती जाती है. पाकिस्तान क्रिकेट की आज की पहचान के पीछे जिन लोगों की मेहनत और विजन शामिल है, अब्दुल हफीज करदार उनमें सबसे नुमाया नाम है. करदार का मिशन एक दिन, एक मैच या एक सीरीज तक महदूद नहीं था दोस्तों. उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को एक सोच दी, एक पहचान दी और सबसे बढ़कर जीतने का यकीन दिलाया. और शायद इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी जब भी लिखी जाएगी उसके पहले पेज पर अब्दुल हफीज करदार का नाम जरूर लिखा जाएगा. उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा. अगली बार एक और जबरदस्त स्पोर्टिंग कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीर और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

0: FM 107. Time check. Time
1: check. चेक चेक चेक टाइम चेक. इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए शाम के 4:01 यानी इट्स टाइम फॉर.
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
1: यस जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता, द रिक्वेस्ट शो पर हाजिर हो चुकी हूँ. भाई देखो, आज का जो शो हमारा ना वो ऐसा है कि आप वॉल्यूम नीचे करके इंजॉय नहीं कर सकते. आपको अपने रेडियो सेट्स का, म्यूजिक सेट्स का वॉल्यूम बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का जो हमारा शो है ना वो उन आवाजों के नाम है जिन्होंने फिल्मी दुनिया के गानों को सिर्फ गाना नहीं दिया बल्कि एक यादगार एहसास दिया. कुछ आवाजें वो कहते हैं ना ऐसी होती हैं जो पहले ही धुन में पहचान ली जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो दिल को सुकून दे देती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो हमें थिरकने पर मजबूर कर देती हैं. तो कभी सोनू निगम की आवाज में वो मोहब्बत का एहसास है ना फील होता है ना, कभी उदित नारायण के गानों में वो पुराने रोमांटिक अंदाज, स्पेशली जब उदित नारायण गाते तो हमें एहसास हो रहा होता है, हमें वो पिक्चर दिख रहा होता है कि ये मुस्कुरा के गा रहे हैं कि नहीं. एंड देन कम श्रिया घोषाल, फिर सुनिधि चौहान, एंड द लिस्ट गोज ऑन. तो भाई आज की थीम ये है कि आपकी फेवरेट आवाज गानों की दुनिया की कौन सी है. हु इज योर फेवरेट सिंगर जिसके गाने अभी आप इंजॉय करना चाहेंगे FM 107 पर. द रिक्वेस्ट शो पर जल्दी से अपने रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाएं और अपने डेडिकेशंस भेजें 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ, और ज़रूर बताएं कि आपको ये पर्टिकुलर सिंगर क्यों पसंद है कि नहीं, और चाहे तो किसी को गाना डेडिकेट करें. हमें इंतज़ार रहेगा आपके रिक्वेस्ट का. FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं और आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं. फिलहाल के लिए द रिक्वेस्ट शो की हम शुरुआत कर रहे हैं इस ऐसी आवाज़ के साथ जिनको मैं फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ दी पावरफुल वॉइसेस में काउंट करती हूँ, और इनकी आवाज़ सुनकर दिल हमेशा ही खुश होता है. एंड ये है सुनिधि चौहान, जस्ट कमिंग अप ऑन योर वे. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन. FM 107 सुन रहे हैं आप. द रिक्वेस्ट शो पर आपकी ए फॉर अमिता हाजिर है और भाई बड़ी कमाल कमाल के गानों की रिक्वेस्ट आई हुई है एंड आई रियली लव इट क्योंकि हमारे लिसनर्स की चॉइसेस बड़ी यूनिक है. एंड जब भी हम कहते ना कि फिल्म इंडस्ट्री के गानों की पावरफुल वॉइसेस, तो उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, इनका नाम आता ही आता है, लाजमी जरूर आएगा. एंड आई कैन सी कि अभी सबसे पहली जो रिक्वेस्ट आई है मोहम्मद अशफाक की, वो कहते हैं कि अमिता, उदित नारायण अलका याग्निक का कॉम्बिनेशन का कोई भी गाना आप सुना दो, उन्हें बहुत बहुत पसंद आता है. तो हम उस गाने से शुरुआत करते हैं जो हर किसी का फेवरेट बन गया था, एंड जूही चावला और आमिर खान की डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक, गजब का है दिन. ये गाना पूरा पूरा हम आपको प्ले करेंगे आपके लिए. एंड इसी के साथ अब्दुल वहाब की रिक्वेस्ट है एंड अब्दुल्ला की रिक्वेस्ट है, मतलब ये दो लिसनर्स ने एक साथ रिक्वेस्ट की है एंड दे वांट टू लिसन टू दिस सॉन्ग. ये गाना है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, आशिकी फिल्म का एंड 90s की वन ऑफ द जेम. हाँ, सुकुमार सानू, अनुराधा पौडवाल की आवाज, ब्यूटिफुल ट्रैक. सो डेफिनेटली ये गाना भी पूरा पूरा आएगा. और आपका क्या ख्याल है, आप बताएं कि आपकी नज़र में फिल्मी दुनिया की सबसे पावरफुल आवाज़ कौन सी है जो आप सुनना ही चाहेंगे. शेयर कीजिए 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशन. और अभी लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग जो कि एक खूबसूरत दिन की तारीफ कर रहा है. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
3: गानों की पीछे की कहानी, latest trends और ढेर सारी मस्ती आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री टॉप

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी. कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है. पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप तक. ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर. एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: यस माय देसी ऑडियंस, वेलकम वंस अगेन. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता द रिक्वेस्ट शो पर. और क्या कहना, क्या कमाल कमाल के गानों की रिक्वेस्ट आई है कि मतलब मुझे लग रहा है ये सारे ही काश मैं प्ले कर सकती.

मतलब एक घंटे से ज्यादा का मुझे रिक्वेस्ट हो चाहिए आज का. वाह क्या बात है. आज की थीम ऐसी ही है, थीम ऐसी है कि वो सिंगर जो उनकी आवाज सुनते ही आपका दिल कह उठता है कि अरे वाह क्या आवाज है, बस आज उन्हीं के गाने आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी स्टोरीज के साथ. किसी खास को डेडिकेट करना है तो वो भी हमसे जरूर शेयर करें. ठीक है, अभी हमें जो अगली रिक्वेस्ट आई है दैट इज ऑफ रूबियल हुसैन. बड़ा यूनिक नाम है और कहते हैं कि कुमार सानू का कोई गाना सुनाए पॉपुलर सॉन्ग. और अभी अगर मैं सोचूं तो मुझे कुमार सानू की आवाज़ में ये गाना याद आ रहा है एंड दैट इज़ मेरी महबूबा. वाह व्हाट अ सॉन्ग. एंड इस गाने के बीच में ये लिरिक्स आती है ओबला डी ओबला डा. आपको बताना चाहती हूँ कि 60s के जो एक वन ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजिकल बैंड द बीटल्स, उनके गानों में इन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ था एंड दिस इज हाउ इस गाने में भी उसे किया गया. सो डेफिनेटली मेरी महबूबा इज कमिंग अप ऑन योर वे, आप सुनेंगे. उसके बाद अगली रिक्वेस्ट है ऑफ रहमान अहरम एंड मोहम्मद यूसुफ खान की एंड इज अ वेरी वेरी यूनिक सॉन्ग कभी खुशी कभी गम का एंड द सॉन्ग इज सूरज हुआ मध्यम, जिसे गाया है सोनू निगम अलका याग्निक ने. एंड इस गाने की शूटिंग इजिप्ट के पिरामिड्स के पास हुई थी. सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल ट्रैक. तो ये दोनों ही खासम खास गाने आपकी राहों में आने वाले हैं. और आपके फेवरेट सिंगर का कौन सा गाना है जिसे आप लूप पे सुनते हैं, शेयर कर डालो 666-22107 पर और बने रहो FM 107 पर दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
3: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
4: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: गेम चेंजर सीजन 2।
6: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
7: यस नाउ वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। एंड द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। वैसे जब हम फिल्मी दुनिया की फिल्मों की बात करते हैं तो कई बार हमें फिल्में याद रहे ना रहे, उनके गाने, उनके गानों के वीडियोस और उनके गानों के सिंगर्स हमेशा याद रह जाते हैं। वो कहते हैं ना कि ये प्लेबैक सिंगिंग का मैजिक होता है। एक अच्छा गाना सिर्फ उसकी धुन से नहीं बनता, उसमें सिंगर की आवाज़, उसके सुर, उसके जज्बात और गाने को महसूस करने का अंदाज भी होना चाहिए, है कि नहीं। वेल, अपनी आगे की रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो हमद की रिक्वेस्ट है एंड वो सुनना चाहते हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खां की आवाज में ये गाना। बहुत ही कमाल का गाना है एंड लिटरली द म्यूजिकल थीम इज कि मतलब एक तरफ रोमांटिक डिवोशन है, दूसरी तरफ एक हार्ट ब्रेक है। इट्स अ लवली ट्रैक। सो डेफिनेटली ये गाना पूरा पूरा आपकी राहों में आएगा। उसके बाद शैम्स की रिक्वेस्ट है और इट्स वन ऑफ द पावरफुल वॉइसेस ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, श्रेया घोषाल एंड एम जी श्री कुमार का कॉम्बिनेशन है एंड द सॉन्ग इज भूल भुलैया। फिल्म का ये गाना कोई कैसे भूल सकता है, मतलब इतनी पावरफुल वॉइस और वो इल्यूजनरी कैरेक्टर मंजुले का। हाँ, सो डेफिनेटली ये गाना पूरा पूरा आपकी राहों में आने वाला है। एंड आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, किस सिंगर की आवाज़ आपके दिल को छूती है, शेयर कीजिए 6662107 पर। अभी आपकी फॉर अमिता द रिक्वेस्ट शो पर आपके मैसेजेस और रिक्वेस्ट का इंतजार कर रही है। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: क्या बात है जनाब, मजा ही आ गया द रिक्वेस्ट शो पर आपकी रिक्वेस्ट प्ले करके। वेलकम है आप सभी का, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और बहुत ही पावरफुल वॉइसेस होती हैं जो फिल्मी दुनिया में, जो गानों में जान डाल देती हैं, बस आज वही थीम को हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन अभी इट्स टाइम टू चेक योर फिल्मी नॉलेज। तो आज जनाब आपको गाना नहीं पहचानना, गाने की आवाज पहचानना है। चलिए जरा ध्यान से सुनिए।
2: हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है।
1: पहचानिए पहचानिए ये आवाज किस सिंगर की है। तो जल्दी से शेयर करें 6622107 पर, 6622107 पर। एंड अगर आपने सही गैस किया तो ये गाना पूरा पूरा आपके नाम हो जाएगा। और अभी आगे बढ़ते हैं हम अगली रिक्वेस्ट की तरफ। सुस्मान जी की रिक्वेस्ट है और आज बेसिकली उनके बेटे का बर्थडे है। सुस्मान जी, आपके बेटे को हमारे सारी टीम की तरफ से तहे दिल से बर्थडे की बहुत सारी मुबारकबाद। एंड वी जस्ट प्रे कि वो हमेशा खुश और खुशहाल रहे, हमेशा स्वस्थ रहे और बहुत इंजॉय करे अपनी लाइफ। एंड उस्मान, बेसिकली आपके बेटे के लिए ये खासम खास गाना हम प्ले करेंगे, दैट इज फ्रॉम द मूवी फना, जो कि फुल पजल वाला गाना है। बाबुल सुप्रियो एंड महालक्ष्मी अय्यर की आवाज है, चंदा चमके, विच विल बी कमिंग सून। और उसके बाद एक बहुत ही यूनिक सी रिक्वेस्ट है अहमद की, जो कि सुनना चाहते हैं। क्या बात है, कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज़ का ये पर्टिकुलर गाना, इट्स अ मैजिक। तो चलिए ये गाना भी हम पूरा पूरा एंजॉय करेंगे। और आप बताइए बताइए, क्विज टाइम पे जो सवाल पूछा है जल्दी जल्दी जवाब भेजो। बने रहो FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: Yes, now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप और द रिक्वेस्ट शो का आखिरी पड़ाव चल रहा है और क्या बात है, हर एक आवाज़ का अपना रंग होता है, अपना अंदाज होता है और अपनी अलग कहानी, और आज यही थीम था हमारे शो का। वेल, क्विज टाइम पर मैंने आपको एक गाना सुनाया और कहा कि इस गाने के सिंगर की आवाज पहचानो।
2: घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी।
1: एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स ने आवाज पहचान ली है। कुछ कह रहे हैं शान, कम ऑन, ये शान नहीं है, ये है सोनू निगम। और जिन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है उनके नाम है शाम, शहजादा सलीम, शब्बीर है, मोहम्मद फारूक है, मोहम्मद यूसुफ खान है एंड रियाद है। तो क्या बात है, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है और ये गाना पूरा पूरा आपके नाम हो जाएगा। इसी के साथ अब आप मुझे दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त हो गया मेरे जाने का। आपकी मेरी मुलाकात अब कल होगी शाम 4 बजे से। तब तक क्या करना है, हमारे एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। और अभी अपना खूब सारा ख्याल रखें और जाते जाते ये कहना तो बनता है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहां हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कतर एक जजीरा नुमा मुमलिकत है जिसके चारों तरफ समंदर फैला हुआ है। इसीलिए समंदर पुराने और नए कतर की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहा है। मछली और दूसरी समंदरी गजाएं सिर्फ

ये एक ब्रिज है जो दिलों को जोड़ता है, गलतफहमियां दूर करता है और घर में मोहब्बत सुकून का माहौल पैदा करता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे फैमिली कम्युनिकेशन है क्या, ये इतना इम्पोर्टेंट, और कम कम्युनिकेशन के नुकसान क्या हैं, मिस कम्युनिकेशन कैसे पैदा हो जाता है, कुछ यहाँ पर मैं आपको टिप्स भी देने वाली हूँ और एक छोटा सा इंसिडेंट भी शेयर करूंगी। फिर बात करूंगी कि किस तरह से कम्युनिकेशन को विद इन द फैमिली इम्प्रूव किया जाए, और हाँ हर फैमिली में किस तरह से कम्युनिकेट करना है ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, और सबसे पहले जानते हैं कि फैमिली कम्युनिकेशन है क्या। देखो, फैमिली कम्युनिकेशन का मतलब है कि फैमिली मेंबर्स के दरमियान थॉट, फीलिंग, आइडियाज, कंसर्न्स का खुलकर और इज्जत के साथ तबादला किया जाए। यानी जब माँ अपने बच्चों की बात सुनती है, जब पेरेंट्स अपनी परेशानी अपने बच्चों से शेयर करते हैं, जब भाई अपनी बहन से, बहन अपने भाई से अपनी बात शेयर करती है और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, जब घर में कोई मसला हो और सब मिलकर उसका हल निकालें, तो इसे कहते हैं हेल्दी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना, listening is also communication, understanding is also communication, and respecting emotions is the biggest communication. कई दफा इंसान लफ्ज नहीं बोलता, मगर उसकी आंख, उसका लहजा, उसका रवैया बहुत कुछ कह जाता है। देखिए, आज हम और आप जो है वो ब्रोकन फैमिलीज को भी देखते हैं, कहीं ना कहीं मसले इतने बड़े नहीं होते, लेकिन हम एकदम लास्ट कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि बड़ा मसला था कि आपस में फैमिली का उस तरह से कम्युनिकेट करने का माहौल ही नहीं था। कम्युनिकेशन, फैमिली कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मोबाइल हो तो कॉल कैसे कनेक्ट होगी, बिल्कुल इसी तरह कम्युनिकेशन फैमिली का नेटवर्क है। जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा उतना रिलेशनशिप क्लियर और ब्यूटीफुल होंगे। यहाँ पर जब फैमिली मेंबर्स घर के लोगों से खुलकर बात है तो एक ट्रस्ट पैदा होता है। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है। बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, पेरेंट्स उनकी फीलिंग समझते हैं, दोस्तों से पहले फैमिली याद आती है और दोस्तों की भी आप बात सुनते हैं, समझते हैं, और ये सारी चीजें जो है वो ट्रस्ट का नाम है। और ये ट्रस्ट कहीं ना कहीं इसका सहारा बनाता है, नहीं इमोशनल सभी हमें मिलता है। हर इंसान कभी ना कभी स्ट्रगल तो करता है, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो, एजुकेशन प्रेशर हो, हेल्थ इश्यूज हो, अगर कम्युनिकेशन ओपन हो तो इंसान अकेला महसूस नहीं करता, उसे लगता है कि उसके पास लोग हैं जो उसे समझते। वही कम्युनिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि रिश्तों को मजबूत बनाता है। रिश्ते जो है वो कम्युनिकेशन से मजबूत होते हैं। जितनी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होगी उतनी क्लोज बढ़ेगी, कम्युनिकेशन है वो सॉल्व हो जाती है। हर घर में अलग तरह के मसले होते हैं, मगर फर्क ये होता है कि कुछ लोग बात कर सॉल्व कर और कुछ चुप रहकर उन्हें बड़ा बनाते। देखिए, कम्युनिकेशन जो है वो इंसान की जिंदगी में आसानी पैदा करता है। जब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को समझने हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं, तो इजी हो जाती है, घर के काम डिवाइड हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो जाती हैं, और हर किसी को पता होता है कि उसका रोल क्या है। इससे स्ट्रेस कम हो जाता है, इंसान अंदर ही अंदर बोझ नहीं उठाता, करने से बोझ हल्का हो जाता है। वहीं आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं, फिर चाहे वो डिसीजंस एजुकेशन से रिलेटेड हो, मैरिज से हो, रिलोकेशन हो या फाइनेंशियल। जब फैमिली डिस्कस करती है तो डिसीजंस ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं और इससे एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। जब हम किसी को सुनते हैं तो हम उसे वैल्यू देते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। वहीं पर कुछ फैमिलीज में आपस में उस तरीके का कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, डिस्टेंस जो है वो पैदा होता है। एक ही घर में रहने वाले लोग तौर पर दूर हो जाते हैं, सब अपनी दुनिया में मसरूफ हैं, तो इससे लोनली पड़ती है। बहुत से

लोग फैमिली के दरमियान रहकर भी तन्हा महसूस करते हैं कभी सोचा है क्यों उनकी बात सुलग नहीं होता ट्रस्ट टूटने लगता है जब लोग बात नहीं करते तो अजम्पशंस पैदा होते हैं और अजम्पशंस अक्सर गलत होते हैं छोटी बात बड़ा मसला बन जाती है जो मसला 5 मिनट की कन्वर्सेशन से सॉल्व हो था वो महकी नाराजगी बन जाता है और हाँ मिसकम्युनिकेशन तब है जब मैसेज गलत समझा जाए या मुकम्मल तौर पर समझा ही ना जाए जैसे है बेटा मुझसे बात है बेटा सोचता है मैंने जरूर कुछ गलती की होगी माँ सिर्फ उसकी हेल्थ के बारे में पूछना चाहती थी अब देखा अजम्पशन ने स्ट्रेस को क्रिएट कर दिया वहीं पर हस्बैंड ऑफिस से घर आते हैं कम बोलते हैं वाइफ समझती है कि वो मुझसे नाराज है जबकि हकीकत वो सिर्फ फिजिकली एग्जॉस्टेड है कम्युनिकेशन होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती एक बहन फैमिली गैदरिंग में मैं नहीं आती दूसरी बहन समझ उसने मुझे इग्नोर किया असल में उसकी तबीयत ही खराब थी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा अननेसेसरी हर्ट फीलिंग्स है और आज का जो दौर है वो डिजिटल दौर है आजकल फैमिली मेंबर्स एक ही रूम में होते हैं मगर सबके सब जो है अपने में बिजी होते हैं पेरेंट्स फोन पर बच्चे टैबलेट्स पर और कन्वर्सेशंस मिसिंग टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है लेकिन अगर टेक्नोलॉजी फैमिली कम्युनिकेशन को रिप्लेस कर दे तो प्रॉब्लम पैदा होती है हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट फैमिली कन्वर्सेशन के लिए जरूर निकालिए विदाउट फोन विदाउट डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फैमिली चलिए यहाँ पर एक छोटा सा किस्सा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक्या शेयर करती हूँ एक फैमिली का है इमली थी जहाँ माँ बाप और दो बच्चे सब एक दूसरे मोहब्बत करते थे मगर धीरे धीरे सब बिजी होते गए फादर ऑफिस में बिजी मदर घर के काम में बिजी बच्चे स्टडीज और सोशल मीडिया में बिजी सब एक ही घर में रहते थे लेकिन बात बड़ी कम होती थी एक दिन उनका बेटा स्कूल से घर उदास आया का रिजल्ट अच्छा नहीं था वो बहुत परेशान था मगर किसी ने उसे मैं समझी ठीक है फादर ने कहा बाद में बात करें मोबाइल में एज यूजुअल बिजी और ये छोटा बेटा रोज थोड़ा और चुप होता गया एक रात फादर ने देखा कि बेटा अपने रूम में अकेले बैठा रो रहा है उन्होंने मोबाइल साइड पर रखा और उसके पास गए और कहा क्या बात है ये सुनकर बेटा उठ फूट कर रोया उसने बताया कि वो पिछले 14 दिनों से स्ट्रगल कर रहा है बात बताने की वो प्रेशर में है वो परेशान है वो डिस्टर्ब है वो डरा है लेकिन उसने कहा कि आप में से किसी के पास 5 मिनट भी नहीं किसे बात कर ले सब अब आप अपने कामों में बिजी उस रात इनके फादर को एहसास हुआ कि हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं घर में लेकिन मेंटली एब्सेंट होते हैं उस रात पुरिली ने एक टाइम टेबल बनाया कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर बैठेंगे सब एक दूसरे को सुनेंगे सब अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे और फिर उन्होंने एक फैमिली रूल बनाया हर रोज डिनर के बाद 20 मिनट फैमिली टॉक टाइम कुछ महीने बाद घर का माहौल और बदल गया मोहब्बत बढ़ गई स्ट्रेस कम हुआ क्योंकि हर किसी ने अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू किया कई हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्यूशन नहीं मांगती सिर्फ वो ये चाहती हैं कि आप उन्हें सुन लें कम्युनिकेशन वापस आने से रिश्तों में मजबूती आई और रिश्ते मजीद मजबूत हुए देखिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है और मैं बात करूंगी कि इसे हम अपनी फैमिली में किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं सबसे पहला रूल है एक्टिव लिसनिंग का सुनना सीखिए सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं समझने के लिए जब कोई बात कह रहा हो तो उसकी बात मुकम्मल होने दें जजमेंट कम करें हर बात पर तंकीद मत करें अगर बच्चे अपनी फीलिंग्स शेयर करें तो फौरन लेक्चर शुरू ना करें डेली फैमिली टाइम रोज कुछ वक्त सिर्फ फैमिली के लिए रखिए 15 से 20 मिनट काफी है वही हाँ एक और टाइम एप्रिसिंग टाइम लोगों को बताएं आप उनकी कदर करते हैं छोटे छोटे सेंटेंस यू डिड अ ग्रेट जॉब

अप्रिशिएट यू, थैंक यू, ये सारी चीजें रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। वहीं ऑनेस्ट रहें, सच बोलिए, रिस्पेक्ट के साथ बोलिए, दिल की बात हो दिल से लेकिन उसमें ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्ट फीडबैक रिश्तों को मजबूत भी करता है और हर इंसान की ग्रोथ के लिए जरूरी भी है। वहीं मोबाइल फ्री मोमेंट्स भी आपके घर में होने चाहिए। डिनर टेबल को कम्युनिकेशन टेबल बनाइए, फोन फ्री जोन, ये बड़ा जरूरी है। वही इमोशन है, गम है, फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ एक्सप्रेस करना सीखिए। इमोशंस को दबा देना कम्युनिकेशन को कमजोर करता है। वही इम्पोर्टेंट है कि हर फैमिली मेंबर एक दूसरे से अलग है। अब हर किसी से एक ही तरीके का रूल अप्लाई करके बात नहीं की जा सकती। पेरेंट्स पे अटेंशन होती है, उनको ये पसंद होता है कि उनकी सही या गलत बात जो भी हो अहमियत दी जाए, उनके एक्सपीरियंसेस सही या गलत जो भी हैं उन्हें वैल्यू करें। ये तो पेरेंट्स के साथ रवैया है, भले से आप उनकी चीजों को अपना रहे नहीं अपना रहे, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये एहसास दिलाइए कि आप उनकी उन बातों को, उन एक्सपीरियंसेस को सुन रहे हैं और बता रहे हैं। वही अगर मैं बात करूँ बच्चों की, तो बच्चों को सेफ्टी और एक्सेलेंस चाहिए होती है। उन्हें जज मत कीजिए, या यूं कहें कि उन्हें जल्दी जज मत कीजिए। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें वक्त उन्हें सुने। तो बच्चों के साथ पेशेंट कम्युनिकेट करना बड़ा जरूरी है। जब मैं कम्युनिकेट करने की बात कहती हूँ तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, जहाँ पर सुनना और कहना दोनों इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं कहूंगी कि पहले सुने फिर कहें। वही टीनेजर्स, देखिए टीनेजर्स जो है वो अलग तरीके की स्पेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें वो स्पेस मिले और उस स्पेस की लोग रिस्पेक्ट करें। उन पर ऑर्डर्स लगाना, उन पे सख्ती लादना या सख्ती करना, ये कम्युनिकेशन और बॉन्ड दोनों को जो है वो कमजोर करता है। वहीं अगर मैं स्पाउस की बात करूं, हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों को एप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। सुनना भी जरूरी है और दोनों के रिश्तों में एक्सप्रेस करना भी जरूरी है। वहीं अगर आपके घर में कोई एल्डरली पीपल है, उन्हें कंपेनियनशिप चाहिए होती है, कोई उनकी स्टोरी सुने और उनकी कम्युनिकेशन का हिस्सा बने। कई दफा उनके पास लफ्जों से ज्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं। माना वो एक्सपीरियंसेस ऑब्सलीट हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कम लाइक बात जरूर निकाली जा सकती है। देखिए फैमिली कम्युनिकेशन के कुछ गोल्डन रूल्स भी हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि स्पीक काइंडली, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज लिसन केयरफुली, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अवॉइड अजम्पशंस, चौथी इंपॉर्टेंट चीज रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, और छठी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। वहीं पर सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बट कामली, कीप कम्युनिकेशन ओपन प्रिंसिपल्स हर फैमिली को मजबूत बना सकते हैं, नाते भी हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आज के इस टॉपिक पर बात करते हुए हमने और आपने ये समझा और ये जाना कि आज की जो इस पूरे टॉपिक का जो मैं अभी तो खैर निचोड़ नहीं है, लेकिन आज की इस टॉपिक से हम ये समझते हैं कि फैमिली कम्युनिकेशन एक लग्जरी की तरह है, और शायद लग्जरी नहीं कहना चाहिए मुझे, इसे नेसेसिटी कहना चाहिए। एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर कन्वर्सेशन से बनता है, मोहब्बत से बनता है, समझने से बनता है। और जब हम बात करते हैं तो दिल करीब आते हैं, जब हम बात सुनते हैं तो रिश्ते गहरे हो जाते हैं, जब हम समझते हैं तो गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। कहते हैं ना कि साइलेंस कैन क्रिएट डिस्टेंस बट कम्युनिकेशन क्रिएट्स कनेक्शन। आज घर जाकर अपने किसी फैमिली मेंबर से 10 मिनट दिल से बात कीजिएगा, शायद उन्हें इसी वक्त आपकी जरूरत हो, शायद आपकी कन्वर्सेशन किसी का बोझ हल्का कर दे, शायद आपकी मुस्कुराहट किसी का दिन बना दे, और शायद आपका एक सच्चा जुमला किसी और रिश्ते को एक नया नाम दे दे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फैमिली इज नॉट अबाउट लिविंग टुगेदर, फैमिली इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग टुगेदर, ग्रोइंग टुगेदर एंड कम्युनिकेटिंग टुगेदर, है ना। तो चलिए यहाँ पर तो हमने एक हिस्सा मुकम्मल किया। कई बार ऐसा भी होता है, क्या आपने महसूस किया कि घर में सारे लोग हैं, घर के जितने मेंबर्स हैं वो सब के सब मौजूद हैं, फिर भी घर में खामोशी है। कभी आपने सोचा है कि कुछ घर इतने खामोश क्यों लगते हैं? सब लोग अपने अपने कामों में होते हैं, कोई झगड़ा भी, कोई आवाज भी नहीं आती, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन कई दफा

सेफ स्पेस है और नहीं है तो होनी चाहिए। अगर बच्चा स्कूल में फेल हो जाए, अगर टीनेजर किसी इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा हो, अगर फादर ऑफिस प्रेशर में हो, अगर मदर मेंटली एग्जॉस्टेड हो, तो सबको यकीन होना चाहिए कि घर वापस जाकर कोई उनकी बात सुनेगा, उन्हें समझेगा। दोस्तों, कम्युनिकेशन इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करता है। जब इंसान जज नहीं होता तो वो खुलकर बात करता है। देखिए, हर फैमिली में प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, हेल्थ कंसर्न्स होती हैं, जनरेशन गैप है, करियर डिसीजंस है, मैरिज डिस्कशन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फैमिलीज और वीक फैमिलीज में फर्क ये होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस या डिस्कस नहीं करते, बल्कि फर्क सबसे बड़ा मैं कहूंगी ये है कि प्रॉब्लम्स को मिलकर डिस्कस नहीं करते। कम्युनिकेशन हर प्रॉब्लम का सलूशन शायद नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन हर सलूशन का पहला कदम जरूर हो सकता है। जब लोग बात करना छोड़ देते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं, और जब लोग बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स मैनेजेबल लगते हैं। दुनिया की सक्सेसफुल कंपनीज मीटिंग्स क्यों रखती हैं? टीम मीटिंग्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स होती हैं, शायद इसलिए कि फैमिली जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वो मीटिंग्स क्यों नहीं रखती? दो मीटिंग तो हर वीक होनी ही चाहिए 20 से 30 मिनट के लिए, जहां फैमिली मेंबर्स एकाएक बैठे, कोई एक इशू उठा लें, डिस्कस करें और फिर अपना कंसर्न जाहिर करें। एक सिंपल हैबिट कम्युनिकेशन को बहुत इम्प्रूव करती है। फैमिली मीटिंग्स ब्लेम करने के लिए नहीं, समझने के लिए होनी चाहिए। वहीं कम्युनिकेशन का सबसे अंडररेटेड हिस्सा लिसनिंग है। हम अक्सर जवाब देते समझने के लिए नहीं। जब बच्चा बात कर रहा हो और पेरेंट्स मोबाइल यूज कर, जब स्पाउस बात कर रहा हो और दूसरा टीवी देख रहा हो, या जब एल्डरली फैमिली मेंबर अपनी कहानी सुना रहा हो और तवज्जो ना दे रहा हो, तो मैसेज ये जाता है कि तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो ही नहीं। एक्टिव है आई कॉन्टैक्ट, बीच में इंटरप्ट ना करना और समझने के लिए ना। कई दफा लोग सलूशन नहीं आते, वो सिर्फ सुनने का इंसान चाहते हैं, मुझे भेज देते हैं, हार्ट रिएक्ट कर देते हैं, थम्स अप बनाकर एंड कर देते हैं और समझते हैं कि कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन रियल कम्युनिकेशन स्किन के पीछे नहीं होता, रियल कम्युनिकेशन इमोशंस के साथ होता है। आजकल कई फैमिलीज एक ही सोफे पर बैठी होती हैं, मगर सबके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, कन्वर्सेशन की जगह मोबाइल्स देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी को फैमिली कनेक्शन के लिए यूज कीजिए, फैमिली कनेक्शन की जगह टेक्नोलॉजी को मत बैठा दीजिए। हर फैमिली मेंबर अप्रिशिएट होना चाहता है, मदर को सुनना पसंद है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फादर को अच्छा लगता है कि ये आई लव यू, बच्चों को सुनना पसंद है यू डिड अ ग्रेट जॉब फैंटास्टिक, और कोई और जो घर में ये सुनने के लिए तरस रहा है, जिसके कान तरस रहे हैं कि आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। कहने को बड़े सिंपल से वर्ड है, मगर बड़े पावरफुल होते हैं। कई रिश्ते कॉम्प्लीमेंट्स की कमी की वजह से कमजोर होकर टूट जाते हैं। लोग क्रिटिसिज्म याद रखते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन उनके दिल में एक कॉन्फिडेंस को पैदा करता है। फैमिली कम्युनिकेशन और मेंटल हेल्थ, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। रिसर्च भी ये बताती है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो है वो मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करती है। जब इंसान के पास सपोर्ट सिस्टम हो तो वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस को बेहतर हैंडल करता है। एक सपोर्टिव कन्वर्सेशन कड़वा मेडिसिन जैसा काम करती है। एक प्यार भरा सेंटेंस किसी का पूरा दिन बदल देता है, और एक सिंसियर हग किसी की परेशानी कम कर देता है, और एक अच्छी सी कन्वर्सेशन किसी की जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। देखिए, कम्युनिकेशन का स्टाइल हर एज ग्रुप के साथ डिफरेंट होता है। इस पर हमने बात ही की, बच्चों के साथ अलग, टीनेजर्स के साथ अलग, एडल्ट्स के साथ अलग, एल्डरली पेरेंट्स के साथ अलग, और असल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। असल कम्युनिकेशन का टेस्ट तब होता है जब डिसएग्रीमेंट्स हो। अच्छे रिलेशनशिप्स वो नहीं माने जिनमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, अच्छे रिलेशनशिप्स वो होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिस्पेक्टफुली हैंडल करते हैं। जब गुस्सा हो आवाज नीचे रखें, पर्सनल अटैक कभी ना करें, पुरानी बातें ना निकालें, मसले पर बात करें शख्सियत पर नहीं। और याद रखिए, विनिंग द आर्ग्यूमेंट एंड लूजिंग द रिलेशनशिप इज नेवर अ सक्सेस। वहीं कई बार रिश्ते किसी बड़ी वजह नहीं टूटते, वो छोटे छोटे अनसेड बातों से कमजोर होते हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक इग्नोर्ड मैसेज, एक अनसेड अपॉलॉजी, एक ना की गई कन्वर्सेशन।

टेंशन और धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ा जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई रिश्ते एक सिंसियर कन्वर्सेशन से दोबारा मजबूत भी हो सकते हैं। कभी कभी सिर्फ इतना कहना कि मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूँ, या महसूस है, या थैंक यू फॉर बीइंग देयर, दिल के बंद दरवाजे खुल देता है। तो दोस्तों, जिंदगी बहुत तेज गुजर रही है, हम करियर्स बना रहे हैं, बिल्स पे कर रहे हैं, गोल्स अचीव कर रहे हैं, लेकिन इस सफर में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने ही घर वालों से इमोशनली दूर हो जाएं। एक दिन एक्सपेंसिव गिफ्ट्स याद नहीं रहेंगे, एक दिन बड़ी याद नहीं रही, एक दिन प्रमोशंस भी याद ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रखेंगे कि जब वो दुखी थे तो किसने उसकी बात सुनी, उन्होंने था किसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद फैमिली का कोई ऐसा शब्द, फैमिली कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं है दोस्तों, ये ट्रस्ट का ब्रिज, ये मोहब्बत लैंग्वेज है, ये रिश्तों की ऑक्सीजन है। जिस घर में कम्युनिकेशन ज्यादा होती है वहाँ उम्मीद जिंदा होती है, वहाँ रिस्पेक्ट जिंदा होती है, वहाँ मोहब्बत जिंदा रहती है। बस आज मैं कहूंगी कि इतनी बात जरूर याद रखिए कि families grow stronger because they keep their hearts connected through honest communication. इसीलिए आज ही अपने किसी family member को call जरूर कीजिए, जिनसे आप बात तो करते हैं लेकिन फिर भी emotional distance है, उनके पास निकाल के बैठिए, जिनको आपने पिछले 15, 20 या फिर महीनों से सुना ही नहीं। पर हाँ, अगर कोई घर में बच्चा है तो ये कह के कि अरे ये तो बच्चा है, क्या ही समझता है, नहीं, वक्त निकाल के उस बच्चे को सुनिए और वो जो कहना चाहता है या कहना चाहते हैं उन बातों को पूरी तवज्जो से सुनिए भी और समझिए भी। और अगर फैमिली मेंबर्स आपको और हम सबको सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपको भी सुना जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए एक कन्वर्सेशन काफी होती है, वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लेकर आती है। दोस्तों, आज की इस पूरी कन्वर्सेशन के बाद अगर हम फैमिली कम्युनिकेशन को सिर्फ एक वर्ड में समझना चाहें तो शायद ये कहना काफी होगा कि कम्युनिकेशन वो पुल है जो दिलों को जोड़ता है और खामोशी वो दीवार है जो दिलों को जुदा कर देती है। हम सब अपनी जिंदगी में बिजी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हम केयर करते हैं, जिनके लिए हम बिजी हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं। कोई एग्जाम्स के प्रेशर को लेके परेशान है, कोई बिजनेस ग्रो करना चाहता है, कोई बच्चे की परवरिश में मसरूफ है, और इसी दौर में कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ हमारे वक्त, हमारे तवज्जो और हमारी बात का इंतजार कर रहे हैं। कई दफा हम समझते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं जो वाकई हमसे बिना पैसों के कुछ चाहते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को एक्सपेंसिव टॉयज या उनका कोई और कमिटमेंट पूरा करें ना करें, उन्हें अपना वक्त दें। कभी कभी पेरेंट्स आपके फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहते, वो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि आप कैसे हैं। कभी कभी हस्बैंड या वाइफ किसी असली गिफ्ट का इंतजार रहे होते, वो सिर्फ ये महसूस करना चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है कि नहीं। यही कम्युनिकेशन की असली ताकत है। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख अक्सर ये नहीं होता कि लोग हमारे पास नहीं थे, सबसे बड़ा दुख ये होता है कि लोग हमारे पास थे मगर हम उन तक पहुंच पाए, हम उनकी बात नहीं समझ पाए, हम उनके इमोशंस नहीं सुन पाए, हम उनकी खामोशी नहीं पढ़ पाए। याद रखिए, हर इंसान दिल में कुछ कहीं बातें होती हैं, कुछ खुशियाँ, कुछ ख्वाहिशें, कुछ डर, कुछ परेशानियाँ, और फैमिली वो जगह होनी चाहिए जहाँ ये सब बातें बिना किसी फेयर के शेयर की जा सके। आज दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, हम चंद सेकंड्स में दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पर हजारों लाखों लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग पहले से ज्यादा लोनली क्यों फील करते हैं? शायद इसलिए कि कनेक्शन और कम्युनिकेशन में फर्क है। कनेक्शन इंटरनेट देता है, कम्युनिकेशन दिल देता है। कनेक्शन सिग्नल से होता है, कम्युनिकेशन समझने से होता है। कनेक्शन टेक्नोलॉजी करती है, कम्युनिकेशन इंसानियत फैलाती है। एक घर में फास्ट वाईफाई हो सकता है, लेकिन क्या हो सकते हैं लग्जरी

0: नेचर हो सकता है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन ना हो तो उस घर में इमोशनल सुकून नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ एक सिंपल सा घर हो जहां रिसोर्स कम हो मगर लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, वहां खुशियां और सुकून ज्यादा नजर आता है। फैमिली कम्युनिकेशन सिर्फ मुश्किल वक्त में बात करना नहीं है, ये अच्छे वक्त में भी बात करना है, खुशियां शेयर करना है, अचीवमेंट सेलिब्रेट करना है, ड्रीम्स डिस्कस करें, फ्यूचर प्लान्स करना है, और सबसे अहम एक दूसरे को यह एहसास दिलाना है कि तुम अकेले नहीं हो। सोचिए अगर आज आपकी बच्चे किसी टेंशन हो और वो आपसे बात ना कर सके, अगर पेरेंट्स किसी दुख में हो और आपसे बात ना कर सके, आपका स्पाउस किसी इमोशन के साथ स्ट्रगल कर रहा हो और वहां तक अपनी बात ना पहुंचा सके, तो फिर ऐसे रिश्तों का क्या फायदा। कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना नहीं, कम्युनिकेशन ट्रस्ट बिल्ड करना है। और ट्रस्ट वो करेंसी है जिस पर हर सक्सेसफुल रिलेशन लिखी जा सकती है। जिंदगी में बहुत सी चीजें रिप्लेस हो सकती हैं, नौकरी बदल सकते हैं आप, बिजनेस बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, सिटी कंट्री हो सकती है, लेकिन फैमिली का रिश्ता बहुत यूनिक होता है। इसलिए इस रिश्ते को मजबूत रखने के लिए कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी देना जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कल बात कर लेंगे, कल मिल लेंगे, कल पूछ लेंगे, कल अप्रिशिएट कर लेंगे, मगर जिंदगी हमेशा कल का वादा नहीं करती। जो बात आज कही जा सकती है उसे कल पर मत टालिए। आज ही अपनी माँ को फोन कीजिए, आज ही अपने फादर से बात कीजिए, आज ही अपने बच्चे की बात सुनिए, आज ही अपने स्पाउस को अप्रिशिएट कीजिए, आज ही किसी नाराज फैमिली मेंबर को मैसेज भेजिए, क्योंकि कई दफा एक कन्वर्सेशन वो कर देती है जो सालों के डिस्टेंस नहीं कर सकते। एक सिंसियर अपोलॉजी, एक ऑनेस्ट अप्रिसिएशन, एक लविंग कन्वर्सेशन, है ना। बस मैं आपको जानते कहना चाहूंगी कि फैमिलीज आर नॉट हेल्ड टुगेदर बाय वॉल्स, मनी, ट्रेडिशंस और रूटीन्स। फैमिलीज आर हेल्ड टुगेदर बाय कन्वर्सेशंस, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड लव। और जहां कम्युनिकेशन ज्यादा होता है वहां रिश्ते सिर्फ कायम नहीं होते, वहां रिश्ते फूलों की तरह खिलते हैं, मजबूत होते हैं और नस्लों तक अपनी खुशबू फैलाते रहते हैं। चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी, टाइम बता, टाइम चेक। FM 107 की स्टूडियो की घड़ी में 6:02।
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद RJ Fuzzy
1: लियोन। FM 107 दिल से देसी।
2: क्या यार, मैं ये सोच दिया था कि आज बारिश होगी, बादल भी लग रहे थे लेकिन हुई ना बारिश। मैंने तो सर उठा के बादलों से पूछा भी कि क्या भाई बारिश होगी, तो बादल बोले सही में मेरा एकदम दिल दुख गया। मैंने बादल से कहा यार देखकर तो लग रही है कि आज बारिश होगी 5-6 बजे तक, तो बारिश हुई ना। अच्छा बारिश हुई तो कल हुई, वो भी खरारा वरारा में जो 1.5 घंटा दूर है भाई साहब, इतना ज्यादा। और सुना बर्फ भी गिरी है उधर, अरे वो गोए बन के जो गिरी है। तो मैंने फिर बादल से पूछा, मैंने पूछा कि यार मेरा दिल तो कह रहा है कि कल यानी कि आज के दिन दोहा में भी बारिश होगी। तो बादल ने कहा आपका दिल कह रहा है लेकिन

मैंने बादल से कहा यार तुम तो आके स्कैम ही कर गए मुझको, स्कैम तो हुआ है भाई साहब हम दोहा वाले लोगों के साथ। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज होगी बारिश, चलो कोई नहीं मौसम तो अच्छा है। और कतर वेदर वाले भैया ने बताया था कि अभी जो है आने वाले 10 दिन के अंदर

बिजली के साथ होगी बारिश, तो जो 9 दिन अभी बाकी हैं। फिलहाल इस्तकबाल है आप सभी का FM 107 पे, और इस स्कैम के साथ ही शुरू करते हैं आज का शो जिसका नाम है अनप्लग्ड इवनिंग। क्या है हाल चाल, उम्मीद है बेहतरीन होंगे और आज का दिन एंजॉय कर रहे हैं, कल तो आ गया वीकेंड। फिलहाल ये शो जो आपको पता है अनप्लग्ड इवनिंग शाम को 6 बजे आता है, और आज का सवाल पर आते हैं यार, आज का सवाल इसी स्कैम पर है। क्यों आजकल अपन ना स्कैम वाला शो कर रहे हैं ना, मतलब फ्रॉडस्टर और जो फ्रॉड अवेयरनेस का शो है उसमें मैं आपको नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बताता रहता हूँ कि कैसे कैसे नए फ्रॉड हो रहे हैं। तो आने वाले हफ्ते में भी आप हर रोज इस तरह के फ्रॉड के बारे में सुनेंगे, ऐसा वाला नहीं कि बारिश नहीं हुई, लेकिन ये वाला जो आज का सवाल, तो वहीं से ये सवाल आया क्योंकि फ्रॉड का शो कर रहा हूं मैं ना। सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो फ्रॉड हो रहा है। सवाल जब करेंगे तो पता चलेगा।

0: तो देखो मित्र, सवाल ये है कि एक्चुअली में आपको बताना है व्हाट यू थिंक. आपको ऐसा लगता है कि स्कैम है, बट स्कैम डिफाइन नहीं है. व्हाट यू थिंक इज अ स्कैम बट नॉट डिफाइंड एज अ स्कैम. आपको लगता है कि ये स्कैम तो है भाई, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं कि भाई ये स्कैम है. ठीक है, तो ये आपको बताना है. नंबर हमारा व्हाट्सएप का है 666-22-107. कुछ भी बता सकते हैं, मतलब ये फनी वे में आप सोच सकते हैं. जैसे कि आमतौर पर लोग कहते हैं ना कि अरे तुम्हारी जिंदगी में इतनी टेंशन इसीलिए तुमने शादी नहीं करी ना, एक बार शादी कर लो तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी. असल बात यह है कि शादी के बाद ही तो असली टेंशन शुरू होती है. तो ये वाली लाइन ना कि शादी कर लो सब सही हो जाएगा, ये सबसे बड़ा स्कैम है. तो ऐसे कुछ ना कुछ स्कैम जो है वो हमारे और आपके लाइफ में होते रहते हैं. तो आपको यही बताना है कि ऐसा स्कैम क्या है वो जो सोसाइटी में तो बड़ा आम है. लोग कहते हैं कि अरे फला कर लो, लेकिन वो स्कैम ऐसा स्कैम डिफाइन नहीं है. स्कैम तो है लेकिन वो फ्रॉड, वो स्कैम, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. तो ये बताइए, नंबर है 666-22-107.
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
0: बाकी देखो कहीं पर भी बारिश होगी बताना आपकी जिम्मेदारी है. मैं भी अपना घोड़ा लेके तिगड़िक तिगड़िक तिगड़िक तिगड़िक तिगड़िक तिगड़िक आऊंगा और बारिश के लुत्फ जो है वो उठाऊंगा. तो ये आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी मैंने छोड़ के रखी हुई है. आप कहीं पर भी हो, अलखोर में टहल रहे हो, है ना, खरारा में टहल रहे हो, सलवार रोड पे हो, दुकान में हो, कहीं पर भी हो भाई, एक बार इत्तला कर देना, मैं अपना घोड़ा निकाल के आ जाऊंगा. मेरे को भी बारिश का शौक़ है. मैं चेज़ तो नहीं करता हूँ बादलों को, लेकिन इन दिनों चेज़ कर सकते हैं. ठीक है, और कतर की बारिश तो होती भी खूबसूरत है. अपने अपने वाले मुल्क की होती तो कौन भागे कीचड़ में, है ना. लेकिन यहाँ पर आपको चेज़ करना भी पड़ता है. एक तो होती भी रेयर है और ऊपर से एक अलग सुकून, एक अलग शौक, सुख है बारिश में. फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और इस सुबह का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम, हैप्पी वेंसडे इवनिंग. हैप्पी वेंसडे इवनिंग मेरा भाई. अस्सलाम वालेकुम भाई, सवाल में ही तो आंसर है ना. ये बहुत ही गलत बात कही है, मज़ा नहीं आया. शेख इरफान भाई लिखो कुछ तब मज़ा आएगा. एक और ये मैसेज है, और मैसेज है अशफाक साहब का. अशफाक कहते हैं कि 10th पास कर लो आगे सब आसान है. ये सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा.
3: कि बेटा जिंदगी में जितनी ही टेंशन है ना, वो सारी की सारी टेंशन 10th क्लास तक है, उसके बाद सब आसान है बेटा. जिंदगी में कोई परेशानी आएगी, 10th के बाद तुमको सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा. 11th कर लोगे, 11th में कोई नंबर लाने की जरूरत नहीं. फिर उसके बाद जैसे ही 11th ज्वाइन करो ना, तो 11th में बोलते अरे 12th का ही तो मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट है.
0: हैं, ये कब हो गया इंपॉर्टेंट, अभी तक तो 10th था.
3: नहीं बेटा, 10th तो मजाक था. 12वीं क्लास सबसे ज्यादा टेंशन वाली होती है. 12वीं में अच्छे नंबर लाना तभी तो कॉलेज अच्छा मिलेगा. पढ़ लो बेटा, पढ़ लो.
0: ऐसे लोगों को शक्ल पे, माथों पे लिखवा दो भाई, स्कैमर. बहुत मुश्किल हो जाता है यार, ऐसे लोगों से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. फिर एक और मैसेज है, फजील भाई सुबह से मूड बनाकर दिल तोड़ रहा है, क्या कर सकते हैं. रिजवान साहब, इस पे कोई वो भी नहीं है ना, चारा नहीं है अपने पास, सीडिंग करवा दो यार.

क्या कर सकते हैं इस वाले में? एक एक बारिश का फील ले सकते हो, मैं बताऊं क्या? अगर मुझे कोड़े वाले भैया मारे ना, मैं तो बताऊं, वो फील ये है कि आपका दोस्त जो है जिसके पास कार है उससे कहो कि गाड़ी आगे चलाए, आप पीछे गाड़ी में बैठे, लेकिन आपके गाड़ी में सनरूफ होना चाहिए, मुंडी आप बाहर निकालें, अपनी शक्ल जो है वो बाहर निकालें सनरूफ से, और आगे जो दोस्त आपकी गाड़ी चला रहा है उससे कहें कि वाइपर ऑन कर दो भाई, विंडशील्ड पे पानी मारो। उसके गाड़ी की स्पीड अगर 60 से कम हुई तो छींटे मुंह पे नहीं पड़ेंगी, बारिश नहीं हुई 80 से ऊपर हुई तो छींटे मुंह पे पड़ेंगी, ये तरीका है। बाकी कोड़े वाले भैया देखो तेल की डिब्बिया खोल ली, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था, बता ये वाला। ओके मुझे भी कहा गया है कि दसवीं के बाद सब बढ़िया है। रिजवान साहब ये सबसे बड़ा स्कैम है और इस स्कैम से कोई नहीं बच पाया है, ये स्कैम सारे मासूम बच्चों के साथ हुआ है और ऐसे स्कैम में आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो स्कैमर है वो अपने घर का ही है और उसी के घर में रोटी बनाने वाली वही है, खाना लाने वाला वही है जो स्कैम कर रहा है कि बेटा दसवीं के बाद सब कुछ अच्छा होता है। जो बंदा खाना खिलाकर ये स्कैम कर जाए तो आपको पता है कि ठीक है चलेगा। कोई बात नहीं। ओके बाकी एक और मैसेज है, भाई हेलीकॉप्टर रेंट पे लेके बादलों से बातें करने जा रहा हूँ कि बरसों के कब। मैं कहता हूँ शेख साहब आप अपना लोकेशन भेज दीजिए ये कोड़े वाले भैया को। अरे कोड़े वाले भैया मैं आपको लोकेशन व्हाट्सअप कर रहा हूँ, शेख इरफान है पूरा नाम, क्या उनको यहां बुलाएं? अच्छा ऐसी बातों पे आप जाएंगे नहीं, उनको बुलाना पड़ेगा? नहीं देखो वो नहीं आएंगे कह रहे, आप लोकेशन मैं आपको भेज दे रहा हूं, वो आपको बता देंगे, आप चले जाइए, नहीं तेल की डिबिया भी ले जाइए, और लेदर का कोड़ा है ना उसको तेल की जरूरत पड़ेगी, उसी से रसीद दिएगा, जाइए। हाँ अल्लाह हाफिज़। शेख साहब वो नंबर शेयर कर दे रहा हूं मैं उनसे, ये जो आपने बात कही है हेलीकॉप्टर लेके, ये मेरा कोड़े वाला आएगा आपके पास, है ना, तो देख लीजिएगा, बस पीठ पे दो चार। ज्यादा कोड़ा पतला ही है, हाँ नहीं इसीलिए दो चार, अगर मोटा होता तो 20-25 पड़ते। आगे बढ़ते हुए ये एक और मैसेज है मुबशर मुबीन साहब का, कहते हैं AI स्कैम अब मेरे साथ हुआ है, या एक स्कैम मेरे साथ हुआ है, मुझे घर वालों ने बोला था 10 पास करो शादी कर देंगे, और 12 के बाद भी 5 साल हो गए हैं और अब तो कतर से आगे भी समंदर ही है, अभी तक ऐसे ही अकेला हूँ। अरे भाई आप घर में पैसा देना बंद कर दो। हो जाएगी कि अरे ये लड़का बर्बाद हो रहा है। यही एक तरीका है। दूसरा एक ये तरीका है कि घर पे जाकर बैठो और कहो मम्मी अब कुछ अच्छा नहीं लगता है, सब बेकार सा लगता है, वहाँ पर बड़ा कोई है ही नहीं, दोस्त यार है ही नहीं, अच्छा नहीं लगता है, सब छोड़ दे रहा है काम वाम, तो मम्मी अरे नहीं नहीं बेटा शादी कर लो, बेगम को ले जाओ साथ में। और यकीन मानो ये वाली बात कहोगे ना, हो सकता है अम्मी ऑलरेडी 2-3 तुम्हारे लिए देख चुकी हो। तो काम बन जाएगा। बाकी ये भी एक बड़ा स्कैम है कि आप जब कहते हैं ना कि अरे मुझे लग रहा है कि बहुत अकेलापन है, ये आप स्कैम कर रहे अपने घर वालों के साथ, लेकिन उनको पता है कि अरे अभी 1-2 साल और करना है, जब तक तड़पन दिख ना जाए खुद से तब तक ये स्कैम जो है बढ़ता रहेगा चलता रहेगा। साबिर साहब का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, आपने जो बोला कि वो सच भी हो गया, मेरे सामने वाली गाड़ी से वाइपर चालू है और मेरे ऊपर पानी आ रहा है। बारिश हो गई। साबिर भाई को सबर करने की जरूरत ही नहीं है, अब आप सूप से शक्ल ऊपर बाहर निकाल ले। बारिश का मजा लो बस। लेकिन हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि 6 सेकंड तक, जब तक जैसे उसने वाइपर चलाया ना पानी चलाना, 6 सेकंड तक बाहर नहीं निकलना है, वरना वो गंदा पानी आ जाना है। थोड़ा साफ हो जाए वो जो मिरर है ओ, या कहें वो जो शील्ड है विंडशील्ड है वो साफ हो जाए, उसके बाद मुंह बाहर निकालें ताकि साफ पानी मुंह में आए, ठीक है। वरना कल कहीं जाना है और आज पिंपल हो गए। संभाल के

ये आगे की बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ भाई, ये मैं कर चुका हूँ ना इसलिए मैं मुंह किसके साथ आएगा, मिट्टी आ जाती है साथ में। अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और सवाल वही आसान सा है। सवाल ये है कि व्हाट यू थिंक इज अ स्कैम, बट स्कैम डिफाइन नहीं है वो, है ना, बस सिंपल सा ही सवाल है। आपके आसपास बहुत इस तरह के स्कैम हैं लेकिन उसे डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी नंबर है 666-22-107 6-6-6-2-2-107।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स न सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
3: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
2: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
4: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 RJ नाजिया और RJ सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
0: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
6: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील। 6:26 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग के व्हाट यू थिंक इज अ स्कैम बट इज नॉट डिफाइन एज स्कैम। तो ऐसी कौन सी चीज है जो स्कैम है लेकिन उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लोग कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से कर रहे हैं, सबके साथ हो चले जा रही है कि बेटा 12वीं क्लास पास कर लो, उसके बाद तो सब चंगा, सब भला चंगा होगा जी। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। शहबाज का मैसेज है, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई। फजल भाई, एक स्कैम ये भी है जब मेहमान पैसे दे के जाते हैं और अम्मी कहती हैं मुझे दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगी। ये स्कैम भाई लेजिट होना चाहिए। इस स्कैम के बारे में मतलब मुझे लगता है ना, बच्चों की भी एक कोर्ट होनी चाहिए जहाँ पर वकील होगा, जहाँ पर गवाह होंगे, जहां पर मुजरिम होगा, मुजरिम होगा और गवाहों और सबूतों के तहत मुजरिम को जेल वगैरह तो नहीं होगी, लेकिन जो पैसे लिए गए हैं मेहमान ने, जो बच्चों को पैसे दिए हैं और बच्चों से माओ ने या अब्बा ने जो पैसे लिए हैं उनको वापस करने पड़ेंगे, अगर जुर्म साबित हो जाए तो। गवाह होंगे, जज होंगे, वकील होंगे, पूरी वकालत पूरा बैठेगा, बेंच होगा यार, 5 लोगों का बेंच, बहुमत से फिर चीजें जो है वो साबित होंगी भाई, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। मुझे लगता है ये स्कैम बहुत ही लेजिट है, इसको कानून में आ जाना चाहिए। क्योंकि इसमें होता ये है, विक्टिम जो है वो बात आगे बढ़ा नहीं सकता ना। आप देखिए, अगर मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ ये जुर्म हुआ है, और अगर मैं जाता हूँ और कहता हूँ अपनी माँ से कि या अब्बा से कि आपने उस दिन पैसे लिए थे, तो बात यहाँ पलट दी जाती कि अरे तुमको उस दिन ये तिला तो दिया था, तुमको ये टॉय लाकर दे तो दिया था, तुमको ये कपड़े लाकर दे तो दिए थे, तुमको ईदी में दे तो दिया था। अरे ये कैसा स्कैम है भाई कि हमारे लिए काम कर दिया जा रहा है और उस वक्त नहीं बता रहे हैं कि खिलौना दिला रहे तो उस पैसे से दिला रहे, और जब मांगने का वक्त आ रहा है हमारा अपना पैसा, तो यहां पे जो जुर्म करता वो पलट जाता भाई। वकील जो है हमारी तरफ से लड़ेंगे और मैं दो वकील लेकर आऊंगा, मेरा मेरी माँ के पास 2 लाख रुपया पड़ा है मैं इतना जानता हूँ, और मेरे साथ नोमान भाई आपकी तरह ही स्कैम हुआ है और मुझे लगता है 99% लोगों के साथ हुआ है भाई ये स्कैम। बाकी आगे मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। एक मैसेज है, नाम तो लिखा नहीं है भाई, कल के बारिश से का वेट कर रहा हूँ, कल से कार पर कुछ पानी के कतरे आए, खुशी हुई देखा सामने कार ने पानी जोड़ा है, मूड खराब हो गया। अच्छा मतलब वही विंडशील्ड को साफ करने वाला आगे जो है वो गाड़ी चला रहा था। ये वाला स्कैम भी नोट कर लेना चाहिए, इसको भी ऐड कर देना चाहिए। ओके आगे एक और है, मैं 10th क्लास में फेल हो गया था भाई, मुझे लगता है क्या नाम है आपका, अमाल इरशाद आप पहले होंगे जिन्होंने अपने घर वालों के साथ स्कैम कर दिया और फिर कह भी रहा, आगे लिखा है कि बाप ने डायरेक्ट शादी करवा लिया था करवा, ये कैसी बात है यार, मैंने 10th क्लास में फेल हो गया, मैं 10th क्लास में फेल हो गया और मैं बाप ने डायरेक्ट शादी करवा लिया है। अगर ऐसा है तो फिर बढ़िया है, मतलब बाकी शादी हो गई पहली बात तो ये बढ़िया है लेकिन आपने तो अपने घर वालों के साथ स्कैम कर दिया है ये कैसे खेल हो गया, ये तो आपने उनो रिवर्स कर दिया भाई, वाह भाई वाह, मतलब आप तो सलमान खान निकले, दबंग दबंग दबंग हुड़ दबंग वाला गाना आपके लिए होना चाहिए मेरा भाई, कुछ तो बात थी उसमें, एक अलग ही लेवल का बंदा था वो बढ़िया भाई, कौन सा स्कैम जो आप रोज करते रहते चीज में स्कैमर हमें बोलते हैं, मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया है यार, थोड़ा सबसे बड़ा स्कैम खाना खाने से पेट भरता है बट हमें नहीं भरता, फिर से भूख लगती है, उससे बड़ा स्कैम बच्चे को मिल्क बोल के डब्बा का मिल्क पिला देते हैं। ये देखो ये कहाँ से बात कहाँ पहुँच जाती भाई, लोग जज्बात में बह जाते हैं अच्छा ठीक है, ये जो स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं, पहला तो स्कैम ये है कि इनको भूख लगती है, एक बार खाना खाते हैं उसके बाद दोबारा इनको भूख लगती है, ये स्कैम है। शेख इरफान भाई आप अपना एड्रेस दे नहीं रहे यार, वो कोड़े वाला इंतजार कर रहा है, उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली है भाई, AC भी बहुत देर से ऑन है, आप लोकेशन दे, वो कोड़े वाले भैया आ रहे हैं और बाकी ये स्कैम तो मैं मानता हूँ पाउडर वाला के बच्चे को जो दूध मिलना चाहिए वो पाउडर का दूध मिल गया भाई। खैर आगे ये मैसेज है मुबीन साहब का, बहुत सारा मैसेज है, मुबीन भाई मैसेज नहीं करते हैं, मुबीन भाई झगड़ा करते हैं, जिस झगड़े में बहुत सारी बातें होती है उसको मैं पढ़ नहीं पाता हूँ भाई, यार सुन के अब और दुख हो रहा है, अरे रहन दो यार मुबीन भाई, कोई दुख वुख की बात नहीं है, जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है आपको उसका सेवन कर लो, मतलब जैसे भूख वगैरह जब लगती है तो आपको होता है ना, कुछ लोगों को होता है मेरे को अगर भूख लग रही है तो मैं कढ़ाई चिकन खाऊंगा फलाना खाऊंगा, आपका खाना खाए आपका मूड सही हो जाता है, आपने ये बात नोटिस करी है कभी, खाना लेकिन अच्छा होना चाहिए, अगर जिस दिन खाना खराब मिले आपको पता ये बात करनी तो नहीं चाहिए, एक जमाने में घर में झगड़ा इस बात पे होता था कि अरे नमक ज्यादा कैसे हो गया, तलाक पड़ा तलाक पड़ा, बिटिया भी मार खा रही है अब्बा से कि नमक कैसे ज्यादा हो गया, पानी गिर गया तो अब्बा लोग पागल हो जा रहे हैं, पहले जमाने में यही होता था, अब तो खैर नहीं होता है, अब तो दोनों तरफ से होता है, लेकिन ये आपने नोटिस करा है कभी कि झगड़ा होता था पहले सिर्फ इस बात पे कि खाना अच्छा नहीं बना है, नमक ज्यादा हो गया है, मसाला इतना क्यों होता, मिर्चा मेरे खाने में मत डाला करो, इतना मना किया है तुम्हें तो वो कहावत है ना कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, ये बिल्कुल सही कहावत है, तो भाई अगर आपको बुरा लग रहा है ठीक है तो बस आपको बढ़िया खाना खाने की जरूरत है, आप कभी नोटिस करना घर में घरवाली का अगर दिमाग खराब है मूड खराब है आप बढ़िया खाना खिला दो सही, आपका मूड खराब है बढ़िया खाना खा लो सही ठीक है, और घर में आप सब खुद परेशान हो गएगा मूड खराब है घर पे जाके आप अच्छा खाना खा लो मूड एकदम तगड़ा हो जाता है आपका दिल खुश हो जाता है, वहीं दिन भर परेशान होने के बाद बेकार खाना खा लो मन तो करता है कि फिर बाहर खाना खा ले है ना बाय द वे पता है आपको एक कोड़े वाले भैया जो बाहर बैठे हुए हैं ये भी खाने को लेकर बहुत ही चॉइस वाले आदमी है कि एकदम चूजी कि ये खाना है ये नहीं खाना है, एक दिन इनकी

ने कुछ और खाना दे दिया, उन्होंने पूरा टिफिन ऑफिस में किसी और को खिला दिया है, और उस दिन कोड़ा यहीं पर छोड़ के गए थे। लेकिन कह रहे थे हमें भी गुस्सा आता है लेकिन घर पे नहीं दिखा सकते। तो ऑफिस में कोड़ा छोड़ कर गए थे। आगे एक और भाई है, नाम लिखा नहीं है, YSM लिखा हुआ है। भाई अभी जो स्कैम चल रहा है वो बारिश का है। हाँ मैं तो बता ही रहा हूँ यार, ये सबसे बड़ा स्कैम है जो हमारे साथ हो रहा है, और ये है बारिश का स्कैम। पता नहीं ये स्कैम जो है वो कब खत्म होगा। खैर अभी तक जितने भी स्कैम हुए, एक भाई ने और लिखा था, वो और लिखा तो नहीं था, वो ऑडियो था, और ऑडियो में उन्होंने कहा था कि भाई एक स्कैम होता है कि सर डिटेन कर दे, गोरे हो जाएंगे गोरे, सर ये वाला जो है आप प्रोडक्ट लगवाइए, नया आया है बहुत सस्ता है सर, आप गोरे हो जाएंगे, स्किन पे जो आपके निशान पड़े हुए निशान गायब हो जाएंगे। ये भी एक स्कैम चलता है सलों में। और एक स्कैम ये भी है कि आप जब सलों में, यानी कि जहां पर आप बाल कटाने जाते हैं, बाल वो आपका जब सेट करता तो बहुत ही चंगा सेट होता है, आप एकदम बढ़िया लग रहे होते हैं, एकदम बास्टिक लग रहे होते हैं, मजा आता है देखकर खुद को शीशे में जब आप सलों में रहते हैं और वो आपका बाल सेट करता है। घर आते हुए पता नहीं क्या हो जाता है, अगले दिन नहाने के बाद बाल सेट नहीं होता यार, जितना हो सकता अगला आदमी चंपू लगता है। आपने कभी गौर किया है कि सब कुछ सेटअप होता है, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा होता, हंकी डोरी चल रहा होता, लेकिन जैसे ही घर पहुंचो एक दिन बाद नहाने के बाद इतना घटिया बाल लगता है भाई, शकल में ऐसा लगता है अलग ही जल्लाद छाया हुआ है। मोटू पतलू वाली शक्ल हो जाती है, लेकिन अजीब लगता है, क्या करें। ये भी एक तरह का स्कैम, पता नहीं ये स्कैम सिर्फ आने के बाद, घर आने के बाद ही कैसे हो रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले खत लिखवाना है, एक आपको खत उन लोगों को लिखना है जिन्होंने आपके साथ स्कैम किया है, और इस खत में आप किसी भी वाणी का इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय ऐसी वाणी का जिससे हमें और आपको परेशानी ना हो। ऐसी वाणी का इस्तेमाल करिए जिससे वो कोड़े वाले भैया जो हैं वो एक्टिव ना हो जाए, ठीक है। बाकी फिर आप अपने दिल की कोई भी बात लिख सकते हैं FM107 के व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर है 666-22107, 666-22107। अगर किसी ने स्कैम किया है आपके साथ, मतलब ऐसा वाला कि अरे सर डिटेन करवा लीजिए, आपके चेहरे आप धूप में निकलते हैं ना सर, सेल्स के हैं ना आप, हाँ हम समझ गए थे सर, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं सर, आप डिटेन करा लीजिए, हाँ आप देखिए मैं बताता हूँ आप गोरे हो जाएंगे, कुछ नहीं सर पैसे की चिंता मत करिए, आप तो पैसे वाले हैं सर, अब आप पैसे की बात करेंगे, ये लाइन सबसे बड़ी स्कैम वाली है, सर अब आप पैसे की बात करेंगे बताइए। आप पैसे की बात मत करिए, आपके मुंह से नहीं अच्छा लगता, आपको भी एहसास होने लगता कि हाँ यार चार लोगों के बीच जहां मैं उठता बैठता हूँ वहां पैसे की बात नहीं करी, लेकिन बापू सारी बात तो पैसे की है। तो ये बात भी काफी हद तक सही है, सर डिटेन करवा लो ये भी बहुत बड़ा स्कैम है। तो उन लोगों को जो आपके साथ इस तरह का स्कैम करते हैं क्या लिखना चाहेंगे, डियर सलों वाले भैया या डियर अम्मी जो 10 रुपए ले लेती हैं बाद में आपको वापस करने का वादा करती हैं और फिर वो वापस होते नहीं है, ईदी के पैसे वापस होते नहीं है, तो ऐसे स्कैमर को आप क्या कहना चाहेंगे। नंबर है हमारा व्हाट्सएप का 666-22107, 666-22107। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर।

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान की जिंदगी में उतार और चढ़ाव जरूर आते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी नरमी कभी सख्ती, हालात बदलते रहते हैं। एक दिन हमारे हक में होता है तो दूसरा दिन हमारे मुखालिफ। जो दिन आपके हक में हो उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और जो दिन आपके मुखालिफ हो उस दिन सबर का दामन हाथ से न जाने दीजिए, इसी में आफियत और भलाई है।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राहे रास्त पर आ जाएं।
4: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: आप सुन रहे हैं Unplugged Evening with RJ Fazil.
2: Only on FM 107, दिल से देसी.
3: भाई साहब, इस गाने को सुनते हुए 10 साल से ऊपर तो हो गए, लेकिन आज तक पता नहीं चला वो अंग्रेजी वर्स क्या है. शाइनिंग इन द सीरियस सिलेक्स वोल बंदी वर्सन, फील मी समझ में आता है बस. कसम से मेरा भाई, बाकी की लाइन मेरे को आज तक समझ नहीं आई है, और मैंने कोशिश भी नहीं करी है. बाकी कुछ लोग आएंगे, उनको पता है ना, वो सोशल मीडिया से कुछ लोग रील देख देख के सीख गए हैं कि क्या है असली लाइन क्या है. बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करते हैं जो एक्चुअली में हो रहा है सबके साथ, लेकिन वो डिफाइन नहीं है कि ये स्कैम है. बाकी होता सबके साथ है. शेख इरफान भाई का मैसेज है, सबसे बड़ा स्कैम मर्द का दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है. गाने के बाद देखा, दिल का रास्ता भी साफ है, जेब का रास्ता भी साफ है. शेख भाई, आप क्यों नहीं लोकेशन भेज रहे? हमारा जलाल यहाँ पर तैयार है भाई, मतलब जल्लाद आदमी, वो तैयार है कोड़ा लेकर. आप लोकेशन भेजे, वो आपको बढ़िया सा खिलाएगा. आप फिकर ना करें. बाकी लोगों को खत लिखना था, और एक और अरमान भाई, उन्होंने कुछ लिखा है. सलाम फजल भाई, सब बड़े स्कैम मेरे साथ हुए हैं. मैंने 2 साल इधर थोड़ा पैसा जमा किया खुद के लिए. अब्बू ने फोन किया, पैसा भेजो, आपके लिए लड़की देखना है. मैं जोश में आया, भेज दिया. 2 दिन बाद बहन से पूछा, बोला अब्बू ने ट्रैक्टर खरीदा. क्या बात है, वाड़ा वाऊ वाऊ वाड़ा वाऊ. अब्बू ट्रैक्टर चलाते हुए ये गाना सुनते होंगे. अरे यार, ये तो हो गया आपके साथ स्कैम. आपने शायद सही से पढ़ा नहीं होगा. अब्बू ने मैसेज में लड़की नहीं ट्रैक्टर लिखा होगा. मे बी हो सकता, कह रहे हैं कि लकड़ी लाने के लिए बेटा मैं देख रहा हूँ कुछ, तो आपको रखा लड़की लाने के लिए. आप ये सोच रहे हो कि भाई घर में बहू आएगी, है ना, ऐसा नहीं था. हो सकता है ट्रैक्टर ही वो खरीदने के लिए चाह रहे हो भाई. आप देखो, हो सकता है, मेरे को लग रहा है आपकी तरफ से कुछ गलती, मे बी यू नेवर नो, हो सकता है. ओके बाकी एक और मैसेज है, खालिद साहब का मैसेज है. सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई. खालिद साहब कहते हैं, डियर दोस्त, बस 2 दिन के लिए उधार मांग के गायब हो जाता है, वापस कर दे वरना स्कैम का केस कर दूंगा. मैं भाई बताऊं, अभी केस करने से कुछ नहीं हो रहा. हमारे पास जल्लाद आदमी बैठा हुआ कोड़ा लेकर, कोड़े पे तेल लगाएंगे, कोड़ा देर तक चलेगा. दोस्त का एड्रेस दो मेरे को, हम वहां पर पहुंचेंगे और आपको थोड़ा पेमेंट, अगर आपका 1,00,000 रुपए दोस्त ने लिया है ना, 5% बस हमें जो है वो दे दो 1,00,000 रुपए में से, ठीक है. बाकी 95 आपके पास, 5 हमारे पास, जितना कोड़ा कहोगे उतना देंगे, पैसा भी वापस आ जाएगा. वैसे ये बिजनेस खराब नहीं है, देख लो भाई. एक होना चाहिए ये वाला भी बिजनेस ना, कि जो उधार लेकर बैठा हुआ है और उससे अगर पैसे वसूलवाने हैं तो कोड़े मैन को दे दो, कोड़ा मारे और उसको लीगल राइट हो, दबा दब जब तक पेमेंट नहीं कर रहा है. पेमेंट करने के बाद बस 5% कोड़े वाले भैया को देना है. वरना तब तक दिए रहो. आगे एक और मैसेज है, और नाम क्या है इनका, असरार साहब कहते हैं, डियर अवार्ड, हाँ ये वाला बहुत बढ़िया मैसेज था, मैं बहुत देर तक हंसा था. डियर अवार्ड अंशुमान,

अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, बोल बोल के स्कैम करना छोड़ो वरना 5,034 रुपया वापस करो। मैं सच में ये वाला ऑडियो चलाना चाहता था लेकिन हमारे पास है नहीं ये वाला ऑडियो, अब भी ठीक करके देता हूँ। ओके, एक और मैसेज है मोहसिन साहब का, कहते हैं डियर स्कैमर फ्रेंड्स, ट्रिप पे जाने के लिए 10 दिन पहले से उतावले होते हो और एक दिन पहले अम्मी मना कर रही हैं, इस बात का चूरन मत लगाओ। भाई ये वाला चूरन मैंने भी दोस्तों को लगाया है कि यार ट्रिप पे चलते हैं, हाँ हाँ गोवा, गोवा चलते हैं इस बार पक्का, और 10वीं क्लास से लगा रहा हूँ और गया कम से कम 8 से 10 साल बाद। 2017 की ट्रिप जो है वो गोवा की लगी थी भाई, उसके बाद तो उसके पहले से चूरन ही दिया मैंने अपने सारे दोस्त को कि अम्मी नहीं मानेगी, पैसे नहीं थे भाई, असली बात तो ये। और आज भी कई ऐसे दोस्त हैं जो चूरन ही लगा रहे हैं। बाकी सलाम मेरा भाई, कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? शह सवार साहब बहुत देर से आए लेकिन अब हमारा जाने का वक्त हो गया है। मुबीन साहब ने भी टाटा बाय बाय कह दिया है, आप सभी को मैं भी कहता हूँ टाटा बाय बाय, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल अब शाम 6 बजे। बाकी अभी हमारी अधूरी कहानी, ये गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में FM 107 पे, इस गाने को एंजॉय करें दिल से देसी।

जिससे पीछे आने वाली गाड़ी को आपकी गाड़ी देखने में मदद मिलेगी। वजारत दाखिला और प्रिंस नाइफ अवार्ड फॉर अरब सिक्योरिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रुकन अब्दुल्ला बिन खलफ बिन हत्ताब अल काबी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोर्ड के इजलास में शिरकत की। इजलास में अवार्ड से मुतालिक कई उमूर पर बहस की गई और मुनासिब फैसलों की मंजूरी दी गई। ये शिरकत वजारत दाखिला के जरिए रियासत कतर की अरब सिक्योरिटी इनिशिएटिव की हिमायत करती है और उसके पुख्ता अज़्म को जाहिर करती है। प्रिंस नाइफ अवार्ड फॉर अरब सिक्योरिटी उन नुमाया अवार्ड्स में शामिल है जो मुश्तरका अरब सिक्योरिटी तआवुन को फरोग देने और अरब ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी के शोबों में हम आहंगी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वजारत दाखिला के पासपोर्ट सर्विसेज में तआवुन और तजुर्बात के तबादले को फरोग देने की कोशिशों के सिलसिले में वजारत दाखिला के एक वफद ने मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया। वफद की क्यादत डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड सर्विस डिपार्टमेंट जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स ब्रिगेडियर मोहम्मद अली अल मुहन्नदी ने की। दौरे के दौरान अबू धाबी में फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी सिटीजनशिप कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी और दुबई में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स का दौरा किया गया। इस दौरे का मकसद पासपोर्ट और रेसिडेंसी सर्विसेज की तरक्की के लिए बेहतरीन तरीकाकार का जायजा लेना और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर्स को आसान बनाने और ऑपरेशनल प्रोसेस को बेहतर करने के हवाले से तजुर्बात का तबादला करना था। ये दौरा खिदमत की मेयार और कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने और अवाम को फराहम की जाने वाली सर्विसेज के मेयार को बुलंद करने में मददगार साबित होगा। समईन आजकल के डिजिटल दौर में कोई आम सी दिखने वाली ऑनलाइन रिक्वेस्ट सोशल मीडिया मैसेज या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राबता करने की कोशिश दरअसल बच्चों को किसी खतरनाक जगह या मुश्किल में फंसाने का जरिया बन सकती है। यहीं से शुरू होती है घर वालों की जिम्मेदारी। अपने बच्चों को डिजिटल दुनिया में महफूज रखने का मतलब सिर्फ उनके मोबाइल फोन्स पर पाबंदी लगाना नहीं बल्कि उनके करीब रहना है। ये जानना भी है कि वो क्या देख रहे हैं और किन लोगों से राबता कर रहे हैं। बच्चों को समझाएं कि वो अपनी तस्वीरें या जाती मालूमात किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें, मशकूक लिंक्स पर क्लिक ना करें और किसी भी गैर मामूली या शक पैदा करने वाली रिक्वेस्ट का जवाब ना दें। अगर किसी बच्चे को ब्लैकमेलिंग या ऑनलाइन फ्रॉड का सामना करना पड़े तो उसे मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला कदम अपने वालदेन को बताना है। वो फौरन उस शख्स से राबता बंद करे, धमकियों या पैसों के मुतालबे का जवाब ना दें, तमाम सबूत महफूज रखे और कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुतालिका इदारों से राबता करे। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखिए, आप अपने बच्चों के जितने करीब होंगे वो खुद को महफूज रखने में उतने ही ज्यादा बाइख्तियार होंगे। उनकी हिफाजत आपसे शुरू होती है। समईन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से मुतालिक खतरों से बचने के लिए डिजिटल सेफ्टी उसूलों पर अमल करना जरूरी है। किसी भी मालूमात पर यकीन करने या उसे शेयर करने से पहले उसके सोर्सेज और उसकी सही होने की तस्दीक जरूर करें। सबसे पहले डीप फेक से होशियार रहें। हर वो चीज जो आप देखते या सुनते हैं जरूरी नहीं कि हकीकत पर मबनी हो। AI टेक्नोलॉजी की मदद से वीडियोस और आवाजों को बदलकर किसी शख्स की नकली शनाख्त तैयार की जा सकती है। दूसरा, सोर्स की हमेशा तस्दीक करें। किसी भी वीडियो, ऑडियो या खबर को फौरन सच ना माने और पहले उसका सोर्स चेक करें और उसकी तस्दीक मुस्तनद ज़राए से करें। और तीसरा, कोई भी मालूमात एकदम से शेयर ना करें। बिला तस्दीक किसी कंटेंट को दूसरों तक पहुंचाना गलत मालूमात के फैलाव का सबब बन सकता है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। चौथा, AI का गलत इस्तेमाल समझें। साइबर मुजरिम AI का इस्तेमाल धोखा देने, नकली वीडियोस बनाने और लोगों को गुमराह करने के लिए कर सकते हैं। और पांचवा, डिजिटल आगाही अपनाएं। ऑनलाइन दुनिया में एहतियात, तनकीदी सोच और तस्दीक की आदत आपको साइबर फ्रॉड और मिस इन्फॉर्मेशन से महफूज रख सकती है। वजारत दाखिला का कहना है कि आपकी आगाही ही आपकी सिक्योरिटी है। हमेशा सोच समझ कर देखें, सुने और शेयर करें। समईन, इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वीकली बुलेटिन का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचता है। प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: क्लिनिशियन हैं और सीनियर कंसल्टेंट ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन एचएमसी में. मैं अपने तमाम लिसनर्स के साथ डॉक्टर साहबा को वेलकम करूंगी अपने इस हेल्थ गाइड प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा.
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह.
0: जी लिसनर्स, आप अपने इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, यानी ख़वातीन से मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप हमें कॉल भी कर सकती हैं और हमारे साथ साथ भी आप हो सकती हैं, कॉल कर सकती हैं हमें 4434437 पर. इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कीजिए, कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिए 6662107. और अगर आप QMC Now ऐप डाउनलोड करेंगी तो फिर हमारे साथ साथ होंगी.

0: एक हार्मोन्स की पॉजिटिव कैंसर्स होते हैं एक हार्मोन्स के नेगेटिव कैंसर्स होते हैं जो हार्मोन पॉजिटिव कैंसर्स होते हैं वो अच्छा कैंसर समझा जाता है जो हार्मोन नेगेटिव कैंसर है वो बुरा कैंसर समझा जाता है लेकिन बुरा कैंसर का ये मतलब नहीं कि इलाज मौजूद नहीं है इलाज मौजूद है और बहुत अच्छा इलाज मौजूद है लेकिन अब जो हार्मोन पॉजिटिव कैंसर्स हैं उनमें सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है और ये स्लो ग्रोइंग कैंसर्स होते हैं और जो हार्मोन नेगेटिव कैंसर्स हैं वो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं थोड़े से फास्ट ग्रोइंग होते हैं
1: जी
0: और ये भी बताती चलूं कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ औरतों में नहीं होता मर्दों में भी होता है तो मर्दों को भी अपने ब्रेस्ट का अवेयर होना ज़रूरी है चाहे बहुत कम परसेंटेज लेकिन फिर भी होता है
1: ठीक ठीक तो उसमें कहते 1-2.5%
0: लेस देन 1% वर्ल्ड वाइड है लेकिन हमारे पास 1% से ऊपर रेशो है इसका परसेंटेज हाँ जी
1: उसकी कोई खास वजह है
0: हमारे पास फैमिली मैरिजेस कज़न मैरिजेस और ये मेन रीज़न यही देखने में आया है और दूसरा एनवायरनमेंट हम क्या ब्रीथ कर रहे हैं हम कितने प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं यहाँ पर हमारी जो आजकल पॉलिटिकल सिचुएशन भी जो चली हुई है और जैसे जितनी वॉर्स चल रही हैं हमें हमारी एनवायरनमेंट कितनी पॉल्यूटेड है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
1: बिल्कुल और यहाँ पर बस वैसे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वो है और ये और स्पेशली हमारी डाइट वगैरह भी तो उस पर डिपेंड करती
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल सही
1: और फिर जो ओबेसिटी है वो बहुत ज़्यादा
0: बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है
1: सेडेंट्री लाइफस्टाइल
0: जी सेडेंट्री लाइफस्टाइल अब काम से आते हो सिर्फ टीवी के सामने बैठ गए और चैनल्स चेंज करते हैं दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू आपकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को एक अहम हिस्सा होना चाहिए एवरी वीक आप कम से कम 3 दिन अच्छे से एक्सरसाइज करें ताकि आपकी हार्ट रेट एक सर्टन परसेंटेज पे बढ़ी रहे ताकि उससे आपकी कार्डियक हेल्थ भी अच्छी होगी आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी
1: ठीक जी इसमें डॉक्टर साहब जैसे हम वापस अपने उसी पॉइंट पर आते हैं कि जैसे ट्रीटमेंट आपने स्टेज वन का किया आपने बता दिया तो उसमें अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो फिर आप जैसे कैसे पेशेंट को किस तरह से आप
0: सही
1: जो हैं वो बताते हैं या मोटिवेट करते हैं उन्हें
0: राइट
1: जी
0: अच्छा अब यह है कि अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो हमारा पहली कोशिश ये होती है कि हम जितना ब्रेस्ट को कंजर्व कर सकें उतना करें ज़रूरी नहीं है कि ब्रेस्ट पूरी निकालनी पड़े और ये भी ज़रूरी नहीं कि ब्रेस्ट अगर सारी निकाल दें तो फिर कैंसर के वापस आने के चांसेस कम होंगे
1: अच्छा।
0: बिल्कुल ये भी गलत है ये भी एक मिथ है कि जी ब्रेस्ट निकाल दें और आप ताकि कैंसर वापस ना आए ऐसा नहीं है और अब आजकल जो स्टडीज़ आई हुई हैं उनमें ब्रेस्ट का कंजर्व करना और रिमेनिंग ब्रेस्ट को रेडियोथेरेपी देना इट इज़ काइंड ऑफ मोर सुपीरियर देन टेकिंग द ब्रेस्ट आउट सो इसलिए हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट को कंजर्व कर सकें अगर कर सकते हैं अगर कैंसर सारी ब्रेस्ट में फैला हुआ है और पेशेंट को हम पूरी तरह से वो नहीं निकाल सकेंगे कंजर्वेशन में तो फिर ऑफ कोर्स उन पेशेंट्स में सारी ब्रेस्ट निकाली जाती है लेकिन जब भी हम ब्रेस्ट निकालते हैं तो हम रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शंस पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं कि या तो हम सिलिकॉन इम्प्लांट डाल देंगे या तो हम पेशेंट के अपने ही जिस्म का कोई फैट या मसल उस ब्रेस्ट का एक नया माउंड बना लेंगे
1: ठीक ठीक कि ये तरीका होता है
0: जी
1: इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे फुल वो सर्जरी करके तो रिमूव कर दिया जाए तो उसमें जैसे आपने टाइप्स बताई ऐसे अच्छा उसके बाद जैसे फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं जहाँ है मगर उसके अगर सेकंड स्टेज पर हम चलते हैं कि फिर लिम्फ नोड्स आपने कहा वो इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उस पर सर्जरी या बाकी जो कीमो है वो एक्सटेंसिव होती है क्या फिर
0: इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं होती क्योंकि स्टेज वन एंड स्टेज टू स्टिल अर्ली ब्रेस्ट कैंसर काउंट होते हैं
1: ठीक है
0: और इनमें इनमें बहुत अच्छा लॉन्गविटी के चांसेस हैं क्योंकि अगर इलाज पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए तो 90 से अबव लोग 10 ईयर्स से ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं 90% से अबव सो इतने और दूसरी चीज़ ये भी मैं कहती चलूँ कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी पेशेंट्स जो आती हैं और जब हम उन्हें इलाज बताते हैं तो वो उनका यही होता है कि नहीं जी हम हेल्दी डाइट करेंगे हम एलिमेंट्री मेडिसिन करेंगे हमें होम्योपैथिक करेंगे कुछ करेंगे और ये हमारी बीमारी सही हो जाएगी और बिलीव

0: उम्मीद ये कभी भी नहीं होता है वही मरीज दो साल के बाद आते हैं उन स्टेज फोर में उनका कैंसर फैल चुका होता है और फिर हम भी कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट उनको नहीं दे सकते क्योंकि काफ़ी हद तक फैल जाता है
1: जी बिल्कुल लिसनर्स यहाँ डॉक्टर साहबा की बात को ही मैं थोड़ा और आगे लेकर चलूँगी कि टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें जैसे हम बात करते हैं अर्ली डिटेक्शन की तो उसका मतलब यही है और जब डिटेक्ट हो गया फिर उसको डिले कर देना तो फिर बहुत ज़्यादा बिल्कुल और इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए खुदा नखास्ता अगर किसी को कोई मसला है तो डॉक्टर साहब हमारे लिसनर हैं शायद सुल्तान आज़मी साहब और वो यूपी आज़मगढ़ यूपी इंडिया से मैसेज कर रहे हैं आपको सलाम कर रहे हैं और उनका सवाल ये है कि जिस्मानी सरगर्मी जैसे भी पहले भी हमने बात किया कि एक्सरसाइज की कमी है या सेडेंट्री सुस्त तर्ज ज़िंदगी है या फिर वर्जिश नहीं कर रहे या फीड नहीं करा रहे बच्चे को या फिर जिन ख्वातीन ने बच्चों को मतलब इनफर्टिलिटी है जिनकी या जिन्हें बच्चों को दूध पिलाने का मौका नहीं मिला तो उनमें क्या ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा ज़्यादा लाहक हो सकता है
0: राइट अब तीन चार चीज़ें इन्होंने कही हैं एक ब्रेस्ट फीडिंग इन्होंने कही है एक इनफर्टिलिटी की दवाइयाँ लेना ये कहा है और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल अच्छा पहले ब्रेस्ट फीडिंग पर आ जाते हैं कि जी स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती उनमें कंपैरेटिवली ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा पाया जाता है तो ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर चाहे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन ना हो लेकिन कुछ प्रोटेक्टिव इफेक्ट है एंड सेकंड थिंग के जिस इनफर्टिलिटी की दवाइयाँ हार्मोन्स लेना एक्स्ट्रा हार्मोन्स लेना एक्स्ट्रा हार्मोन्स का अभी जो ये IVF करवाते हैं या इनफर्टिलिटी की मेडिकेशंस लेते हैं इसमें अभी प्रूवन नहीं है कि इन कोई ऐसी ट्रायल्स नहीं हुई हैं कि ये IVF के मरीज़ हैं इनमें एक्स्ट्रा हार्मोन्स हैं और लिए हुए हैं और इन्होंने नहीं लिए हुए इसलिए उस तरह से हम कोई स्टडीज़ हमारे पास कॉन्क्रीट नहीं सबूत है कि हम कहें कि जी ये सारा ये इलाज जो है ये कैंसर ब्रेस्ट कैंसर बढ़ाता है लेकिन ये हमें पता है कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लेते हैं वो वी डू से दैट दे डू इंक्रीज दी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज आफ्टर मीनोपॉज जो औरतें लेती हैं तो वो दे डू इंक्रीज द रिस्क टू सर्टन एक्सटेंट सो इसीलिए हम कहते हैं कि टेक इट विद अ गैप डोंट टेक इट कंटिन्यूस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टेक इट विद अ गैप एंड तीसरी चीज़ आपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल पूछी
1: जी एक्सरसाइज नहीं कर रहे
0: बिल्कुल ये फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना ये बहुत सारी सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं बल्कि और भी कैंसर्स की वजह बन सकता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फिज़िकल एक्टिविटी जैसे मैंने पहले भी कहा अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें
1: बिल्कुल और ये बहुत अहम सवाल था और ये मैंने पूछने थे आपसे ये सवाल जी डॉक्टर साहब अब थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस जो हैं उनकी हम बात थर्ड स्टेज की बात करेंगे कि क्या किस तरह से फिर होता है
0: राइट सो थर्ड स्टेज में यूजुअली ये होता है कि पहले हम दवाइयों के साथ उसको कंट्रोल करते हैं क्योंकि जैसे स्टेज बढ़ती है उसमें जो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स हैं जो ब्लड में पॉसिबिलिटी है हो सकते हैं पहले उनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है क्योंकि लोकल जो डिज़ीज़ है वो इंसान को पेशेंट्स को मारती नहीं है जो मेटास्टेसिस है जो जिस्म में फैल जाने वाला चीज़ है लिवर को अफेक्ट किया लंग्स को किया ब्रेन को किया वो चीज़ें हैं जो डेथ का सबब बन सकती हैं तो इसलिए इन स्टेजेस में सबसे पहले ये होता है कि जो ब्लड में सर्कुलेटिंग सेल्स होंगे या कहीं और ऑर्गन्स में वो सेल्स बैठ गए हैं स्टेज फोर में तो उनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है तो वो पहले हम कंट्रोल करते हैं उसके बाद लोकल ट्रीटमेंट की कंसिडरेशन होती है
1: ठीक
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड With Dr. Fauzia Shafiq, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: کینسر سے آج ہم بات کر رہے ہیں بریسٹ کینسر کے بارے میں کیونکہ اکتوبر پنک اکتوبر ہے اور خصوصی طور پر ہم نے دو پروگرام جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹ کیے ہیلتھ گائیڈ کے اسپیشلی اویئرنیس کے لیے اور آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر کلثوم جونیجو جو کہ لیڈ کلینیشین ہیں اور سینئر کنسلٹنٹ

0: ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन है HMC में. आज हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ जो तरीका इलाज है, मगर स्टेजेस के अकॉर्डिंगली हम पूछ रहे हैं कि क्या क्या होता है. अब स्टेज फोर, जो कि कुछ जब स्टेज फोर का नाम सुना जाता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो भी, उसकी फैमिलीज भी सब जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस करते हैं, डिप्रेशन और ज़ाहिर है ये बात है,
1: बिल्कुल
0: अंडरस्टैंडेबल. तो जी डॉक्टर साहब, उसमें क्या?
1: हाँ, अब ये है कि स्टेज फोर भी अब ट्रीटेबल है. ये नहीं है कि हम डिज़ीज़ को बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे, वो नहीं पॉसिबल होता है स्टेज फोर में. लेकिन ये है कि पहले जैसे मे बी 5 ईयर सर्वाइवल 37% होगा या 30% होगा, तो अब वो सर्वाइवल बढ़ गया है और अब हम स्टेज फोर को भी क्रॉनिक डिज़ीज़ कंसिडर करते हैं. सो स्टेज फोर के मरीज़ों के लिए भी ये अच्छी अलामत है कि जी अगर आपने इलाज करवाया तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि जी आपका सर्वाइवल बढ़ जाता है. सो इट्स नॉट के इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे नहीं है. इलाज करवाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और आप डिज़ीज़ कंट्रोल हो सकती है, एलिमिनेट नहीं होगी लेकिन कंट्रोल ज़रूर होगी.
0: बिल्कुल. इसमें डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट इलाज कराने के बाद सर्जरी है, बाकी भी सारे प्रोसेस जैसे आपने कीमोथेरेपी का हमें बताया और जो रेडियोथेरेपी शॉइन जो हैं वो मेडिसन जो हैं वो दी जाती हैं, हार्मोन थेरेपी. इसके अलावा जो एक और जैसे इम्यूनोथेरेपी जो है वो क्या है, न्यू है या कुछ अर्से?
1: जी बिल्कुल, ये स्पेशल टाइप के कैंसर होते हैं जिनमें ये थेरेपी दी जाती है जो बहुत अच्छी तरीके से कैंसर के कुछ जो टाइप्स हैं उनको कंट्रोल कर लेती है. अच्छा, अब आपके प्रोग्राम के तवसुत से भी ये कहना चाहूँगी कि आज कल हम जैसे मैंने कहा बहुत जदीद इलाज भी आ गए हैं, तशखीस के तरीके भी आ गए हैं, तो अब ये नहीं है कि सारे पेशेंट्स को कीमोथेरेपी मिलेगी. क्योंकि जब कीमोथेरेपी का नाम आता है तो पेशेंट्स का यही होता है कि जी हमारे बाल झड़ जाएंगे, हमारा ये, तो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट्स को कीमोथेरेपी मिले. स्टेज वन, स्टेज टू, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स, हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स, हमारे पास एक स्पेशल जेनेटिक टेस्ट है जिसको हम ऑनको टाइप DX कहते हैं. वो हम ऑपरेशन के बाद हम देखते हैं कि कितना कैंसर फैला हुआ है, नहीं फैला हुआ, तो हम उन सेलेक्टेड मरीजों में वो ऑनको टाइप DX करते हैं. उसकी एक स्कोरिंग होती है, अगर उसकी कम स्कोरिंग आती है तो इसका मतलब कैंसर के वापस आने के चांसेस कम हैं, तो इन मरीज़ों में कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती.
0: अच्छा,
1: हाँ जी. और लेकिन अगर स्कोर बढ़ा हुआ आता है तो फिर ऑफकोर्स उनको पूरी फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि कैंसर को वापस आने से रोका जा सके.
0: ये स्कोर आप किस तरह से, जैसे कि स्कोरिंग होती है
1: ये? हाँ जी, ये जेनेटिक एनालिसिस होता है, ये 1 to 100 उसका स्कोर होता है. तो इसमें अगर लो स्कोर है, लेस देन 16 है, 16 to 24 है, तो ये इन लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क इस तरह से होता है.
0: जी रुखसभा, जिसके हम इंट्रोड्यूस भी करा रहे थे अपने लिसनर्स को कि आप ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन हैं, तो ये ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी होती क्या है, थोड़ा सा हमें जरूर बताएं.
1: सवाल है
0: जी. थैंक यू
1: जी. कि पहले हम सिर्फ जो गुठली होती थी वो निकाल देते थे और ब्रेस्ट जो थी वो उसको नॉर्मल हम मोल्ड नहीं करते थे. अब ये है कि ऑन्कोप्लास्टिक के बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास. हम ऑन्कोप्लास्टिक ऐसा समझ लें कि ब्रेस्ट सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी की मैरिज है. दे हैव मैरिड टुगेदर. तो हम ब्रेस्ट का जो गुठली है वो निकालते हैं और बाकी जो ब्रेस्ट है उसको हम इस तरह से मोल्ड करते हैं कि ब्रेस्ट का शेप मेंटेन रहे. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ों का, जैसे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है, मरीज़ का इलाज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह शफायाब हो गया, और मरीज़ को फिर बाद में जब वो अपना इमेज देखता है मिरर में या कुछ और ब्रेस्ट डिफॉर्म्ड देखता है तो उसको वो सारी कहानी याद आ जाती है कि वो कैसे इन ट्रीटमेंट से गुजरा था. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि मरीज़ को आप इतनी नॉर्मल लुकिंग ब्रेस्ट दें कि उसको वो जो असर है उसके जहन पर वो उसको वापस याद ना आए सारा सीक्वेंस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर मेंटल हेल्थ.
0: मेंटल हेल्थ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है.
1: बिल्कुल सही.
0: वो हम आगे चल के आपसे ज़रूर पूछेंगे. जैसे सर्वाइवर का आपने जिक्र किया है बहुत, मगर ये कि वो भी उनकी जो अलग से स्टोरीज हैं या जैसे आपके पेशेंट्स हैं, ज़रूर हम पूछना चाहेंगे. जी डॉक्टर साहब.

0: इसमें हमारे एक लिसनर हैं और वो पूछ रहे हैं कि जो है अगर कोई सलाम कह रहे हैं आपको
1: और
0: कहते हैं कि अगर कोई बेबी जो है वो काफ़ी अरसे तक जो है वो ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा, अब ये नहीं पता कि पहले ले रहा था या नहीं, मगर ये उन्होंने लिखा है, और क्या ये नॉर्मल है फॉर द ब्रेस्ट टू फील हार्ड और लंपी और इट इज़ समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट?
1: राइट, अच्छा, I'm sure the woman who was breastfeeding, unko apni breast ka zyada andaza hoga, pata hoga. Kyunki pregnancy mein aur breastfeeding mein breast jo hai wo engorged hoti hai. Wo zyada bhari hui breast hoti hai. Aur usme chote mote lumps miss ho jate hain. Isliye agar आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान कोई एक्स्ट्रा लम्प्स फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने मौलिज से मशवरा करें. इसको ये अज्यूम करके मत बैठ जाएं कि ये दूध की गांठ बनी हुई है. ये दूध भी जमा हो सकता है, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस ब्रेस्ट में जो ग्रेविड ब्रेस्ट होती है उसमें लम्प्स का मिस होना बहुत कॉमन होता है, और इसीलिए प्रेगनेंसी में जो कैंसर्स डायग्नोज होते हैं वो थोड़ा सा लेट स्टेज में डायग्नोज होते हैं.
0: जी ठीक, इस तरह से जी डॉक्टर साहब, इसमें एक और सवाल कि क्या जैसे कि जो प्रेगनेंसी में अगर डायग्नोज हो जाता है कोई कैंसर तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है?
1: राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है. अच्छा, प्रेगनेंसी में ये है कि डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर. तो हम जो दवाइयाँ देते हैं कीमोथेरेपी, कुछ कीमोथेरेपियाँ दे आर सेफ टू बी गिवन इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. ठीक है, और सर्जरी आप किसी भी ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं. लेकिन रेडियोथेरेपी और स्पेशल टाइप की टारगेट थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, ये आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते. तो फिर डिपेंडिंग ऑन द कैंसर एंड इट्स टाइप आप उसके अकॉर्डिंग इलाज का शुरू करते हैं. और अगर बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी है और एग्रेसिव कैंसर है तो कभी कभी हमें मेडिकल एबॉर्शन भी करवाना पड़ता है. लेकिन वो उस केस में कि अगर माँ की जान को ख़तरा है और अगर डिले, ट्रीटमेंट डिले हो जाए तो उससे मज़ीद प्रॉब्लम हो सकता है. तो इस वजह से फिर हम मेडिकल एबॉर्शन, वो हमारी कमिटी, एथिकल कमिटी होती है, वो सारी प्रोज एंड कॉन्स देखती है, उसके बाद उसकी इजाज़त मिलती है. क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर मुस्लिम्स, इस्लामिक कंट्री में दिस इज़ नॉट अलाउड.
0: ठीक ठीक ठीक, इस तरह जी डॉक्टर साहब, इसमें तो कुछ ये भी मिथ है कि शायद वो बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि अगर कीमो देते हैं वो भी नुकसानदेह होता है. बाकी जैसे आपने बताया कि वो डिपेंड करता है पेशेंट वेरी करता होगा, और फिर ट्राइमेस्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह. तो अगर जैसे अगर स्टार्ट में है तो वो उसका ट्रीटमेंट है वो इजी होता है या उसको एंड तक लेके चलते हैं? यस
1: राइट, नाउ ये है कि फिर हम मॉडिफाई करते हैं कि जी अगर स्टार्ट में है और हम स्टार्ट में ट्रीटमेंट नहीं, कीमोथेरेपी या दूसरी ट्रीटमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं तो हम सर्जरी को थोड़ा एक्सटेंसिव कर लेते हैं. ठीक है, तो वो सर्जरी का हम डिपेंड करता है कि कितना एक्सटेंसिव हम सर्जरी कर सकते हैं. ठीक है, सो एवरी इसीलिए हर केस बाय केस उसका डिस्कशन होता है और हर पेशेंट का अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डिजीज एंड अकॉर्डिंग टू द ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑफ कोर्स पेशेंट्स विश. कि कभी कभी पेशेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है प्रेगनेंसी एंड दैट इज़ अ वेरी प्रेशियस प्रेगनेंसी. दे डोंट वांट टू हैव एनी हार्म. ऑफकोर्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम कहते हैं सेफ है, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उसमें अगर कीमोथेरेपी दी जाती है तो बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है, कोई एबनॉर्मेलिटीज होने के चांसेस होते हैं. इसलिए सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर सेफ समझे जाते हैं. लेकिन कुछ मरीज होते हैं, they take the risk and they say that we don't want to take treatment because of even the minute possibility of any risk to the child. जी. So ye unka apna phir faisla hota hai, lekin medically it is not there.
0: theek theek, isme doctor sahab jaise treatment ke baad jaise follow up kiya jata hai ya kitni der tak jo hai wo patient jo hai on bed hai ya kis tarah se, ye bhi depend karta hoga stage of the जो पेशेंट का जो ब्रेस्ट कैंसर है उस पर.
1: जी बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज पर भी और इलाज कितना एक्सटेंसिव है उस पर भी डिपेंड करता है. जैसे सर्जरी में पेशेंट्स आते हैं कि जी रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, तो यूजुअली 3 to 6

0: जेंसेज प्रोग्राम हेल्थ गाइड, और आज हम बात कर रहे हैं कि खुसूसी तौर पर जो प्रोग्राम हमने आपके साथ जो है, यही ख़ास तौर पर जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है उस हवाले से हमारा मकसद भी यही है कि छोटे से छोटा जो पॉइंट हमारे जहन में आता है वो क्लियर हो सके। जी डॉक्टर साहबा, और लिसनर्स आपने सुना कि बड़ी डिटेल में डॉक्टर साहबा ने बताया हमें कि किस तरह से जो है वो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, स्टेजेस मुख्तलिफ स्टेजेस से लेकर स्टेज वन से स्टेज फोर तक। इसके अलावा फॉलोअप जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो भी पूछना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहबा।
1: जी फॉलोअप बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि हमें कैंसर अपने पेशेंट्स पर एक सर्विलेंस के लिए नज़र रखनी होती है, और इनको हम रिकमेंडेशन हमारी यही होती है कि ये मैमोग्राम करवाएं हर साल।
0: अच्छा।
1: ठीक है। और दूसरा, हम इनको सर्जिकल क्लिनिक्स में एक से लेकर दो साल तक फॉलो करते हैं एवरी सिक्स मंथ्स, और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी उनको अपनी क्लिनिक में फॉलो करता है दो साल तक। और उसके बाद हमारे पास सर्वाइवरशिप क्लिनिक्स हैं जो कुछ तो कैंसर हॉस्पिटल में हैं, कुछ हेल्थ सेंटर्स में हैं, तो इनको फिर वहाँ पर वंस अ ईयर जाना होता है ताकि वो कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, इनका चेकअप करेंगे, और फिर इनको बताएंगे इट्स ऑल क्लियर, मैमोग्राम साफ है, सब कुछ साफ है, क्लिनिकल चेकअप ठीक है, एंड दे गेट, कहना नहीं चाहिए बट दे गेट काइंड ऑफ एमओटी फॉर वन ईयर। सो उस तरह से कि जी आप इट्स ऑल क्लियर एंड गो एंड एंजॉय योर लाइफ, कम बैक नेक्स्ट ईयर वी विल मीट अगेन।
0: सो इस तरह से डॉक्टर साहब, खुदा नखास्ता अगर किसी का रिलैप्स मिशन दोबारा होता है, फॉलो अप में ही जाहिर है इतना वो, तो फिर क्या किया जाता है?
1: बिल्कुल, रिलैप्स होने के ये मतलब नहीं है कि जी बस कैंसर वापस आ गया, अब आप सब कुछ छोड़ कर बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। उसका भी इलाज होता है, और डिपेंड करता है कि रिलैप्स सिर्फ ब्रेस्ट में ही हुआ है या कहीं और किसी और ऑर्गन में हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग ही इलाज होता है। और रिलैप्स में यूजुअली दवाइयाँ ज़रूरी हो जाती हैं, कि कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी या जो भी दवाई डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर वो ज़रूरी दी जाती है, और सर्जरी का रोल कितना होता है वो अगेन केस टू केस डिस्कशन होता है।
0: इसमें डॉक्टर साहब जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अगर वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जैसे कि लीवर है या बोन्स हैं और ब्रेस्ट में वो नहीं शो हो रहा, तो क्या फिर आप वहाँ पर जाके टारगेट करते हैं अपने ट्रीटमेंट को या किस तरह?
1: बहुत अच्छा सवाल।
0: जी बहुत शुक्रिया।
1: एक जैसे एक हमारी पेशेंट थी, उसको उसको ब्रेस्ट में उसको कुछ भी कभी महसूस नहीं हुआ था, एंड उसने शी वाज ड्राइविंग द कार और उसका इमरजेंसी ब्रेक्स लगी, तो उसको जैसे नेक में झटका लगता है ना, फ्लैश इंजरी, उस तरह से नेक में जैसे झटका लगा तो शी हैड अ फ्रैक्चर इन द नेक। और उसको जब इमरजेंसी हम में लेकर आए तो एक्सरे हुए उसके, तो उसमें मेटास्टेसिस था।
0: अच्छा।
1: तो स्पाइनल सर्जन से उनका स्पाइन स्टेबलाइज तो किया, वहाँ से बायोप्सी ली, तो प्राइमरी ब्रेस्ट में था। और उसके बाद उनका हमने टेस्ट किए, मैमोग्राम किया, तो बहुत छोटा सा कैंसर ब्रेस्ट में था, लेकिन वो फैल चुका था बोन्स तक। अब इस तरह से भी मरीज आते हैं, तो इनका इलाज भी उसी तरह से होता है, पहले दवाइयाँ दी जाती हैं, मेटास्टेसिस को कंट्रोल किया जाता है, अगर वो फुली कंट्रोल हो जाता है तो फिर लोकल ट्रीटमेंट होती है कि जी सिर्फ वो कैंसर निकाल लिया जाए ब्रेस्ट से।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे लिसनर हैं वो पूछ रही हैं कि वैसे एक मिथ भी है कि शुगर जो है बहुत ज़्यादा खाने से क्या जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हो सकता है?
1: कैंसर्स यूजुअली कोई भी कैंसर दे सर्वाइव ऑन शुगर, तो इसलिए शुगर हम अपने मरीजों को भी कहते हैं कि डोंट स्टॉप इट बट कम कर दें।
0: ठीक जी। सो पॉसिबिलिटी हो सकती है।
1: हाँ जी, क्योंकि
0: रिस्क फैक्टर है,
1: इट्स नॉट अ रिस्क फैक्टर एग्जैक्टली, क्योंकि ये सारे कैंसर्स में जो कैंसर सेल्स का जो फूड है ना वो शुगर होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कम कर दें। ये नहीं है कि शुगर बंद करने से कैंसर नहीं होता, तो इसलिए इट्स वी कांट कॉल इट रिस्क फैक्टर एज सच, बट ये है कि इट एनकरेजेस अ कैंसर टू ग्रो।
0: ठीक। इसमें डॉक्टर साहब एक और मिथ के मेमोग्राम जो है कैन कॉज द ब्रेस्ट कैंसर,

0: राइट
1: और अच्छा, वो स्प्रेड भी करता है जैसे बायोप्सी हाँ, की एक है ना कि हाँ, तो मेमोग्राम का भी इस तरह से ख्याल किया जाता है। इसी स्क्रीनिंग जैसे आपने हमें शुरू में बताया कि कतर गवर्नमेंट ने स्पेशली बहुत जो है स्क्रीनिंग जो है ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर की दोनों की है और 45 जैसे ही किसी भी लेडी की एज होती है तो उन्हें खुद ही कॉल करना भी शुरू कर देते हैं तो वो हमें बताइए कि कैसे।
0: अच्छा मैमोग्राम, यस मैमोग्राम्स आर रेज एंड ये नहीं है कि मैमोग्राम आर गुड रेज।

0: रिटर्न फ्लाइट टू न्यूयॉर्क जितनी रेस है तो अगर आप अमेरिका आप साल में 3 दफ़ा जाते हैं और आप उसके बाद कहते हैं कि मैं मेमोग्राम नहीं करवाऊंगी क्योंकि रेस है तो आपको उससे ज़्यादा एक्सपोजर तो वो आपकी फ्लाइट्स में रेस का हो गया है सो इसलिए जो चीज़ ये भी देखा जाता है कि आपने रिस्क और बेनिफिट देखना होता है जैसे आपने कोई रोड क्रॉस करना है अक्रॉस रोड आपने कुछ चीज़ लेनी है नाउ दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू हालांकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है वन कैन डाई इन द क्रॉसिंग द रोड बट आपको वो चीज़ ज़रूरी है आप करेंगे तो इसी तरह यही मैं एग्जांपल अपने पेशेंट्स को भी देती हूँ कि रिस्क एंड बेनिफिट्स वे करना होता है कि उसका बेनिफिट कितना है और अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि उसमें हम वी कैन नॉट से कि जी इसके जो थोड़े बहुत रिस्क है रेडिएशन का उसकी वजह से आप ना करवाएं वी स्टिल एनकरेज यू टू कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट इन स्क्रीनिंग
1: ये लिसंस आपने भी बार बार पूछा मैंने कहा डॉक्टर साहब से पूछें कि क्या ऐसा है क्योंकि स्क्रीनिंग में ये सबसे पहले यही किया जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ख़ासतौर पर जैसे एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब ने बहुत ही मुझे ऐसा नुकता है कि अगर हमारे जहन में आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसी कंपैरिजन में ही हमें अपने आप को सेव कर सकते हैं हम लोग डॉक्टर साहब क्या जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका इलाज हो गया ट्रीटमेंट हो गया तो उसके बाद जो लाइफस्टाइल है वो क्या है कोई खातून जिसका इलाज हुआ है नॉर्मली गुजार सकती है
0: बिल्कुल
1: जी
0: यही है कि उनको हर तरह से नॉर्मल ही गुजारना चाहिए और हमारे यही हम इनक्रेज करते हैं इसीलिए हमारी कैंसर की टीम जो है उनमें हमारे साथ स्पेशलाइज नर्सेस भी होती हैं जो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देती हैं और उनके जो भी जाहिर है एवरीडे लाइफ में बहुत छोटी मोटी बातें होती हैं जो डिस्कस होती हैं वहाँ पर पेशेंट्स के साथ तो जितना नॉर्मल रह सकते हैं उतना ही बेहतर होता है उनके लिए एंड दे कैन लिव कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ एंड इट इज़ नॉट के कैंसर सर्वाइवर्स दे हैव समथिंग के वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल हैं बिल्कुल भी नहीं दे आर कम्प्लीटली केपेबल दे आर वेरी प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आफ्टर ट्रीटमेंट्स
1: बिल्कुल इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं उनका बहुत ख्याल रखना होगा ना जैसे आपने फॉलो अप का जिक्र किया या और क्या क्या आप
0: जैसे मैंने कहा फौजिया कि अपनी हेल्थ का फिजिकल मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होता है लाइफ को मॉडिफाई करना होता है क्योंकि वो लाइफ की मॉडिफिकेशन फिर आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है क्योंकि आपने फिजिकल एक्टिविटी को अपना एक रूटीन बना देना है अपने हेल्दी लाइफ डाइट को अपना एक रूटीन बना देना है सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन मॉडिफाई योर सेल्फ ठीक है तो ये चीज़ें आपने बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि यू शुड मेंटली फिजिकली बी एक्टिव पार्टिसिपेट इन वट एवर एक्टिविटीज़ यू कैन स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ये हमारी लिसन है पूछ रही हैं आपसे नाम नहीं लिखा उन्होंने कि क्या जो है वो एक्सरसाइज हम अगर ना करें एक्सरसाइज तो क्या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी जो सेकंड मतलब उनकी फैमिली में ही किसी को है जिसकी उनकी फादर की कुछ उस फैमिली में तो क्या उन्हें ख़तरा हो सकता है
0: राइट ये बात अहम सवाल है क्योंकि
1: सेकंड उस पे
0: फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री ठीक सो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री रिलेटिव्स दे आर क्लोजर टू यू इनका कंसिड्रेशन होता है जब हम अपने पेशेंट्स का जेनेटिक एनालिसिस करवाने का मशवरा देते हैं अगर आपकी फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में किसी भी को कैंसर है लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड तो फिर हम मशवरा देते हैं कि आपका जेनेटिक एनालिसिस हो जाए ताकि आपका रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन असेस हो जाए और उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्क्रीनिंग एंड फॉलो अप चलता है फिर और लेकिन अगर थर्ड फोर्थ डिग्री है या इवन फर्स्ट सेकंड डिग्री हैं जो 60 ईयर्स की उम्र में 70 ईयर्स की उम्र में कैंसर हुआ है किसी की ग्रैंड मदर को हो गया किसी की खाला को हो गया तो वो रिस्क नहीं है आपके लिए लेकिन अगर 2 से 3 फैमिली मेम्बर्स हैं ओल्ड एज में तो फिर अगेन दैट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फैक्टर्स
1: ठीक डॉक्टर साहब एक और मिथ है कि जो ब्रेस्ट

0: कैंसर है वो किसी और से हो सकता है,
1: ये फैलने की बीमारी
0: नहीं की बीमारी है, मतलब आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है
1: नहीं ये कोई जुकाम है नहीं कि एक फैल जाए, सो एंड इट्स नॉट अ वायरल इन्फेक्शन कि जो फैल जाए, सो ब्रेस्ट कैंसर फैलता नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी मरीज आते हैं जो नैनीज हैं, बच्चों का ख्याल करती हैं, तो वो यही उनके उनके जो स्पॉन्सर्स या वालदैन होते हैं उनको यही खतरा होता है कि जी ये हमारे बच्चों के करीब होती हैं, तो कोई बच्चों के लिए प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, it's not a communicable disease.
0: ठीक जी, ये बहुत अहम जो है मिथ आमतौर पर यही ख्याल है, अक्सर जो है अगर पेशेंट है तो उसके पास भी नहीं जाते, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लिए हुए कि उससे जो है वो फैल सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी डॉक्टर साहब, इसमें जैसे हम बार बार वो डिटेक्शन की बात करते हैं, अगर किसी की फैमिली में जो वही 50 में या किसी भी एज में है, तो जो स्क्रीनिंग है जो नेक्स्ट फैमिली है उसको कब शुरू करनी चाहिए? आमतौर पर तो 40-45 की एज पर,
1: आमतौर पर 45 एंड अबव स्क्रीनिंग एज है
0: जी।
1: आप जिस भी मुल्क में रह रहे हैं हर मुल्क के अपने अकॉर्डिंग होता है, कतर में 45 एंड अबव है, एंड अगर आपके किसी फर्स्ट सेकेंड डिग्री रिलेटिव को यंग एज में कैंसर हो गया है, 30s में कैंसर हो गया है या अर्ली 40s में हो गया है, तो आपका जो जेनेटिसिस्ट है वो आपको आपका एनालिसिस करेंगे एंड वो आपको मशवरा देंगे, यूजुअली 10 years बिफोर दैट एज आपको स्क्रीनिंग में हम एंटर करवाते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप 20 years में मैमोग्राम करवाएं, नो हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे या आपका फिजिकल एग्जाम करवाएंगे।
0: ये रुक सब एक और मिथ कि जो एंटी परस्पेरेंट हैं या डिओड्रेंट्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकते हैं?
1: नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई ब्रेस्ट कैंसर कॉज नहीं करते, आप बिल्कुल आराम से एंटी परस्पेरेंट्स लगा सकते हैं
0: जी।
1: ऐसे एक मिथ ये भी थी कि जी ब्लैक कलर की ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कलर कोई ऐसा नहीं है
0: जी। ठीक जी, जैसे आप दोबारा ये प्रोग्राम सुनना चाहें तो आप सैटरडे को सुबह 8 बजे प्रोग्राम पेश किया जाता है, तो आप उसे रिपीट में सुन सकते हैं। लिसनर्स, आज बहुत डिटेल में डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि उसका जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका इलाज किया कैसे, और यह कि डायग्नोसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से सर्वाइवल के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इलाज हो जाता है जिन ख्वातीन का, वो किस तरह से ज़िंदगी जो गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज क्या देना चाहेंगे आप?
1: मेरा अपने ख़वातीन के लिए, अपने मर्द हज़रात के लिए यही मैसेज है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, कि अपनी ब्रेस्ट की आगाही रखें, ख़ुद का सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करें, और अलामात के ज़ाहिर होने का इंतज़ार मत करें। अगर आपकी 45 एंड अबव एज है तो प्लीज़ स्क्रीनिंग के लिए ख़ुद को रजिस्टर करवाएं जो आपके हेल्थ सेंटर्स में अवेलेबल है, एंड अगर आप डायग्नोसिस भी हो गया है किसी को, तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एस मैं रिपीटेडली कहूँगी कि आपकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा, तो आप अपने मॉलेज के मशवरे के अकॉर्डिंग अपना इलाज करवाइए, और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी, और हिम्मत के साथ उम्मीद के साथ आगे बढ़ें
0: इंशाल्लाह ताला। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, और लिसनर्स इसके साथ ही जैसे कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, बहुत सी जो बातें हैं वो मेरे लिए भी नहीं थी, और मेरी कोशिश ये रही कि आपके साथ हर चीज़ जो शेयर की जाए। इसके साथ ही डॉक्टर कुलसुम जुनी जो कि लीड क्लिनिशियन हैं और जो उनको प्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन भी ने, और हमारे साथ रहे असली भंडारा, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Hello and welcome to a segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एसेट एलोकेशन पर. फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एसेट एलोकेशन. बहुत से लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, करते वक्त सिर्फ ये सोचते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट देती है. लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर सबसे पहले ये सवाल पूछता है कि अपना पैसा किस किस जगह और कितने परसेंटेज में लगाना है. इसी प्लानिंग को एसेट एलोकेशन कहा जाता है. यानी और सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ एसेट क्लासेस में डिवाइड करना ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न्स बेहतर हो सके. यानी सारा पैसा एक ही जगह लगाने की बजाय उसे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में स्प्रेड करना. देखिए, एसेट एलोकेशन में आमतौर पर तीन मेजर एसेट क्लासेस होती हैं. पहला होता है स्टॉक्स, दूसरा होता है बॉन्ड्स, तीसरा है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स. हर एसेट क्लास का अपना रिस्क और रिटर्न होता है. इन्वेस्टर अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक इनका मिक्स तैयार करते हैं. स्टॉक्स स्टॉक कंपनी के ओनरशिप का एक हिस्सा होता है. जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं. अगर कंपनी ग्रो करे तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ सकती है, और अगर कंपनी लॉस में जाए तो वो भी आपके हिस्से आता है. अगर कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे तो आपको डिविडेंड्स भी मिल सकते हैं. वहीं पर अगर मैं बात करूं बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स असल में लोन होता है. जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप गवर्नमेंट या फिर कंपनी को पैसा उधार देते हैं. बदले में आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है और मैच्योरिटी के वक्त असल पैसा वापस मिलता है. अब बात करते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पर. कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स है या वो इन्वेस्टमेंट्स होती है जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे सेविंग अकाउंट्स, मनी मार्केट फंड्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट. ये सबसे सेफ एसेट क्लास मानी जाती है, लेकिन इनका रिटर्न भी आमतौर पर कम होता है. अब जानेंगे कि एसेट एलोकेशन जरूरी क्यों है. देखिए, अगर आप सारा पैसा स्टॉक में लगा दें और मार्केट क्रैश हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. अगर सारा पैसा कैश में रखें तो इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू कम कर सकती है. अगर सारा पैसा बॉन्ड्स में रखें तो लिमिटेड हो सकती है. इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स बैलेंस क्रिएट करते हैं. इसी बैलेंस को एसेट एलोकेशन कहते हैं. एक यंग इन्वेस्टर के पास रिकवरी के लिए ज्यादा टाइम होता है, इसीलिए वो स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है. वहीं पर एक रिटायर्ड इन्वेस्टर, उसके पास कम रिस्क लेने का चांस है, इसीलिए बॉन्ड्स और कैश को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है. वहीं पर कुछ लोग कुछ गलतियां भी करते हैं. बहुत से लोग ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, दूसरों की बात सुनकर इन्वेस्ट कर देते हैं, हर पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, और ये काफी डेंजरस अप्रोच हो सकती है. जी हाँ, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं. याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन एसेट्स एलोकेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है. लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं है, उस पैसे की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है. इसीलिए दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स रिस्क मैनेज करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं, और ये स्ट्रेटजी उन्हें मार्केट के खराब होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है. तो बस जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि एसेट एलोकेशन इन्वेस्टिंग का एक स्टीयरिंग व्हील है. सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना कामयाबी नहीं है, बल्कि पैसों को मुख्तलिफ एसेट क्लासेस में समझदारी से डिवाइड करना असल विजडम है. जब आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश का सही बैलेंस बनाते हैं तो आप सिर्फ रिटर्न्स नहीं कमाते बल्कि अपने फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट करते हैं. याद रखिए, ग्रेट इन्वेस्टर्स मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, वो अपने एसेट एलोकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. आज के लिए इतना ही. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों की इजाजत दीजिए. देखते हो, सुनते रहिए FM 107. दिल से

अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दुआ वाला कबीर एफएम 107 एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। आज के अपडेट में मैं मेडिसिन की दुनिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया को साथ में मिला के बात करने वाला हूं, बिकॉज पीपल आर टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली। रिसेंटली जब एप्पल का लॉन्च हुआ था, एप्पल का 18 आया और मार्केट में खलबली मची, लेकिन उसमें एक और चीज थी जिस पे बहुत काम किया गया और वो थी एप्पल की वॉच। उसमें कहा गया कि भाई अब हम जो हैं आपको हार्ट रेट इतना बढ़िया मॉनिटर करके देंगे कि ऑलमोस्ट एक्यूरेट लगेगा आपको। रिमेंबर दे सेइंग ऑलमोस्ट एक्यूरेट लगेगा, बट ठीक है, आई गिव इट टू देम, क्योंकि अभी लोग वॉचेस खरीद रहे हैं फॉर मेजरिंग हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग। दे वांट टू हैव समथिंग जो कि उन्हें मेडिकली थोड़ा सा एक्यूरेट रख सके, अपार्ट फ्रॉम द वर्कआउट सिग्नल्स जो उन्हें पता लगता है कि भाई इतना भागा, इतना दौड़ा, इतनी साइकिलिंग करी या इतनी कैलोरीज बर्न करी, वो तो है ही। लेकिन मार्केट में एक और चीज जो मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज्यादा यूज में आने वाली आने वाले वक्त में, बट आ चुकी है फॉर्चुनेटली, वो है स्मार्ट रिंग्स। इनका बूम आया मार्केट में, आपने देखा होगा ऑरा रिंग, हेल्थ एरा वो भी शुरू हो चुका है। स्मार्ट रिंग्स जो है स्क्रीन फ्री है, एक ऑल्टरनेट है, थोड़ा सा वॉच के मुकाबले सस्ती भी पड़ती है और ट्रेडिशनल वॉचेस को कहीं ना कहीं रिप्लेस करती है। आई एम नॉट अगेंस्ट स्मार्ट वॉचेस, पर अगर स्मार्ट वॉचेस सिर्फ आप इसलिए ले रहे हैं कि मुझे अपना वर्कआउट रेजिम को फॉलो करना है, तो आई थिंक रिंग्स आर आल्सो अ बेटर ऑप्शन। ऑरा और सैमसंग दोनों ने इस स्पेस में अपनी एंट्री मारी है, टाइटेनियम वेरिएबल्स लेकर आए हैं वो, जिसमें ऑफकोर्स आपको अपने फोन से उसे ब्लूटूथ वाईफाई के जरिए कनेक्ट करना होता है और आपको पूरा का पूरा लिंक मिलता है जिसमें आपको रिंग सारी अपडेट देती रहती है और काफी लाइट वेट है। रिस्ट बैंड्स हैं, रिंग्स हैं जो हर चीज को देती हैं। इसमें मल्टी वेवलेंथ ऑप्टिकल पीपीजी सेंसर्स लगाए गए हैं जो आपको स्किन टेम्परेचर्स बताते हैं, उसके मॉड्यूल्स हैं, 3D एक्सेलेरोमीटर्स हैं, और ये जो स्मार्ट वॉचेस स्मार्ट रिंग्स का ट्रेडिशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये कंटिन्यूसली आपके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV जिसे मेडिकल टर्म में कहते हैं वो ट्रैक कर रही हैं, जो स्मार्ट वॉचेस भी कर रहे हैं। स्लीप स्टेजिंग आपको मिल रही है, आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी है, बॉडी टेम्परेचर कितना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। तो आई डोंट नो, क्या आप स्मार्ट वॉच सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि मुझे ये सब मिलेगा, तब तो भाई आप रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, या फिर आप स्मार्ट वॉच इसलिए ले रहे हैं कि भाई वो बढ़िया दिखता है भाई, एकदम टच स्क्रीन मजा आ जाते हैं, तो बात दूसरी है। यू हैव टू डिसाइड, एंड फिर आपको ये भी देखना है कि आप कौन सी स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं। अगर आप कहीं भागम दौड़ी का काम नहीं कर रहे, देखो मैं कड़वा सच बोलता हूं, आप कहीं भाग भाग नहीं रहे, आप उसे कहीं वर्कआउट के लिए नहीं यूज कर रहे हैं और आप सिर्फ स्मार्ट वॉच भी ले रहे हैं वो भी महंगी महंगी, तो फायदा कुछ नहीं है, है ना। यू कैन रिप्लेस इट बाय अ रिंग सिंपली, अगर आपको लिटरल वर्कआउट वगैरह सब कुछ ट्रैक करना है, क्योंकि एनी डे स्मार्ट वॉच से ज्यादा प्रिसाइज रिंग्स ट्रैक करना पड़ता है। अगर आपको स्मार्ट वॉच चाहिए तो बहुत सारी बजट आती है जिसमें कि नथिंग की जो स्मार्ट वॉच है बेहतरीन है भाई, बेहतरीन, वो आपका सारा ट्रैकिंग व्रैकिंग का काम भी करती है और आपके लिए बजट फ्रेंडली भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो महंगी खरीदे ही मत, अरे बुरी बात है, पर जरा आपको यूसेज समझने की जरूरत है। जिस तरीके से हम फोन के केस में बात करते हैं कि भाई तुम्हारा फर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, आप फोन क्यों यूज करते हैं, कैमरा चाहिए आपको, बैटरी चाहिए आपको, चाहिए क्या, स्क्रीन चाहिए क्या, चाहिए गेमिंग कर रही है, उस हिसाब से यू सेलेक्ट योर फोन। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि स्मार्ट फोन स्मार्ट वॉच पे आपको कितना खर्चा करना है, आपका यूसेज उसमें है क्या, ये आपको समझने की जरूरत है। एंड ये बायोमेट्रिक ट्रैकिंग जो है जो आपके फिंगर पे आ चुके, दिस इज फार बेटर अगर आपको सोलली आपको वर्कआउट के लिए ही इसको यूज करना है। एंड ये जो आर्टेरियल ब्लड फ्लो सिग्नल्स हैं ये स्ट्रांग होते हैं जब आप रिस्ट बैंड पे पहनते हैं, रिस्ट बैंड्स में की मार्केट में भी सैमसंग आ चुका है, और ये डिवाइसेस जो हैं ये आपको ट्रैक भी करते हैं, डिस्टर्ब भी नहीं करते और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं क्योंकि स्क्रीन नहीं है। तो मैंने आपको लिटरली एक आइडिया दे दिया, आप अगर बिल्कुल वर्कआउट वाले हैं एंड यू वेरी सीरियस अबाउट इट, देन रादर देन गोइंग फॉर अ वेरी हेफ्टी अमाउंट, पेइंग अ वेरी हेफ्टी अमाउंट फॉर अ स्मार्ट वॉच, आप एक रिंग या रिस्ट बैंड के लिए जा सकते हैं, बिकॉज आपको ज्यादा प्रिसाइज डिटेल मिलेगी। आपके ऊपर है, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे तो टेक अपडेट बताते रहिएगा, और सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आसान तरीके हैं। इस तरह के स्कैम को सबसे पहले पकड़े कैसे? दोस्तों, कोई भी चीज अगर लीगल है तो वो आपको लीगली ही लेनी चाहिए। अगर कोई आपको लालच दे रहा है कि फला फला एप्लीकेशन है, फला फला OTT प्लेटफॉर्म है, एक साथ मैंने फला एप्लीकेशन में डाल दिया है, बस आप उस एप्लीकेशन को खरीद लिए और आपको 100 कतरी रियाल में फलाना मिल जाएगा, या फिर ये टीवी खरीद लीजिए, आप इस टीवी में एप्लीकेशन का टीवी का नाम भी होता है, उसमें आपको दुनिया भर के एपिसोड्स मिल जाएंगे, दुनिया भर के चैनल्स मिल जाएंगे, दुनिया भर के आपको अलग अलग तरह के मूवीज शोज मिल जाएंगे, तो ये एक फेक चीज है और ये इलीगल भी है। दूसरा तरीका है बचने का, जो सबसे आसान है, कि किसी भी तरह की डिटेल्स अपने कार्ड की किसी से शेयर ना करें। पेमेंट आपको हमेशा 1 या 2 महीने बाद करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते जब हम बात कर रहे होंगे किसी भी तरह के स्कैम के बारे में, तो आमतौर पे जैसे कल हमने बात करी थी टिफिन के बारे में, तो टिफिन का जो स्कैम है वो इसलिए हो जाता है लोगों के पास क्योंकि वो एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, लोग एडवांस में पेमेंट करते हैं, बट एडवांस में नहीं, एडवांस में खाना आना चाहिए। ऐसे ही एडवांस में OTT प्लेटफॉर्म आपके पास आना चाहिए, उसके बाद अगर वो चल रहा है रेगुलर बेसिस पे तो भी अगर आपको पेमेंट करनी भी है ना, 1 महीना यूज कर लिया आपने OTT, फिर अगर आपको पेमेंट करनी है तो आपको हमेशा पेमेंट करनी है थ्रू लीगल मींस और साथ ही साथ थ्रू ऐसे वेबसाइट के या थ्रू ऐसे एप्लीकेशन के जो वेरीफाइड हो कतर में, ऐसी जगह पे आप पेमेंट करें जिसे आप ट्रैक कर सके। तो दोस्तों, ये था नए जमाने का नए स्कैम जो आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: ही यही है। हर तरफ ख्वाहिशात को उभारने वाले ज़राए मौजूद हैं, इश्तहारात, सोशल मीडिया, फिल्में, इंटरनेट, बाजार, हर जगह इंसान से कहा जा रहा है जो दिल चाहे वो करो। कुरान कहता है जो अल्लाह चाहे वो करो। यही असल फ़र्क है। ख्वाहिशात के पीछे चलना आसान है, ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे करना इबादत है। सिर्फ इबादत पर नहीं, इल्म पर भी कायम है। कुरान करीम ने ऐसा इंसान का तसव्वुर पेश किया है जो सिर्फ नमाज पढ़ने वाला नहीं बल्कि सोचने वाला, सीखने वाला, गौर करने वाला और इल्म को दूसरों तक पहुंचाने वाला है। इसीलिए वही का आगाज भी किसी हुक्म जिहाद से नहीं, किसी माशी कानून से नहीं, बल्कि एक ही लफ्ज से हुआ है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पढ़िए अपने उस रब के नाम जिसने पैदा किया। वो इस्लाम का पहला पैगाम ही इल्म है। सामने के नाम प्रोग्राम के अख्ताम पर बाज निकात की एक मरतबा फिर याद दहानी कराते हैं कि सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की आयात सुनाते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं। जबकि सूरह मुनाफिकीन में ख़तरनाक हकीकत सामने आती है कि कुछ लोग वही सुनते हैं, दीन का नाम नहीं लेते। जबकि सूरह मुनाफिकीन में एक ख़तरनाक हकीकत बताई गई है, इसके बाद यानी सूरह जुमा के बाद सूरह मुनाफिकून है, तो उसमें ये बात आई कि कुछ लोग वही सुनते हैं, दीन का नाम लेते हैं, ईमान का दावा तो करते हैं मगर अंदर से पाक नहीं होते। वो ईमान को अपनी असल खराबी छुपाने के लिए ढाल बना लेते हैं, यानी जाहिर में मुसलमान लेकिन दिल में इखलास नहीं, जबान पर ईमान मगर अंदर निफाक। इसीलिए कुरान बार बार बनी इसराइल की मिसाल देता है, जब अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र फरमाता है जिन्हें तौरात दी गई मगर उन्होंने उसका हक अदा न किया। तो ये सिर्फ बनी इसराइल की तारीख नहीं, ये हमारे लिए आईना है। कुरान जब पिछली उम्मतों की मिसाल देता है तो मकसद सिर्फ उनकी खबर देना नहीं बल्कि हमें भी खबरदार करना है कि कहीं तुम भी किताब के हामिल होकर किताब से वाफिल ना हो जाओ। सूरह जुमा में फरमाया गया फसाउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। और सूरह मुनाफिकून में फरमाया गया ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करते। ये दोनों आयात आपस में गहरा ताल्लुक रखती हैं। एक तरफ कामयाबी का रास्ता बताया गया, अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ, दूसरी तरफ नाकामी का सबब भी बताया गया कि दुनिया की मसरूफियात में अल्लाह को भूल जाना। कुरान एक जगह कहता है उज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और दूसरी जगह बताता है कि जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए वही असल खसारे में है। सबने कराम यही कुरान का हैरत अंगेज नज़म है। एक सूरत में हुक्म आता है, अगली सूरत उस हुक्म की जिद से खबरदार करती है। एक जगह कामयाबी का दरवाज़ा खुलता है, दूसरी जगह नाकामी का रास्ता दिखाया जाता है। इसीलिए असल सवाल यही है कि कुरान हमें बदल रहा है या नहीं। हम कुरान सुनते हैं, पढ़ते हैं, दर्स में बैठते हैं, लेकिन क्या हमारे दिल नरम हो रहे हैं? क्या हमारी नमाज बेहतर होती है? क्या हमारी जबान पाक है? क्या हमारे मामला दुरुस्त हैं या नहीं? अगर कुरान सिर्फ मालूमात बनकर रह जाए और दिल की इस्लाह न करे तो ख़तरा है, क्योंकि कुरान का मकसद सिर्फ इल्म देना नहीं बल्कि इंसान को अल्लाह का बंदा बनाना है। आइए हम आज अहद करें कि कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, अल्लाह के जिक्र को अपनी मसरूफियात पर मुकदम रखेंगे। अल्लाह ताला हमें निफाक से महफूज रखे, कुरान के ज़रिए हमारे दिलों का तज़किया फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल फरमाएँ जो अल्लाह को कसरत से याद करते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम तफ़हीमुल कुरान के आज के इस हल्के से तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा शफ़ुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मअस्सलामा।
1: आपके जहन में वजारत दाखिला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखिला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम। पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107।

0: wake up, aankhon mein fire, level make up, duniya jo bole, side mein kar ke aankhon ko kholo, wake up.
1: Hey, yehi kahunga.
0: Wake up.
2: Suniye Wake Up with RJ Sarwar Mirza from Sunday to Thursday, subah 6 baje se, only on FM 107, Dil Se Desi.
3: Ladies and gentlemen,
4: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका पस...

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री टॉप

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

0: मॉडर्न लाइफ फास्ट है लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महवेश खान और शो है ये इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जहां हम बात करते हैं उस जिंदगी की जो दीन और दुनिया के दरमियान बैलेंस सिखाती है। चाहे वो फाइनेंशियल पीस हो, इमोशनल वेलबींग हो या फिर फैमिली लाइफ। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर, हर दिल और हर पेरेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग की, लेकिन सिर्फ पेरेंटिंग की नहीं, बल्कि आज हमारा टॉपिक है 21st सेंचुरी पेरेंटिंग फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। आज के दौर में जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो स्क्रीन्स हमसे पहले जाग चुकी होती हैं। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया और डिजिटल नॉइस ने हमारी जिंदगी को घेर लिया है और इसी दुनिया में हम अपनी औलाद को बड़ा कर रहे हैं। इसी दुनिया जहां बच्चे बहुत जल्दी ग्रो अप कर रहे हैं, जहां उनके सवाल हमसे पहले गूगल के पास होते हैं और जहां उनकी पहचान पर हर रोज नई थ्योरीज और ट्रेंड्स हमला करते हैं। पेरेंटिंग इस दौर में सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि कभी कभी ओवरवेलमिंग लगती है। पेरेंट्स अक्सर ये सोच कर घबरा जाते हैं कि हम अपनी औलाद को कैसे कॉन्फिडेंट बनाएं, कैसे उन्हें स्ट्रॉन्ग मुस्लिम आइडेंटिटी दें, कैसे उन्हें अल्लाह से जोड़े रखें, जब दुनिया उन्हें हर तरफ से अपनी तरफ खींच रही हो। और यहीं से इस्लाम हमें एक उम्मीद देता है। इस्लाम सिर्फ रूल्स का मजमुआ नहीं बल्कि रहनुमाई का निज़ाम है। और जब बात पेरेंटिंग की आती है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए सबसे रोशन मिसाल है। 21वीं सदी एक ऐसा दौर है जहां इंसानी जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। टेक्नोलॉजी ने फासले कम कर दिए हैं या समझें कि तकरीबन खत्म कर दिए हैं, इसलिए दिलों के दरमियान दूरियां बढ़ गई हैं। आज का पेरेंट एक ऐसी दुनिया में अपनी औलाद की तरबियत कर रहा है जहां वैल्यूज कॉन्स्टेंटली चैलेंज हो रही हैं और जहां हर चीज इंस्टेंट हो चुकी है। इंस्टेंट इंफॉर्मेशन, इंस्टेंट इंटरटेनमेंट, इंस्टेंट ओपिनियंस। इस दौर में पेरेंटिंग सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस नहीं रही बल्कि एक कॉन्शियस स्ट्रगल बन चुकी है। इस्लाम जो हर जमाने के लिए रहनुमा दीन है, हमें इस स्ट्रगल में एक वाजे और मुतवाजन रास्ता दिखाता है। इस्लाम पेरेंटिंग को सिर्फ बायोलॉजिकल या सोशल जिम्मेदारी नहीं समझता बल्कि इसे एक रूहानी अमानत करार देता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम के मुताबिक वो फितरत पर पैदा होता है, यानी अल्लाह की पहचान और सच्चाई की तरफ माइल होने के साथ। इस फितरत को महफूज रखना, इसे ग्रो करना और इसे जाया होने से बचाना पेरेंट्स की बुनियादी जिम्मेदारी है। कुरान हमें याद दिलाता है कि पेरेंट्स सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि अपनी औलाद की आखिरत के अंजाम के लिए भी जवाबदेह हैं। यह सोच पेरेंटिंग को एक बहुत गहरा और संजीदा मामला बना देती है। 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज डिजिटल कल्चर है। आज का बच्चा स्कूल से पहले स्क्रीन से तारुफ हासिल कर लेता है। मोबाइल फोन, टैबलेट, टेलीविजन और इंटरनेट उसकी सोच, उसके रवैये

0: उसकी प्रायोरिटीज को शेप कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन कल्चर को जन्म दिया है, जहां बच्चा अपनी कीमत लाइक्स, फॉलोअर्स और व्यूज से नापता है। इस्लाम इस टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि इस्लाम कभी भी इल्म और वसाइल के खिलाफ नहीं रहा। लेकिन इस्लाम हमें ये जरूर सिखाता है कि हर चीज का एक अदब और एक हद होती है। पेरेंटिंग का इस्लामी मॉडल यहाँ बैलेंस पर जोर देता है। पेरेंट का किरदार सेंसर भी है और मेंटोर भी। बच्चे को सिर्फ ये नहीं बताना कि क्या गलत है, बल्कि ये भी सिखाना है कि टेक्नोलॉजी को कैसे खैर और इल्म के लिए यूज किया जा सकता है। इस दौर का एक और बड़ा मसला आइडेंटिटी क्राइसिस है। आज के बच्चे को ये बताया जा रहा है कि तुम जो चाहो बन सकते हो, तुम्हारी कोई फिक्स्ड पहचान नहीं है। ये बात सुनने में आजादी लगती है, लेकिन असल में ये कंफ्यूजन पैदा करती है। इस्लाम बच्चे को बचपन से ही एक वाज़ह आइडेंटिटी देता है। वो उसे बताता है कि तुम अल्लाह के बंदे हो। तुम्हारा मकसद सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करना नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करना है। जब एक बच्चा ये समझ लेता है कि उसकी पहचान सिर्फ दुनिया की नजर में नहीं, बल्कि अल्लाह की नजर में भी कीमती है और कीमत रखती है, तो वो बहुत सी ज़हनी उलझनों से बच जाता है। आज के पेरेंट्स एजुकेशन और तरबियत के दरमियान फर्क भूल जाते हैं। अच्छे स्कूल्स, एक्स्ट्रा क्लासेस और स्किल्स पर तो बहुत तवज्जो दी जाती है, लेकिन इखलाक, सब्र, शुक्र और जिम्मेदारी जैसी चीजें नेचुरली सीख लेने पर छोड़ दी जाती हैं। इस्लाम यहाँ बहुत वाज़े है, सिर्फ पढ़ना लिखना काफी नहीं, बल्कि किरदार बनाना जरूरी है। एक ऐसा इंसान जो बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन ईमानदार ना हो, वो सोसाइटी के लिए फायदा नहीं, नुकसान बन सकता है। इस्लामी पेरेंटिंग का फोकस ये होता है कि बच्चा इल्म के साथ अदब भी सीखे और सक्सेस के साथ शुक्र भी। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। यहाँ लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहे 107 FM, दिल से देसी।
1: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है ज़हनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से।
0: लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 107, शो है इस्लामिक मॉडर्न लाइफ और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मावश खान। जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखते हैं, तो हमें पेरेंटिंग का सबसे खूबसूरत मॉडल मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ नरमी और मोहब्बत का रवैया रखते थे। आप उनकी बात सुनते, उनके इमोशंस को अहमियत देते और कभी उन्हें जलील नहीं किया करते थे। इससे हमें ये समझ आता है कि इस्लाम में डिसिप्लिन का मतलब सख्ती या तशद्दुद नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है रहनुमाई, कंसिस्टेंसी और बाउंड्रीज। आज की साइंटिफिक रिसर्च भी यही कहती है कि पॉजिटिव डिसिप्लिन बच्चों को इमोशनली सिक्योर और कॉन्फिडेंट बनाता है, और ये बिल्कुल इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आज मॉडर्न साइकोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, असल में इस्लाम का हिस्सा हमेशा से रहा है। इस्लाम गुस्से को दबाने के बजाय कंट्रोल करना सिखाता है। गम में सब्र और खुशी में शुक्र का कॉन्सेप्ट देता है। जब पेरेंट्स खुद अपने इमोशंस को इस्लामी तरीके से हैंडल करते हैं, तो बच्चा नेचुरली वो ही सीखता है। इसलिए पेरेंटिंग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का नाम नहीं, बल्कि खुद एक लिविंग एग्जाम्पल बनने का नाम है। रोल मॉडलिंग इस्लामी तरबियत का सबसे पावरफुल टूल है।

बच्चा वही करता है जो देखता है। अगर पेरेंट नमाज को अहमियत देता है तो बच्चा नमाज को बर्डन नहीं समझता। अगर पेरेंट सच बोलता है तो बच्चा ऑनेस्टी को नॉर्मल समझता है। इसलिए 21st सेंचुरी के मुस्लिम पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी डिजिटल हैबिट्स और अपने सोशल बिहेवियर का भी जायजा लें। पेरेंटिंग का असल इम्तिहान यहाँ होता है। आजकल जेंडर रोल्स पर भी बहुत बहस हो रही है। इस्लाम इस मामले में भी क्लैरिटी रखता है। इस्लाम मर्द और औरत को इज्जत और कीमत में बराबर समझता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों में हिकमत के साथ फर्क रखता है। पेरेंट्स का फर्ज है कि बच्चों को ये समझाएं कि इस्लाम किसी को कमतर नहीं बनाता, बल्कि हर शख्स को उसकी कुव्वत और फितरत के मुताबिक रोल देता है। ये समझ बच्चों को मॉडर्न नैरेटिव्स के कंफ्यूजन से बचाती है। सेकुलर एनवायरनमेंट में दीनी तरबियत एक और चैलेंज है। आजकल स्कूल सिस्टम अक्सर दीन से खाली होता है। इस सूरत हाल में घर का रोल बहुत अहम हो जाता है। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि पहला मदरसा है। जब घर में कुरान की तलावत होती है, जब फैमिली नमाज के लिए इकट्ठी होती है, जब डिनर टेबल पर सिर्फ खाना नहीं बल्कि गुफ्तगू होती है, तो बच्चा दीन को एक जिंदा चीज के तौर पर देखता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर नहीं। और फिर दुआ। इस्लाम पेरेंटिंग को सिर्फ ह्यूमन एफर्ट पर नहीं छोड़ देता, वो पेरेंट्स को अल्लाह से राबता जोड़ना सिखाता है। कुरान में अंबिया की दुआएं हमें ये बताती हैं कि औलाद के लिए दुआ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब पेरेंट अपनी प्लानिंग के साथ दुआ को जोड़ देते हैं तो तरबियत एक इबादत बन जाती है। आज के बच्चे जिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, वो पहले कभी इस शिद्दत से मौजूद नहीं थे। सोशल मीडिया ने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अनरियलिस्टिक बना दिया है। कंपैरिजन कल्चर ने सेल्फ वर्थ को लाइक्स और व्यूज से जोड़ दिया है। साइबर बुलिंग एक साइलेंट दर्द बन चुकी है, जहां बच्चा मुस्कुराता हुआ नजर आता है लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। हराम कंटेंट तक आसान रसाई ने मासूम जहनों को वक्त से पहले कंफ्यूज कर दिया है, और ऊपर से पीयर प्रेशर, फिट होने का प्रेशर, कूल बनने का प्रेशर, अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करने का प्रेशर। पेरेंट्स खुद भी प्रेशर में हैं। वर्क लाइफ बैलेंस एक खाब बन चुका है। घर में मौजूद होते हुए भी हम इमोशनली प्रेजेंट नहीं होते। कभी कभी डिसिप्लिन एक जंक लगती है और कभी खामोशी एक फेलियर। इस सारी सिचुएशन में अगर हम सिर्फ मॉडर्न पेरेंटिंग बुक्स या ट्रेंडिंग एडवाइस पर डिपेंड करें तो शायद अपनी रूहानी डायरेक्शंस को खो दें। इस्लाम यहाँ हमें एक बैलेंस्ड पाथ दिखाता है, ना एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस, ना एक्सट्रीम लेनेंसी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ रवैया बहुत ही रिमार्केबल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी नहीं थे बल्कि एक रहम दिल इंसान, एक लविंग गार्जियन और एक बहुत ही अक्लमंद टीचर भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेला करते थे, उन्हें अपनी पीठ पर बिठा लेते थे और उनके साथ हंसकर बातें करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों हजरत हसन और हजरत हुसैन ताला अन्हु को चूमा और किसी ने ताज्जुब से देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहमत नहीं करता उस पर रहमत नहीं की जाती। ये सिर्फ एक इमोशनल स्टेटमेंट नहीं बल्कि पेरेंटिंग का एक गोल्डन प्रिंसिपल है। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि बच्चा सिर्फ हुक्म सुनने वाली मशीन हो। इस्लाम बच्चे के दिल को पहले जीतने

0: तो हम उसके अंदर एक मोरल कंपास डेवलप करते हैं। तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107, यहां हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सुनते रहे FM 107 तुलसी देसी।
1: मॉडर्न लाइफ फास्ट है लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से।
0: लिस्टर्स, वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं इस्लामिक मॉडर्न लाइफ विद आरजे माबश खान। रोल मॉडलिंग यहाँ सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। अगर हम खुद हर वक्त फोन में घुसे रहते हैं तो हम बच्चे से स्क्रीन कम करने की तवक्को कैसे रख सकते हैं? अगर हम खुद गुस्सा, झूठ या बेसब्री दिखाते हैं तो बच्चा वही सीखता है। पेरेंटिंग का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा यह है कि हमें खुद वो बनना होता है जो हम अपनी औलाद को बनाना चाहते हैं। और फिर दुआ पेरेंटिंग का वो हिस्सा जो अक्सर इग्नोर हो जाता है। कुरान हमें बताता है कि अंबिया अपनी औलाद के लिए रो रो के दुआ किया करते थे। दुआ हेल्पलेसनेस की निशानी नहीं बल्कि यकीन की निशानी है। जब हम अपनी प्लानिंग, अपनी मेहनत, अपनी दुआ को जोड़ देते हैं तो पेरेंटिंग सिर्फ जिम्मेदारी नहीं इबादत बन जाती है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि पेरेंटिंग इस्लाम में एक फॉर्म ऑफ जिहाद है, नफरत या तशद्दुद नहीं बल्कि सब्र, मोहब्बत और इस्तकामत का जिहाद। हर मुस्कुराहट जो आप अपने बच्चे को देते हैं, हर वक्त जो आप उसके साथ गुजारते हैं, हर दुआ जो आप उसके लिए करते हैं, अल्लाह के यहाँ जाया नहीं होती। हमारी औलाद हमारे लिए गिफ्ट भी है और टेस्ट भी। दुआ है कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी औलाद को अपनी आंखों की ठंडक बना सकें। अगर कभी आप थक जाएं, घबरा जाएं या खुद को अलोन महसूस करें तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है और सुनना आपका रोड मैप है। लिसनर्स, अब आज की गुफ्तगू को समेटते हुए हमें एक लम्हे के लिए रुक कर ये सोचना चाहिए कि पेरेंटिंग असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है जो वक्त के साथ खत्म हो जाती है? क्या ये एक ऐसी अमानत है जो दुनिया से आखिरत तक हमारे साथ रहती है? इस्लाम हमें ये समझाता है कि पेरेंटिंग सिर्फ बच्चे को बड़ा करने का नाम नहीं बल्कि खुद को भी ग्रो करने का सफर है। जब हम अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, असल में अल्लाह हमें मौका देता है कि हम अपने सब्र, अपनी नियत और अपने अखलाक को बेहतर बनाना सीखें। 21st century की पेरेंटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज ही नहीं कि दुनिया बहुत बुरी हो गई है बल्कि ये है कि दुनिया बहुत तेज हो गई है, हर चीज भाग रही है और इस रफ्तार में हम कभी कभी अपनी औलाद के दिल की धड़कन सुनना भूल जाते हैं। इस्लाम हमें याद दिलाता है कि कनेक्शन स्पीड से नहीं प्रेजेंस से बनता है। जब हम अपने बच्चे के साथ होते हैं लेकिन फोन साइड पर रखकर, जब हम उनकी बात सुनते हैं बिना इंटरप्ट किए, जब हम उनकी इमोशंस को डिसमिस नहीं करते बल्कि समझने की कोशिश करते हैं, वही लम्हे असल तरबियत के होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेरेंटिंग मॉडल हमें ये सिखाता है कि बच्चे के लिए सबसे पहले रहमत जरूरी है। रहमत के बगैर डिसिप्लिन सिर्फ खौफ पैदा करता है और खौफ से निकले हुए बच्चे या तो बागी होते हैं या फिर बेएतमाद, जबकि रहमत के साथ रहनुमाई बच्चे को दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करती है। और जब बच्चा अल्लाह से मोहब्बत करता है फिर नमाज उस पर बोझ नहीं होती, इखलाक उसकी मजबूरी नहीं होता और हलाल हराम उसके लिए एक रूल बुक नहीं होती बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम परफेक्ट पेरेंट्स नहीं हैं और इस्लाम हमसे परफेक्शन नहीं मांगता। इस्लाम मांगता है सिंसियरिटी। कभी हम गलत करेंगे, कभी हम ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, कभी हम थक कर पेशेंस खो देंगे, लेकिन जब हम अपनी

पास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
0: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

हमने इस आसमान और जमीन को और जो कुछ इनमें है कुछ खेल के तौर पर नहीं बनाया है। अगर हम कोई खिलौना बनाना चाहते और बस यही कुछ हमें करना होता तो अपने ही पास से कर लेते, मगर हम तो बातिल पर हक की चोट लगाते हैं जो उसका सर तोड़ देती है और वो देखते देखते मिट जाता है, और तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। जमीन और आसमानों में जो मखलूक भी है अल्लाह की है, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो न अपने आप को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से सरताबी करते हैं और न मलूल होते हैं। शब रोज उसकी तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। क्या इन लोगों के बनाए हुए अर्जी खुदा ऐसे हैं कि बेजान को जान बख्श कर उठा खड़ा करते हों? अगर आसमानों जमीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी होते तो जमीन व आसमान दोनों का निजाम बिगड़ जाता। बस पाक है अल्लाह रब्बुल अर्श उन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाब दे नहीं है और सब जवाब दे हैं। क्या उसे छोड़कर इन्होंने दूसरे खुदा बना लिए हैं? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि लाओ अपनी दलील, ये किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे दौर के लोगों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी, मगर इनमें से अक्सर लोग हकीकत से बेखबर हैं, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा है उसको यही वही की है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, बस तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। ये कहते हैं रहमान औलाद रखता है, सुभान अल्लाह। वो यानी फरिश्ते तो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई है, उसके हुजूर बढ़कर नहीं बोलते और बस उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो बाखबर है। वो किसी की सिफारिश नहीं करते बजुज उसके जिसके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो, और वो उसके खौफ से डरे रहते हैं। और जो उनमें से कोई कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं भी एक खुदा हूं तो उसे हम जहन्नम की सजा दें। हमारे यहां जालिमों का यही बदला है।